शांति। हम फॉलो फादर कर रहे हैं, हमें ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है ताकि हमसे प्योर एनर्जी चारों ओर फैलती रहे, प्रकृति का भी कल्याण होता रहे और वातावरण भी शुद्ध होता रहे। और जितने जितने हम निर्विकारी बनेंगे तो देव कुल की जो पवित्र आत्माएं हैं उन्हें आकर्षण होगा पहले हमारी ओर और वो हमसे जाएंगी बाबा की ओर। तो निर्विकारी बनने से सेवाओं में भी बहुत वृद्धि प्राप्त होगी। हम सूक्ष्म रूप से इस बात को देख सकते हैं अपने अपने में। जिसकी पवित्रता की स्थिति जितनी श्रेष्ठ है उसकी सेवाएं भी उतनी ही श्रेष्ठ हैं। तो हम अपने को निर्विकारी बनाएंगे और क्रोध को संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। हमारे मन में भी चिड़चिड़ापन न हो। कभी कभी मन में थोड़ी उत्तेजना किसी के आ जाए, थोड़ा रोब आ जाए, किसी से बदले लेने की भावना हो जाए, ये सब क्रोध के सूक्ष्म अंश हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें बिल्कुल शीतल बन जाना है। क्रोध या चिड़चिड़ापन कहीं भी किसी को भी प्रिय नहीं होता। आपके परिवार में या आपके संगठन में कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी चिड़चिड़ा रहता हो आपको कैसा लगता होगा? ये क्रोध का एक ऐसा अंश है जो हमारी सूक्ष्म एनर्जी को धीरे धीरे खाने लगता है, खुश नहीं रहने देता मनुष्य को, उसके मन को विचलित करता रहेगा, उसकी एकाग्रता को नष्ट करता रहेगा। तो हमें क्रोध मुक्त होना ही है। बाबा ने भी कई बार ये अभियान चलाए हैं और बहुतों ने इस पर बहुत सफलता पाई है। बाबा का बनने के बाद बहुत आत्माएं क्रोध के अधिक अंश को समाप्त कर चुकी हैं। हम सब भी ध्यान देंगे, जितना भी क्रोध किसी के अंदर बचा हो वो कब आता है, क्यों आता है, उसके कारण को ढूंढ लेंगे। किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसे चेक करेंगे और ज्ञान के किसी भी पॉइंट का प्रयोग वहां पर हम करेंगे। इसका आप स्वयं अपने में निरीक्षण करेंगे और कौन सी ज्ञान की पॉइंट आपको उस समय फायदा देगी, चित्त को शांत रखने में, मन को शीतल रखने में, इसका खुद उपयोग करेंगे। तो अपने पास कई सारी पॉइंट्स रख लेंगे जिनके आधार से हम अपने क्रोध को नष्ट करते चलेंगे। परंतु हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इन विकारों को नष्ट करने के लिए हमें योग शक्ति की परम आवश्यकता होती है। हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे पांचों स्वरूप क्रोध मुक्त हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, निर्विकारी हैं। जितने जितने हम स्वरूपों की स्मृति में रहेंगे तो स्मृति से स्थिति बनती है। बार बार अगर हम इस स्मृति को लाएंगे, मैं तो पूज्य आत्मा हूँ, परम पूज्य हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, निर्विकारी स्थिति के आधार पर ही तो मैं परम पूज्य हूँ, तो हमारी स्थिति निर्विकारी बनती ही जाएगी। साथ में योग बल की हमें परम आवश्यकता रहती है ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे पास आ जाए, जो बार बार आ जाए, हमारी मन की शांति को नष्ट करने लगे, उसमें हम अपने मन में संतुलन रख पाएं, इसके लिए योग शक्ति की परम आवश्यकता है। बिना योग बल के कोई भी निर्विकारी नहीं बन सकता, माया पर विजयी नहीं बन सकता। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, मैं विजयी रतन हूँ। इस गुड फीलिंग से हमारे अंदर की शक्तियाँ विजय दिलाने लगेंगी। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, कल पूर्व भी मैंने इस माया को, इस क्रोध को, इस चिड़चिड़ेपन को जीता था, ये स्मृति हमें पुनः विजयी बनाएगी, हमारी शक्तियों को जागृत करेगी। ये बहुत गुड फीलिंग दिन में कई बार हम करें, 10 बार कर लें सारे दिन में, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। और कुछ देर हर घंटे में
10 सेकंड भी बैठा करें जाकर परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे, ताकि उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में समा जाए, हम आत्माएं संपूर्ण पावरफुल बन जाएं और इस माया को चैलेंज कर दें, सदा के लिए नष्ट कर दें। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। आप अवश्य ही बलवान, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हैं, या फिर आप दुर्बल, अशक्त और आत्मविश्वास रहित व्यक्ति हैं, जो महान कार्य को सामने देखकर भाग खड़े होते हैं। जिस बात से भी आपका साहस कम होता है, उससे आपकी शक्ति और उत्पादन सामर्थ्य, सृजन शक्ति नष्ट होती है। शेक्सपियर ने कहा है, साहस अवसर के अनुसार ही ऊंचा उठ जाता है। आप इस सर्वोत्तम रसायन को जीवन भर लगातार प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक कि आप इसे प्राप्त करने की मनोवृत्ति ही नहीं बना लेते। हर रात सोने से पहले यह कहिए, मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। अपना यह विश्वास बना लीजिए और इस तरह आत्मविश्वास के साथ कार्य क्षेत्र में जाइए। जिसे आप चाहेंगे वह चीज आपको मिलकर ही रहेगी। संकल्प कीजिए, मैं सदा योद्धा रहा हूं, एक युद्ध और सही। चाहे मृत्यु मेरे सामने आ जाए, वह भी मेरा मार्ग रोक नहीं सकेगी। मानव जाति के इतिहास में जो अंश पढ़ने योग्य हैं, वे साहस की ही कथाओं से भरे पड़े हैं। निश्चय, निर्णय, विश्वास और अटूट संकल्प कीजिए कि कठिनाइयों पर मेरी विजय होगी। जिस कार्य को दूसरे लोग असंभव मानते हैं, उसी को मैं संभव कर दिखलाऊंगा। संसार के अधिकांश नेताओं ने असंभव कार्य ही संभव कर दिखलाए हैं। साधारण जन जिन कामों को हाथों में लेने से कतराते थे, उन्हें ही उन नेताओं ने हाथ में लिया और सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। नेपोलियन ने अपने सैनिकों से कहा था, एल्प्स पर्वत है ही नहीं, और उसके सैनिक पर्वत को पार कर गए। सिकंदर ने कहा था, सिंधु है ही नहीं, और उसके सैनिक सिंधु नदी पार कर गए थे। महायुद्धों में वे ही नेता विजयी हुए जिनमें इस प्रकार की अपराजेय भावना थी। मनुष्य की वास्तविक शक्ति इस बात से मापी जाती है कि उसमें प्रतिरोध की शक्ति कितनी है। वह कौन सा बिंदु है जहां जाकर उसका साहस भंग हो जाएगा, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। जिस बिंदु पर आकर आप पीछे हट जाते हैं, जिस बिंदु पर आकर आपकी हिम्मत साथ छोड़ देती है, वही बिंदु तो आपकी कसौटी है। जितनी दूर जाकर आप मुड़ जाते हैं, उतनी दूर तक ही आपको सफलता मिलती है। यदि आप में योग्यता है तो आगे बढ़ते जाइए, यदि शक्ति है तो काम को जारी रखिए, यदि साहस है तो अपना वेग दुगना बढ़ा लीजिए। यदि आप में साहस है तो वह इस बात का प्रतीक है कि आपकी विजय अवश्य होगी। इतिहास उन पुरुषों और स्त्रियों के कारनामों से भरा पड़ा है जिन्होंने भीषण बाधाओं के विरुद्ध विजय प्राप्त की, और यह विजय उनके अटूट निश्चय से, दृढ़ संकल्प से ही प्राप्त हुई। चित्रकला हो या संगीत, साहित्य हो या विज्ञान, प्रत्येक क्षेत्र में आप देखें तो पाएंगे कि नेतृत्व उन्हीं मनुष्यों के हाथ में रहा जिनमें साहस था। मिल्टन के पास बुद्धि अंग्रेजी की उतनी नहीं थी, परंतु साहस देखिए कि उन्होंने 125,000 पदों की रचना की। महाकवि मिल्टन नेत्रहीन भी थे। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिमेंड महाकाव्यों की रचना की। अपने कितने विरोध का मुकाबला आप कर सकते हैं, कितनी गालियां, कितनी आलोचनाएं, कितने मतभेद, कितनी भ्रांतियों का आप सामना कर सकते हैं। क्या विरोध आपको झुका देता है या आपकी रीढ़ की हड्डी को और भी मजबूत बना देता है, आपकी पीठ को और भी सीधी कर देता है और आपके दृढ़ निश्चय को और भी सुदृढ़ कर देता है। आप कितनी देर विचलित हुए बिना खड़े रह सकते हैं, यही कसौटी है। इसी से मापा जाएगा कि आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप असफल होने पर भी संघर्ष जारी रखते हैं, आप जीवन के सबसे अंधकारपूर्ण दिनों में भी अपने साहस का ध्वज ऊंचा लहराते रहते हैं, तो कोई भी शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकता।

ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

मन में साहस का विकास करने के लिए आपको अवश्य ही साहस का विचार करना होगा, साहस को अपना आदर्श बनाना होगा। यदि आप महान नेता बनना चाहते हैं तो महान नेताओं की तरह सोचिए। यदि वीर बनना चाहते हैं तो साहसी वीरों की तरह सोचिए। यदि आप निरंतर अपने मन में शक्ति के विचार का समर्थन करेंगे तो इसमें आप में शक्ति उत्पन्न होगी। साहस है क्या? इसका उत्तर है, शक्ति की चेतना से उत्पन्न आत्मविश्वास ही साहस है। यह विजय विश्वास है जो आकस्मिक संकटों और बाधाओं का मुकाबला कर सकता है। यह हमें सामने आई प्रत्येक परिस्थिति का स्वामी बनाता है। आत्मसम्मान से, अपने पर भरोसा करने से, आत्मविश्वास से हम अपने अंतःकरण में साहस का विकास कर सकते हैं। जिस बात से हमारे मन में अपनी योग्यता के विचारों का संचार होता है, उससे हमारा साहस बढ़ता है। एक महिला कमजोर, दुबली पतली और रोगग्रस्त थी। वह उठ नहीं सकती थी। अचानक घर में आग लग गई। वह उठकर दौड़ पड़ी और अपने सोए हुए बच्चे को उठाकर घर से बाहर आ गई। किसी को विश्वास नहीं था कि उस महिला में इतनी शक्ति होगी, परंतु अत्यधिक उत्तेजना ने उसमें असीम साहस का संचार कर दिया। अपने दिन भर के कार्य को समाप्त करने के उपरांत हिसाब कीजिए, न केवल यह कि आपने कितना काम किया, बल्कि किस भावना से, कितने उत्साह और साहस के साथ काम किया। उत्साह और साहस का बहुत महत्व है। क्या आपने दुर्बलता से, लापरवाही से, ढीले ढाले मन से कार्य किया या आत्मविश्वास से कार्य किया और अपनी शक्ति का अधिकतम प्रदर्शन किया? आप में असंख्य असीम शक्तियां हैं, व्यापक प्रभावशालिता है और असंख्य लोगों के जीवन में साहस की आवश्यकता है। बंदूकों का सामना करने के लिए जितने साहस की आवश्यकता होती है, उतने ही साहस की आवश्यकता वफादारी और ईमानदारी के लिए भी होती है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम यथार्थ में कहां खड़े हैं, इसकी सही जानकारी लोगों को कराने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है। हमारे विश्वास क्या है, हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जैसे हम वास्तव में हैं वैसे ही दिखाई देने के लिए, ढोंग या दिखावा न करने के लिए भी साहस की आवश्यकता है। अपने साथियों के सामने ठीक उदाहरण उपस्थित करने, मिसाल कायम करने और भीड़ के साथ न बह जाने के लिए भी साहस की आवश्यकता है। सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए भी साहस की आवश्यकता है। भले ही हमारे मित्र कुछ कह रहे हों, एक शब्द में जीवन के बड़े संकटों को सहने और बड़े कार्यों को करने की अपेक्षा छोटे छोटे कष्टों को निरंतर सहने और छोटे छोटे कार्यों को ठीक ढंग से निरंतर करते रहने के लिए महान साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं से वास्तविक नेताओं का जन्म होता है और जब आपातकाल आ पड़ता है तब वे जिम्मेदारी संभालने को तैयार होते हैं और अपना उचित पद प्राप्त कर लेते हैं। मानव जाति के नेता का

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? गॉड्स ब्यूटीफुल आंसर वॉज द थिंग दैट सरप्राइजेस मी द मोस्ट अबाउट दीज ह्यूमन बींग्स इज दीज ह्यूमन बींग्स दे वेयर देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ एंड आफ्टर मेनी मेनी इयर्स दे हैव टू री इन्वेस्ट देयर कंप्लीट वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें टू डू सम एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस बाई डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो, और जब मैं कहूंगा टू तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ चलिए, ओके हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके एक और बार करेंगे, वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वे बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है, और वो है जब मैं कहूंगा वन तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या या फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए, ओके? ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूं, कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट? भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना? जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके? यू नीड टू हेल्प एवरीवन। जैसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं। एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी। जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बनता है।
2: ईश्वर सत्य है,

देखें इनको हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर।

रेडियो स्टेशन से जैसे समाचार प्रसारित होते हैं, जैसे घोषणाएं होती हैं, उन्हें हम अपने ग्राहक यंत्र द्वारा हूबहू सुनते हैं। मानव मन रेडियो स्टेशन के समान है और हमारे शरीर का एक एक कोश एक ग्राहक सेल के समान है। मन के केंद्र से जैसे समाचार प्रेषित किए जाते हैं, जैसी घोषणाएं की जाती हैं, उन्हें ही कोश ज्यों का त्यों सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। मन यदि प्रसन्नता, साहस, आत्मविश्वास का संदेश भेजता है, तो शरीर के अंग प्रत्यंग का प्रत्येक कोश स्वास्थ्य, चुस्ती, फुर्ती प्रकट करता है। परंतु यदि मन संदेह, मुर्दनी, निराशा, पश्चाताप और असफलता का संदेश प्रसारित करता है, तो ये छोटे छोटे मन अर्थात कोश उसी के अनुरूप शिथिल और निराश हो जाते हैं। यदि मन से यह संदेश प्रसारित होता है कि मुझे भय है कि मैं बीमार होने वाला हूँ, तो यह संदेश सहस्त्रों नन्हे कोशों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और यदि यह संदेश बारंबार प्रसारित किया जाता है, तो व्यक्ति सचमुच बीमार हो जाता है। कारण यह है कि ये छोटे छोटे कोष्ठ रूपी सूक्ष्म मन शरीर की प्रत्येक क्रिया का दिशा निर्देश करते हैं। आप अपने शरीर के प्रत्येक कोष के साथ अपनी स्वास्थ्य की, चुस्ती फुर्ती की प्रत्येक क्रिया को विधिवत करने की बात कर सकते हैं। जीवित शरीर में कोई कोष मृत नहीं है। प्रत्येक कोष एक समझदार कार्य करता है। वह शरीर में अपना छोटा सा कार्य व्यापार करता रहता है। सप्लाई करना, बहाल करना, क्षतिपूर्ति करना, पुनर्नवीनीकरण करना, मरम्मत करना, ऊर्जा देना, शरीर के विभिन्न अंगों की आवश्यकता की पूर्ति करना आदि उनके कार्य हैं। जैसे कि एक कोष समूह भोजन का पाचन कर पोषक तत्वों को रक्त में भेजता रहता है, दूसरे कोष समूह का कुछ अन्य कार्य है। प्रत्येक कोष शरीर के ऊतकों को उसकी आवश्यकता का सामान भेजता रहता है। शरीर में कोष बेकार, सुस्त और सोया हुआ नहीं है। वे केंद्रीय प्रसारण स्थान से मन से संदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम जो भी संदेश उन्हें भेजते हैं, चाहे वह प्रसन्नता का हो या खेद का, प्रेम का हो या घृणा का, उसका उन कोशों की क्रियाओं और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अतः उन्हें संदेश भेजते हुए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए। इनमें बहुत भारी अंतर है कि उन छोटे छोटे मन रूपी कोशों को निरंतर आत्मविश्वास का संदेश भेजते रहते हैं अथवा लगातार उत्साह भंग के संदेश प्रसारित करते रहते हैं। कितने ही व्यक्ति जब खाने की मेज पर बैठते हैं, मुझे भय है कि यह भोजन मेरे हाजमे को बिगाड़ देगा, मैं इसे पसंद करता हूँ परंतु पचा नहीं सकता, लगता है मेरे हाजमे में कुछ खराबी है, ऐसा संदेश प्रसारित करने के उपरांत आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आपके पचाने वाले अंग भली भांति कार्य कर सकेंगे, जबकि आपके विचार ऐसे हैं। कोश रूपी सूक्ष्म मन अत्यंत संवेदनशील हैं और आप जो सुझाव उनके पास भेजते हैं, उन्हें वे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और उन्हीं के अनुसार उनमें प्रतिक्रिया होती है। हम चाहे तो उन छोटे छोटे कोशों को उल्लास से भर दें और चाहे तो निराशा से भर दें, क्योंकि हमारी प्रत्येक विचार तरंग का, प्रत्येक भावना लहर का इन पर तुरंत और गहरा प्रभाव पड़ता है।

0: भाई रुको भाई रुको, ओ त्रिदेव त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओ अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, वो एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, वो जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। वो ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

विचार या भाव को विश्व पर व्यक्त करने की मन में उठी तीव्र आकांक्षा रुक नहीं सकती। हमारी चित्रकला और साहित्य आदि की सर्वोत्तम कृतियां अधिकतर पूर्व निर्मित रूप से प्रकट हुई हैं। उनके लिए कलाकारों ने कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। अभिव्यक्ति की वह मन तरंग ही इस प्रकार एक एक कलाकृति में परिपूर्ण हुई कि चिंतन एवं सृजन के बीच के अंतराल को जानना कठिन है। इन कलाकारों की भांति ही हम अपने मन को निरंतर सफलता के लिए प्रशिक्षित करते रहें, तो अवसर आने पर सफलता अपने आप हमारी झोली में आ पड़ेगी और हम चकित रह जाएंगे। इससे विपरीत यदि हम यही सोचते और कहते रहेंगे, मैं थक रहा हूँ, मैं चूक गया हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, तो हम इसी संदेश को अपने शरीर के प्रत्येक कोश तक प्रसारित करते रहेंगे और तब हम उन्हीं परिस्थितियों को पैदा कर देंगे जिन्हें हम दूर रखने चाहते हैं। शरीर में स्थित मन के कोश मन के स्वामी भक्त सेवक हैं। वे हमारी मांगों और इच्छाओं को तुरंत कार्य रूप में परिणत कर देते हैं। हम उन्हें सही प्रशिक्षण दे सकते हैं, उचित ढंग सिखला सकते हैं, रचनात्मक संदेश भेजते रह सकते हैं। इस तथ्य का जब हमें ज्ञात हो गया कि हमें अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए इनकी सहायता लेना कितना अनिवार्य है, तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इन्हें कभी भी निराश, संदेह, चिंता और भय के संदेश न प्रेषित करें। जिस समय आप कहते हैं मैं इस काम को कभी नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ किसी तरह भी नहीं कर सकता, उस समय आप इन कोशों के सामर्थ्य को उनसे छीन लेते हैं और तब उनके लिए अपना स्वाभाविक कार्य करना असंभव हो जाता है। जिस समय आप सोचेंगे कि मैं निर्धन हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी, तो इस स्थिति को आप अपने समीप आकर्षित करते हैं और निर्धन भी हो जाते हैं। यदि आप अपने विचारों का उपचार करें, उनमें आमूलचूल सुधार लाएं, उन्हें सकारात्मक, विधेयात्मक, सृजनात्मक बनाएं, तभी आप अपने निषेधात्मक विचारों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। यदि आप आशा, आकांक्षा और विश्वास को विधेयात्मक विचारों द्वारा नष्ट करते हैं, तो ये नकारात्मक विचार निश्चय आपके लिए असफलता लाएंगे। प्रतिदिन प्रातः उठकर इस विश्वास को दोहराइए, दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार से मैं पहले से अच्छा होता जा रहा हूँ। यह आत्म सुझाव, आत्म संबोधन आपको उन्नति के प्रति निष्ठावान बनाता जाएगा। आपकी इच्छा को संकल्प में, दृढ़ निश्चय में परिवर्तित करता जाएगा। अपने मुंह से अपने कार्य के बारे में संदेह प्रकट करके ही बहुत से लोग अपने संकल्प को, प्राण को, दृढ़ निश्चय को दुर्बल बनाते रहते हैं। विजय की आकांक्षा हो तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज ही दृढ़ निश्चय कर लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अपने मन रूपी प्रसारण संस्थान से शरीर के कोशों को कभी भी उत्साह भंग, अकर्मण्यता, आलस्य, मूर्धनी और असफलता का संदेश प्रसारित नहीं करेंगे। तो इसी प्रतिज्ञा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल के सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: The Best Writer Award goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं,

0: काबिलियत ही मेरी पहचान है।
1: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
2: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
3: अभी बजे हैं सुबह के 7। स्वयं को 1 मिनट दें, मन से कहें सुबह।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। ये है रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे श्री। और स्वास्थ्य को सहजता से हासिल करने के अनेक तरीकों के बारे में हम हर दिन बातचीत करते हैं। लोग जो समझते हैं कि स्वास्थ्य एक बहुत ही कठिन चीज है, ये ऐसा नहीं है। वास्तविकता में बीमार होना मुश्किल बात है। अगर हम कुछ गलत करते हैं, गलत खाते हैं, गलत व्यवहार, गलत आहार या गलत विहार में जाते हैं, तो फिर तबीयत बिगड़ना स्वाभाविक है। अगर हम इन्हीं चीजों को ठीक कर लें तो स्वस्थ रहना आसान है। स्वस्थ रहने के अनेक तरीके क्या हैं, क्या हमें करने की जरूरत है, किन चीजों पर ध्यान रखना है, क्या करने से हम बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे भी तो जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं, और जल्दी ठीक होने से या बीमार न पड़ने से हम डॉक्टर्स की और विश्व में जो अनेक स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य संगठन है उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये भी हम समझ रहे हैं। आइए आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी इन्होंने एक लंबा अनुभव हासिल किया है। भारत के अनेक खिलाड़ियों को स्वास्थ्य के लिए इन्होंने प्रशिक्षित किया है, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद की है। साथ ही साथ पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर गोरखपुर, जहां पर अनेकों पीढ़ियों से इनके परिवार के जनों ने भारत के लोगों को और विश्वभर के लोगों को शफा दी है, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, आज बातचीत की शुरुआत में ही मैं वो चीज समझना चाहूंगा कि जब हम लोगों के जीवन में बढ़ते हुए तनाव को देखते हैं, स्ट्रेस को देखते हैं, तो लोग कहते नहीं, टेंशन तो आजकल हर किसी को है। लोग तो ये भी कह देते हैं कि यार बच्चों को भी टेंशन होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो भी उनका टेंशन चल रहा होता है। भागा दौड़ी भरी जिंदगी हो गई है तो वहां पर भी लोग चैन सुकून की सांस नहीं ले रहे होते। अब ये जो शब्द है कि सुकून की सांस भी नहीं ले रहे हैं, तो ये प्रश्न उठता है। जब प्रकृति चिकित्सा में हवा के बारे में बात कर रहे थे कि भाई श्वास लेने के लिए हवा जरूरी है, यहाँ सुकून की सांस नहीं मिल रही है, तो इसमें सुकून की सांस कहने का मतलब क्या है? क्या सुकून की सांस अलग सांस होती है?
1: सर, सांस एक जैसी है। आपने भैया टेंशन की बात की, स्ट्रेस की बात की और कहा बच्चों में भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी अब दो तरीके से डिवाइड हो गया, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और एक नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस वो है कि अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा और एग्जाम आ रहा है तो आप नहीं पढ़ेंगे। पर नेगेटिव स्ट्रेस वो है कि आपका एग्जाम है, आप उसके बारे में सोचे पड़े हैं पर कोई काम नहीं कर रहे। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, क्या बस आना हमारे हाथ में है? नहीं, वो तो ड्राइवर चला रहा है, ट्रैफिक उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसके बारे में भी चिंतित हो रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव स्ट्रेस है। तो हमको अब अपने जीवन से सारी नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए, और जैसे ही हम नेगेटिव चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे हम आनंद ही आनंद में पहुंच जाएंगे और हम खुद चमकने लगेंगे एक लाइट सोर्स की तरह, क्योंकि हम मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, और जो चीज शांत होती है वो सुंदर दिखती है। तो अपने जीवन से नेगेटिव चीजें, नेगेटिव स्ट्रेस को निकालिए और पॉजिटिव चीजें को अपने जीवन में डालिए।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब। जैसे आपने कहा है, सांस की जो बात कही जाती है वो सांस नॉर्मल ही सांस है, मगर अगर हम सही तरीके से सांस लेना सीखें। हमारे एक श्रोता मित्र ने ये बात कही कि प्राणायाम करने मात्र से, सिर्फ गहरी लंबी सांसें लेने मात्र से उनको अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है। दिमाग में जो गर्मी थी या बोझ जैसा महसूस हो रहा था वो हल्का महसूस होने लगा है, ऐसा राजशेखर पाटिल जी ने कहा। अब ये बात उठती है कि अगर हम सांस सही तरीके से लेते हैं उससे अगर व्यक्ति के मनोस्वास्थ्य पर इतना अच्छा असर हो सकता है, शरीर के स्वास्थ्य पर तो असर होता ही है जैसे आपने कहा, तो ऐसी विधियों को समझना और सीखना जरूरी है कि हाँ, जिससे हम आसानी से इन चीजों को कर सकें। जैसे आपने कहा कि प्राणायाम से और सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना विपश्यना नाम की पद्धति है जो गौतम बुद्ध ने आज से 2250 वर्ष के करीब पहले सुनाई थी, ये बात कही जाती है। तो इन चीजों के बारे में बेहतर समझ हासिल की जाए कि क्या ये चीजें हैं, क्यों ये किया जा सकता है।
1: प्राणायाम, मेडिटेशन या विपश्यना या अपने अंदर झांकना, ये सारी चीजें संयम सिखाती हैं। संयम क्या हुआ कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अभिमान को अपने जीवन में कम कर लेना। आपने जैसे कहा कि ये विपश्यना गौतम बुद्ध ने इसको, इस पद्धति को सीखा था, और लोग कहते हैं कि उन्होंने सीखा, उसके इजाद नहीं किया था ये, उनको मतलब पहले से थी, भारतवर्ष में ये सारी क्रियाएं बहुत पहले से थी, बीच में ये विलुप्त हो गई तो इसे फिर ढूंढा गया हम लोग। और विपश्यना एक तरीका है जिससे हम लोग अपनी श्वास पे कंसंट्रेट करके अपने ब्रेन को रिलैक्स करते। ये इंडिया में अभी करीब 150 सेंटर्स हैं और विश्व भर में इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। ये फ्री में सिखाई जाती है, इसका कोई मूल्य नहीं लगता है। आपको 10 दिन के लिए उस सेंटर पे जाना रहता है, और सबसे बड़ी बात कि आपसे आपका मोबाइल ले लिया जाता है।
0: बहुत सारे लोगों को ऐसे लगे किसी ने उनसे किडनी मांग ली हो डॉक्टर साहब।
1: आपसे आपका मोबाइल, आपके पास जो भी किताबें हैं वो आपसे ले लिया जाता है, आपको बाहरी दुनिया से कोई आपका संपर्क नहीं रखा जाता है, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, किसी तरह का कोई मैगजीन, कुछ भी नहीं आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। आपको सिर्फ बैठाकर आपकी जो ब्रीदिंग है उस पे कंसंट्रेट कराया जाता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये तो जेल की तरह बंद कर दिया, अगर मेरे घर में कुछ हो गया तो मैं कैसे, मुझे मालूम चलेगा, तो उसकी चिंता मत करिए। आप अपना नंबर देकर आते हैं, अगर घर में कोई बड़ी विपत्ति या विपदा आती है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, पर वो कोशिश करते हैं कि आप रुक कर पूरा ये कोर्स करके जाएं। इसमें जो हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात की, विपश्यना में इसको आनापान बोला जाता है। आना मतलब इनहेलेशन, और पान को अपान बोल के मतलब इससे एक्सपिरेशन करने को कहा जाता है। इसको नॉर्मली ये माना जाता है कि इसमें आपको आर्य मौन रहना है, मतलब नोबल साइलेंस। आप जिनके साथ विपश्यना कर रहे हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते, और बात सिर्फ वाणी से नहीं, आप जेस्चर्स या हैंड मूवमेंट से भी आप बात नहीं करेंगे। ये कहा जाता है ना, देख के कोई आंखों से इशारा करिए, ना हाथ से कोई इशारा करिए, किसी भी चीज में आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। और ये 10 दिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंसंट्रेट करेंगे। आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंसंट्रेट करते हैं तो धीरे धीरे आपको आपकी मेमोरी में जो चीजें पुरानी हो गई हैं वो भी बाहर निकलने लगती हैं, और इसको करने के बाद जो दिमाग का जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, वो धीरे धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और आपकी विपश्यना करने के बाद जो बहुत सारी समस्याएं जिनका आप उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे थे वो आपको मिलने लगती हैं, और आपका दिमाग शांत हो जाता है। और जहां आपका दिमाग शांत होता है आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो विपश्यना अब छोटे बच्चों को भी कराई जा रही है जिनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या जो स्थिर नहीं बैठ पा रहे हैं, या जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर हैं, जो हर बार टीचर कहता बच्चा बहुत अच्छा है बट कंसंट्रेट नहीं करता है, तो उनको भी ये विपश्यना सिखाई जा रही है। 10 दिन में आपको रोज हल्का भोजन कराया जाता है, खूब सारा सैलड्स जूसेस ये सब दिया जाता है, रात में डिनर नहीं कराया जाता है कि आपका पाचन तंत्र को भी आराम मिले और आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास पर अपना ध्यान को केंद्रित करें और मेंटल रिलैक्सेशन पाएं।
0: ये बात स्पष्ट होती है डॉक्टर साहब कि जैसे हम इन प्रक्रियाओं को समझते हैं, इन चीजों को भारत में इतने समय से इनकी मान्यता रही है, इन चीजों से लोगों को लाभ क्या होता है ये चीज समझकर लोग करते हैं, तो कितना आसानी से ये चीजें हो सकती हैं। और आज के समय में जैसे आपने कहा छोटे बच्चों में भी जब इन चीजों से लाभ ले सकते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि आज की दौड़ती भागती जिंदगी के हिसाब से तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं ही। ध्यान की अनेक पद्धतियां जो आप अभी बता रहे थे, विपस्सना जिनमें से एक है, वो अपनी ही सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में बताता है कि सांस के आते और जाते हुए इन चीजों को देखने के बारे में बताया जाता है। ऐसी अलग भी तो चीजें अनेक प्रकार की होंगी जिसके बारे में लोग जानते होंगे, जिससे उनके मनोवेग में स्थिरता आ सके, वो रिलैक्स हो सके।
1: विपश्यना में भैया अंतिम क्षण में आप अपने शरीर के अंदर चल रही सारी संवेदनाओं को भी एक दर्शक के रूप में देखते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो लोग एकाध विपश्यना के कोर्स कर लेते हैं या रोज कर रहे होते हैं, वो इससे हेल्थ बेनिफिट भी गेन कर पाते हैं। अब आप अगर शिवानी दीदी का कोई भी विपश्यना का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें वो एक कॉमन सेंटेंस से वो हमेशा शुरू करती है कि कुछ क्षणों के लिए बाहरी सभी बातों को भूलते हुए, आसपास की आवाजों से ध्यान हटाते हुए अपने अंदर चले जाइए, और जैसे कि आप ही हैं, आपके चारों ओर कुछ भी नहीं, शरीर के एक एक अंग से ध्यान को हटाते हुए धीरे धीरे भृगुटी के बीच में ले आइए, सेंटर ऑफ फोरहेड बिटवीन योर आईब्रोज एंड लुक एट यू द पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा शाइनिंग एट सेंटर ऑफ योर फोरहेड। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस भृगुटी के बीच में विराजमान हूं, इस शरीर का मालिक हूं, अब ओरिजिनल फॉर्म में मैं आत्मा आत्मशक्ति स्वरूप हूं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस भृगुटी के बीच में विराजमान हूं, इस शरीर की मालिक हूं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आत्मशक्ति स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, ये शांति मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है, और इस शांति के वाइब्रेशंस मेरे अंदर से निकलकर चारों तरफ फैल रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं, वैसे ही मेरे अंदर से शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि कितना सुंदर उन्होंने ये बोला है। ये मेडिटेशन को जहां विपश्यना में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंसंट्रेट करने को बोला गया, वही यहां पर एक लाइट सोर्स को, एक ऊर्जा को अपने दोनों आंखों के बीच में उसको देखने के लिए बोला गया, और फिर ये देखा गया कि वो जो शांति की ऊर्जा आपके शरीर में है वो सब तरफ फैल रही। अंत में भैया मेडिटेशन का गोल सिर्फ एक है, वो है शांति को प्राप्त करना। तो आप या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंसंट्रेट कर लीजिए या लाइट सोर्स पे कंसंट्रेट कर लीजिए, जो चीज आपको पसंद आती है आप उस पे कंसंट्रेट कर लीजिए, और दिन में सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मेंटल रिलैक्सेशन कर लीजिए, कहीं शांति में बैठ के जहां बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही है, आप कहीं कोई कोर्स करने जा नहीं सकते, आप कहीं किसी से मिल नहीं सकते, आप सिर्फ वहां बैठकर गहरी सांस या कोई एक लाइट सोर्स पे कंसंट्रेट करके अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात आपने ये सुनाई, और यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग ध्यान पद्धति सिखाई जाती है। और जैसे आपने कहा कि अगर हम अपने ध्यान को किसी एक चीज पर ले आते हैं, भले लोग श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की बात करते हैं विपस्सना की पद्धतियों में, ऐसे ही राजयोग में जैसे आपने ये उदाहरण दिया कि मैं अपने आत्म स्वरूप पर, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस जगह पर मैं अपने ध्यान को केंद्रित करता हूँ, आत्मा का निवास स्थान वो ब्रह्मचर्य को मैं देखता हूँ, और वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करके मैं शांति के इस शक्ति को अनुभव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि शांति मेरे भीतर ही है। ये अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि हम शांति के लिए बाहर खोज रहे होते हैं कि हम बाहर कहीं जाएंगे वहां सुकून मिलेगा, ये करेंगे तो सुकून मिलेगा, मगर वास्तविक शांति हमारे भीतर ही है और शांति हमारा वास्तविक स्वधर्म है, हमारा गुण है, हमारा निजी संस्कार है। और इसी चीज को अगर मैं रिकग्नाइज करता हूँ तो ये चीज आसानी से संभव होती है। और अक्सर ये कहावत मैंने सुनी है जहां पर लोग कहते हैं देयर इज नो वे टू पीस बट पीस इज द वे, यानी शांति के लिए कोई रास्ता नहीं है, शांति अपने आप रास्ता है और उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा।
1: भैया आपने देखा जब फोरहेड या भृगुति की बात की, मेडिकली इसको ग्लैबुला बोला जाता है और हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं वहां पे बिंदी लगाती हैं, पुरुष वहां पे टीका।

0: लगाते हैं। और ये कहा जाता है कि हमारा वन ऑफ द चक्रास ऑफ योगा जो हमारे शरीर का है वो यहीं पर है। तो सोचिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या सोचकर इसको शुरू किया होगा। तो नोइंगली अनोइंगली हम और एक्वा प्रेशर में ये एक बहुत अच्छा प्रेशर पॉइंट भी है। तो हम रोज यहाँ पर बिंदी लगाते समय जब इसको छू रहे हैं तो एक प्रेशर पॉइंट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, हम इसको एक मेडिटेशन पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं, और हम सुंदर बनने के लिए भी यहाँ पे तिलक और टीका लगा रहे हैं।
1: बिल्कुल आपने जो बात कही बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। सदियों से ये परंपराएं भारत में चली आई हैं, जैसे आपने कहा यही मस्तक के बीच में ही हम आज्ञा चक्र को भी दिखाते हैं, जिन चक्रों के बारे में लोग पढ़ते हैं वहां पर भी वो चीज लोग कहते हैं। आज ये बहुत ही सुंदर सी चर्चा रही है जहां पर हमने ये समझा है कि कैसे सांस लेने की इस प्रक्रिया को रेगुलेट करते करते हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं, कहां हमारा मन स्थिरता की ओर आता है, मन में जो टेंशन या तनाव है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आज बढ़ रहे हैं जो लोग कहते हैं, उसके लिए भी कितनी सारी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं जो हमें स्वाभाविक रीति से इस शांति जो आंतरिक शांति है वहां पर पहुंचने में मदद करती हैं और वहां तक हमें ले आती हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आ रही है कि इन सोची समझी हुई जो टेक्निक्स हैं जिन्हें लोगों के लिए आज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम सहजता से अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री तरीके से जी सकते हैं। अगर आपके मन में उद्वेग है, अगर आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, आप ज्यादा तेजी से सांसें ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है। और इन्हीं सांसों को सही तरीके से लेना, ध्यान की पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप सांस लेने की सही प्रक्रिया को सीखकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को और शारीरिक स्वास्थ्य को दोनों को ठीक कर सकते हैं। और ये प्राचीन वदंती भारत में प्रसिद्ध है कि योगियों की आयु लंबी कही गई है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़कर बाहर जंगल में जाके बैठ जाए, हिमालय में पहुंच जाए और वहां बैठने से आपकी आयु लंबी हो जाएगी। नहीं, अगर आप योग की इन प्रक्रियाओं को सीखते हैं और घर में रहकर भी अगर आप ये चीजें करते हैं तो भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी आयु लंबी रहेगी। और ये जो बात कही जाती है कि लंबा स्वास्थ्य का वरदान हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, वो आप सभी को मिल सकता है।
0: बहुत सारे लोग भैया आप खुद अपने यहाँ आश्रम में भी देखेंगे और बहुत सारे संत महात्माओं से भी मिलेंगे जो थोड़ी देर दिन में चुप रहते हैं। हमको बहुत सारे ऐसे योगिक टीचर्स हैं जो गुरुजी एक बजे के पहले कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपनी एनर्जी को भी बचा रहे हैं प्लस अपने ब्रेन को भी ताकत दे रहे हैं कि वो साधना में आगे बढ़ सके। तो आप डीप ब्रीदिंग प्लीज करिए और उसके साथ साथ दिन में कुछ समय मौन रहने की भी कोशिश करिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी मौन रहता हूं, मैं रोज सोता समय कुछ नहीं बोलता हूं ये नहीं, दिन में कोशिश करिए कि आधी घंटा 40 मिनट या एक घंटा आप चुप रहेंगे। हफ्ते में एक दिन ढूंढिए, आप देखिएगा कि आपकी कितनी एनर्जी बच जाती है और आप कितना अनर्गल बात करने से बच जाएंगे।
1: बहुत ही सुंदर सी बात आपने कही डॉक्टर साहब, जैसे आपने विपस्सना में भी मौन की बात कही और ऐसे ही जीवन में हर दिन के अंदर भी जैसे हम श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं या ध्यान सीख कर सही तरीके से ध्यान करके अपने मन को शांत कर रहे हैं, वैसे ही मौन का भी उपयोग करके हम अपने मन को अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों आज की बातचीत में यही विदाई लेनी होगी क्योंकि समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा। कल फिर होगी मुलाकात और इंटरेस्टिंग विषयों पर हम चर्चा जारी रखेंगे सहज स्वास्थ्य में। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद, ओम शांति।
1: दोस्तों आज की बातचीत में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आपने बहुत प्रेरणादायी चीजें सीखी हैं। आप समय निकाल कर कम से कम ध्यान के लिए कुछ समय निकालें अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अगर आपको कुछ भी करना मुश्किल लगता है, ध्यान की विधियों में जो अनेक प्रकार की विधियां सिखाई गई हैं, उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, कुछ चीजें सीख कर थोड़ा समय उन चीजों को करके देखें, फिर देखें उस पर आपके शरीर पर और आपके मन पर क्या असर होता है। दिन में कम से कम आधा घंटा एक घंटे के लिए समय निकालकर मौन में रहने का भी प्रयास करें और उससे भी आपको फायदे हो सकते हैं। आज की बातचीत में इतना ही। सहज स्वास्थ्य में फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहाँ हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया, तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी, और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है, तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है, यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। You know, like that is what I'm saying. It like I don't want to live. I don't want to do anything. You know, and उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीज़ें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे fundamental बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक fundamental realization है जो हमारे सारा perspective change कर देती, कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला, वो मैं कौन? तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस, तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन? वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it is eternal. जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते सोल कहते स्पिरिट कहते मैं इटर्नल हूँ. तो डेथ किसकी होती है क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है जो जल नहीं सकता जो मर नहीं सकता जिसका विनाश नहीं हो सकता. आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल. सो एवरी सोल इज इटर्नल. तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है व्हाट इज डेथ इज व्हेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स वन पर्टिकुलर सीन एंड देन आई हैव टू शिफ्ट. तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है. कई लोग बोलते कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है. दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर सेटलिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट उसके बाद द सोल कैन नॉट बी इन माई कॉन्टैक्ट एनी मोर क्योंकि उसका वो अकाउंट फिनिश हो गया एंड इट हैज़ टू गो समवेयर एल्स जहाँ उनका एक
0: नया अकाउंट
1: है. वो सोल अपनी जर्नी पे है. यू नो इट्स लाइक एक ट्रेन में हम जा रहे हैं हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही स्टेशन से चढ़ें और सब लोग एक ही स्टेशन पे उतरे. हर एक की जर्नी अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है. हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा मैं सोचू चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी आप तो चले गए कहीं और. अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है.
0: हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते. यू नो बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ
1: हम उनको याद नहीं रहते. ये उनके लिए अच्छा है ना. चलो जब अगर हम एक पल के लिए देखें आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई. तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहाँ पता चलता या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फ़ोन करते एक दूसरे को सब ठीक है कुछ हुआ है. एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है रोज़ रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. It's शुरू शुरू में तो remembrance है.
0: हाँ.
1: एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
0: कभी वो हंसता है, कभी रोता है.
1: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता. तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
0: 4, 5, 6, 7.
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी, वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करें, हमें लगता है वो हमें देख कर डजेंट इवन नो मी, डजेंट इवन रिकग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है. अब उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है. यहाँ अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा. अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा. यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं. किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं. लॉ ऑफ एनर्जी
0: किस बॉडी में था? किसी और कॉस्ट्यूम में था.
1: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना. एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है. दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप. अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. एनर्जी ट्रैवल करने वाली है. कहाँ ट्रैवल करेगी?
0: उसी पे
1: जाएगी, उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है. सो यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते. लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता, उसको दर्द ना होने देती. मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए. और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ? मैं दर्द भेजते जा रही हूँ, भेजते. सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा. इफ़ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, I will start taking care of myself. अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है. वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना. I don't want to be free of pain. अपने लिए नहीं, उनके लिए से.
0: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं.
1: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है. अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता, वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है. लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं, वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है. एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो, इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन.
0: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया, जो भी है, उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुँच रहे हैं.
1: ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ कोर्स. सी, इट्स लाइक दिस. आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे,
0: तो देन अननोइंगली
1: आई एम सेंडिंग सो मच पेन.
0: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहाँ पे भी होगा.
1: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके. हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाती हूँ. अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन

0: मायसेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे, लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क. तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वट एवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस. तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर.
1: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहाँ से आ रही है.
0: दैट्स बिकॉज वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन. तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश. यू नो पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी. यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट. इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल. इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल. क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे, अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे. देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ हाँ,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है. यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो हम बताते नहीं. व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए. अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहाँ सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहाँ पर सेट हो जाए. हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते हैं?
1: नहीं, हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश. I don't want to say that, but
0: because we're thinking only about ourselves, yes, no, yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
1: Haan.
0: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं. हमने कहा वो तो चले गए.
1: वो मेरी ज़िंदगी से तो पर चले गए ना. ये बड़ा दुख है.
0: लेकिन
1: वो कहीं तो है
0: ना. सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं
1: है, लेकिन एक्सेप्ट इट, यू नो, लाइक ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कन्फ्यूजन्स और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है.
0: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा हैं, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना. विनाश नहीं हो सकता ना. एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर. व्हाट डज एनर्जी डू? इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है.
1: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन्स हैं कि हम फिर ना कई कई और चीज़ों में चले जाते हैं. उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
0: कनेक्ट करने की भी कोशिश
1: करते हैं. इज इट राइट?
0: इट इज अगेन, सी, राइट एंड रॉन्ग अगेन. जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, वो तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना, मेरे से, यू नो, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते, हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकम्फर्टेबल दे बिकम. वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है. प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते. एंड दैट इज़ वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश करें,
1: सेटलमेंट नहीं होगा,
0: नहीं होगा ना. इट इज़ लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फ़ोन करके बोलें वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चली गई है, दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते? क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है,
1: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो, लाइक इट्स
0: नाउ, सी, नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीज थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते? रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में दो तीन चार लोग हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं, एक नहीं है, वी कैन नॉट डू एनी थिंग, लेकिन जो है
1: इरिटेशन होने लग जाती है, आई जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप से हो रही होती है,
0: मेरे अंदर सिर्फ दर्द है ना, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को, हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग, दिस इज हाउ द पास्ट
1: एक्चुअली एज इंपॉर्टेंट एज दैट चाइल्ड,
0: एज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, इक्वली इंपॉर्टेंट, वाज इट दैट दैट पर्सन वाज इंपॉर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट इंपॉर्टेंट, बट माय फोकस गोज ऑल टुवर्ड्स दैट वन हु इज नॉट देयर, एंड इन द प्रोसेस आई निग्लेक्ट एवरीवन हु इज देयर. बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. जो बच्चा है आज वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है क्योंकि पेरेंट्स क्या हैं, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं, तो उस बच्चे को जो उनके साथ हैं उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की. घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है, दर्द में. वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ टिल व्हेन विल वी लेट दिस पास्ट influence my present. I cannot do anything about it except for accepting the situation.
1: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai, ab aap agar apne aap par kaam karne ke liye tayar hain, to kya karein?
0: Hame ye pata hai ki याद तो आती है, यू नो, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद. नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज़ फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
1: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
0: वो एक्चुअली वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
1: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं
0: उनको जब भी याद करें, नहीं उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस. हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए, लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी, वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
1: जब हम
0: शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स, कुछ भी करने से शांत, अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुँचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुँचेगा,
1: मेरा
0: दर्द पहुँचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: एंड एक्चुअली हम जितना पीस पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे वो हमसे ही होकर गुजरेंगे. तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट.
0: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. दर्द क्यों क्रिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ मुझे नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है, और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ अपने नए शरीर में अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल.
1: आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999 344 666 9873

0: center of the forehead, tiny point of light. Main chaitanya shakti, atma ho. I am a peaceful being. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations mujh atma se nikal bahar charo taraf phail rahe hain aur ye un atmaon tak pahunch rahe hain jo aaj mere saath nahi hain lekin sambandh to hai atma ka atma ke saath sambandh aur ye sambandh sneh शांति और शक्ति का है आई सेंड आउट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड लव टू दैट सोल ओम शांति
1: थैंक यू सो मच बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं आपसे अभी विदा लेते हैं अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी ओम शांति

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। एंड इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल जर्नी से आप नीचे उतरते हो, तब आप जर्क फील करते हो। सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय दिस स्पिरिचुअल जर्नी, and that is what is very very important.

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और 27 मई 2026 आज का तारीख है और आज विशेष दिन है, आज एकादशी है। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और एकादशी के बारे में आप सभी जानते हैं कि आज जैसे बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और दिन में एक ही बार खाने का विधान एकादशी में आता है। और ईद उल जुल्हा आज है, ये भी एक त्यौहार है जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, ईद उल जुल्हा के बारे में। और ये इस्लाम धर्म में विशेष रूप से इस्लामी हिजरी के आखिरी महीने अर्थात जिलहिज की 10 तारीख को मनाई जाती है। ईद उल जुल्हा को बकरीद भी कहा जाता है और ईद उल फितर की तरह ही इस दिन भी विशेष रूप से ईदगाह जाकर ईद की नमाज अदा किया जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलूँगा और आज का ये खूबसूरत दिन यादगार बन जाए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना गणेश जी का। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है समाचारों का, तो मैं सीधे आपको समाचारों की तरफ ले चलूँगा दिल्ली। और मैं चाहूँगा कि अगर एकादशी है तो आपके यहाँ अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ज़रूर बताइएगा हमें कि आप किस तरह से व्रत रखते हैं, कौन कौन से व्रत रखते हैं और आपके घर के अंदर कौन कौन लोग व्रत करते हैं और फिर किस तरह से उसका आयोजन भी करते हैं। कई बार व्रत अगर हम रखते हैं, घर में सभी लोग व्रत नहीं करते हैं तो कुछ लोग रखते हैं, तो उसके लिए फिर क्या आयोजन करते हैं, तो उनका कैसे ध्यान रखना है, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई करता है तो उसको सपोर्ट करने से ये सबसे बड़ा पुण्य का काम मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अगर कोई भक्ति नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन जो करता है उसको अगर आप सहयोग देते हैं तो आपका भी पुण्य जमा हो जाता है। इसी तरह कई बार घर में जो है हर शनिवार या शुक्रवार, कई बार हर हफ्ते जो है कोई

0: किसी को आदत होती है कि मुझे उपवास रखना है, लेकिन बाकी घर वाले जो है उनके उपवास से परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो करते हैं उनको सहयोग दीजिए, आपका भी लाभ हो जाएगा, आप अपना खाना खाइए, आपको मनाही थोड़ी है ना लेकिन जो करते हैं उनका सम्मान कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप अपना शेयर जमा करते हैं ऐसा करके, अगर आप उनको अरे क्या उपवास करते हैं ऐसे ऐसे बोलेंगे तो वो आप अपना जमा नहीं करते और भी बढ़ाते हैं बोझ। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं, समाचार सुनते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ, मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
4: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
5: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
7: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बुधवार का ये खूबसूरत दिन आप सभी के लिए अच्छा खुशखबरी लेकर आए और पूरा दिन आपका जो है बल्ले बल्ले हो, मज़ेदार हो, ऐसी शुभ आशा के साथ आइए बात करते हैं। कल सुशील चौधरी जी से हमारी बातें हो रही थी, बड़े ही अच्छी बातें उन्होंने बताई थी और उसके साथ में हमने डॉक्टर सुशील मेहता जी से भी बातें की थी। शाम को बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में जिसमें उन्होंने डायबिटीज़ पर प्रकाश डाला और डायबिटीज़ को लेकर जितनी भी भ्रांतियाँ थी वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं सबसे बढ़िया अगर काम करे तो उनका स्ट्रेस लेवल को कम करे। जानते न जानते हुए भी उनका अंदर जो है एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है जिसके कारण डायबिटीज़ बढ़ता जाता है। आप नेचुरल रहें, रिलैक्स रहें और जो भी आपका खाना है ओवर ईटिंग ना करते हुए लिमिटेड जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो करें या फिर नेचुरल फूड पे आप आ जाइए कुछ समय के लिए। नेचुरल फूड खाइए और स्ट्रेस से मुक्ति पाइए। तो जैसे ही आप स्ट्रेस कम करते जाएंगे, अपने स्ट्रेस के ऊपर फोकस ना करेंगे, अपने पुरानी चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी डायबिटीज़ जो है नेचुरल रूप से कम हो जाएगी और आप जो है अच्छा बेहतर जीवन जी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको भी कुछ अगर बताना हो तो ज़रूर फ़ोन कीजिए 94-1415-1415 इस नंबर पर और फ़ोन करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हुए रवि शास्त्री जी का जन्मदिन है, उनके बारे में बातें करते हैं। भारत के बहुत ही पॉपुलर पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान समय में उमदा कमेंटेटर है। इन्होंने बतौर क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 1981 से 1992 तक टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। रवि शास्त्री ने अपने विकेट क्रिकेट कैरियर में धीमी गति से उन्होंने गेंदबाज और बल्लेबाज की भूमिका निभाई है, इस कारण इन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता है। रवि शास्त्री 15 जुलाई 2017 से भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर भी है, इससे पहले कोच अनिल कुंबले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन उसके पहले गणपति बप्पा मोरिया सुनते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए गणपति बप्पा की जय हो, जय हो। आइए, बात कर रहे थे हम लोग रवि शास्त्री जी के बारे में। रवि शास्त्री जी का अगर जीवन परिचय की बात करें तो माता पिता कर्नाटक के रहने वाले थे, पर इनका जन्म मुंबई में 27 मई आज ही के दिन 1962 को हुआ। इनके पिताजी डॉक्टर थे। घर में बच्चों को पढ़ाई के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने को कहा जाता था। जब रवि शास्त्री वहाँ छोटे थे तब वे गिल्ली डंडा, कंचे और फुटबॉल, हॉकी खेलने में ही समय ज़्यादा बिताते थे। उन्हें दोस्तों के साथ बाहर खेल कूद करना ही ज़्यादा अच्छा लगता था। बचपन में रवि शास्त्री के पास ही खेलने का ज़्यादातर सामान था और किसी भी खेल में आउट हो जाने पर वे खेल बंद कर देते थे, तो सारा दोस्त जो है, सारे उनके सहपाठी जो है, उनकी बात मानकर उन्हें एक मौका और दे देते थे। क्रिकेट में भी जब वे आउट हो जाते थे तो बैट लेकर भाग जाते थे, फिर उनके दोस्त उन्हें घर से मना कर लाते थे कि अच्छा चलो एक बार बल्लेबाजी और कर लेना। ये बातें तब की है जब वे बहुत छोटे थे। फिर बड़ा होने पर उन्हें मालूम हुआ कि हार जीत खेल का एक हिस्सा है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। तब बस फिर क्या था, स्कूली जीवन में उन्होंने इन सारी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते रहे। और इनका एक कारण ये भी था, आखिरी बेंच के पास की खिड़की, इस खिड़की से वे क्लास से बाहर क्या चल रहा है ये देख पाते थे और ज़रूरत लगने पर चॉकलेट की पन्नी और फूलों के छिलके खिड़की से बाहर भी फेंक सकते थे। वे क्लास में बैठे बैठे चॉकलेट और दूसरी चीज़ों का खाना चलता रहता था। जब वे स्कूल में थे तो खाने के बहुत सी चीज़ें अपने दोस्तों के लिए भी ले आते थे और अपनी चीज़ें एक दूसरे को बांटा भी करते थे। जब रवि शास्त्री 9वीं में थे तब स्कूल की क्रिकेट टीम बनी और उनके कोच देसाई सर ने उन्हें क्रिकेट सीखने में खूब मदद की और उनकी वजह से वे क्रिकेटर बन सके। उनकी स्कूल की टीम ने चैम्पियनशिप भी जीती थी और वो पहली ट्रॉफी थी जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित किया था और यहीं से उनका क्रिकेट करियर जो है शुरू हो गया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ, और ये गीत आपको बहुत सुकून देने वाला है। और जब भी हम लोग खेल की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो कुछ करना चाहिए आदमी को, है ना, कुछ करिए कुछ करिए तो ऐसे ही कुछ भाव भरा गीत आपको बताना वाला सुनाने वाला हूँ। और ये गीत खेल के जज्बे को बढ़ा देता है और एक पंख दे देता है। तो चलिए खेल के जज्बे को बढ़ाते हैं, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। चलिए, बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना और आशा करूंगा कि आप बिल्कुल जैसे कि एकदम से एनर्जेटिक हो गए होंगे। तो जब हम लोग इस तरह के गीत सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक और शख्सियत के बारे में बातें करेंगे, भालचंद्र नेमाड़े। जी हाँ, भालचंद्र नेमाड़े का नाम साहित्यकारों में से एक आता है और मराठी लेखक रहे हैं, उपन्यासकार रहे, कवि, समीक्षक और शिक्षाविद रहे। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिए जाने वाले भारतीय साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया 2014 में। और ख़ास करके भालचंद्र नेमाड़े पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे मराठी साहित्यकार थे। डॉक्टर नामवर सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने उनको साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। और भालचंद्र नेमाड़े जी जो है, विशेष हिंदू झूला और सभी चीज़ों से वो जुड़ गए थे। हेलो, हाँ, नहीं नहीं 176, 176, हाँ 176। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं एक दो मिनट में आता हूँ, एक मिनट। हाँ, नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मराठी साहित्यकार थे डॉक्टर नामवर सिंह की अध्यक्षता में, उनके इस काम को देखकर उन्हें पुरस्कार दिया। और फिर धीरे धीरे उनका जो है भालचंद्र जी का हिंदू झूला, बिडार, कोसला आदि उपन्यास बहुत चर्चित हुए, जो हिंदू उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और शक्तिशाली गीत आपके नाम अभी। और इस बीच एक दोस्त जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: अभी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सूरज जी बताऊं के ताना से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया सूरज जी, बोली कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं, बातें सुन रहे हैं। अच्छा, जी जी जी, थोड़ा लेट से जुड़ा हूं क्योंकि सुबह में समाचार क्या टाइम हो गया था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, समाचार
1: सुनने
0: बिल्कुल
1: बात के लिए। और चलो, बुधवार है, गणपति का तो कई सारे गाने हमने सुन लिए, लेकिन आज एक गाना सुनना है मेरा भाई का। तो वो गाना है, कैसे आऊ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी।
0: अच्छा।
1: बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, वो गाना है
0: मेरा भाई का।
1: कैसे आऊ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी,
0: कैसे आऊ। चलिए,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

जिन की प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। आइए बात कर रहे थे हम लोग बालचंद्र जी के बारे में। बालचंद्र जी का सन 1963 में प्रकाशित कोसला उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय रहा। इसके अलावा उनके कविता संग्रह, कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। मराठी साहित्य की समीक्षा भी उन्होंने की और बालचंद्र निमाड़े से पहले मराठी साहित्यकार BSS खांडेकर, कुसुम सूरज और विंदा कारिंदरकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आइए, सर्वप्रिय लेखक के रूप में उनको याद किया जाता है मराठी साहित्य में, और एक उपन्यासकार, काव्य और आलोचक के रूप में उन्हें देखा जाता है, और उनको काफ़ी सम्मान इस क्षेत्र में मिला है। ज्ञानपीठ, पद्मश्री, महाराष्ट्र फाउंडेशन का गौरव पुरस्कार, मनोहर पुरस्कार, कुसुम समग्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और यशवंत राव चौहान पुरस्कार, अपटे पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार उनको दिए गए उनके कार्य के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना। निश्चित तौर पे आपको ये गीत भी मोटिवेशन दे रहा था और आपको जो है बहुत ही सुकून जा कहते हैं वो भी मिल रहा था अंदर से। आत्मा जो है ऐसे स्फूर्तिले गीत सुनकर जो है प्रसन्न हो जाता। आइए एक और शख्सियत के बारे में बातें करूँगा आपके साथ। मैं बताना चाहूँगा पद्मूमल पुन्नालाल बख्शी। जी हाँ, पीपी बख्शी साहब की अगर बात करें तो ये सरस्वती के कुशल संपादक, साहित्य वर्चस्वपति और मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध रहे। एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार थे। जी हाँ, पीपी बख्शी का जन्म आज ही के दिन 1894 में राजन नंदगांव छत्तीसगढ़ भारत में हुआ। इनके पिता श्री पुन्नालाल बख्शी खेरगाड़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और पद्मूमल पुन्नालाल बख्शी चंद्रकांता संतति उपन्यास के प्रति विशेष आसक्ति के कारण स्कूल से खड़े हुए भाग खड़े हुए और हेडमास्टर पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य

मंत्री द्वारा जमकर बेटों से पीटे गए और 14वीं शताब्दी में बक्सी जी के पूर्वजों ने श्री लक्ष्मी निधि राजा के साथ मांडला से खैरगढ़ में आए थे। तब से यही बस गए और बक्सी के पूर्वज फतेह सिंह और उनके पुत्र श्रीमान राजा उमराव सिंह दोनों के शासनकाल में श्री उमराव बक्सी राजकवि के रूप में काम किया करते थे और थे। तो बक्सी साहब की प्राइमरी शिक्षा खैरगढ़ में हुई और फिर 1911 में मैट्रिकुलेशन पढ़ने के बाद हेडमास्टर एनएल गुलस्वामी के निर्देशन पर नाम के साथ इनके पिता का नाम पुनालाल लिखा गया। तब से ये अपना पूरा नाम पद्मल पुनालाल बक्सी लिखने लगे थे और फिर मैट्रिक की परीक्षा पूरा होने के बाद 1911 में इन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश लिया और 1912 में अपनी बाकी की पढ़ाई जो है जो रह गई थी वो पूरा करके बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में आ गया है और 1916 में इनकी नियुक्ति स्टेट हाई स्कूल रजनीगंधा गांव में संस्कृत अध्यापक के रूप में हुआ और पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा में काम करते हुए इनका विवाह 1913 में लक्ष्मी देवी से हुआ और फिर बीए की उपाधि 1916 में इन्होंने प्राप्त की और इस तरह से बीए एमए करके आगे पढ़ाई भी जारी रखे और अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ाते हुए 1911 में जबलपुर से निकलने वाली हितकरणी में बक्सी की प्रथम कहानी तारिणी प्रकाशित हो गई और जिसके कारण इनको काफ़ी सम्मान मिला और वहीं से इनका साहित्यिक जो रवानी है प्रवाह है वो चल पड़ी। फिर अलग अलग पत्रिकाओं के साथ जुड़े, साहित्य के साथ जुड़कर अपनी साहित्यिक सेवा करते रहे। तो ये थी कुछ खास बातें पन्नालाल जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए 9:48 हो रहे हैं और एक गीत आपको स्फूर्तिला सुनाता हूँ। चलो चले, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आज के विशेष आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। जी हाँ साथियों, बात करें 1931 की तो प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार थे ओ एन वी कुरूप, इनका भी जन्मदिन आज है। और प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कमेंटेटर रवि शास्त्री का भी जन्मदिन आज है, जिनका जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही प्रसिद्ध साहित्यकार बिपिन चंद्रा का भी जन्मदिन आज है, 1928 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। बालचंद्र नेमाड़े मराठी साहित्यकार 1938 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और भारत के उद्योगपति और विशेष राजनीतिक नितिन गडकरी साहब का भी जन्मदिन आज है, 1957 में इनका जन्म हुआ। हिंदी के विशेष कवि पत्रकार प्राध्यापक हेमंत जोशी जी का भी जन्मदिन आज है, 1954 में इनका जन्म हुआ। बख्शी जी का जन्मदिन भी आज है, 1894 में इनका जन्म हुआ। निबंधकार के रूप में पॉपुलर हुए जाने माने कवि चिराग जैन जी का भी 1985 में आज जी के दिन जन्म हुआ था। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जौली का भी जन्मदिन आज है, 2003 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए मित्रों, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार। सुनील जी का भी जन्मदिन है। पावन का महीना, पवन गणेश और मिलन का गाना है। हाँ, पवन का गाना है, मिलन का गाना है। सावन का महीना, पवन गणेश और ये गाना भी होना चाहते हो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और उनका याद
0: धन्यवाद।
1: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बढ़ाए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर अपच की समस्या है तो क्या करेंगे।

सोचिए जरा, हम तो उपाय देंगे ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए। और जी हाँ, आज सिखाने वाली हूँ सलाद, परंतु कौन सा वाला वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और स्पोर्ट्स का जीवन में कितना महत्व है, और हमारी बहनों को बेटियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के हम खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे एक विशेष जो एक बिटिया आई है उसके साथ, और आप सभी भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आज की पहेली तो बड़ी शानदार है, पहेली पूछने वाली हूँ, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ। बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर सदियों से पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति का खेल चला आ रहा है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य पांच तत्वों जल वायु आकाश अग्नि और धरती से है। अनंत काल से प्रकृति हमारी पालना करती आ रही है, परंतु हमने कभी रुककर मां प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं किया है ना। यूं तो भक्ति में हम पांचों तत्व का पूजन वंदन करके मतलब प्रकृति का मान रखते हैं। सदियों से हम इस तरह पूजा और वंदन करते हुए उनका मान रखते आए हैं, परंतु निश्चिन प्राकृतिक आपदाओं से आहत होते मनुष्य का मन अब प्रकृति का उतना मान नहीं रख पा रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते होठ, कितनी ठंड है कह करके प्रकृति के प्रति असंतुष्टता जताते हैं। कभी तपती धूप में पिघलते हौसले प्रकृति को बदनाम कर जाते। कभी बारिश में हुए कीचड़ से प्रकृति कुरूप नजर आती। मतलब कि चाहे मौसम कोई भी हो, खुले दिल से प्रकृति के प्रति अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन प्रत्येक जन करता ही है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास की प्रकृति होती है। प्रत्येक के घर का वातावरण आबोहवा एक दूसरे से भिन्न होती है। मंदिर के पवित्र वातावरण और किसी कत्लखाने के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। है तो वही पांचों तत्व सभी जगह एक ही, फिर भी वहां रहने वाले मनुष्यों के मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से ये अंतर दिखाई देता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने पानी पर किए गए प्रयोग से ये बात सिद्ध की थी कि किस तरह मानव मन में उत्पन्न विचारों का प्रभाव पानी पर गहरा पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले लूथर बर्बेंक नामक वैज्ञानिक ने कैक्टस से बात कर करके एक बिना कांटों वाला कैक्टस उगाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पौधों को यदि हल्का क्लासिकल संगीत सुनाया जाए तो पौधों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं। इन सब बातों से हम ये तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह ये प्रकृति मनुष्यों के संकल्पों और क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। जिस तरह राजा के महल की वस्तुएं और एक गरीब की झोपड़ी में मौजूद वस्तुओं में फर्क दिखता है ना, ऐसे ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के रहने के स्थान का वातावरण अलग अलग महसूस होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, व्यक्ति के निवास स्थान को देखकर उसकी मानसिकता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हम जितना जितना स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरते जाते उतना उतना हमारे आसपास का वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जाता है। आदिकाल में जब मनुष्य आत्माएं सत्व प्रधान थी तब प्रकृति भी सत्व प्रधान अर्थात सुखदायी थी। तो आज तप प्रधान क्यों बनी है सोचिए। इसलिए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहना है और सकारात्मक वाइब्रेशन हमें फैलाना है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे अपच पर। भाई देखिए, गर्मी के मौसम में अपच की समस्या बढ़ जाती है। अपच या खाना न पचने पर खाद्य प्रणाली के अंगों में दर्द होने लगता है, गैस भरती है जिसमें भारीपन, बेचैनी, जी मिचलाना, भमन वगैरह वगैरह चलता रहता है। अग्निमांद, अपच, अजीर्ण, बदहजमी सभी का अर्थ एक ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि खाने का नहीं पचना, जो भोजन हम कर रहे उसका नहीं पचना। तो बदहजमी में क्या होता है, दस्ते भी लग सकती है या फिर गैस, वमन ये होने की शक्यता रहती है। तो बदहजमी के दस्तों को संग्रहणी भी कहते हैं। तो अपच की समस्या है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रही हूँ, इसको आप आजमा करके अपने अपच की समस्या पर निजात पा सकते हैं। देखिए, हींग, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन सब आप समान मात्रा में लीजिए, ठीक है। और सब को समान मात्रा में लेकर के इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। फिर एक चम्मच तीन बार पूरे दिन में गर्म पानी से फाकी लेना है, सुबह, दिन में और रात को। सुबह उठने के बाद एक बार ले लीजिए आप नन्हे कोटे, फिर दिन में ले लीजिए कि भोजन के डेढ़ दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, फिर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए। तो ये जो अपच की समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या क्या लेनी है फिर से दोहरा रही हूँ। हींग लीजिएगा, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेनी है सभी, ठीक है। जैसे एक एक छोटा चम्मच ले रहे तो सभी एक एक छोटा चम्मच लीजिएगा, फिर इन सभी को पीसिएगा, पाउडर बना दीजिएगा और इसके तीन बार फाकी लेनी है दिन में, पूरे दिन में। तो फाकी लेकर के नौ सेका पानी आपको पीना है, इससे अपच की समस्या ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आप अगला उपाय। एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट पानी से फाकी लीजिएगा। खाली एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन ले लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट आप वही सुबह सुबह नन्हे कोटे आप इसकी फाकी लेकर के नव सेका पानी आप पी लीजिएगा, इससे भी अपच की समस्या ठीक होगी। अगर ये नहीं कर सकते तो और भी सुनेंगे आप सुंदर सा उपाय, कि 25 नीम की पत्ती, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीस करके थोड़ा पानी और शक्कर मिला करके सुबह शाम रोज आप 3 दिन पीजिए। 3 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा। 25 नीम की पत्ती, 3 ले लीजिए लौंग, 3 काली मिर्च, इन सब को पीसिए और इसमें थोड़ा सा शक्कर और पानी मिला करके गट गट गट गट गट पी जाइए, ठीक है। ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है, सुबह और शाम, तो अपच की समस्या में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि खाना नहीं पचता है, बदहजमी हो जाए तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहे, अन्य कुछ भी नहीं खाना है। कब्ज रहे तो फिर आप भोजन के साथ घुट घुट पानी पीते रहिए, ठीक है। सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जरूरी है। तो अगर संग्रहणी है, बदहजमी है, तो उस दिन आप कुछ मत लीजिए, खाना मत खाइए, पूरे दिन आप ऐसे ही उपवास करिएगा, बीच में घुट घुट पानी पी लीजिएगा, ठीक है। तो आपके वापिस हाजमा सिस्टम, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा वापिस, ये जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और लास्ट उपाय यही है कि कब्ज रहता है तो भोजन के साथ घुट घुट पानी पीजिए और सुबह उठते ही एक गिलास पानी तो हमेशा पीना ही है। तो ये हुए उपाय आज के सुंदर से नुस्खे। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल पहेली है, आराम से आप जवाब दीजिएगा। चार

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू, हलचल में तो मिट जाए। क्या चीज है पहेली? बहुत ही सुंदर और सरल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे, परंतु क्या बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सरल आपको पहेली पूछी है, फिर भी सोचिए, कोई बात नहीं, सोचने का अवसर तो मिलना ही चाहिए, समय तो आपको मिलना ही चाहिए, और आप सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा। आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ, चार

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। बहुत ही सरल है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। ये चीज नहीं है तो जीवन नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया आपको, ठीक है? अब तो आपके लिए सरल हो चुकी है पहली, तो जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब पधारिए आशियाना के किचन में, आज बना देते हैं सलाद। परंतु कौन सा वाला? केरी और दाल का। वैसे तो सलाद हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसी चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है ना? रोटी के ऐसा लगता है रोटी बहुत कम खाए। कुछ फल फ्रूट, जैसे फल फ्रूट में भी पानी वाले फल फ्रूट, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आम तो भाई वैसे ही गर्मी का सीजन का राजा ही है ये तो, सब फलों का। तो इस तरह की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा रहती है। तो सामग्री आप लेंगे, पेन और डायरी तैयार है ना? बिल्कुल लिख लीजिएगा। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी आप लीजिएगा 1/2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ, ठीक है? और तेल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता लीजिए 5-6, नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च का पेस्ट लेना है आपको 1 छोटा चम्मच, और राई, हींग, जीरा तड़का के लिए ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हरा धनिया अपने स्वाद के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। तो ये सलाद की सामग्री हो चुकी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखिए, सलाद भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। वैसे आप कच्चा भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन दाल के साथ आप कैसे खाएंगे? तो आपको एक अलग ही प्रकार का सलाद सिखा रही हूँ। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी कद्दूकस की हुई 1/2 कप ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच क्या लेना है? तेल, 5-6 लीजिएगा कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी पाउडर, चीनी, ये सब अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर हरी मिर्च की पेस्ट लेनी है 1 छोटा चम्मच, राई, हींग, जीरा तड़का लगाने के लिए लेना है थोड़ा थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार, हरा धनिया भी अपने आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। आइए अब केरी और दाल का सलाद कैसे बनाएंगे, विधि आपको बता रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है? फिर पानी निकाल करके बिना पानी दरदरा पीस लीजिए। तेल में राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगाइए। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डालकर के तुरंत दाल में डाल दीजिए। अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस तुरंत बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर सलाद सर्व करिए, पिरसिए। तो ये बन गए केरी दाल का सलाद। फिर से दोहरा रही हूँ विधि। देखिए, इसको भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक बार तो विधि यही दोहराऊंगी, फिर इसकी दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो हमने ली है ना, इसको आप 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर पानी निकाल दीजिए 4 घंटे के बाद, और इसको दरदरा ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं रखना है, ठीक है? फिर आप तेल रखिए कढ़ाई में, और तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरे का तड़का लगाइए, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, और तड़का लगाना है। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल डाल दीजिए, ठीक है? अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर आप सलाद पिरस सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि आप चने की दाल को 4 घंटा के लिए पानी में तो आपको भिगोना ही है, ठीक है? तो फिर आप दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए, और भिगो दिया 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल दीजिए, और इसी दाल में आप कैरी कद्दूकस करके डालिएगा। फिर इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा पाउडर डालना है, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब डाल करके आप कच्चा ही खाइएगा तो भी स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है? अब आपको जिस तरह खाना हो खाइए, मैंने आपको विधि बता दी है। भले आप इस तरह छोक लगा कर खाइए, भले आप कच्चा खाइए। तो ये बन गया केरी दाल का सलाद। अब मैं आपको एक और सलाद सिखाऊंगी, परंतु कौन सा वाला, वो तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे।
तो आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ये पहेली का जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। अब हम सुनेंगे यहीं पर एक प्यारा सा गीत, उसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आप सभी आशियाना की किचन में हो और आशियाना की किचन में बना रहे थे केरी और दाल का सलाद। ठीक है, अब मैं दूसरा भी आपको सलाद ही सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई सलाद का नंबर लिया है तो मैं आपको पूरा ही सिखा देती हूँ। इच्छा हो ऐसा सलाद बना करके खाइएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। सलाद में जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा ककड़ी है, हरा धनिया है, पालक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको मिक्स सब्जी का सलाद अब सिखाने जा रही हूँ, परंतु आप जानते हो परंतु मैंने क्यों बोला है, पहेली फिर से सुना रही हूँ इसलिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पहेली क्या है। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हलचल होते ही फिर हम स्वयं के फोटो को नहीं देख सकते, स्वयं के चेहरे को, स्वयं को नहीं निहार सकते, बाकी आराम से हम निहार सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया हो, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और अब मिक्स सब्जी का आपको सलाद सिखा रही हूँ, इसके लिए आप सामग्री लीजिएगा। पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, ठीक है, एक कप ले लीजिए, भले आप कद्दूकस करके एक कप ले लीजिएगा। पालक ले लीजिए बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक छोटी लेनी है आपको, ठीक है, टमाटर एक लेना है, अंकुरित मूंग आधा कप ले लीजिए, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है, चीनी अगर पसंद है तो लीजिएगा, स्वाद के अनुसार नहीं हो तो कोई बात नहीं मत लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा नमक अपने स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और नारियल कसा हुआ लीजिएगा दो छोटा चम्मच। यही सामग्री है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई लीजिएगा एक कप, फिर पालक ले लीजिएगा, मतलब ये सब धुलाई करके ही आपको लेना है, ठीक है, पालक लीजिएगा बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक लेनी है, उसके भी गोल स्लाइस कर लीजिएगा छोटी वाली ककड़ी, फिर टमाटर भी एक लेना है, इसको भी आप बारीक उतर लीजिएगा और ककड़ी को भी आप स्लाइस मत करिए, इसको भी कुतरिएगा, क्योंकि हम स्लाइस वाला सलाद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंकुरित मूंग ले लीजिएगा, नमक काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है और नारियल कद्दूकस किया हुआ दो छोटे चम्मच लीजिएगा। अब मैं आपको मिक्स सब्जियों का सलाद कैसे बनाया जाता है सिखा रही हूँ। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, अब इन सभी सामग्री और अंकुरित मूंग को सभी को मिक्स कर देना है और एक जार में डाल करके अच्छी तरह इसको मिला लेना है। इसके बाद नींबू का रस, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक मिला दीजिए, इसमें नारियल मिला करके सब मिक्स करके आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम एनर्जी सलाद भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें एनर्जी की है, तो एनर्जी से भरी हुई। तो क्या करेंगे, जो भी हमने सलाद किया, जो सब्जियां सवार के रख रखी है, जैसे कि पत्ता गोभी, ककड़ी, पालक, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही आप मूंग भी, जो अंकुरित मूंग लिए हैं, इनको भी मिक्स कर दीजिएगा और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा और नींबू का रस भी निचोड़ करके सबको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप जब प्लेट में रखते हैं ना सलाद, तब ये कद्दूकस किया हुआ नारियल ऊपर से डालिएगा तो एक डेकोरेट लगेगा और सलाद को देखते ही इच्छा होगी कि अरे भाई ये स्पेशल सलाद है, ये तो मैं जरूर खाऊंगी, ऐसी इच्छा हो जाएगी।
तो भोजन के पहले एक प्लेट सलाद खा करके फिर आप भोजन करें, ताकि क्या है कि रोटी कम खाएंगे और ये सब्जियां ज्यादा खाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। आप सुबह भी खा सकते हैं, जैसे नाश्ता नहीं करके सलाद खा सकते हो। अब आपकी इच्छा पर छोड़ा कि आप कब खाते हो, ठीक है। तो आइए, दोनों ही प्रकार के सलाद बन चुके हैं, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप दो प्लेट में दोनों ही सलाद रखिए, फिर जो भी सब्जी चपाती जो भी बनाई है वो भी रखिएगा। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा। कौन कौन से सलाद का? केरी और दाल का और मिक्स सब्जी वाला, दोनों ही सलाद का आनंद लीजिए। और फिर आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चार

ऐसी क्या चीज है जो शांत रहने पर हम आराम से निहार सकते हैं स्वयं को उसमें, और जब हलचल होती है तो मिट जाता है सब कुछ। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आप सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे हैं? ओए कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और विशेष करके स्पोर्ट्स पर बहनों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, खुल करके बहनें सामने नहीं आ पाती है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने बैठी है सेजल। सेजल गोस्वामी आबूरोड की रहने वाली है और 10th क्लास अभी एग्जाम दिया है 10th का और 11th में आई है। तो सेजल को स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, तो सेजल से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा। आपको तो आप जानते ही हो कि भाई खुशनुमा जीवन में आपका खुलकर स्वागत है, और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है जिसको दोहरा रही हूँ। बीच में भी आप फोन कॉल्स करके पहली का जवाब दे सकते हो। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो शांत रहने पर स्वयं को देख सकते और हलचल में ये मिट जाती है? जवाब देने के लिए और खुशनुमा जीवन में जुड़ने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप अपने बात रख सकते हो, प्रश्न का इस पहेली का जवाब भी दे सकते हो। आइए सेजल से मिलते हैं। सेजल आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सेजल आपको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती है?
4: जैसे कि रनिंग है, कबड्डी है, मतलब और भी कई खेल है।
3: जी जी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़ चुके हैं। हेलो
5: हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते कमलेश बहन।
5: हाँ नमस्कार जी, थोड़ा कसरत की है
3: जी
5: खेलने के लिए,
3: जी।
5: तो उसमें मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा कि भाई समुंदर ही होता है,
3: अच्छा।
5: तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, शांति से देखे तो मजा आता है।
3: अच्छा
5: हेलो,
3: हाँ जी हाँ जी सुन रही हूँ मैं।
5: हाँ जी,
3: अच्छा
5: आज का मेले का उत्तर है मैडम जी समुंदर।
3: अच्छा ठीक है,
5: क्योंकि और उनको देखने के लिए अपन शांति से देख सकते
3: हैं,
5: हलचल रहती है, आवाज होती है पानी की बहुत, तो शांति से देखे तो उसमें निहारने में मजा आता है।
3: अच्छा
5: ठीक है मैडम।
3: और कमलेश बहन आप जुड़ ही चुके हैं रेडियो मधुबन से, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है
5: इसका मैडम जी?
3: आपने कभी स्कूल में आपने जैसे कि अपने कंपटीशन होता है ना 100 मीटर की दौड़,
5: हाँ जी
3: 500 मीटर की दौड़, दो टांग रेस, फिर कभी कबड्डी, खो खो, इस तरह के गेम आपने खेले?
5: हाँ जी मैडम जी खेले थे।
3: तो आपको कैसा लगता है इस तरह के गेम खेलना?
5: बहुत मजा आता है, आनंद आता है बहुत, इससे बहुत एक्सपीरियंस, शरीर भी अच्छा रहता है।
3: जी जी जी
5: बहुत मजा आता है
3: जी। तो ये कम हमारी बहनें थोड़ा कम खेलती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
5: ये तो मैडम सबको खेलना चाहिए, ये तो अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, ये भी एक योगा है।
3: बहुत सुंदर, परंतु है ना जो माता पिता ज्यादा परमिशन नहीं देते बच्चों को, वो माता पिता की नजर में क्या होता है, अरे उछल कूद नहीं करना है, शांति से रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप क्या कहेंगे?
5: नहीं मैडम जी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई जैसा ही है।
3: बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी पढ़ाई अपनी जगह है और गेम्स अपनी जगह है।
5: हाँ सही बात है मैडम जी,
3: जी
5: ये
3: जी,
5: भी
3: जी।
5: जीवन में बहुत जरूरी है।
3: बहुत सुंदर, तो ठीक है कमलेश बहन, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी आप किस में भाग लेते थे, कौन से गेम आप खेलते थे?
5: मैं तो मैडम जी बास्केटबॉल में खेलती थी, खो खो में खेलती थी।
3: क्या बात है।
5: कबड्डी कबड्डी सब में भाग लेती थी, जीतती थी मैं तो और बार।
3: अरे वाह, तभी आप फिट एंड फाइन है।
5: घर वाले का नहीं परमिशन नहीं देता, साथ ही सखी पड़ी ज्यादा नहीं पड़ी
3: जी,
5: पर जब तक पड़ी तब तक मजे लिए हमने खूब।
3: बहुत अच्छी बात है, खुलकर जीवन जीना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ तो बात ही क्या कहना है, गोल्डन लाइफ है।
5: तो वो तो मिसने तो किसी को मानती नहीं थी, खेलने के लिए भागती थी मैं तो।
3: बहुत
5: और शौक नहीं था मैडम जी, और कोई शौक नहीं था मुझे, एक तो खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना
3: जी,
5: और ये खेलना कूदना, गाने गाना।
3: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो ये भी किसी से कम नहीं है, आप वैरायटी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाओ, वैसे ही वो खुश रहेंगे कि अरे वाह क्या भोजन मिला है। इंसान काम करता है 24 घंटे, लेकिन खाना अच्छा मिल जाता है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है,
5: सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है।
3: जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने बात की है।
5: थैंक यू
3: जी। तो सेजल आप क्या कहेंगे गेम्स के बारे में, जैसे आपको रुचि है, आप टूर्नामेंट में भी जाते हैं?
4: एक बार गए थे।
3: अच्छा, फिर क्या रिजल्ट रहा?
4: मतलब आगे जाने, मतलब फर्स्ट आए थे।
3: फर्स्ट आए, कौन सी क्लास में आप गए थे टूर्नामेंट में?
4: छोटे ही थे उस समय तो, मतलब होंगे 6th 7th में।
3: अच्छा, और कौन सा गेम खेला था आपने?
4: बैडमिंटन में।
3: अच्छा, अरे वाह, कौन से गांव आप गए थे टूर्नामेंट में?
4: अनादरा।
3: अनादरा, और वहां से जीत के आए। उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ?
4: उसके बाद स्कूल की तरफ से कभी लेके तो गए नहीं।
3: हेलो।
6: हेलो, हाँ नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा।
3: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
6: बस अच्छे है, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
3: जी जी जी। सेजल हम आपसे बात जरूर करेंगे, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो इनसे बात करेंगे। अच्छा सुरेश भाई, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
6: बस जीवन जी। में दीदी इंसान के लिए, खास करके यंग इंसान के लिए स्पोर्ट का बहुत महत्व है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट खेले। और अभी जो आपने बात भी बताई कि लड़कियां जो बहुत, अब तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत कम, जैसे ही बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और गांव की ऐसी जो रीति रिवाज है। और मैं पहले की बात बताऊं तो लड़कियां लगभग 5 साल से ऐसी खेल खेलते, जो 5 पत्थर के लेते वो नाम भी पता नहीं, वो
3: सितोलिया,
6: किसी को भी
3: सितोलिया,
6: अरे हाँ वही नहीं जीतने देती, या रस्सी कूद में, ऐसे बहुत सी ऐसे खेल है वो बचपन में बहुत हमने भी खेले हैं।
3: जी क्या बात तो, है। जी
6: जी, तो सभी को माँ बाप को बस ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में रुचि है तो जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वहीं पर रोक दिया ना जाए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा।
3: जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है।
6: और जी, और जो आपकी पहेली है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आईना होना चाहिए, आईना।
3: अच्छा,
6: तो काट बोलते हैं हम। हाँ
3: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर हम देंगे, पहेली का जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। तो सेजल आपकी ओर बढ़ते हैं हम फिर से, आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, और किस किस में रुचि है, और क्या आप ही खेलते हो या आपके क्लास के लगभग सभी बच्चियां खेलती हैं?
4: सारी बच्चियां खेलती हैं।
3: अच्छा, तो जैसे आप एक बार टूर्नामेंट में गए, दूसरी बार नहीं गए फिर?
4: दूसरी बार स्कूल की तरफ से लेके नहीं गए कभी।
3: अच्छा, जीत करके आए फिर भी?
4: जीत करके आए, फिर स्कूल वालों ने नाम तो लिखवाए थे, पर कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए वो मना हो गया।
3: अच्छा, तो अब कोरोना तो हट गया है, अब फिर से आप बच्चियां मिल करके सर से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं?
4: बीच में हुआ था तो मतलब बॉयज का था, कि भाई गर्ल्स का नहीं था।
3: अच्छा जी जी जी, तो बहुत सारे देखते हम गांवों में क्या है, माता पिता, जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे कि गांवों में माता पिता थोड़ा अलाउ नहीं करते बच्चियों का, बच्चों को तो परमिशन दे देते लेकिन बेटियों को परमिशन नहीं देते, क्या कारण है?
4: उनके तरफ से रीति रिवाज होगा शायद कोई कि मना करना, पर मना नहीं करना चाहिए इस पे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
3: जी जी,
4: गांव की हो या शहर की हो, कोई ना कोई खेल खेलने देना चाहिए।
3: जी जी, तो सेजल आपको तो घर से मना नहीं करते हैं?
4: नहीं, मुझे पूरी छूट है।
3: चलिए अच्छी बात है। तो यहीं पर अब हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं खुशनुमा जीवन में, अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है, जो खेलते हैं वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु का जाते जाते फोन उठा देते हैं। हेलो
7: हेलो, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्ते।

0: क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी हमें भी बॉल फेंकने का मौका मिलता।
1: अच्छा, बॉलिंग करते थे आप?
0: दोनों ही,
1: बैटिंग और बॉलिंग।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगता था, उनको भी अच्छा लगता था, हमको भी। लेकिन आजकल है ना, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है खेल, मतलब खेल के मैदान में हर जगह अव्वल रहती है लड़कियां, और खेलना भी चाहिए। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास ये मतलब खेल से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है, और दिमाग के घोड़े तो ये खेल में ही दौड़ते हैं।
1: जी
0: बिल्कुल, इतना मतलब हर खेल में दिमाग का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा तो।
1: जी,
0: और दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी मजबूत रहती है।
1: बहुत सुंदर। तो मंजू जी, गांवों में अभी भी माता पिता थोड़े बेटियों को परमिशन नहीं देते हैं, आप क्या कहेंगे?
0: देते भी है, कम लोग हैं जो नहीं देते हैं। आजकल तो मतलब ऐसा कोई परिवार भी नहीं है हमारे आसपास देखें तो, लड़की स्कूल पढ़ाई नहीं कर रही है या किसी खेल में भाग नहीं ले रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल कूद का हो, हर प्रकार के प्रोग्राम में जाती भी है और अव्वल भी रहती है। कबड्डी तक ऐसे खेल, खो खो है।
1: जी चलो, बहुत अच्छी बात है, गेम्स में आगे बढ़ना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परमिशन हाँ, सभी को मिलनी चाहिए।
0: दस साल में तो बहुत परिवर्तन हो गया।
1: जी जी जी जी। और आज के पहेली का जवाब देंगे?
0: पहेली का जवाब पानी हो सकता है मैडम जी, और क्या।
1: अच्छा ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपके जवाब जरूर सुनाएंगे।
0: बावड़ी तो आपने बोल दिया, पानी है।
1: ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, वो आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है,
0: कोई बात नहीं, ये भी एक दिमाग की प्रैक्टिस है। पूछते रहो हमेशा।
1: जी शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: हाँ जी, तो आइए यहीं पर हम भी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

किसान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। हेलो
1: हेलो समीर जी।
0: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस नमस्कार नमस्कार बहन जी, दुकान पे एक काम करते
0: हैं। जी जी,
1: लड़का खेती का काम पूरा हो गया, उस लड़का काम करना पड़ेगा क्योंकि आस पास आदिवासी भाइयों का जो लग्न की चीजें देने पड़ेंगे, तो सुबह शाम काम चलता है, दोपहर तो गर्मी बहुत पड़ती है
0: जी,
1: तो रेस्ट भी करना।
0: जी जी बिल्कुल, और सुबह सुबह हो जाता है वो, हो जाता है फिर गर्मी तो है ही है।
1: हाँ सुबह में उठ के बैठ जाना पड़ता है ना, तो पूजा पाठ करके आ जाते हैं दुकान पे।
0: जी जी जी, तो कंचन भाई स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कभी खेलकूद किया करते थे?
1: हाँ जी बहन जी, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो देखो हमारे यहाँ स्कूल थी तो व्यायाम का पीरियड रहता, व्यायाम पहले तो क्या था, टीचर किए हुए व्यायाम टीचर्स होते थे
0: जी,
1: तो 4 से 5 बजे एक घंटे हमें मैदान में ले जाते थे और कबड्डी है, खो खो है, ऊंची कूद है, ये सब हमें करवाते थे
0: जी,
1: ठीक है, तो हम भी भाग लेते थे। और हमारे यहाँ आस पास आदिवासी एरिया है तो बहनों ज्यादा करके कई जिला पहुंचे थे, जब पढ़ते थे बाला बैग बच्ची बैग ये सब बहने भी और धनुष सिर काम था
0: जी,
1: ऐसा ये भी मैंने भाग लेती थी। अब तो ये बंद हो गया है बहन जी, ये सब है ना व्यायाम का कोई ये ही बंद हो गया पीरियड, और कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है,
0: तो समय के साथ विकास होना चाहिए उसकी जगह बंद हो गया।
1: हाँ बंद हो गया, और जिसने देखो सीपीएड बीपीएड ये सब किया है ना जिसने
0: जी,
1: वो अभी घर पे बैठे हैं, वो भर्ती या होती ही नहीं।
0: अच्छा
1: क्या करे यार।
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ से शुरू होता था हमारे हमारी बात करे तो, ये तो सब अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया है तो छूट गया है।
0: जी जी जी, और कंचन भाई आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: पहेली क्या है
0: जी? पहेली है, चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। कोई बात नहीं,
1: तो
0: सोचिएगा
1: जी,
0: आप सोच के फिर से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है?
1: हाँ जी
0: हाँ जी, शुक्रिया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सेजल हमारे साथ बैठे हुए हैं। सेजल आपके यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बाहर ले जाना बंद कर दिया कोरोना के बाद, है ना, टूर्नामेंट्स में अभी तक नहीं हुआ है लड़कियों के। अच्छा, तो आपके स्कूल में होते हैं?
2: हाँ।
0: अच्छा, और ग्रुप वाइज होते हैं या क्लासेस टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं?
2: ग्रुप वाइज होते हैं।
0: ग्रुप वाइज होते हैं, तो उसमें आप भाग लेते?
2: हाँ।
0: अच्छा, कितने गेम्स आप खेल सकते हैं?
2: बैडमिंटन, बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं।
0: नहीं, जैसे एक स्टूडेंट को कितने गेम्स खेलने की छूट है टूर्नामेंट में, कंपटीशन में?
2: तीन
0: गेम्स। तो आप कौन कौन सा खेलती हो?
2: बैडमिंटन, दो पैर और रस्सी कूद।
0: अच्छा, तो सभी बच्चे तीन तीन गेम्स खेलते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार?
2: अपनी इच्छा के अनुसार।
0: अच्छा, बाहर लेके जाते हैं टूर्नामेंट में तो वहाँ पर कितने गेम्स खेले जाते हैं?
2: उधर तो किस तरीके से तुम्हें कौन से गेम से लेके जा रहे हो उस तरीके के गेम खेलाए जाते हैं।
0: अच्छा,
2: एक गेम के ऊपर
0: एक गेम ही होता है। तो गेम्स खेलने के फायदे क्या है, स्पोर्ट्स में जो हम भाग लेते हैं उससे क्या फायदा मिलता है?
2: गेम्स खेलने के बहुत फायदे हैं,
0: जैसे कि
2: उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। मोटे लोग भी गेम खेलते हैं
0: जी,
2: तो जिनकी वजह से उनके जो बॉडी है ना वो फिट रहती है
0: जी। बहुत सुंदर बात कही सेजल कि गेम्स के बहुत सारे फायदे हैं, एनर्जी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, जो मोटे लोग हैं ना वो भी गेम्स अगर खेलते हैं तो उनका भी मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, फिट एंड फाइन हो जाते हैं और एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप पढ़ाई में कैसे हैं?
2: पढ़ाई में मीडियम है।
0: अच्छा, तो आगे कोई लक्ष्य बनाया आपने?
2: हाँ, ब्यूटिशियन का है।
0: अच्छा, क्यों गेम्स में आपको रुचि और ब्यूटिशियन बनना, दोनों ही अलग अलग हो गए फील्ड?
2: गेम्स में है, पर गेम्स में जाते हैं ना आगे, कभी कभार खेलते हैं, मतलब गेम्स के अंदर स्कूल से लेके जाते हैं।
0: जी जी जी,
2: आगे बड़े हो के।
0: और ब्यूटिशियन तो अपना सेल्फ रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल से आगे नहीं ले जा सकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन पर अपना सेल्फ है, सेल्फ डिसीजन है, जब चाहे तब खोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सीखना पड़ेगा?
2: सीखना पड़ेगा, मतलब एक साल का कोर्स होता है इसका।
0: अच्छा,
2: अहमदाबाद से, कोई भी बड़ी सिटी होती है उनसे।
0: अच्छा, फिर कहीं पर भी आप खोल सकते हो?
2: हाँ, आप कंपनी से भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी से जुड़ के भी आपको हो सकता है।
0: अच्छा, अपना अपना शौक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। तो सेजल, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई है कि स्पोर्ट्स में आपको किस तरह रुचि है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी के सामने रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा विचार भी दिया तो नुस्खे भी अपच पर दिए। जरूर ध्यान दीजिएगा, रेसिपी में आपको जो सलाद बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर थी जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी आप जो आपने सुनाया है वो मैं अभी बताऊंगी। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। ये आज की पहेली थी जिसका जवाब दिया है कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई से। उन्होंने कहा है कि समुद्र पहले आत्मा का फिर बाद में समुद्र कहा है, लेकिन ये गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से उन्होंने पर्यावरण कहा है, ये गलत है। कुपराम जी कोजरा से सबसे पहले इनका जवाब सही है, परंतु क्या है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सुरेश भाई थानेराव से आपने कहा आईना, ये गलत है। मंजू जी बाड़मेर से आपका भी जवाब सही है जो मैं बहुत ही शीघ्र सुनाने वाली हूँ। सुरेश भाई झोटाना से आपका भी जवाब गलत है, उन्होंने भी आईना ही कहा है। कंचन भाई मंडाली से आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया है कुपाराम जी और मंजू जी बाड़मेर से पानी। तो ये जवाब सही है, ढेर सारी ताली आप दोनों के लिए। और देखिए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है सभी ने, इसके लिए आप सभी के लिए भी ढेर सारी ताली। देखिए आपने कांच वगैरह कहा, आईना कहा, वो ठीक है, लेकिन पहली बहुत ही सुंदर थी कि चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए। अब किससे हिलोरा खा रही है, पानी से खा रही है ना। और शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। शांत पानी में आप देखिएगा आपका चेहरा साफ दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, लेकिन एक कंकड़ भी अगर पानी में गिर गया तो फिर आप अपने आप को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, हलचल हो जाती है ना उसमें, आपका फोटो फिर चारों तरफ फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए पानी जवाब सही है। आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हंस हंस मारे छक्का। गेम्स के ऊपर ही है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में पड़ी दरार, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, करी गुदगुदी मुन्नी ने तब हंस हंस मारे छक्का। इधर उधर का दोनों दौड़े, इधर उधर को दोनों दौड़े हंस हंस देके कक्का, कोई किसी के हाथ न आए, हो रही धक्कम धक्का, हो रही धक्कम धक्का, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
2: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
3: बीनणी, ए बीनणी, कटे परीगी, मारा पग घना दुख है, थोड़ा दबा तो।
4: माँ जी, मने घना चक्कर आ रहा है माँ जी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
3: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, अनी दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 7 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
4: माँ जी, आपको समय अलग हो।
3: सामने बोल रही थू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
5: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
4: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठाई रहा हूँ।
5: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
4: थाने खबर है कि मारो पूरा टाइम चल रहा, मारो सो काम कोनी हो रहे हो, क्या समझाऊं थाने, आ आ मारो पेट दुख रहे हो। आ
5: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
3: अरे कई नहीं होयो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवारी पीड़ा है। बिंदड़ी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
6: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
3: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
6: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बीनणी और बालक दो घना कमजोर है, यहाँ को ध्यान रख जो, मैं जाऊँ, राम राम।
3: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
4: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
3: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दर्द का मूर्ति, छोरिया ने गणे माथा पर नहीं बिठानी।
4: सो जाए।

संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही प्रोग्राम में हर हफ्ते हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उनके जीवन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग ऐसे साथियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने किसी शारीरिक चुनौती को चुनौती न समझ करके अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे साथी भी होते हैं जिनमें जिंदगी को अलग तरीके से देखने का नज़रिया होता है। आप सब जानते ही हैं, शादीशुदा जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की कठिनाइयां होती हैं और कई अलग अलग तरह के संघर्ष होते हैं। लेकिन जब अगर किसी तरीके से उसमें शारीरिक अक्षमता आड़े आ जाए तो फिर वो चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसे में भी हमारे इस कार्यक्रम में हम जिन मेहमानों को आमंत्रित करते हैं वो बखूबी अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए हम ऐसे साथियों को आप सबके बीच में लेकर के आते हैं। आज भी मुझे ऐसे ही दो मेहमान मिल चुके हैं और एक बार फिर कहना होगा कि देश की राजधानी से ही मिल चुके हैं। तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, उससे पहले आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ, इस हमराही कार्यक्रम पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी तो ये कार्यक्रम यूं ही बदस्तूर चलता रहेगा, नहीं तो फिर हो सकता है आने वाले समय में हमें इस कार्यक्रम के बारे में फिर से विचार करना पड़े। और एक बात और, अगर आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, आप भी इस कार्यक्रम में आकर के अपने हमराही की कहानी सुना सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी सुनकर के भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल जाए। चलिए

0: बहुत हो गई बातें, स्वागत करते हैं मीना जी और हरी जी का। स्वागत है मीना जी और हरी जी आप दोनों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हमराही।
1: बहुत धन्यवाद
2: सर आपका, और हमें भी मतलब हमें बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला, और आप के साथ जो बातचीत करने का मौका मतलब आपने हमें दिया, उसके लिए आपका भी हम और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं का और रेडियो मधुबन का भी मतलब बहुत आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए।
0: जी बहुत धन्यवाद हरी जी और मीना जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप दोनों से रूबरू करवाया जाए, यानी आपकी जिंदगी के बारे में बताया जाए। तो हरी जी आपसे शुरू करते हैं, जरा बताएं अपने जीवन के बारे में, क्या यादें जुड़ी हुई हैं, आपको किस तरह की शारीरिक अक्षमता है और आपने एजुकेशन में क्या किया है और आजकल आप क्या कर रहे हैं।
2: जी सर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मतलब 100% ब्लाइंड। और मैंने एक्चुअली जो अपनी एजुकेशन है वो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन JPM स्कूल से 1996 में शुरू किया था, और 2009 में मैंने वहाँ से 12th पास किया था। लगभग 13 साल का ये सफ़र मेरा रहा, नर्सरी से लेकर के 12वीं तक मैं वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने BA ऑनर्स म्यूजिक किया, और फिर रामजस कॉलेज के साथ फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, और वहीं से फिर एडमिट किया, और फिर उसके बाद नेट क्वालिफाई किया मैंने 2014 में JRF के साथ, और अभी वर्तमान में मैं संगीत अध्यापक के रूप में जो है कार्यरत हूँ लोधी रोड दिल्ली कन्नड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो ये आप आंखों की रोशनी कैसे गई?
2: ये सर आंखों की रोशनी तो मेरी बाय बर्थ ही मतलब है, ऐसे ही है ये। तो
0: मेरा मतलब यह है कि घर वालों ने जब कुछ पता लगाया होगा, इलाज वगैरह करवाया होगा, या उन्हें पता कैसे चला, थोड़ा सा एकदम से तो मतलब पता नहीं चल गया होगा, कुछ समय लगा होगा, कुछ इसके बारे में अगर आपको मालूम हो तो बताइए।
2: हाँ सर, एक्चुअली ये था कि मतलब जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद थोड़ा कुछ दिनों के बाद मतलब मम्मी ने मुझे खिलौना देने की कोशिश की, मतलब बच्चों को खेलने के लिए जैसे खिलौने होते हैं उनके आगे, तो या मतलब वो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो खिलौने के लिए थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं उनकी ओर। तो मैं लेकिन मतलब क्योंकि अब मुझे दिखता तो था नहीं, तो मतलब फिर मैं उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ नहीं, तो उनको मतलब क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि ये क्या है, तो बाद में और उनसे डिस्कस किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने बताया कि इनको मतलब डॉक्टर के पास दिखाओ, तो फिर वो लेके गए डॉक्टर के पास, तो फिर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मतलब इनको जो है प्रॉब्लम है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर एम्स जो हमारा ये ऑल इंडिया मेडिकल है यहाँ पर दिल्ली में, तो यहाँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर एक आध बार मतलब दो ऑपरेशन हुए थे मेरे, तो एक ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन एक दो महीने बाद मतलब आँख फिर अपने आप ही मतलब वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर चली गई दोबारा से।
0: अच्छा, यानी बीच में थोड़ी सी आँख ठीक भी हो गई थी।
2: एक आँख मेरी ठीक हो गई थी, फिर एक दो महीने बाद फिर अपने आप ही रोशनी दोबारा चली गई। फिर दोबारा से ऑपरेशन हुआ पर वो सक्सेस नहीं रहा। फिर वहीं से डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर्स ने मेरे को मतलब मेरे पापा को उन्होंने सजेस्ट किया कि ये अपना ओबरे होटल के पास एक स्कूल है, वहाँ आप ट्राई कर लीजिए और वहीं से एजुकेशन करवाइए, और अगर हो जाता है तो बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, बट अब आँख तो मतलब नहीं ठीक हो पाएगी, तो इसी में ही मतलब बच्चे को जीना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से मतलब बाद में पेरेंट्स को पता चल पाया था, और वहीं से फिर सफ़र ये शुरू हो गया।
0: मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं आप?
2: मैं सर नेपाल से हूँ, और मम्मी पापा बाद में इधर राजस्थान में आकर के बसे थे, फिर उसके बाद में उन्होंने मतलब गुड़गांव में ट्रांसफ़र हो गया था उनका, तो काफ़ी साल गुड़गांव में रहे, हर इधर यहाँ NCR दिल्ली NCR में।
3: और फिर उसके बाद वो वापस अब मतलब नेपाल चले गए हैं और हम लोग यहाँ दिल्ली में सेटल हैं।
0: नेपाल में कौन से शहर में?
3: लुम्बिनी।
0: लुम्बिनी,
3: हाँ जी।
0: अच्छा, ये जो बुद्ध के मामले में जो नाम आता है शहर का, वही ना?
3: गौतम, भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली मतलब है वो।
0: जी जी जी। तो आपके फादर की जॉब काय में थी?
3: फादर मेरे प्राइवेट सेक्टर में थे, उनका मतलब एल्युमिनियम की फैक्ट्री में काम था।
0: ओके। और आपके परिवार में मम्मी पापा और आपके अलावा कौन कौन है?
3: मेरे अलावा मतलब हमारे अलावा तो बाकी चार बहनें हैं और एक भाई है।
0: बाकी सब एकदम ठीक है, वो सब नेपाल में ही है?
3: हाँ जी, हाँ जी, सब नेपाल में है और बाकी सब लोग ठीक है।
0: आपका जाना होता है नेपाल?
3: हाँ जी सर, साल में एक से दो बार जाना होता है।
0: तो हरी जी, आपने नेपाल और भारत में दृष्टिबाधित साथियों की स्थिति में कोई कभी ऐसा जानने की कोशिश की कि क्या परिवर्तन है, क्या फर्क है, वहां कैसी परिस्थितियां हैं या व्यवस्थाएं हैं खासकर समाज में और यहाँ?
3: सर एक्चुअली मुझे एक दो बार वहाँ के ब्लाइंड स्कूल्स को विजिट करने का मौका मिला था। वहाँ मतलब जब मैं 11th में या शायद 12th में था, उस समय एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन एक दो जगह मतलब मुझे जाने का मौका मिला था। तो मैं वहाँ गया और वहाँ के स्टूडेंट्स से, इवन टीचर्स से भी मिला, कुछ विजुअली इम्पेयर टीचर्स थे। तो मैं मतलब मुझे बहुत फर्क लगा, मतलब क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। इवन मतलब वहाँ तो नॉर्मल लोगों को सर्वाइव करने में मतलब कई बार दिक्कत हो जाती है। तो अब मतलब बीइंग एज ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, काफ़ी चैलेंजेस हैं वहाँ पर। और जिसको अब मतलब काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है, वहाँ का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाकी उसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तो मतलब एजुकेशन पहुँचना बहुत मुश्किल काम है, और यदि पहुँच भी रही है तो बहुत चैलेंज के साथ मतलब पहुँच रही है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं मतलब विजुअली इम्पेयर्ड की पढ़ाई के लिए, जैसे ब्रेल स्लेट्स हो गई, टेलर फ्रेम हो गया, वो सब चीजें भी मतलब चार चार पांच पांच बच्चे शेयर करके आपस में मतलब वो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से मतलब यहाँ से इंडिया से कोई कांटेक्ट हो जाए तो उसके थ्रू मतलब उनको प्रोवाइड वो हो पाता था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये लगभग मतलब 11th और 12th में था।
0: जी जी जी।
3: अब मतलब क्योंकि उसके बाद से फिर मैं भी मतलब कांटेक्ट में नहीं रह पाया, तो अब अगर कोई स्थिति सुधर गई हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल है क्योंकि नॉर्मल जो जिंदगी है उसमें भी काफी ज्यादा चैलेंजेस अभी भी हैं वहाँ पर,
0: अभी भी हैं। जी,
3: तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस मतलब हमारी जितनी है वहां तक मतलब चीज नहीं पहुंच पाई होगी अभी।
0: तो समाज में स्वीकार्यता को लेकर के कैसी स्थिति है? मतलब जैसे भारत में तो हम जानते ही हैं, वहां पर भी परिस्थितियां लगभग वैसी ही होंगी या इससे भी ज्यादा खराब है? समाज में हमको एक्सेप्टेंस जो है अभी भी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या लगता है आपको?
3: उसमें सर एक्चुअली ये है कि जहां जैसे जो लोग थोड़ा बहुत मतलब बाहर निकले हुए लोग हैं या जिन लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब दुनिया से रूबरू हैं, जो परिचित लोग हैं, वो तो खैर मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ हद तक। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो शुद्ध गांव के मतलब हमारे यहाँ जैसे कहते हैं शुद्ध मतलब गांव के जो लोग होते हैं, परंपराओं में जकड़े हुए लोग होते हैं, तो उन लोगों को मतलब जो है एक्सेप्ट करने में अभी भी दिक्कतें हैं, मतलब सोसाइटी इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर नहीं पाती है। बाकी अगर हम थोड़ा सा इधर काठमांडू साइड में या इधर चले जाएं तो थोड़ी बहुत मतलब होगी अवेयरनेस, बाकी दिक्कत अभी भी।
0: जी जी, चलिए। तो यही एक मौका होता है जी, इस बहाने जानने समझने की कोशिश करते हैं हम लोग भी कि भाई अलग जगहों पर क्या परिस्थितियां, माहौल है ना। ये जाना तो संभव नहीं हो पाता हर किसी का, लेकिन अब चूंकि आप वहाँ के बाशिंदे हैं तो समझने में आसानी रही इस बात को?
3: हाँ जी सर, वही है, मतलब अगर मान लीजिए जिन लोगों को वो जानते हैं, अब जैसे हम लोग हैं कभी जाते रहते हैं, तो अब जैसे जो वेल सेटल्ड है, कई लोग ऐसे भी लोग होते हैं मतलब जो ये कहते हैं अरे मतलब आप लोगों ने तो वो कर दिखाया जो कई बार नॉर्मल लोग भी नहीं करके मतलब कर पाते हैं, या ऐसा है वैसा है, इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन मैं मतलब उनको यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब मेहनत करेंगे तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो वो चीजें हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब आपको अगर आप में मतलब एक तरह का जैसे कुछ बहुत बढ़िया मतलब आप अच्छी जगह पे हैं तभी, अदरवाइज मुश्किल है
0: जी। तो अब दिल्ली में अपना घर बना लिया आपने या अभी नहीं बना पाए?
3: नहीं बना लिया है सर, हमने मतलब एक्चुअली फ्लैट एक खरीदा हुआ है छोटा सा।
0: बहुत बढ़िया,
3: हाँ जी अपने फ्लैट में ही हम लोग रहते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए तो अब काफी बातें हो गई आपसे, थोड़ा मीना जी के बारे में
2: जरूर सर जरूर
0: जाए और हमारे श्रोताओं को मीना जी से परिचय करवाया जाए। जी मीना जी बताएं जरा अपने बारे में।
1: जी सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और संदीप सर आपको भी।
0: जी जी नमस्कार जी।
1: हाँ जी, तो मेरा नाम मीना है और मैं बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली हूँ
0: जी।
1: और मेरी ब्लाइंडनेस तो खैर मैं लेट ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा
1: मैं, हाँ जी तो ये है, और अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में ही जॉब कर रही हूँ रेलवे में। और मेरी एजुकेशन जो है, जब मैं साइडेड थी तो मैंने 8th तक पढ़ाई की थी वहीं उत्तराखंड में ही। तो फिर एक्चुअली गांव से ना स्कूल बहुत दूर होते थे, तो पापा ने मतलब पढ़ाई रुकवा दी थी मेरी। उसके बाद फिर जब मैं ब्लाइंड हुई तो उसके बाद मैंने सब पढ़ाई ओपन से की है।
0: अच्छा,
1: रेगुलर मैं स्टूडेंट नहीं रह पाई जैसे ब्लाइंड होने के बाद। मैंने पहले सबसे पहले पंजाब एजुकेशन बोर्ड से 10th किया 2009 में, और फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने 2012 में सीबीएसई बोर्ड से प्लस टू, और उसके बाद ग्रेजुएशन किया ही ये दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। हाँ जी।
0: तो उत्तराखंड में कौन से शहर से हैं आप, कहाँ से हैं?
1: डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ सर।
0: पौड़ी गढ़वाल।
1: हाँ जी।
0: अच्छा तो मीना जी आपने कहा जैसे कि आप लेट ब्लाइंड हैं।
1: हाँ जी।
0: तो कैसे, क्या कोई हादसा हुआ था, कितने बड़े थे आप उस समय, आपने तो और कैसे हुआ ये सब जी?
1: एक्चुअली मैं 18 साल की थी तब, तो ये होली के दौरान मतलब कुछ फैमिली में कुछ फैमिली मैटर था, तो पापा के साथ हमारे रिलेटिव का, तो उन्होंने ही कुछ कलर में मतलब मिक्स करके आंखों में मेरे डाल दिया था सर।
0: तो यानी एक तरह से उन्होंने बदला लेने की कोशिश की और इस तरह से?
1: हाँ मतलब पापा से मतलब बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह का वो हुआ था सर।
0: तो आपके और भाई बहनों को भी किसी को नुकसान हुआ या सिर्फ आप ही को अटैक हुआ था?
1: सिर्फ मेरे को हुआ, मतलब हम 3 भाई बहन थे मतलब उस टाइम पे। अब तो खैर मेरे भाई की भी डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है, और सिस्टर है मेरे से बड़ी, वो ठीक है
0: जी।
1: हाँ जी। और सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम हुई है।
0: तो इतना मतलब जबरदस्त तरीके से उन्होंने कलर डाला था कि बाद में फिर इलाज वगैरह कुछ करवा पाए तो भी?
1: एक्चुअली सर नहीं, गांव का क्या रहता है कि जैसे अब होली के टाइम पे पेरेंट्स को यही लगा, मेरे को भी उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, अब बचपना था, लेकिन कलर डाला तो आंखों में जलन शुरू हो गई थी मेरे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि अब कलर तो उसी वक्त उन्होंने ही डाला था, मतलब हमारे रिलेटिव में है मेरी भाभी लगती हैं वो, तो उन्होंने कलर डाला तो जलन हुआ, तो मैं अपने मतलब दर्द के साथ रोने लगी, तो मम्मी लोगों ने ये सोचा कि अब हमारे गांव में जैसे कुछ पुराने धारणाएं होती हैं कि हम लोगों ने शायद किसी पूजा में कोई मिस्टेक कर दी है, मतलब इन चीजों में तो शायद ये हो गया हमारे साथ, ऐसे करके मम्मी लोग पहले झाड़ फूक वगैरह ही करवाते रहे
0: और समझ नहीं पाए इसकी गंभीरता को।
1: हाँ जी हाँ जी, तो आंखों में बिल्कुल मतलब आंसू आने लगे थे, बहुत तेज मतलब पानी निकलने लगा आंखों से, तो स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज्यादा। तो मम्मी लोग वही झाड़ फूक में रह गए कुछ दिन तक, तो ऐसे ही चला 4-5 दिन तक। तो बाद में फिर गांव के लोगों ने सजेस्ट किया, तो वो जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बताया बाद में, फिर पता चला घर वालों को भी कि क्या निकल गया है।
0: उसका कोई उपाय नहीं था फिर बाद में, मतलब
1: नहीं सर, नस जल चुकी थी तब तक।
0: चुकी
1: हाँ जी
0: थी। ओहो, तो मीना जी ये परिस्थितियां होने के बाद कैसे अपने आप को संभाला, आपने हिम्मत दिलाई और पढ़ाई के लिए खुद को कैसे तैयार किया? एक तो ग्रामीण परिवेश में रहना,
1: हाँ
0: दूसरा
1: जी
0: ऐसी जहाँ पे सुविधाओं का अभाव, तीसरा इतना ज्यादा आपको पता भी नहीं होगा कि ब्लाइंड पर्सन इतनी तरक्की कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इतना नॉलेज नहीं रहा होगा उस समय। वो हिम्मत कहाँ से पैदा की आपने अपने अंदर? क्योंकि हो सकता है आपकी बात सुन करके कुछ और लोगों को भी थोड़ा जज्बा मिले।
1: हाँ जी सर, जहाँ तक हिम्मत की बात है, एक्चुअली होली में मेरी आईसाइट गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा को मतलब इसी चीज का एक सदमा सा लग गया था, तो उनको अटैक आया, तो दिसंबर में पापा भी मतलब हमें छोड़ के चले गए थे। तो
0: जी
1: मम्मी थी मेरी, मेरा भाई और मेरी सिस्टर की मैरिज हो रखी थी, तो वो चंडीगढ़ में ही रहती थी सिस्टर मेरी। तो मेरा भाई और मम्मी और हम फिर चंडीगढ़ आ गए थे, मतलब मेरी सिस्टर ले आई थी यहीं पे, क्योंकि अब रिलेटिवों का तो ऐसा भरोसा ही नहीं था। अब अभी ऐसा हो गया तो आगे पता नहीं कुछ भी हो सकता था। तो हम लोग चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ में क्या हुआ कि तब भी मेरे को ये नहीं पता था कि ब्लाइंड कम्युनिटी भी है, मतलब ऐसे मेरे को ये लगता था कि मैं अकेली हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। और ऊपर से फिर जानकार के लोग सब लोग यही बोलते थे ये लड़की है, ऐसे सब कुछ बोलते रहते थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं वहां से चंडीगढ़ में जब मैं आई, तो मेरे भाई के साथ एक दिन मैं कहीं जा रही थी, तो एक ये नैब का सर्वे चला था कुछ एनएबी का, तो वहां पे क्या करते थे टीचर लोग ब्लाइंड बच्चों को मतलब गांव से घरों से ढूंढ के उनको
0: लाते
1: ट्रेन
0: थे।
1: हाँ उनको ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन दिलाते थे और उनको कुछ सिखाने के लिए पढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करते थे। तो ऐसे ही मैं मेरे भाई के साथ कहीं जा रही थी, तो एक टीचर मिले मुझे, अभी वो चंडीगढ़ में ही ब्लाइंड स्कूल में ही टीचर है वो,
0: जी
1: अश्वनी सर हैं वो। तो उन्होंने ही मुझे देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी ब्लाइंड कब से है। तो मेरे को तब तक लोगों से सही से कम्युनिकेट मतलब बातें बात भी नहीं कर पाती थी मैं, बिल्कुल मतलब हेजिटेट करती थी कि अरे पता नहीं सामने वाला मुझे देख रहे होंगे, मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब यही चीज रहता था मेरे को। तो
0: बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था जरा भी,
1: हाँ
0: मतलब
1: बिल्कुल ही नहीं था मेरे को। तो मेरे भाई ने ही बात की, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो जरूर मेरी बहन पढ़ना चाहेगी सर। तो उन्होंने कहा हमारा एनजीओ है ऐसा, मतलब सब कुछ उन्होंने डिटेल दिया हमें नैब के बारे में। तो फिर उन्होंने अपना कार्ड दिया, तो मेरा भाई वहीं लेके चले गए थे मुझे इंस्टीट्यूट में दूसरे दिन। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो उन टीचर ने मेरा बहुत मतलब हेल्प किया मुझे पढ़ने में आगे बढ़ने में। फिर एक्चुअली
0: अश्विनी
1: जो
0: सर, अश्विनी सर नाम बताया ना आपने, तो
1: हाँ, अश्वनी है उनका नाम। हाँ
0: बिल्कुल इस कार्यक्रम के माध्यम से अश्विनी सर को भी धन्यवाद देते हैं। जी
1: जी हाँ जी, उन्होंने तो मतलब एक पेरेंट्स के बराबर ही आगे बढ़ के उन्होंने यहाँ तक अगर मैं आज पहुंची हूँ तो सबसे ज्यादा मतलब वो उनका ही रहा है मेरे साथ, उनके आशीर्वाद और उनका हेल्प जो था उसी से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आज। और फिर मेरे भाई की भी मतलब जैसे एक साल के अंदर हमारे साथ इतना कुछ हो गया था, मेरे को उन्होंने इंस्टीट्यूट में जैसे एडमिशन करवाया, उसके बाद ही नेक्स्ट जो दिवाली आई उसमें भाई की भी डेथ हो गई, उनको जॉन्डिस था।
0: ओहो।
1: हाँ फिर वो भी मतलब छोड़ के चले गए, तो फिर मम्मी और मैं सिस्टर के साथ ही रहते थे वहीं से। फिर सर ने मुझे पढ़ाया, ब्रेल सीखी मैंने वहीं एनजीओ में जाके, और वहीं से फिर मेरी प्राइवेट एजुकेशन स्टार्ट हुई। तो मैंने 10th फिर +2 ऐसे करके एजुकेशन की सर वहां से।
0: मीना जी फिर ये दिल्ली तक पहुंचने का सफर कैसे तय हुआ?
1: हाँ जी, दिल्ली ऐसा था कि फिर मैंने जब वहाँ से 10th किया, तो उसके बाद मैं सोचती थी कुछ काम, अब मम्मी थी मेरे साथ और सिस्टर के ऊपर भी ज़्यादा बोझ बनना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब सिस्टर के अपना भी फैमिली है, मैंने फिर कोशिश की कि मैं कुछ करूं आगे, तो फरीदाबाद में जो एक सेंटर है, नैब का ही है शायद वो भी, तो वहां पे मैंने, हाँ

0: एनएवी है वहाँ पे, तो एक वही सबका ही साथ सपोर्ट, जैसे साथ मिला मुझे, एक दीदी है सीनियर है वो भी आशा दीदी, तो उन लोगों ने मेरी हेल्प की, तो उन्होंने फरीदाबाद में मेरा एडमिशन करवा दिया था। वैसे मैं कंप्यूटर के लिए आई थी, तो वहाँ पे कहा गया कि अभी कंप्यूटर में जगह नहीं है, तो ढाई महीने मुझे होम साइंस में रहना पड़ा था। वहाँ पे होम साइंस सीखा मैंने ढाई महीने, फिर उसके बाद मैंने वहाँ से कंप्यूटर कोर्स किया। तो कंप्यूटर सीखने के बाद फिर मैं दिल्ली यहीं हॉस्टल में रह के मैंने सोचा अब ओपन से मुझे पढ़ाई करनी है तो कुछ प्राइवेट जॉब ढूंढूंगी बोल के मैं यहीं हॉस्टल में रहती थी यहीं दिल्ली में ही। तो यहीं से एजुकेशन और मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है कुछ महीने। हाँ जी।
1: अच्छा, तो फरीदाबाद में रहने के दौरान जो कुछ आपने सीखा,
0: हाँ जी,
1: तो आपका कैसा अनुभव रहा सेंटर में? मतलब जैसे होम साइंस आपने सीखा ढाई महीने, तो अच्छे से आप के अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ गया था या उतना अच्छे से नहीं आप सीख पाए या सिखा पाए वहाँ के लोग, क्या थोड़ा अनुभव रहा?
0: हाँ जी, फरीदाबाद में ये था कि जैसे होम साइंस जो खाना वगैरह सब काम वैसे मेरे को जब दिखता था तब आता था, लेकिन वही कॉन्फिडेंट मेरा डाउन हो गया था और ब्लाइंडनेस के बाद मैं डरती थी थोड़ा। पर मैंने वहाँ पे सीखा तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था, ढाई महीने मैंने भले सीखा है पर जो टीचर थे बहुत अच्छा कोऑपरेट करती थी मैम, अनिता मैम ने सिखाया मुझे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर ये था कि मेरी जो मैं बता रही थी आशा दीदी, वो भी ब्लाइंड थे, हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड है, अब खैर जीजू नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो दीदी के घर हम जाते थे तो दीदी भी मतलब हमें सिखाती थी, वो भी पूरा मतलब अपने उस पे ही थी वो, मतलब कोई किसी से कोई हेल्प नहीं लेती थी, वो भी खुद ही घर का सारा काम और ऑफिस संभालना सब कुछ वो खुद करती थी। तो उनके साथ भी मतलब वो भी बोलती थी कि अपने पैरों पे अपने आप खड़े होना चाहिए, हमें मतलब हेजिटेशन जितना हम करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। तो इसी से फिर वही उनके साथ भी रह के और फरीदाबाद में जितना भी मेरा टाइम रहा बहुत अच्छा रहा, मैंने अच्छे से सीखा वहाँ पे।
1: तो मीना जी अभी माताजी हैं आपकी?
0: नहीं सर, माताजी भी अभी 2021 में ही वो मतलब चली गई।
1: अच्छा, और आपकी सिस्टर चंडीगढ़ में आज भी?
0: हाँ जी, हाँ जी, सिस्टर है मेरे से बड़ी है वो चंडीगढ़ में है, उनके भी 3 बच्चे हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है बच्चों की।
1: उनके वहाँ आना जाना होता है आपका?
0: हाँ, मेरा भी होता है और वो लोग भी आते हैं यहाँ पर।
1: बहुत खूब, अच्छी बात। तो फिर मीना जी,
0: हाँ जी,
1: काफी जगह की यात्रा की आपने और मतलब काफी संघर्षों से भरा जीवन देखा एक तरह से।
0: जी सर, हाँ जी सर।
1: त्योहारों पर इंसान आमतौर पर खुश होता है, खुशियां बांटता है, लेकिन आपके साथ अजीब इत्तेफाक रहा कि एक तरफ होली में आपके साथ और दिवाली पर आपके भाई
0: चले गए। हाँ जी,
1: आपके जीवन में आपके भाई का भी एक बहुत अहम किरदार है।
0: जी सर।
1: तो खैर, चलिए उस सबसे बाहर निकल करके एक खुशहाल जिंदगी आज आप जी रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: सर, आपको इस हिम्मत के लिए, इस जुनून के लिए, इस जज्बे के लिए। अब ये बताइए कि फिर हरि की शरण में कैसे पहुंचे आप? वैसे तो हर किसी को जाना पड़ता है हरि की शरण में।
0: ये तो है, हर किसी को जाना पड़ता है, मैं परमानेंट पहुंच।
1: हमारे श्रोता भी सुनेंगे कि सोचेंगे कि भाई ये क्या है, इतनी सीरियस बातें हो रही हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है माहौल को अब जो है हल्का फुल्का किया जाए।
2: नहीं नहीं ठीक है सर, वो तो एक दौर था, गुजर मतलब एक तरह से गुजर गया, ठीक है। अब मतलब आपको सब कुछ मतलब भगवान का दिया हुआ सब है, बढ़िया है, सब अच्छे से लाइफ चल रही है। संघर्ष के बिना खुशी मतलब आना मुश्किल काम है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जो बीत गया वो उसको हमने पीछे छोड़ दिया है। हम अब तो एकदम मस्त बिंदास तरीके से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपने पूछा है अब ये बताएंगे
1: अपने। इसीलिए मैंने कहा एक बार इन्हीं से चर्चा हो रही है तो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं आगे, फिर आपके पास भी आएंगे कि आपने इनको शरण में कैसे लिया। हाँ मीना जी बताए जरा।
0: सर एक्चुअली क्या था कि 2015-16 में मेरे पास भी एंड्रॉइड फोन था।
1: 2015 में?
0: हाँ। तो व्हाट्सएप का ग्रुप चलता था, एक म्यूजिक का ग्रुप था कोई, तो उसमें इनके एक फ्रेंड है, मतलब इनके कॉलेज के क्लासमेट हैं वो, मंगल सिंह जी, तो उनसे मतलब बातचीत हुई थी मेरी, मतलब ऐसे बात करते थे हम म्यूजिक से, वो गाइड करते थे, मतलब हम लोग कुछ अपनी प्रस्तुतियां भेजते थे तो वो कमेंट वगैरह करते थे, और फिर वो भी मतलब पूछते थे कि आप ब्लाइंड कैसे हुए, तो बस मैंने उनको बताया था, तो वो भी बोलते थे अरे आपने मतलब इतनी प्रॉब्लम को करके फेस करके आप यहाँ पहुँचे हो, ऐसे मेरे को बताते थे। मेरे को भी म्यूजिक का बहुत शौक है वैसे, पर ये है कि हाँ मैं सिंगर नहीं बन पाई। और तो फिर उन्होंने ही मतलब एक बार ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में मतलब आपस में ही ये लोग गेट टुगेदर कर रहे थे, मिल रहे थे सब लोग, तो कहा कि चलो आप भी ऐसे, आप हॉस्टल में रहती थी मैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे अकेलापन नहीं सोचना चाहिए, ब्लाइंडनेस तो देखो है और आपने तो अब बहुत लोगों को देख लिया है अपने जैसे, तो आपको भी सबके साथ हंसना बोलना चाहिए, तो आप अकेले अकेले क्यों रहते हो। तो ऐसे ही हम लोग तीन चार मतलब दो तीन जो मेरी फ्रेंड थी मेरे हॉस्टल से भी थी, तो मैं गई मिलने, तो उन्होंने मतलब सबसे पहले मतलब एक तरफ से बोलते हैं जैसे हम दोनों का मिलना उन्होंने ही वो करवाया, मतलब मिलवाया हम दोनों को
1: की फ्रेंड्स ने,
0: नहीं मंगल जी ने,
1: मंगल सर ने, मंगल सर ने, ओके ओके।
0: फिर मैं इनसे मिली, मुझे डेट याद है अभी भी, 19 फेब का दिन था और 2016 में मिली थी मैं इनको पहली बार,
1: गजब, 2016।
0: हाँ तो
1: वो दिन कितना यादगार था आपके लिए मीना जी?
0: हाँ मतलब उस दिन तो खैर वैसे ही जस्ट फ्रेंड के हिसाब से मिली, मतलब क्या था कि मुझे नेपाली भाषा आती है।
1: अच्छा।
0: हाँ तो क्या था कि मंगल जी ने सुना मेरे से कि उन्होंने बोला तुम्हें नेपाली आती है, मैंने कहा हाँ जी, तो कह रहे मेरा एक फ्रेंड है वो भी नेपाली बोलता है, लेकिन तुम बोलना मत पहले, मैं उसको सरप्राइज दूंगा वहां जाके, तुम नेपाली में उससे उसका नाम पूछना।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा ठीक है, तो पहले मैंने यही बोला कि मैं तो जानती भी नहीं, कह रहे पहले पहचान करवाऊंगा ऐसे हेलो आए तब पूछना, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मिलवाया, तो मैंने जैसे ही नेपाली में मतलब इनका नाम पूछा, तो सुनते ही ये तो पता नहीं जैसे शोर मचाने लग गए।
1: कि यहाँ पे कौन आ गया, नेपाल मूल का है।
0: हाँ, मतलब इनको लगा कि मतलब फिर ये मुझे पूछने लग गए नेपाली में, आप नेपाल से हुई हो? मैंने कहा नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ, और फ्रेंड सर्कल भी रहा है मेरा, क्योंकि नेपाली हमारे हॉस्टल में भी रहते थे, तो और मेरी दरअसल मेरे जो पापा हैं वो उत्तराखंड के हैं, मम्मी नेपाल की ही है मेरी।
1: यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन देखो कैसे जुड़ता है इन सब का।
0: हाँ जी हाँ जी, तो पापा से मतलब मम्मी पापा की भी लव मैरिज थी मेरे, तो वो उससे फिर मैं ज्यादातर ननिहाल में भी रही, तो फिर मैंने नेपाली सीखी थी, फिर नेपाली में बातचीत हुई, तो बस उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे बातचीत होती रही। बाद में
1: हो गया, वरना मैं भी ये सवाल पूछता आपसे कि भाई नेपाली सीखने का अनुभव कैसे प्राप्त किया आपने, तो वो आपने खुद ही बता दिया कि फादर आपके नेपाली मूल के ही थे।
0: नहीं, मम्मी मम्मी
1: मम्मी, अच्छा मम्मी नेपाली मूल के थे, है ना, तो ये एक अच्छी बात रही। और आप नेपाल में भी रहे आपने बताया, ननिहाल में?
0: हाँ ननिहाल, एक्चुअली मेरा क्या था कि मेरे जो नाना नानी थे वो मतलब उत्तराखंड में ही मतलब सेटल हो गए थे वो लोग।
1: अच्छा।
0: तो लेकिन मैं शादी से पहले कभी मतलब नेपाल नहीं गई, मैं उत्तराखंड में ही, लेकिन मेरे नाना नानी में पूरी फैमिली नेपाली गढ़वाली वो दोनों ही भाषा बोलते थे। और एक मेरे को मतलब शौक भी है भाषा सीखने का, लेकिन यही है कि
1: मैं कहने वाला था अभी, यही मैं कहने वाला था, क्योंकि ये प्रोग्राम एक तरह से हमराही का है, एक एक एक दूसरे के अपने अपने हमराही को ढूंढने का भी एक बहाना होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो लोगों के अंदर सीखने की जो ललक है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। कब कौन सा हुनर कहाँ जाकर के काम आ जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे फील्ड में आप जानती हैं जॉब आजकल फिर भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जीवन साथी आसानी से नहीं।
0: बहुत बहुत मुश्किल होती है सर ये चीज।
1: आपकी नेपाली भाषा को जानना और हरी जी से मिलना, यानी इसने भी कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से योगदान ही दिया है ना?
0: बिल्कुल सर, नेपाली सीखना ही मेरे लिए वरदान हो गया, इसलिए शरण मिल गई मुझे।
1: हाँ, इसलिए फिर नहीं, जल्दी शरण मिल गई।
0: हाँ जी, ये तो है सर।
3: नहीं तो पता चलता कहीं लाइन में लगना पड़ता, यू आर इन वेटिंग।
0: मतलब मुझे बोलते भी है कि मैं पहले सोचता था, मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे, और मैं भी सोचता था कि कोई देखने वाली लड़की से ही शादी करूंगा। तो फिर जब मैं मिली तो फिर इनको पेरेंट्स को भी मनाना पड़ा।
3: मान गए फिर पेरेंट्स?
0: हाँ, थोड़ी सी तो मुश्किल तो हुई थी शुरू में मम्मी को इनके मनाने के लिए। वही डायलॉग था घर वालों का कि दोनों एक जैसे हो गए तो कैसे खाओगे, कैसे रहोगे।
3: तो फिर 19 फरवरी के बाद शादी करने में कितना टाइम लगा
0: हमें? टाइम तो वैसे
2: लगभग सर दो साल
0: तो लगे।
3: अच्छा, 2 साल मतलब प्रोबेशन पीरियड तो रहा।
0: हाँ जी सर।
3: ओके, तो चलिए खैर अब इसमें और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब फिर हरी जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि काफी इंतजार हो गया हरी जी का भी। हरी जी को नेपाली कैसी लगी?
2: जी सर बिल्कुल
3: जी। हम जो है बचपन में कभी कभी वो दिन में वो आते थे, बॉलीवुड संगीत आता था नेपाली स्टेशन से।
2: बिल्कुल सर बिल्कुल,
3: वो सुना करते थे कभी कभी हम लोग।
2: हाँ जी, हाँ जी सर, रेडियो नेपाल।
0: मैं तो ऑल इंडिया रेडियो में आता था।
3: जी जी जी जी, बताएं
2: जी सर,
3: कैसा अनुभव रहा आपका मीना जी से मिलने का, इनके साथ बातचीत करने का?
2: सर अनुभव तो बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़िया रहा। मतलब ये है कि अगर हम बात करें पहले दिन की, जैसा कि इन्होंने बताया 19 फरवरी 2016 का जो दिन था वो, तो उस दिन तो कॉमन मतलब ठीक है, मतलब जैसे एक हम एक तरह से अननोन पर्सन से पहली बार मिलते हैं, तो मतलब बस मिलते हैं और ठीक है। मतलब उस दिन की गेट टू गैदरिंग हो गई, चाय पानी हो गया साथ में बैठ करके। हम लोग 5 से 7 लोग थे, लगभग 7-8 लोग थे, तो ठीक है। फिर बाद में भाषा, मतलब जब मुझे पता चला कि आती है तो ऐसे ही बात मतलब चलती रही। फिर बाद में आगे मतलब फिर बस भगवान को जो मंजूर था उसी हिसाब से मतलब काम होता रहा, और अब ठीक है, बहुत हम लोग एकदम खुश हैं और बढ़िया जीवन साथी। जैसे जीवन साथी की तलाश मुझे थी, वो सारे गुण इनमें हैं, तो मैं खुश हूँ सर। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ मैं अपने आप को।
3: हरी जी, कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया आपको मीना जी की?
2: एक्चुअली इसके लिए सर मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। ये मैं एक्चुअली ये सोचता था कि मतलब ऐसा है कि भाई कोई साइटेड मिले तो बढ़िया है, मतलब साइटेड से ही अगर शादी हो सके तो अच्छी बात रहेगी, जीवन थोड़ा सुगम हो जाएगा। तो बाद में मतलब जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मतलब हालांकि ऐसे ही हम लोग नॉर्मल बात करते हुए, तो इन्होंने बोला मुझे खाना बनाना आता है।
3: अच्छा।
2: और मुझे भी खाने का बहुत शौक, मतलब खाने, हाँ खाने का तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है अभी भी।
3: सोचा कि साइटेड भी खाना तो बनाएगा ही और ये भी बना लेती है खाना।
2: नहीं तो मुझे मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ इन पे। मैंने कहा अबे मतलब ऐसा है कि मैंने कहा क्या पागल, मतलब मन में सोचा मैं, अब क्योंकि पहली पहली मुलाकात थी
3: तो कह तो नहीं सकते ना ऐसे डायरेक्ट, किसी को कह भी नहीं सकते जी।
2: तो मैंने कहा छोड़ो यार, पागल बना रही है तो लगता है तो
3: कि मतलब मेरा काम लपेटने का है और ये फेंकते जा रहे हैं।
2: तो फिर उसके बाद मतलब बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब ऐसी व्यवस्था बन पाई तो फिर एक दिन हमने मतलब प्लान बनाया कि चलो भाई आज जो है तुम्हारा बनाया हुआ ही खाएंगे।
3: अच्छा।
2: तो फिर उन्होंने फिर बना दिया, मतलब बाद में जब ये बात हुई तो इन्होंने खाना बनाया बहुत बढ़िया।
3: अच्छा।
2: और वही जो खाना था बस, मतलब वो इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने कहा अब तो सब कुछ पॉसिबल है, जब खाना बन गया तो फिर तो मतलब बाकी चीज तो अपने आप हो जाती, क्योंकि खाना बनाना, खाना खाना तो इजी है लेकिन खाना बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम, मतलब मैं समझता था उस टाइम पे, क्योंकि हॉस्टल में ही शुरू से रहा था मैं तो 5 साल की एज से ही, मतलब खाना।
3: जी, आप तो इतने सारे ब्लाइंड साथियों के बीच में रहे थे तो आपने तो बहुतों को देखा होगा ना, लेकिन एक्टिवली काम करते हुए।
2: सर लेकिन ऐसे खाना मतलब घर के कामों को करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा था।
1: अच्छा
2: हाँ मतलब जैसे आप ये मान लीजिए कि एजुकेशन फील्ड में तो बहुत मतलब बारीकी से मैंने वो चीजें देखी थी कि लोगों में कितनी कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन ऐसे मतलब ब्लाइंड लड़कियां एक कुशल हाउसवाइफ हो सकती हैं, ये मतलब मेरे को इनसे मिलके ही अनुभव हो पाया था।
1: वाह क्या बात है, तब तो दिमाग में ये चल रहा था देखता हूँ देखें खाना वाकई में बनता भी है कि नहीं।
2: जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा तब तक कुछ ऐसी बात हो गई थी थोड़ी मतलब गर्माहट आ गई थी रिश्तों में कि मतलब पसंद करते हैं एक दूसरे को और काफी उठना बैठना है साथ में, ऐसा कुछ हुआ था या नहीं बस एक नॉर्मल जो चलता है फ्रेंड सर्कल में वही सब चल रहा था?
2: नहीं, बस ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में मतलब नॉर्मली चल रहा था, बाकी मतलब बातें तो हमारी यहाँ थोड़ा सा मतलब ये है कि और जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे ज्यादा थोड़ी बातें होती थी, लेकिन नॉर्मल बात होती थी, मतलब ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि मतलब मैंने मन में सोच लिया था कि मैंने कहा भाई खाना जब तक नहीं खाऊंगा बना हुआ तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कहानी चाहे हो जाए कुछ भी।
1: बातें भले 24 घंटे कर लो लगातार,
2: बातें चाहे होती रहे।
1: अच्छा
2: हाँ जी हाँ जी, फिर जिन दिन खाना इन्होंने बना के खिला दिया तो फिर दो चार मैंने कहा अब, फिर मैंने सोचा अब अगर मान लो अगर अभी कह दूंगा तो फिर तो लगता है मतलब ये तो साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि मेरी परीक्षा ले रहा था ये, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट करता हूँ मतलब 10-15 दिन 20 दिन थोड़ा ऐसे ही मैंने टाइम गुजारा किसी तरीके से। फिर एक दिन मतलब मैंने इनको कह दिया कि अब देखो आप में मतलब जो है कि वो सारे गुण हैं तो हम क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं ऐसे करके।
1: हाँ
2: जी तो इस तरह से फिर बात
1: हमारी। मीना जी का उस समय क्या कहना था, उस समय क्या प्रतिक्रिया थी इनकी?
2: 2 मिनट के लिए चुप हो गई।
1: अच्छा
2: तो फिर हाँ जी फिर उसके बाद इन्होंने बोला मुझे, मैं तो एक लड़की हूँ तो मुझे तो बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा बहुत सारी नहीं, मतलब ऐसा है कि जितनी सोचनी है सारी सोचो, जो भी मन में सोच आता है सब सोचो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि मतलब अगर जैसे मेरा मतलब सोचने का तरीका है अगर वो साकार हो सके तो बढ़िया है। तो फिर कह रही है, फिर उन्होंने टाइम लिया 1-2 दिन का, फिर उसके बाद में धीरे धीरे धीरे बात मतलब बनती चली गई।
1: वाह क्या बात है, तो उस दिन याद है कि क्या बना था खाने में?
2: सर उस दिन एक्चुअली मुझे जो है चिकन बहुत पसंद है।
1: अच्छा
2: तो मतलब क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ ये था कि मैं पीजी मेंस में रहता था वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, 14-15 की, तो 2015 में मेरी एमफिल सबमिट हो गई थी 31 दिसंबर को। तो जब इनसे मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे मुझे हॉस्टल खाली करना था, तो हॉस्टल खाली करने के बाद मैं मतलब लगभग मान लीजिए कि इनसे मुलाकात हुई फरवरी में और मैं जो है अप्रैल में हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था, वो सॉरी रूम में अपने रूम में रूम रेंट पे लेकर के मैं शिफ्ट हो गया था
1: जी।
2: तो फिर उसके बाद अप्रैल मिड में मैंने मतलब हम सभी लोगों ने ये प्लान बनाया सभी दोस्त लोगों ने कि आज भाई ऐसा है मीना जी से खाना बनवाएंगे और खाएंगे। तो जो भी मतलब हम लोग नॉन वेजिटेरियन थे जितने हमारे सर्कल में 1-2-3 लोग जो भी थे हम में से मतलब 7-8 लोगों में से, तो वो सब इकट्ठे हुए और हमने इनसे बनवाया खाना और खूब जी भर के खाया। तो वो चिकन मतलब था उस टाइम पे बना हुआ,
1: तो आपने सोचा कि वेज तो वेज नॉन वेज भी बना दिया इन्होंने तो।
2: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा चलो अब नॉन वेज बन गया तो वेज तो खैर बनेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात मतलब बन ही जाएगा फिर वो।
1: तो मीना जी श्रोता सोच रहे होंगे कि भाई ये फरीदाबाद में आपको नॉन वेज भी सिखाया गया या ये कहीं और की कला थी?
0: ये मेरी जो वो ब्लाइंड दीदी थी वो महाराष्ट्र की है तो वो बनाती थी तो उनसे सीखी थी मैंने।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और हम लोग क्या है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे मतलब पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे भी हमारे परिवार में सब खाते थे, मम्मी पापा सब लोग, तो ये आइडिया तो था जब दिखता था तब भी हम बनाते थे तो इतना आइडिया था कि हाँ ऐसे बनता है।
1: ठीक है यानी बहुत मुश्किल नहीं था और वही बात है कि आप जो जो सीखते गए वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आता गया।
0: काम आता गया। हाँ जी सर ये तो है। ये तो है।
1: तो हरी जी फिर कैसे मम्मी पापा को मनाने में मुश्किल क्यों हुई?
2: हाँ सर, वो एक्चुअली ये है कि मतलब थोड़ा सा उन लोगों को मतलब ये था कि हम लोग जो मेरे टाइप के जैसे मतलब जो, क्योंकि मैं तो बॉयज स्कूल से पढ़ा हूँ, तो जितने भी लड़के थे तो ब्लाइंड लड़के ही मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में देखे थे मतलब उस टाइम तक। फिर जब उनको पता चला कि भाई लड़कियां भी ब्लाइंड होती हैं, मतलब मैंने जब बताया कि मतलब एक ब्लाइंड लड़की है और ऐसे है और वैसे है, तो फिर उन्होंने कहा, पहली बात तो कह रहे हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा भाई लड़कियां कहाँ, लड़कियां तो मतलब हमने तो आज तक नहीं देखी कोई ब्लाइंड, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। तो फिर मैंने कहा भाई आपने नहीं देखी तो आप देख लो, आ जाओ। तो फिर उसके बाद एक दिन संडे का दिन रखा गया और उसमें मम्मी में वो मतलब पापा और मेरी बड़ी बहन, तो वो दोनों यहाँ मतलब मैंने बुलाया। और इन उस टाइम पे मैं रूम में ही रहता था, रेंट पे रूम ले रखा था हमने, तो इनको भी मैंने बुलाया और फिर उन्होंने भी जो है मतलब खाना इनका बना हुआ खाया। और फिर उसके बाद तब पहली बार उन्होंने देखा कि हाँ भाई ब्लाइंड लड़कियां होती हैं, तो मतलब तब उनको ये विश्वास हुआ कि हाँ लड़कियां भी ब्लाइंड हो सकती हैं। और फिर उसके बाद लेकिन उनको ये रहा कि भाई तुम दोनों ही जो है मतलब ब्लाइंड हो, अब कैसे मतलब मैनेज हो पाएगा, ये थोड़ा सा उनको डाउट था बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा। तो इस वजह से फिर वो मतलब शुरू में मान नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको बोला देखो आपके सामने उन्होंने बनाया भी है खाना, आपने खाया भी है, और फिर ये है कि हम लोग मतलब वेल एजुकेटेड हैं दोनों, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपनी जो बातें हैं एक दूसरे से इजीली कह पाएंगे, समझा पाएंगे। अगर मान लो कोई आप मतलब साइटेड लड़की से अगर शादी हो जाती है और वो मतलब इलिटरेट होती है, तो मतलब फिर उसका क्या फ़ायदा, मतलब हमारा मेंटल लेवल तो मतलब मैच करेगा ही नहीं। तो इस तरह से मतलब उनको हमने मतलब मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, तो इस तरह से फिर मतलब बात वो मान गए थे बाद में।
1: तो जब शादी हुई तो शरीक हुए, एकदम शामिल हुए अच्छी तरह से?
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो एकदम पारंपरिक तरीके से पूरे घर के मतलब रीति रिवाजों के साथ शादी हुई हमारी, दोनों परिवारों को मिला करके कोई मतलब बहुत अच्छे से। अब तो मतलब इवन वो मेरे से ज्यादा मतलब जो है इनके को बुलाने पर वो तुले रहते हैं, या मतलब उनसे ज्यादा बातें होती है मम्मी की।
1: अच्छा।
2: अभी जैसे मैं सैटरडे संडे को तो इनकी छुट्टी होती है, तो मतलब ये है कि मैं तो सैटरडे को ऑफिस स्कूल में ही रहता हूँ, तो ज्यादातर अरे वो तो बात बात करने में ऐसा ही है, तुम ही बात कर लिया करो, तुमसे ही बात कर लेंगे, तुमसे खबर मिल जाएगी, इस तरह से बात करती है मम्मी। तो मतलब अब
1: अच्छा, तो जब मिलना हुआ हरी जी, तब ये कुछ बात हुई थी कि भाई आपको जॉब करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप तो यही मान के चल रहे थे ना कि भाई मुझे तो खाना वाना मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो जॉब के बारे में कोई आप लोगों की आपस में चर्चा हुई थी, या आप यही था कि मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं?
2: मतलब ये इनकी मैडम की जॉब के लिए?
1: मैडम की जॉब की, आपकी तो खैर जॉब लगी हुई थी लगभग। तो
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ सर, विचार तो हमने पहले ही बनाया था, क्योंकि मतलब ये था कि मैंने कहा जब आपने एजुकेशन की है तो फिर उसका यूटिलाइज होना चाहिए, और अगर जॉब मतलब मिलती है तो मतलब वो बहुत अच्छी बात है, तो जॉब अगर मिलती है तो जरूर करेंगे, मतलब आप ऐसा मतलब हमने प्लान बनाया था। और बाकी नहीं मिलती तो इसमें कोई, मैंने वो भी बोला था कि नहीं लगेगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पर खाना तो मिल ही रहा है मतलब फिर।
1: तो आप एक बात बताओ, इन्होंने तो अच्छा सा खाना खिला दिया नेपाली, सब कुछ हो गया, बदले में कभी आप म्यूजिक से हैं कोई गाना वाना गाते हो के लिए?
2: हाँ सर बिल्कुल, टाइम टू टाइम कभी मतलब जैसे मौका मिले तो, अभी मतलब जैसे हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो उस टाइम पे एक गाना गाया था, और बाकी वैसे भी मतलब बैठते हैं तो कभी आ ही जाता है
1: लगने के लिए, हो ही जाए प्रोग्राम में।
0: वैसे गाने से ज्यादा हम एक दूसरे से बातें बहुत करते हैं।
1: हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे श्रोताओं को तो मजा आएगा सुनने में भी। दो लाइनें।
2: अच्छा दो लाइन तो
1: गुना दीजिए। मैं मतलब कह रहा हूँ कि दो लाइनें गुनगुना दीजिए।
2: अच्छा मैं गुनगुना दूँ उनके लिए तो।

0: थैंक यू सर, ये है
1: बहुत शानदार बहुत जबरदस्त, यानी आप लोगों के जीवन में म्यूजिक का भी अच्छा खासा रोल है।
0: हाँ जी सर, म्यूजिक तो मतलब क्योंकि शौक भी बहुत है मुझे तो, और इनको भी गाने का शौक है, गाना गाती हैं तो, और मेरी तो एजुकेशन ही म्यूजिक से हुई है, तो मतलब उसका बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं कि है।
1: हरि जी, तकरीबन 8 साल हो गए आप दोनों की शादी को
0: जी,
1: और आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि बहुत खुश हैं आप, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है
0: जी।
1: जाहिर है जब आप दोनों खुश हैं, आप दोनों को खुश देख करके हम ये मान सकते हैं कि आप दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत खुशियां आप लोगों के जीवन में और भी आए आगे आने वाले समय में। लेकिन लाइफ में चुनौतियां तो होती ही हैं हरि जी।
0: जी जी सर बिल्कुल, लाइफ तो मतलब बिना चुनौतियों के तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए चुनौती भी होती है उसका मतलब जो।
1: कौन कौन से आए, ऐसे कौन कौन से मोड़ आए आप दोनों के जीवन में जब कभी आपको ये लगा हो कि मतलब जिंदगी में थोड़ी मुश्किलें हैं या मतलब पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा, ऐसा कभी हुआ कुछ याद आता है?
0: ऐसा सर इस तरह का तो कुछ मतलब याद आया आ नहीं रहा है अभी तो, ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा हुआ हो कभी। हाँ बाकी छोटी मोटी चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन इस लेवल की मतलब कभी नहीं आई कि लाइफ में मतलब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो फील नहीं हुआ।
1: लोग ये मान के चलते हैं ना कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम 100% VI हो तो लोग चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस मैं ये बात पूछ रहा था कि आपको भी कभी लगा हो कि यार हाँ थोड़ी मुश्किल तो आती है। आपने भी जैसे शुरू में ये सोचा था कि मैं साइटेड विवाह करूंगा तो थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगी, उस मामले में अगर थोड़ा आप कुछ कहना चाहें तो।
0: एक्चुअली सर ऐसा है कि चैलेंजेस की जहां तक बात करें तो मतलब मेन जैसे आप मान लीजिए आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, कभी अगर थोड़ी बहुत मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है वो चैलेंज एक ये रहता है कभी कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई पेपर आ गया, मतलब पेपर पे कुछ लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज कह सकते हैं, लेकिन वो भी मतलब अगर आप थोड़ा मतलब ऑन द स्पॉट तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है आजकल तो। खैर मतलब ये कि बी माई आईज और ये सब एप्लीकेशंस काफ़ी मतलब जेमिनाई, गूगल जेमिनाई वगैरह को आप दिखा देंगे तो काफ़ी हद तक वो हेल्प कर देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चैलेंज रहता है, तो ये एक चैलेंज थोड़ा सा कह सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसा कोई मतलब बहुत वैसा चैलेंज नहीं आया कि मतलब हम कहें कि यार लाइफ कैसे चलेगी।
1: मतलब आप जब याद करते हैं इन 8 सालों को तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा समझदारी रखी जाए तो जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, हर चीज का अल्टरनेट होता है, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी गई है तो उसका मतलब आप कोई ना कोई सोल्यूशन मिल बैठ के बात करके निकाल करके उसको अप्लाई किया जा सकता है जो भी सोल्यूशन निकले। तो अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है इन 8 सालों में कि मतलब ब्लाइंड दंपति जीवन जो है वो मतलब थोड़ा कठिन है या पॉसिबल नहीं है या आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी।
1: मीना जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में?
2: इस मामले में तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सही में मेरे को तो मतलब बहुत ही अच्छे जीवन साथी मिले हैं, और हालांकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ पर मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ मतलब कि अरे मैं ब्लाइंड कम्युनिटी में बाद में जुड़ी। और इनके साथ हस्बैंड के साथ साथ ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक अच्छे गार्जियन की तरह ही मुझे संभालते हैं। मतलब कभी भी मैं किसी चीज में घबरा जाती हूँ या कोई चीज होती है परेशानी थोड़ी मैं ये है कि हड़बड़ा जाती हूँ जल्दी, तो ये समझाते हैं। और जहां तक आपने चुनौती की बात की थी तो हाँ जीवन में चुनौती ये आई थी जब 1 साल मेरा जॉब हुई थी वहां पे अंबाला में ज्वाइनिंग हुई थी मेरी रेलवे में
0: जी,
2: तो 1 साल हम दोनों दूर रहे थे तो ऐसा लगा कि मतलब लाइफ में पता नहीं क्या खो दिया है हम दोनों ने, तो बहुत ही मुश्किल मतलब घड़ी था हमारे लिए, लेकिन हाँ ईश्वर
0: ने इन्होंने बहुत अच्छा याद दिलाया। एक्चुअली वो टाइम सर वास्तव में चैलेंजिंग था
2: बहुत,
0: क्योंकि मतलब हम लोग ये वहाँ अकेली थी और मैं
1: यहाँ तू वहाँ
2: लेकिन सर हिम्मत इतनी थी,
0: दूर से मतलब
2: हर फ्राइडे को मैं यहाँ पहुंच जाती थी,
0: हर फ्राइडे को, फिर मंडे को यहाँ से वापस
2: ऑफिस ज्वाइन करने तो पहुंचते थे अम्बाला।
0: वो एक कई और कई बार ऐसे मतलब बारिश में भींगते हुए, बारिश के दिनों में भी मतलब जैसे उनको मतलब भींगते हुए जाना पड़ा। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि मतलब वहां पे बारिश हो गई थी तो लाइट जो है मतलब कट ऑफ हो गई थी 24 घंटे के लिए
1: जी,
0: फोन की इनकी बैटरी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, पूरा डिस्चार्ज हो गया था फोन, तो कोई मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं मतलब। तो फिर मैंने कहा भाई मतलब सुबह जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने कहा एक दो घंटे अगर मतलब और फोन नहीं लगेगा तो मैं तो ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा। फिर एक आध घंटे में लाइट आ गई थी तो फिर बात हो गई। तो वो एक था वास्तव में कि मतलब कब ट्रांसफर हो पाएगी इनकी करके, तो वो मतलब एक उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगा कि कैसे मतलब बड़ा मुश्किल काम है ये
2: भाई। इन्हीं चीजों से लगा है वैसे, लाइफ तो बहुत हैप्पी मतलब मस्त है हम दोनों की,
1: बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही मस्त रहें आप दोनों, यही शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे ही हंसते खेलते आप दोनों की जिंदगी आगे बढ़े और एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतलब प्रेरणा देते रहें, आप सिखाते रहें लोगों को। आप लोगों ने कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में और आपके अनुभव की और के काम आए, सही है कि नहीं?
2: जी सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: लगी आज प्रोग्राम में, बड़ा मजा आया आप दोनों से बातें करके और अब वक्त भी लगभग प्रोग्राम का हो ही चला है, लेकिन फिर भी अभी ऐसे हम जाने नहीं देंगे आपको। हम जानेंगे कि हमारे सुनने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे, पहले मीना जी आप जरा बताएं आपका क्या कहना है श्रोताओं के लिए।
2: सर श्रोताओं के लिए और खासकर जो ब्लाइंड हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मेरा यही है कि जैसे हम कई बातों में जैसे एक दूसरे को ही मतलब इल्जाम लगाना, मतलब आर्ग्यू करते हैं हम एक दूसरे से, बहुत बहस करने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे और हम कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालने की कोशिश करते हैं, वो ना करके अगर हम दोनों, क्योंकि हम दोनों एक ही उससे आते हैं अब कम्युनिटी से, और अगर हम आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम किसी सामने वाले किसी तीसरे इंसान को हम नहीं समझा सकते। तो अगर हम आपस में मिलके छोटी छोटी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इससे खुशहाल और जीवन कुछ नहीं हो सकता। और मैं अपनी लाइफ में भी यही वो करती हूँ कि हम दोनों में मतलब यही है, 8 साल आज हो गए हैं, कभी ना इन्होंने कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात की ना मैंने, खुद मेरे परिवार में और आसपास के फ्रेंड्स लोग बोलते तुम दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि औरों का जीवन भी मतलब ऐसा ही हो, सुख दुख तो आते रहते हैं सर, लेकिन यही है कि अगर उस दुख में भी अगर हम थोड़ा खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वही लाइफ हमारे लिए सबसे मतलब अच्छी होगी। बस श्रोताओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी मतलब इसी तरह से खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा मीना जी आपसे बात करके और अब मैं चाहूंगा हरदीप आप भी हमारे सुनने वालों को कोई मैसेज दें।
0: जी सर, मैं मतलब सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मतलब ये है जितना हो सके हम हार्ड वर्क कर सके, मेहनत कर सके, एजुकेशन अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो मतलब जो है ले सकें, और फिर उसके बाद ये है कि अगर लाइफ में कोई चैलेंज आता भी है तो उस चैलेंज को भी हम ये कोशिश करें कि मतलब इंजॉय करके जिएं और पॉजिटिव वे में ले करके और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और ना कि उसको ले करके हम बैठ जाएं कि मतलब अब ये अरे यार ये क्या हो गया, अब तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जितना हो सके मतलब हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और सबको आसपास के मतलब जो आसपास का अपना एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, जहां भी हमारा सर्कल जाता है वहां पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, ये मेरा मतलब।
1: बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद हरी जी। तो श्रोताओं आज सुना आपने हमारा ही प्रोग्राम, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमेशा आनी चाहिए, हम सबको आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मीना जी और हरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त देने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें रेडियो मधुबन के साथ इस हमराही प्रोग्राम के माध्यम से करने के लिए।
0: हम दोनों की ओर से भी सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा आपको।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है मैंने आप सबके लिए एक प्यारी सी कविता लिखी है। लो सुनो। कितने सारे दोस्त हैं मेरे, करते मुझसे प्यार, रोज रेडियो पे करते हैं मेरा इंतजार। मैं भी उनसे मिलने को दौड़ लगा के आता और फिर उन सबको प्यारी मीना से मिलवाता। थी ना बढ़िया मेरी कविता। चलो अब जल्दी से मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। वो रही मीना, सुनील के साथ स्कूल से वापस लौट रही है।
1: मीना बेटी।
2: वीरू चाचा। नमस्ते वीरू चाचा, आप यहाँ?
1: हाँ भाई, मैंने सोचा कि चलो आज जरा भाई साहब, भाभी और तुमसे मिलाऊं। और सुनाओ, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई?
2: चाचा जी, पढ़ाई भी ठीक और लिखाई तो और भी ठीक।
1: मतलब?
2: मतलब ये चाचा जी कि आजकल हम स्कूल में स्याही वाले पेन से लिखना सीख रहे हैं।
1: अरे वाह, क्या हुआ सुनील, तुम खुश नहीं लग रहे?
3: वीरू चाचा, मुझे स्याही वाले पेन से लिखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्याही वाले पेन से एक तो हाथ गंदे हो जाते हैं और दूसरा अपनी गलती को मिटा भी नहीं सकते।
1: भाई ये बात तो है।
3: अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ।
1: अरे तुम भी हमारे साथ चलो ना मीना के घर। ये देखो कितने रसीले आम लेके आया हूँ मैं, साथ में बैठकर खाएंगे।
2: हाँ हाँ सुनील, चलो ना।
3: मीना तुम वीरू चाचा के साथ जाओ, मैं दादी जी को बता के आता हूँ।
0: लो भाई, मीना तो वीरू चाचा के साथ चली अपने घर। और उधर जब सुनील अपने घर पहुंचा तो,
3: दादी जी मैं मीना के घर जा रहा हूँ।
4: कुछ खा तो ले पहले।
3: मीना के घर में आम खाऊंगा, आपने पानी भरा था ना आज?
4: हाँ हाँ बेटे, आज सुबह ही हैंड पंप से ताजा पानी भर कर लाई थी घड़े में।
3: अच्छा दादी जी, मैं जा रहा हूँ।
0: सुनील अभी गया ही था कि उसके घर शोभा काकी आ गई।
5: नमस्ते अम्मा, सुनील की माँ नजर नहीं आ रही। बहू तो सुनील के बाबा के साथ साथ वाले गांव गई है अस्पताल, कल तक लौटे।

0: होंगे। अरे क्या हुआ?
1: बहू के पेट में कुछ दिनों से बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए। खैर तू बता कैसे आना हुआ?
0: अम्मा वो थोड़ी चीनी चाहिए थी।
1: हाँ हाँ तू बैठ, मैं अभी लाई चीनी। पहले तुझे एक गिलास पानी तो दे दूँ।
0: हाय हाय ये क्या हो रहा है इस घर में? पहले बहू की तबीयत खराब, अब ये नीला पानी। सत्यानाश, जरूर कोई मुसीबत आने वाली है।
2: क्या हो गया अम्मा? अरे ये पानी तो नीले रंग का है। अरे अम्मा कहीं ये पानी बहुत दिनों का भरा हुआ तो नहीं?
0: अरे आज सुबह ही भरा था हैंडपंप से, घड़े को अच्छी तरह से धो के। लगता है जरूर कोई विपदा आने वाली है।
2: अम्मा ये भी तो हो सकता है कि उस हैंडपंप का पानी साफ ना हो। मैं तो कहती हूँ आप दूसरे हैंडपंप से पानी ले आओ।
0: हाँ ये ठीक रहेगा।
3: सुनील की दादी ने शोभा काकी को चीनी दी और फिर दूर वाले हैंडपंप से पानी भरने गई, और वापस लौटते समय उन्हें मिले मीना और सुनील।
4: दादी जी आप यहाँ?
0: हाँ सुनील बेटा, पानी भरने आई थी।
4: लेकिन पानी तो घर में था।
0: वो पानी फेंक दिया मैंने।
5: क्यों दादी जी?
1: मीना बेटी नीले रंग का था वो पानी।
0: हाँ
4: नीले रंग का?
1: हाँ लेकिन अब सब ठीक है, ये पानी बिल्कुल साफ है।
4: लाइए दादी जी, घड़ा मैं उठाता हूँ। अच्छा मीना कल स्कूल में मिलते हैं।
3: और अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी के बाद सुनील अपने घर पहुँचा।
4: माँ तुम कब आई? अब तबीयत कैसी है?
6: ठीक हूँ बेटा। एक गिलास पानी देना बेटा।
4: ये लो माँ पानी।
6: अरे ये पानी तो नीले रंग का।
0: हाय हाय सत्यानाश, मैं ना कहती थी कोई विपदा आने वाली है इस घर पे। कल भी पानी नीला पड़ गया था और आज भी।
4: दादी जी क्या पता हमारा घड़ा ही गंदा हो, मैं मीना के घर से एक घड़ा लेके आता हूँ।
0: हाँ हाँ बेटा जा भाग के ले आ।
3: सुनील भागा भागा मीना के घर पहुँचा।
4: मीना क्या तुम्हारे घर में एक और घड़ा होगा? वो हमारे घड़े में कुछ गड़बड़ है।
5: गड़बड़?
4: हाँ मीना आज भी घड़े का पानी नीला पड़ गया।
5: पानी नीला पड़ गया, तभी सुनील भी डर गया।
7: मिट्ठू चुप। सुनील तुम रुको, मैं अभी घड़ा लेके आती हूँ। डंडे वाला लोटा भी लाओ सुनील।
4: नहीं मीना, डंडे वाले लोटे की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही गिलास घड़े में डालकर पानी भर लेते हैं।
5: पानी भर लेते हैं, गलती कर लेते हैं।
7: ये लो सुनील घड़ा। वैसे माँ कहती हैं कि हमें हमेशा डंडे वाले लोटे से ही पानी भरना चाहिए ताकि पानी में गंदे हाथ न जाए, इसीलिए ये लो ये डंडे वाला लोटा भी ले जाओ।
4: मैंने कहा ना मीना इस डंडे वाले लोटे की कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ।
7: रुको सुनील मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
3: और जब मीना के साथ सुनील अपने घर पहुँचा तो उन्होंने देखा कि सुनील की दादी नर्स बहनजी को पानी के नीला पड़ने की बात बता रही है।
0: कल भी सुनील पानी पी के गया तो घड़े का पानी नीला पड़ गया, और आज भी इसके पानी निकालते ही। हाय हाय कहीं मेरे सुनील पर तो कोई विपदा नहीं आने वाली।
1: लेकिन अम्मा पानी नीला कैसे पड़ सकता है? जरूर कोई और बात है। सुनील जरा दिखाओ तो वो नीला पानी।
4: जी अभी लाता हूँ।
1: सुनील जरा यहाँ आओ तो।
4: जी नर्स बहन जी। कहिए।
1: जरा अपने हाथ दिखाओ।
4: मेरे हाथ तो साफ।
1: अम्मा ये रही वो विपदा जिसकी वजह से घड़े का पानी नीला पड़ रहा था। सुनील के हाथों पे लगी स्याही।
0: स्याही?
1: सुनील तुम डंडे वाले लोटे का इस्तेमाल नहीं करते हो?
4: जी नहीं।
1: अब समझी तुम्हारी माँ बार बार बीमार क्यों पड़ती है। देखो सुनील जैसे तुम्हारे हाथ पे लगी स्याही पानी में फैल गई, उसी तरह हाथ पे लगे कीटाणु भी पानी को गंदा कर देते हैं, जिसे पीने से हमारा पेट खराब हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं।
4: ओ ये बात तो आप ठीक कह रही हैं।
1: आज से ये बात अच्छी तरह याद रखना सुनील। घड़े को अच्छी तरह साफ करके उसमें साफ पानी भर के किसी साफ प्लेट या बर्तन से ढक के उसे किसी ऊंची जगह पे ही रखना ताकि पानी में धूल मिट्टी ना पड़े, और जब भी उसमें से पानी निकालना हो तो डंडे वाले लोटे का ही इस्तेमाल करना। भूलोगे तो नहीं?
4: कभी नहीं भूलूंगा,
5: कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा।
3: आप भी कभी मत भूलना दोस्तों, जब भी घड़े से पानी निकालना तो डंडे वाले लोटे का इस्तेमाल करना। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू ने कैसी कविता लिखी है।
7: साफ हो पानी, घड़ा ढका हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो,
5: ऊंचाई पे रखो साथ में डंडे वाला लोटा हो।
3: भाई वाह, छोटी सी कविता में कितनी बड़ी बात सिखा गए अपने मीना और मिट्टू। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: क्या गाना था, मजा आ गया। अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़
2: पहेली तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी, पैर नहीं है मेरे फिर भी दूर दूर मैं जाती हूँ।
3: नदी।
4: आवाज।
3: रोशनी।
1: अरे अरे पहले पूरी पहेली तो सुन लो, फिर से बोलती हूँ। पैर नहीं है मेरे फिर भी दूर दूर मैं जाती हूँ, दोस्त या रिश्तेदारों को दिल का हाल बताती हूँ।
5: क्या हो सकता है, हाँ? क्या होगा?
4: ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है।
5: सोचो ना,
4: कुछ तो सोचो।
5: सोचो ना,
4: कुछ समझ में नहीं आ रहा।
5: क्या करें?
3: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है गोलू। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी, आज तो मुझको भेजने के तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन बरसों पहले मेरी सवारी थे कबूतर प्यारे।
3: बहन जी तीसरी कड़ी बताइए ना।
5: हाँ हाँ बहन जी बताइए ना,
3: तीसरी कड़ी भी बताइए, बोलिए ना बहन जी।
1: अच्छा अच्छा बताती हूँ, ये रही तीसरी कड़ी, ले जाऊंगी वो संदेशा जैसा तुम सब चाहोगे, लेकिन मैं जाऊंगी तब जब मुझ पे टिकट लगाओगे।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है चिट्ठी।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्ते बच्चों, अगेन दिस इज योर इंग्लिश टीचर संदीप त्रिवेदी। आज हम जो पिछली बार पढ़ा था हमने द टेल ऑफ द बिश्नोईस, उसका नेक्स्ट पार्ट, और आज हमारा लेसन पूरा हो जाएगा, ये टेक्स्ट ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। और वी ट्राई टू कम्युनिकेट इन वेरी इजी वे सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बहुत सरल भाषा में, हमारी भाषा में समझें ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चंबाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers। अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने चंबाजी के उपदेशों को माना, चंबाजी के विचारों को माना, वो क्या कहलाए? वो कहलाए 29ers या फिर बिश्नोईज। कैसे? 20 प्लस 20, 20 इज इक्वल टू 20, नॉइस इज इक्वल टू 9, बिकॉज दे अडहर्ड टू चंबाजीज 29 प्रीसेप्ट्स। क्योंकि उन्होंने चंबाजी के जो 29 प्रीसेप्ट्स है ना, प्रीसेप्ट्स उपदेश, उनके 29 उपदेशों का पालन किया। एडहर्ड वर्ब है ये, सेकेंड फॉर्म। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स। उन्होंने अपने गांव के आसपास जितने भी पेड़ थे उनको संरक्षित किया, सुरक्षित किया, और साथ ही साथ जो काले हिरण थे उनका भी उन्होंने लालन पालन किया। चिंकारा पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा केवल काला हिरण ही नहीं, चिंकारा भी, दूसरे पक्षी भी और बाकी दूसरे जानवर भी। ग्रेजुअली धीरे धीरे देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके इलाके में बहुत हरियाली होने लगी और उनके पशुओं के लिए अधिक, बहुत अधिक मात्रा में चारा मिलने लगा। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड बिश्नोईज बिकेम अ प्रॉस्परस पीपल। ये तो होना ही था, उनकी जो ज़मीन थी वो उपजाऊ हो गई और बिश्नोई जो जाति थी वो समृद्ध हो गए, प्रॉस्परस। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। लेकिन उनके इलाके के बाहर जहाँ जहाँ बिश्नोई नहीं रहते थे सब कुछ वैसा ही था, अकाल, बरसातें कम होना, हरियाली नहीं होना, खाने पीने का अनाज नहीं मिल पाना, पशुओं का परेशान होना, ये सब चीज़ें। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। अभी भी ज़मीन को अपनी हरियाली की तलाश थी और रेगिस्तान पड़ता ही जा रहा था, फैलता ही था। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ चंबाजीज कंटेम्प्ररी राव जोधा जी, चंबाजी के समय जो जोधपुर के महाराजा थे राव जोधा जी, उनके नवे वंशज डिसेंडेंट नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। अब वो जोधपुर के राज सिंहासन पर थे। इन द सिक्स्थ ईयर ऑफ हिज रेन, अपने शासन के छठे वर्ष में, इन 1730 में, दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। ये जो महाराजा था अभय सिंह, उन्होंने खुद के लिए एक महल, पैलेस बनाने का निर्णय लिया। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंड स्टोन, और वो भी किससे? प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर से। अब जोधपुर, जोधपुर का प्रसिद्ध पत्थर है ये। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में चूने की आवश्यकता थी। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स, इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता थी। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स
2: वाइट
1: अबंडेंट इन दिस, और इस इलाके में जो चूना पत्थर था वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं था, बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इस समस्या का भी समाधान तो निकालना ही था, एंड द लाइम किलन्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, और जो चूने की भट्टियाँ थी उसके लिए ईंधन चाहिए बहुत सारा. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, इस रेगिस्तान में इतना सारा ईंधन जुटाना कोई आसान काम तो था नहीं. बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि भाग्य लिखा हुआ था, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर. जोधपुर से 16 मील की दूरी पर ही बिश्नोईयों का इलाका था. दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजीज प्रीसेप्ट, और ये वही लोग थे जिन्होंने नियरली 2.5 centuries अगो जब ये लेसन लिखा गया, तब की बात है कि इन लोगों ने जम्बाजी के उपदेशों को लगभग 250 साल पहले से ही स्वीकार कर लिया था, एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और इन्होंने कई सौ खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा की थी, और आज भी वहाँ पर फल फूल रहे थे नियर देयर विलेजेस, अपने गाँव के आसपास. एंड देयर वॉज ए एक्सीलेंट लाइम स्टोन टू, वहाँ पर बहुत अधिक उपयुक्त मात्रा में जितना चाहिए था और जैसा चाहिए था वैसा चूना पत्थर भी मौजूद था नियर वन ऑफ देयर विलेजेस खेजड़ली, और ये उनमें से एक गांव में, और उसका नाम था खेजड़ली. अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइम किलन्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली. दीवान साहब ने ऑर्डर भी दे दिया कि खेजड़ली के पास ही हम तो जो है अब भट्टियाँ लगाएंगे टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, और ताकि अब हम जल्दी से जल्दी महल का काम शुरू कर सकें. बट लेकिन व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज, ध्यान देना, लेकिन जैसे ही जो मजदूर थे वो पेड़ों को काटने लगे ईंधन के लिए फॉर फ्यूल, दे फाउंड दैट, उन्होंने देखा कि द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, कि बिश्नोई तो उनको काटना तो दूर, पेड़ों को छूने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं. देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू कट दीज ग्रीन्स, टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायलेशन ऑफ रिलीजन. उनके जो खेजड़ी के पेड़ थे उनको अकेला छोड़ देना पड़ा, और पेड़ों को काटना मतलब उनके धर्म का उल्लंघन करना है. किसके धर्म का? बिश्नोईयों के धर्म का. द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, क्या करते मजदूर जोधपुर लौट गए. द दीवान वाज एनरेज्ड, लेकिन दीवान साहब को गुस्सा आ गया. व्हाट इंसोलेंस, दीवान साहब बोले क्या बदतमीजी है ये इंसोलेंस. ही पर्सनली accompanied the workers on horseback, वो खुद मजदूरों के साथ बोलिए और घोड़े की पीठ पे बैठ के खेजड़ली टू खेजड़ली विलेज गांव की तरफ चल दिया. एंड ऑर्डर द डेट, और आदेश दिया द ट्रीज बी कट, कि अब पेड़ों को काट दिया जाए, देखते हैं हम कौन क्या करता है. द एक्सेस वर रेज्ड, कुलाड़ियां उठ गई एक्सेस, एंड द होल विलेज गैदर्ड, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया. दे बेक्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसेक्रेटेड, उन्होंने बहुत याचना की, बहुत रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि भाई हमारे जो है धर्म को भ्रष्ट मत करो, हमारे जो नियम है उनको मत तोड़ो. दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए प्रार्थना की. दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्स्ड ओवर जनरेशंस, कि कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों ने इन पेड़ों की रक्षा की है. बट द दीवान वाज डिटरमिंड, लेकिन दीवान साहब तो पूरा दृढ़ निश्चय करके आए थे, द ट्रीज मस्ट बी कट, पेड़ तो काटे जाएंगे. टू फ्यूल, ईंधन के लिए द लाइम किलन्स, चूने की भट्टियों के लिए. ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड. उसने आदेश दे दिया जाओ काटो. बट द बिश्नोईज वर डिटरमिंड टू. लेकिन इधर बिश्नोई भी पूरा इरादा करके बैठे हुए थे कि आज तो जो कुछ हो जाए. एंड द मोस्ट डिटरमिंड अमंग देम वॉज अ वेरिटेबल इनकार्नेशन ऑफ दुर्गा, अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई राम खोज. लेकिन उनमें बिश्नोइयों में सबसे ज्यादा दृढ़ संकल्पी दृढ़ निश्चयी कौन थी? स्वयं दुर्गा का अवतार देवी. दुर्गा का अवतार नाम क्या था? अमृता देवी. और वो कौन थी? वाइफ ऑफ राम खोज. देखिए मतलब कहीं भी इतिहास में भी जब जरूरत पड़ी है तो महिलाएं सबसे पहले आगे आती हैं, पीछे नहीं हटी हैं कहीं भी. द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट. उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, अगर पेड़ काटने हैं तो पहले आप हमें काटिए. शी सेट एंड कॉलिंग टू हर थ्री डॉटर. साथ ही साथ उसने अपनी तीन पुत्रियों को भी बुला लिया टू ज्वाइन हर, उसके साथ शामिल होने के लिए. दे क्लैश फोर ऑफ द ट्रीज. चार पेड़ों से चिपक गए, वो लिपट गए. द दीवान फंड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल फोर ऑफ देम बी कट. दीवान को तो अब और गुस्सा आ गया, अपने घमंड में चूर था कि हमारे पास तो ताकत है, पावर है. उसने कहा पेड़ों के साथ साथ इन चारों को भी काट डालो. विद द ट्रीज द एक्सेस फेल एंड द प्रेव वुमन फॉर कट. कुलाड़ियां उठी और ये चारों बहादुर महिलाएं टुकड़े टुकड़े कर दी गई. बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काट. लेकिन बिश्नोई भी कोई कायर नहीं थे. मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज. और अधिक बिश्नोई आ गए अब तो पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों से लिपटने के लिए, एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनके साथ कटने के लिए. द न्यूज ऑफ दिस मैसेकर स्प्रेड रैपिडली. इस हत्याकांड की जो सूचना है वो बहुत तेजी से फैली चारों तरफ. एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस. आसपास के 84 गांवों से जहां जहां बिश्नोई रहते थे सब के सब आ गए टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए. ऑल टुगेदर इस प्रकार 363 बिश्नोईज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेट हेरिटेज. अपने पवित्र विरासत को बचाने के लिए इस दुर्घटना में 363 बिश्नोइयों ने अपनी जान गंवा दी. दुर्घटना तो क्या थी, इस हत्याकांड कहना चाहिए. द महाराजाज मैन, महाराजा के लोग, हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि थिंग्स कुड कम टू सच अ पास, वर नाउ ट्रूली फ्राइटेड, कि चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी. अब वो पूरी तरह से डर गए. दे रश्ड बैक टू जोधपुर. जोधपुर तुरंत भागे वो टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, और सारी कहानी अभय सिंह को सुना दी. अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड द पावर ऑफ औरंगजेब. अब अभय सिंह समझ गए कि जिस शक्ति ने औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह को भी चुनौती दे दी थी कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज. ऐसे नैतिक साहस के आगे वो कुछ नहीं कर सकते. ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली. अब वो खुद गए खेजड़ली टू मेंड मैटर्स, इस मुद्दे को सुलटाने के लिए. ही अशोर्ड द वीपिंग एगोनाइज्ड मास. उन्होंने रोते बिलखते विलाप करते हुए गांव वालों को, तड़पते हुए जो भीड़ वहां पर इकट्ठी थी हजारों की संख्या में, उन्हें समझाया दैट कि फ्रॉम नाउ, आज से ऑन, ही वुड फुली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स. उनकी जो धार्मिक मान्यता है उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा. अ कॉपर प्लेट, एक ताम्र पत्र, मतलब उस समय तांबे के पत्ते पर लिखा जाता था, इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज. इस आशय का एक ताम्र पत्र, यानी ये लिख करके कि अब से आपके धर्म का पूरा पालन किया जाएगा, बिश्नोईयों को दिया गया. हैंसफोर्थ तब से इंस्क्रिप्शन सेड, उसमें लिखा हुआ था नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट, कोई भी हरा भरा पेड़ कभी नहीं काटा जाएगा नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोई के गांव के पास. नोर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड, और ना ही किसी जानवर का शिकार किया जाएगा इन देयर विसिनिटी. और आपको मालूम है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध केस भी हुआ था जोधपुर में अभिनेता सलमान खान से संबंधित, और वो भी काले हिरणों के शिकार से संबंधित था. तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई कितना ध्यान रखते हैं अपने धर्म का. 2.5 centuries हैव पास्ड, अब तो लगभग 300 साल होने को आए सिंस दिस एपिसोड, इस घटना के बाद से बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज गिविंग सकर टू द वाइल्ड एनिमल्स. अभी तक वो पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं और जो जानवर हैं उनका भी लालन पालन करते हैं. ऑफ राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries, लगभग 500 सालों से. एवरीवेयर एल्स, हर कहीं, एंड द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन रेवेज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सिलरेटिंग पेस. भारत और भारत के उपमहाद्वीप में, यानी भारत के आसपास, बहुत बड़ी तेजी से, बहुत ज़्यादा रैपिडली पेड़ों को काटा जा रहा है. लेकिन ये जो बिश्नोई लोग हैं यहाँ पर, ये पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि हरियाली बनी रहे. द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स, किसी ज़माने में भारत के मैदानी इलाकों में जो हजारों काले हिरण विचरण किया करते थे, हैव ऑल वेनिश्ड, अब वो भी कहीं ना कहीं जा चुके हैं, कम हो गए हैं, गायब हो गए हैं, विदाउट अ ट्रेस, उनका कुछ अता पता नहीं है. बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस, लेकिन कहानी इधर दूसरी है, बिश्नोइयों के गाँव के आसपास द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, न केवल हरियाली है बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बक्स रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व. कण्व ऋषि के समय, कालिदास कण्व ऋषि के आश्रम के पास कालिदास के टाइम पे जिस प्रकार काले हिरण विचरण किया करते थे, उसी प्रकार आज खेजड़ी गांव के आसपास या जहाँ जहाँ विष्णुई रहते हैं जोधपुर में, वहाँ इन्होंने पूरी तरह से रक्षा की है. अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बग्स, इन काले हिरणों के झुंड को देख करके अकबर इतना आश्चर्यचकित हुआ था नियर बिश्नोई टेम्पल्स दैट, बिश्नोइयों के मंदिर के पास, दैट की ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग सीन, एक दृश्य को देखते हुए उन्होंने अपने आश्चर्य का वर्णन किया है. फ्रॉम सतयुगा द एज ऑफ ट्रुथ, कि सतयुग में जब जो सच्चाई का समय था, इन दिस कलयुग, कलयुग में भी द करप्ट प्रेजेंट, तो आज भी अच्छे और बुरे लोग हर तरह के मौजूद हैं. द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे, आज भी हमारे लिए ये दृश्य बहुत आश्चर्य का कारण है, देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर टाइम. अकबर 4 centuries अगो, 400 साल पहले, अकबर के समय जितना आश्चर्यजनक था उतना ही आज भी है. फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू दियर मैग्निफिशेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, आज तक भी बिश्नोईयों ने अपने इस पूरे संकल्प को, अपने इस पूरे कार्य को पूरे जुनून के साथ, उन्होंने अब तक एक जुनून बना करके इसको जिंदा रखा है और वो पूरी तरह से देखभाल करते हैं. एट द विलेज खेजड़ली, खेजड़ली गांव में, वेयर द बिश्नोईज पास्ट, जहाँ पे बिश्नोईयों की हत्या हो गई थी, द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहाँ पे बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा दी थी बिश्नोइयों ने, देयर इज वन एंशियंट खेजड़ली ट्री, वहाँ पे आज भी एक खेजड़ली का ट्री है बहुत पुराना, विच एस्केप्ड दैट मैसेकर, जो कि उस हत्याकांड में बच गया था. 2 years ago, 2 वर्ष पूर्व, द बिश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज, 363 और पेड़ वहाँ पर बिश्नोइयों ने उगाए अराउंड इट इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, उनके 363 शहीदों की याद में. एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़, बींग नर्चर्ड विद लव एज दे आर, और इन पेड़ों की रक्षा उसी प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ की जाती है जैसे कि ये आर ग्रोइंग फास्ट, और ये इसीलिए बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं. एवरी ईयर, हर वर्ष, देयर इज अ रिलीजियस फेयर, धार्मिक मेला लगता है एट दिस स्पॉट, इसी जगह पर, 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद. भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा, फुल मून बोलते हैं ना पूनम को, डेज बिफोर, पूनम से 5 दिन पहले, यानी 11 से ही, भाद्रपद की 11 से ही, इट इज एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम. कि ये एक ऐसा अवसर होता है कि हर किसी पर्यावरण प्रेमी को अपने जीवन काल में इस मेले को एक बार जरूर देखना. तो ये लेसन हमारा पूरा हुआ. लेसन के बाद में इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स दिए हुए होते हैं, जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इनक्रेडिबली का मीनिंग है हार्ड टू बिलीव, है ना, यानी विश्वास कर पाना. तो आप इनको समझ करके बहुत सारे कठिन मीनिंग को सॉल्व कर सकते हैं. और इसके अलावा इस लेसन के, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में, तो आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो. बहुत ही बिगिनर्स के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे इनक्रेडिबली मैंने बताया, विश्वसनीय रूप से, ऑड अजीब, सीएस्टा, सीएस्टा का मीनिंग आप लोग नोट कर सकते हैं, अल्प निद्रा, फॉलिएज, पत्ते, हाँ, तो पॉड्स, फलियां, ये सब ऐसे मीनिंग है जिनको आपको, स्वे, शासन, रिट्रीट, पीछे हटना, इस तरह के जो मीनिंग इसके अंदर आए हैं उनको आप नोट करें. एंथ्रेलिंग, आकर्षक, दिलचस्प. तो ये कुछ बातें हैं इस लेसन के बारे में. बार्क, छाल, फ्रॉलिक, खुशी से, उल्लास से, कमांडमेंट, आज्ञा, प्रॉम्प्ट, प्रेरित करना, एडर टू, पालन, प्रीसेप्ट, उपदेश, डिसेंडेंट, वंशज, ट्रैक्ट, प्रणाली, इंसोलेंस, बदतमीजी, डिसेक्रेटेड, अपवित्र, वेरिटेबल, सच्चा या सच्ची. तो ये मीनिंग्स आप लोग नोट करिएगा. इसके अलावा और भी मीनिंग हो सकते हैं, विसिनिटी, आसपास, परसिस्ट, दृढ़ रहना, ऑब्सेशन, जुनून. ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे. थैंक यू.
2: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी.

0: आशिया।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगी तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: शिवांशी, तुझे पता है मैं बड़े होके ना अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।
4: हाँ, रखूंगी तो मैं भी, पर बड़ी होके तुम क्या बनोगी?
3: मैं बड़े होके ना एक अच्छी सी है ना डॉक्टर

0: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
3: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
4: ओके, तो आप लोग को क्या लगता है बड़ा होना, मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, लेकिन बच्चे होने और बड़े होने में क्या अंतर होता है, क्या लगता है आप लोगों को?
1: जब हम बड़े होते हैं तब जिम्मेदारियां बढ़ती है, और जब हम छोटे होते हैं जिम्मेदारियां कम होती है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो माफ भी हो जाती है।
4: ओके,
3: दीदी जब छोटे होते हैं ना तब मतलब खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान रहता है, ऐसा नहीं रहता कि हाँ घर का काम करना ये करना, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना फिर ऐसे होता है हाँ अब खेलना कूदना कहाँ है, अब तो बस घर का काम ही है।
4: ओके,
0: दीदी जब छोटे होते तो ऐसा लगता है बड़े बंदों की लाइफ आसान होती होगी, और जब बड़े होते हैं तो लगता था कि छोटे बच्चे ही होते हैं।
4: नहीं, अभी तो अभी जैसे आप छोटे हो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। अच्छा, बड़े होना क्या होता है, क्या लगता है कितनी एज में बड़े हो जाते, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी आप बड़े हो गए?
0: 18+।
4: ओके, आप लोगों को क्या लगता है कब बड़े हो जाते हैं?
2: दीदी जब जॉब करने लगते हैं तो बड़े हो जाते हैं, 20।
4: ओके, जब जॉब करने लगते हैं। ओके, कब बड़े हो जाते हैं?
3: वैसे तो कभी बड़े होते नहीं अपने पेरेंट्स के लिए, पर मेरे को 25 लगता है।
4: ओके, आपको क्या लगता है?
1: मुझे 17+।
4: ओके, ठीक है, तो जब आप लोग 17, 18, 20, 25 के हो जाओगे तब कैसे होगे आप लोग, क्या क्या करोगे? ऐसी कोई चीजें हैं जो तब कर सकते हो और अभी नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है अब ज्यादा चीजें कर सकते हो और तब शायद नहीं कर पाओगे?
0: दीदी जब 18+ के हो जाते हैं तो हमारा गाड़ी का लाइसेंस बनता है, तो हम गाड़ी भी चला सकते हैं।
4: ये तो है,
1: और हम वोटिंग भी कर सकते हैं।
4: वोटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्या लगता है, बड़े होना ज्यादा अच्छा है कि बच्चे होना ज्यादा अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है?
1: बच्चे रहना ज्यादा अच्छा होता है।
4: ओके,
3: बच्चे रहना ही होता है, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तब अगर कोई गलती भी कर दे बड़ी छोटी तो माफी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बच्चे होते हैं ना फिर ही हम मतलब अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं उस टाइम कोई मिस्टेक कर दें या कोई बड़ी गलती कर दें तो माफ़ी मिल जाती है या फिर डांट पड़ जाती है थोड़ा। तो अगर जब हम बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद अगर वही गलती रिपीट करें तो उस बात की हमें बड़ी सज़ा मिलती है।
4: ओके, शिक्षा आपको क्या लगता है?
1: दीदी छोटे होना ही अच्छा है, क्योंकि छोटे में ना मम्मी पापा का प्यार मिलता है कितना, बड़े हो जाते हैं फिर तो बिजी हो जाते हैं, मम्मी पापा के लिए टाइम ही नहीं होता है किसी के पास।
4: ओके, वैलिड पॉइंट है, टाइम बचपन में ज्यादा मिलता है ना मम्मी पापा के। राघव आपको क्या लगता है, बड़े होना अच्छा है कि बच्चे होना अच्छा है?
0: बच्चा होना अच्छा है।
4: क्यों?
0: क्योंकि उधर हम खेल सकते हैं और खेलते हैं तो सबको खुशी भी मिलती है।
4: खेलने में मजा तो आता है ना। तो बड़े लोग नहीं खेलते क्या?
0: नहीं, वो कभी कभी खेलते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं खेलते।
3: वो बस कोई महीने में एक दिन खेलते हैं, कोई मतलब जिस दिन छुट्टी हो या फिर कहीं उनको कहीं बाहर काम ना हो फिर ही खेलते हैं, और उस टाइम भी अगर उनको कुछ और काम अर्जेंट आ गया तो वो भी नहीं खेलते।
1: और मतलब जब उनके ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के उस टाइम पे महीने में एक बार कभी दो बार जाते हैं, तो उस टाइम पे या फिर उस टाइम पे कोई अर्जेंट काम आता है तो
4: तब नहीं खेल पाते हैं।
1: नहीं,
4: शिक्षा आपको क्या लगता है, बड़ों के लिए खेल होते हैं या बच्चों के लिए ही होता है?
1: दीदी खेल तो कोई भी खेल सकते हैं, क्योंकि खेल है ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं। खेल तो बड़े लोग भी खेलते हैं, बस वो बिजी रहते हैं इस वजह से नहीं खेल पाते हैं।
4: बट खेलना अच्छा लगता है बड़े लोगों को, लगता है आपको?
1: हाँ, उनको खेलना अच्छा लगता है।
0: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना मॉल में खेलने के लिए जगह बना रखी थी तो सब बड़े है ना खेल रहे थे, फिर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन की लाइफ ही जी रहे हैं। मतलब वो बारी बार खेल ही रहे थे,
4: इतना मजा आ रहा था। ओके, अच्छा आप लोगों को लगता है बड़े होने के कुछ फायदे होते हैं जो सिर्फ बड़े होके ही मिलते हैं, अभी नहीं मिलते आप लोगों को, ऐसा लगता है? बोलो।
3: बड़े होके वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, गाड़ी का लाइसेंस बन जाता है, वोटर आई डी कार्ड बन जाता है, बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं जो बस हमें बड़े होने के बाद ही मिलते हैं, छोटे बच्चे में नहीं मिलते।
4: तो कुछ फायदा क्या है लेकिन इसका, फायदा क्या लगता है आपको?
3: फायदा वोटिंग का तो ये फायदा है कि हाँ हम अपनी खुद की जो हमारा जो लीडर है हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हमारा लीडर ही यही होगा। और
4: पर्सनल लाइफ में कोई फायदे लगते हैं आप लोगों को बड़े होने के?
1: दीदी बड़े होके हमारी खुद की एक आईडी बन जाती है, जैसे कि लोग जब हम छोटे होते हैं तो जानते हैं कि है ना उनकी बच्ची है, ऐसे बड़े होते हैं ना तो मतलब ऐसे

0: बड़े हो जाते हैं तो पहचानते खुद के नाम से पहचाने जाते हैं,
1: खुद के नाम से पहचाना जाता है। हाँ,
2: और अगर हम बड़े होकर कुछ बन भी जाते जैसे कोई IAS IPS, तो मतलब पहले जब हम अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को अब हमारे नाम से जाना जाता होगा,
1: कुछ बन जाते हैं।
2: हाँ, ताकि हाँ ये उनके पापा हैं, उनकी मम्मी हैं,
1: तो अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है।
2: हाँ, ऐसे लगता है कि उस क्या बताएं।
1: ओके,
3: अब बोल रहे थे
4: बड़े होने के बाद मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना मतलब जो भी है घर में थोड़ा बहुत अपना चलने लग जाता है। बचपन में ऐसे कुछ नहीं, ये जो मम्मी बोलती है वही करना है।
1: अपनी चलती नहीं है ना बचपन में?
4: नहीं।
1: और बड़े होके अपनी बात कह सकते हो?
4: बात कह सकते
1: हो, और जो करना है वो कर सकते हो।
4: हाँ।
1: ओके, राघव क्या लगता है आपको?
5: दीदी बड़े होना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर अपनी खुद की आईडी बनती है वो एक अच्छी चीज है।
1: वो एक अच्छी चीज है। ओके, और जैसा अभी हर्षिता ने भी बोला ना कि अपनी आप थोड़ी चलती है अपनी, अभी तो सिर्फ सुनना पड़ता है ना। बच्चों को तो बड़ों की बात माननी भी चाहिए क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं ना, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्या लगता है?
4: हाँ, ये भी ठीक है कि बड़े मतलब उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मतलब ज्यादा ये होता है सब, तो उनकी बात मानना भी अच्छी बात है।
1: लेकिन अपनी कोई बात अगर आपको सही लगती है तो उनके सामने बोलनी चाहिए या नहीं?
4: नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा करते थे।
1: गुस्सा करते हैं
4: या फिर मम्मी डांटेगी कैसे नहीं बोलना चाहिए था।
1: लेकिन अगर हम कायदे से प्यार से बोले तो हमें
4: फिर ऐसे प्यार से बोले, लड़ते हुए नहीं बोलेंगे तो फिर अच्छी बात है, फिर वो कभी मतलब कभी कभी ऐसे हाँ ये भी बराबर है ऐसे
1: बोल सकते हैं ना। तो मतलब बड़ों से हम अपनी बात थोड़ा प्यार से अलग से जाके बोल सकते, पर अपने दिल की बात तो बोलनी चाहिए।
4: ऐसा तो करना ही है,
1: करना है ना। बिल्कुल। और क्या लगता है आप लोगों को बड़े होने के फायदे और क्या होते हैं, पर्सनली बताओ, या नुकसान लगते हैं तो नुकसान भी बता सकते हो?
2: नहीं, नुकसान तो बस यही है कि अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं बना पाते। जैसे बचपन में जैसे हम मतलब उनके साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, फिर बड़े होके वो सब नहीं मिलता क्योंकि बड़े होके मतलब जॉब में लग जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, तब पूरे दिन तो अलग ही रहते हैं, मतलब अलग कहीं जॉब पे जा रहे तो उधर रहते हैं, रात को आते हैं तो लेट आते हैं तो पेरेंट्स खाना खा चुके होते हैं या फिर कई बार नहीं खाया होता, तो बस एक बाय चांस कोई एक दो टाइम ऐसा होगा जिससे एक साथ बैठ के खाएंगे। और छुट्टी के दिन भी कई ऐसे कई लोग होते हैं कि छुट्टी होती है तो हाँ चलो आज बाहर घूमना चल पड़ते, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते।
1: ऐसा हो जाता है। और कोई फायदा नुकसान बड़े होने का जो लगता है?
0: दीदी है ना, बड़े होने का नुकसान तो है कि देखो सबसे बड़ी बात तो जब छोटे थे तब पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे से रहते थे, उनके साथ खाते थे, बड़े हो जाते तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि साथ में बैठ के खा भी नहीं पाते हैं। अभी है ना जैसे कि मेरे पापा हैं, वो दादी से मिलने भी है ना बहुत टाइम निकालना पड़ता है उनको, या फिर है ना एक दिन वो है ना लेट चले जाएंगे अपनी दुकान पे काम के लिए। कभी कभी ऐसा दिन होता है रात को वो बहुत लेट सोने के जगह दादी से मिलने चले जाते हैं क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं उनसे, इतने बिजी रहते हैं। दादी इसीलिए पापा से कभी कभी काम की भी नहीं कहती है क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं कि वो फोन लगाती हैं तो भी बात नहीं हो पाती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बड़े होके अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते,
1: ये तो अच्छा नहीं लगता है। सही बात है, क्योंकि मम्मी पापा तो मम्मी पापा है चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना।
2: जब हम छोटे होते हैं तब हमारी पढ़ाई भी बहुत कम होती है और जब हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है। छोटे होने के टाइम चाहे कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े चलेगा, पास हो जाते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब पास से बस कुछ नहीं होता, पास हुए तो बस यही मानते कि फेल के बराबर ही माना जाता है अब तो। पहले पास तो मतलब टॉप पे था पहले के टाइम पे, अब पास मतलब फेल के बराबर है, रैंक आना चाहिए टॉप 10 में, तो अब पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है,
1: कंपटीशन बहुत आ जाता है
2: और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है बड़ों को फिर। जैसे मतलब UPSC का एग्जाम है उसमें कितना स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ फर्स्ट पे आना है सेकंड पे आना है, बट स्ट्रेस बहुत हो जाता है, फिर कई बार हेल्थ भी खराब हो जाती है स्ट्रेस के चक्कर में।
1: तो अभी नहीं लगता आप लोगों के पास स्ट्रेस है?
2: अभी तो बस स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है, फिर तो बढ़ता जाएगा अब तो आगे आगे चल के।
1: ओके,
4: दीदी मेरे एक मामा और मामी है वो दोनों जॉब करते, इतना स्ट्रेस है कि मेरी जो मामी की आंखें है ना वो पूरे ऐसे काजल जैसे लगाते हैं ना वैसे पूरे एकदम काली काली हो गए, उनको इतना स्ट्रेस होता है। और कभी कभी ना वो मेरे अंकल के से हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, इतना मतलब वो स्ट्रेस होता है वो जॉब का।
1: तो आपको ऐसा लगता है कि बड़े होके मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना?
4: हाँ, अगर कोई अपने को मतलब बड़े होके कुछ तो मतलब IAS बनना है या फिर DM बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैसे कुछ बनना है, तो फिर बहुत स्ट्रेस आ जाता है।
1: वो कंपटीशन भी है, स्ट्रेस भी लगता है।
4: और जैसे कि उसने कहा कि बड़े होने के बाद मतलब वो टेंशन बढ़ता ही चला जाता है, टेंशन से शुरू होता है तो टेंशन बढ़ता है।
1: तो कभी कम होता है आपको लगता है, बड़ों का टेंशन कम भी होता है कभी?
4: हाँ, कभी कभी ऐसे हो सकता है,
1: वरना बढ़ता है ज्यादातर,
4: तो बढ़ता ही है।
0: दीदी, फैमिली का टेंशन में मतलब जो जॉब वगैरह करता है उसका टेंशन तो तभी कम होता है जब अपनी फैमिली के साथ बैठे अपना स्ट्रेस वगैरह क्या उसको है ना, मतलब जो बात दिल में होती है वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं तब अच्छा लगता है। मेरे पापा को इतना स्ट्रेस रहता है कि उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें दादी के पास जाना ही पड़ेगा टाइम निकाल के, फिर वो वहाँ पे जाएंगे। जिस दिन उन्हें स्ट्रेस होगा ना वो हम लोगों से भी हंसते नहीं है सामने में, वो बस ऐसे सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ, पापा से बोलो पापा खाना खा लो, हाँ खा रहे। वो मतलब बिल्कुल खोए रहते हैं अपनी बात, अपने संकल्प चलते रहते हैं उनके। वो दादी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, फिर दादी के यहाँ से बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए आते हैं। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: मम्मी तो मम्मी है ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाए।
4: हाँ, जैसे कि उसने कहा कि अभी वो दादी के पास जाते हैं तो फिर उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, पर जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं तो फ्रीली जाना चाहिए उनको। अभी उतना सा टाइम देके जा रहे हो तो भी उनको टेंशन में भरा रहे हो, हाँ ऐसे था फिर क्या करूँ मैं अब। तो फिर पेरेंट्स के पास ऐसे जाना ही नहीं मिलता जिसमें अगर हम फ्रीली बात करें कि हाँ कैसे हो कैसे हो, वैसे नहीं, टेंशन में जा रहे हम लोग वैसे।
1: तो पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है?
4: हाँ, उनको भी थोड़ी टेंशन आ जाती है, मतलब वो पहले से
1: टेंशन
4: है उनको, मतलब वो बड़े थे उस टाइम पे भी टेंशन था, अभी उनके ये भी उनको टेंशन दे रहे हैं। पर अगर उनको ऐसे अच्छा लग रहा है कि मतलब वो उनको अच्छा फील करवा सकते हैं, फिर उनको अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, मतलब वो जैसे उसने कहा कि मुस्कुराते हुए आते फिर।
1: कितनी अच्छी बात है मुस्कुराना। तो अगर लेकिन फिर टेंशन तो कम करनी पड़ेगी, कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना?
4: वो तो है, कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा।
1: ठीक है, तो और तरीके ढूंढ सकते हैं मतलब।
4: और टेंशन कम करने के ऐसे नहीं कि एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर आपका एकदम मूड सैड है, एंग्री हो आप, तो आपको मतलब कभी कभी बुरा लगता है ना, कोई बात नहीं करता है, तो फिर उससे अच्छा आप मतलब मुस्कुराते रहो तो कोई बात करेगा तो फिर अपने आप वो टेंशन भूल ही जाओगे आप।
1: ओके, मुस्कुरा के बात करोगे तो टेंशन भूल जाओगे।
2: दीदी, जैसा कि अभी इन दोनों ने कहा, इसने मतलब शिक्षा ने कहा कि पेरेंट्स को बता के हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, फिर हर्षिता ने कहा कि पेरेंट्स को बताने से उनका टेंशन बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उनका टेंशन नहीं बढ़ता, बल्कि हमें एक सजेशन मिलता है कि हाँ उस टेंशन को कम कैसे करें। वो पेरेंट्स बात अपने दिल तक नहीं लेके जाते, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के अपने बच्चों को बताते हैं। थोड़ा टेंशन लेंगे तो ही सॉल्यूशन बताएंगे। अब जो उनके बेटे हैं उनको इतना टेंशन है, उनको कुछ और सूझ नहीं रहा है। अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो फ्री माइंडेड हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन मिलेगा तो उनको सॉल्यूशन आराम से मिलेगा। तो उनको टेंशन थोड़ा सा देना ही हो, मतलब उनके लिए टेंशन वो थोड़ा सा है, बट जो उनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है। वो सॉल्यूशन देंगे फिर वो।
1: राघव, आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता राघव को बड़ों के बारे में? कुछ बड़े होने के बारे में फायदा नुकसान कुछ तो लगता होगा बड़े होकर, ये करूंगा कभी नहीं सोचा? कभी नहीं, बस बच्चे होना ही अच्छा है। चलो वो भी अच्छी बात है।
0: दीदी, बड़े होके एक फायदा भी है कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर कर पाते हैं, जैसे वो हमारी करते थे वैसे हम भी उनके लिए कभी कुछ लेके आते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। फैमिली के लिए जैसे कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आओ, पापा आए घर पे आपके लिए कुछ लेके आए, ऐसे मतलब वो बड़े हो जाते हैं तो वो जब उनके है ना इनकम हो जाती है, वो जब कमाने लगते हैं तो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं सबको, तो उनको भी खुशी मिलती है अंदर से कि हमने कुछ तो अच्छा किया है,
1: कुछ करना है मतलब बड़े होके ना पेरेंट्स के लिए। हाँ। वो चीज अच्छी है।
4: हमारे ना जब फोर्थ का गैदरिंग था ना तब एक थीम थी, उसमें मेरी एंकरिंग थी, वो ना एक फर्स्ट की छोटी बच्ची थी और उसकी और मेरी एंकरिंग थी कि छोटे रहना ज्यादा अच्छा होता है, कि छोटापन कभी नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में तीन टाइम आते हैं, पहला है बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है जो बूढ़े होते हैं वो। तो और मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हम हमारे पेरेंट्स की केयर करते हैं जैसे वो हमारी केयर करते थे, तो वैसे ही कह सकते हैं।
1: ओके, दैट्स आल्सो नाइस। तो मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ऐसा कभी लगता है?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं लगता।
1: किसी को लगता है?
4: नहीं
2: दीदी, लगता नहीं है, बस बड़े होते जाते हैं। कब पूरा साल बीत जाता है पता ही लगता है, ऐसे लगता है कि अभी तो कल नया साल शुरू था और आज खत्म भी हो गया।
4: और दीदी मतलब बचपन में ऐसे लगता है जब हम फर्स्ट सेकंड में होते कि यार वो फोर्थ के बच्चे फिफ्थ के बच्चे कितनी शाइनिंग मारते हैं, हमको भी उनके जैसे बड़े होने, पर बड़े होने का ऐसा लगता है यार अभी बच्चे ही अच्छे थे, हम क्यों नहीं बच्चे है।
1: ओके, और शिक्षा को क्या लगता है, बड़े होने का मन करता है कि नहीं करता है?
0: दीदी मुझे नहीं होता बड़े होने का मन, क्योंकि मुझे तो है ना बस अपने मम्मी पापा के साथ रहना है। बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज या जॉब के लिए दूर जाना होता है उनसे, मुझे उनसे दूर नहीं जाना।
1: और
5: दीदी हमको ना मतलब टाइम तो निकालना ही चाहिए, जैसे कभी हम रात को लेट आते हैं और अगर वो उठे होते हैं तो हमको उनके पास जाना चाहिए, और अगर वो सो रहे होते हैं तो हमको सुबह जल्दी उठ के जितने बजे अपने पेरेंट्स उठते हैं हमको उनके पास जाके नमस्ते करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए।
1: बिल्कुल, उनका आशीर्वाद तो हमें हमेशा चाहिए ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। बिल्कुल सही बात है,
2: माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है।
1: हाँ, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सच में कितनी प्योर होती हैं हमारे लिए, कितनी पावरफुल होती हैं, उससे ज्यादा हमारा भला और कौन सोच सकता है।
4: मेरे जो मामा मामी उनको लिटरली टाइम ही नहीं मिलता अपने पेरेंट्स के पास जाने, वो मतलब दूर रहते तो है बारामती में, पर वो मतलब एक्चुअली बारामती में रहते हैं बचपन से, पर अभी वो जॉब करने के लिए बैंगलोर पुणे ऐसे मतलब कंटिन्यूसली उनकी ये होता है मतलब इधर से उधर उधर से इधर, फिर बॉस की सुनो वैसे लगते में तो ऐसे लगते कि बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना करना पड़ता है, वो नहीं लगता अपने को।
1: बहुत मेहनत होती है, बिल्कुल।
5: दीदी एक बार ना मैंने यही सुना था कि ना माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, तो मैं उनके पैरों के अंदर देखने लग गया था, फिर मैंने उनसे पूछा स्वर्ग नहीं दिख रहा मुझे।
1: तो मिला नहीं मिला फिर?
5: नहीं मिला।
1: जो क्या बोलते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि वो लिटरल नहीं होती है, है ना, कि वो देखने में नहीं पता चलता है लेकिन उनका मीनिंग भावना से जुड़ा होता है ना। तो अगर माता पिता का हम आशीर्वाद लेते हैं तो समझ लो हम स्वर्ग मतलब क्या, बहुत सुंदर दुनिया है ना।
5: हाँ।
1: तो उनके पास हमारी सबसे सुंदर दुनिया होती है, हमारा जिसमें भला ही भला होता है, हमारा जिसमें अच्छा ही अच्छा होता है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता।
5: दीदी हमको बड़े होके ना कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, मान लो कि हमको किसी ने नौकरी से निकाल दिया और हमको किसी से कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे, तो हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको नौकरी ढूंढती रहनी चाहिए।
1: हाँ, बड़े होके कभी कभी गलत काम करने लगते हैं ना हम, बच्चे होके तो सुन लेते हैं, किसी ने डांट दिया तो मान भी लेते हैं गलती।
5: दीदी कई कई बच्चे भी चोरी करते हैं।
1: बच्चे भी करते हैं मतलब?
5: दीदी हमारे स्कूल में एक बच्चा है वो भी चोरी करता था, तो हमारी एक म्यूजिक मैम है उन्होंने बोला कि पुलिस को बुलाया हमने, और पुलिस मतलब किसी काम से आई थी तो मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको सच्ची लगा कि पुलिस आ रही है तो वो जाके छुप गया कहीं।
1: तो बच्चों को डरा दिया जाता है ना कभी कभी, लेकिन बड़े नहीं समझते ऐसे, पर बड़ों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा आपने बताया ना कि जॉब ढूंढते रहना चाहिए लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
2: दीदी वो पुलिस तो काली का पेट्रोलिंग यूनिट आई थी।
1: अच्छा।
2: गर्ल्स से मिलने आई थी वो।
1: ओके, तो बच्चे को डरा दिया कि ताकि वो नहीं करे ना इसलिए।
2: बच्चे को डरा दिया पर वो मिलने गर्ल्स से आए थे।
4: तो दीदी वो मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी मतलब किसी पर्सन के पास मतलब सब कुछ है, एक भी कमी नहीं है उसकी जिंदगी में, पर अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं है ना तो उसके पास मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि वो बेगर ऐसे।
1: तो मतलब बड़े भी हो जाओ तो मम्मी पापा से मिलते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। और आप लोग जैसे बड़े हो जाओगे ना तो कभी कभी आप बिजी भी हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते। जैसा आपने बताया ना आपके पापा निकालते हैं टाइम, स्पेशली निकालते हैं, तो अगर निकालना चाहें क्यों नहीं निकाल सकते हैं, है ना? आप लोग भी देखते हो अपने घर पे निकालते हुए।
4: दीदी मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि उनका जो प्यार होता है ना वो ऐसे होता है कि जैसे हम मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ मतलब मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते, मुझे जैसे अच्छा लगता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलो अभी तो वक्त हो गया है गुड बाय करने का, कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा बड़ों को, मान लो आपको आपके बड़े वर्जन को फ्यूचर में जाके कुछ कहने का मौका मिले तो उनको क्या बोलोगे?
0: दीदी मैं तो ये कहूंगी, कहना चाहे कितना भी है ना बिजी हो जाओ, कितना भी कितने भी दूर चले जाओ, पर कभी मम्मी पापा को नहीं भूलना, अपने पेरेंट्स को हमेशा उनकी केयर करना है दूर रह के भी।
2: पेरेंट्स को तो भूलना ही नहीं है, पर अपने बचपने को भी कभी नहीं भूलना, अगर बचपना मर गया तो जीना ही बेकार है।
4: और मतलब जो मम्मी पापा का मतलब मम्मी पापा के पास हम जब भी जाते हैं, पेरेंट्स को दूर भी रहते हैं ना, तो एक बार दो बार कम से कम कॉल तो कर लेना चाहिए, वीडियो कॉल। एक मतलब एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में एक बार कर लो सिर्फ।
1: आप क्या बोलोगे अपने फ्यूचर सेल्फ को, बड़े राघव को क्या बोलोगे?
4: मुझे
1: अभी आपको मान लो यहाँ पे एक विंडो मिले जिसमें से जाओगे तो आपको बड़ा राघव मिलेगा जो 18+ होगा, 20 ईयर्स का होगा, तो उसको क्या बोलोगे?
5: मैं उसको बोलूंगा कि ना अपने बचपने को कभी मत भूलना, जैसे हमने बचपन में मस्ती की थी वो कभी मत भूलना, और ऐसे ही चलते रहना।
1: ऐसे ही चलते रहना, बस बचपन वाले राघव को छोड़ नहीं देना, है ना?
5: और मम्मी पापा से भी मिलते रहना।
1: मम्मी पापा को भूल नहीं जाना। ओके ठीक है।
2: कभी भी पैसों के पीछे भी नहीं भागना, पेरेंट्स के साथ ही रहना। अगर पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया तो पेरेंट्स दूर हो जाएंगे।
1: तो पेरेंट्स के पास रहना, पैसों के पीछे नहीं।
5: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि मतलब है ना एक बंदा था और वो पैसे कमा रहा था सिर्फ, और वो पैसे कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, मतलब उसने कभी पैसे खर्च ही नहीं किए।
1: तो इसीलिए मतलब उनको स्पेंड भी करना, क्या कहना चाहते हो आप फिर?
5: कि हमको अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट भी लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए।
1: तो फ्यूचर राघव अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट जरूर लेना है ना, और उनका केयर करना, भूलना नहीं है। ओके डन। तो चलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना तब फिर ये सुनिएगा, तब आपको याद आ जाएगा कि आप बचपन में अपने को क्या कहना चाहते थे। तो ये वाले जो एपिसोड है ना ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तब आपको सुनाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि बड़े कैसे होना है आपको।
2: जैसे कि अब हम अभी रेडियो में आते हैं वैसे हम आते रहेंगे, और 9 ईयर्स बाद हम यही ऑडियो सुनेंगे।
1: अच्छा 9 ईयर्स बाद या 10 ईयर्स बाद कैसे होगे आप, कैसे क्या वैल्यूज होंगे, क्या चीज होगी जिस पे आप फोकस करोगे, कैसे होगे, क्या लगता है क्या कर रहे होगे उस टाइम या कैसे होगे उस टाइम?
0: दीदी ये तो पता नहीं क्योंकि ये तो फिर फ्यूचर हो गया है।
1: फ्यूचर सोच के बताओ क्या लगता है फ्यूचर शिक्षा कैसी होगी?
2: दीदी ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी फिर तो।
1: आपको क्या लगता है ताकि आप बाद में जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा मुझे ऐसा लगता था।
0: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, मम्मी पापा के लिए टाइम जरूर निकाल पाऊंगी।
1: ओके कैसे होगे, क्या वैल्यूज होंगे आपके अंदर, कैसे रहते होगे, कहाँ रहते होगे, क्या करते होगे, कुछ लगता है?
2: दीदी मैं तो मेरा बचपना तो कभी नहीं भूलूंगी, जैसे अभी हंसती खेलती रहती हूँ वैसे भी बड़े होके भी रहूंगी और बड़े होके देश के लिए कुछ करूंगी।
1: ओके
5: दीदी जब भी हम दोनों फ्री आएंगे तो हम तो खेलने चले जाएंगे बैट और बॉल उठा के,
1: बड़े होके भी ना। तो ये फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस है भाई, बैट बॉल नहीं उठाना भूलना। हाँ
2: दीदी फुटबॉल उठाना भी नहीं भूलेंगे।
1: पक्का?
2: पक्का प्रॉमिस।
5: दीदी बास्केटबॉल भी नहीं और दीदी बैडमिंटन भी नहीं।
1: ओके मतलब बड़े होके गेम्स खेलना जरूरी है।
4: यस उसे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और अच्छा भी फील होगा।
1: गेम्स से
5: दीदी उससे हमारी फिटनेस भी बनी रहेगी।
1: बड़े होके फिट रहना है। ओके
4: ऐसे नहीं कि ज्यादा भी ओवरवेट हो गया या फिर एकदम पतले हो गए।
1: ओके ओके तो कर ली हमने ढेर सारी बातें और थोड़ा फ्यूचर में भी विजिट करके आ गए, तो मुझे लग रहा है जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो बिल्कुल अभी जैसे रहने वाले हैं और बहुत प्यार से रहने वाले हैं और बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं, पेरेंट्स को कभी नहीं भूलने वाले हैं और ढेर सारे गेम्स खेलने वाले हैं।
5: दीदी अभी जैसे नहीं रह सकते तब तो बैट और बॉल भी फ्यूचर वाले आ जाएंगे।
1: हाँ तो फ्यूचर वाले टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट वाले बैट बॉल से खेलना।
4: दीदी आपने हम सबसे तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, आपको बड़े होके कैसे लगता है और
6: क्या कैसे लगता है कि बचपन ज़्यादा अच्छा होता है फिर बड़े होना ज़्यादा अच्छा लगता
1: है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को लगता है ना सेम, बचपन ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बचपन में हम बहुत केयर फ्री होते हैं, बहुत ईजी होती है हमारी लाइफ कि हमें पढ़ना है खेलना है, यही दो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। लेकिन बड़े होके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम सिंपल कर सकते हैं बट कभी कभी हम भूल जाते हैं उसको सिंपल करना, है ना?
6: और कुछ अथॉरिटीज बताइए जिसको आप बड़े होकर के बाद आपको मिली है।
1: हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप डिसीजन ले सकते हो कि आप करियर में क्या करना चाहते हो, है ना, आप कैसे रहना चाहते हो, आप किस चीज़ को किस तरीके से आप रिलेशंस को अपने बनाना चाहते हो, निभाना चाहते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। और हाँ, जैसे आप लोगों ने बात की वोटिंग राइट्स और वो सब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, वो भी आपको एक बेनिफिट होता है।
2: दीदी आप बड़े ही हो तभी तो आप हमारे साथ बच्चों की दुनिया में बातें कर रहे हो।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, तो मुझे तो पीछे जाना पड़ेगा और आप लोगों को फ्यूचर में। हाँ। चलो अभी फिलहाल तो वक्त हो गया है गुड बाय कहने का दोस्तों को, क्योंकि अब भाई आगे के प्रोग्राम्स भी तो सुनाने हैं उन्हें, और हम मिलेंगे बच्चों की दुनिया की अगली कड़ी में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के शिष्य तथा शिष्याओं में सबसे पहले भगिनी निवेदिता का नाम मानस पटल पर उभरता है। अपने गुरु से आदर्श जीवन की प्रेरणा लेकर निवेदिता, जिनका नाम मार्गरेट नोबल था, भारत आई। पाश्चात्य संस्कृति के बंधन तोड़कर उन्होंने न केवल भारतीय शिक्षा और संस्कृति तथा भारतीय विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाया, बल्कि सनातन हिंदू धर्म और आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर भारत के कल्याण के लिए दीर्घ काल तक बहुत संघर्ष किया। नारी शिक्षा, सामाजिक विकास एवं साहित्य सेवा में उनका अवदान अपूर्व था।
1: स्वामी विवेकानंद जी की बात चले और भगिनी निवेदिता का प्रसंग ना आए, ये असंभव है। वे स्वामी जी की मानस पुत्री थीं। विदेश से वापस आने के बाद स्वामी जी के मन को नारी शिक्षा की बात सदा सताती रहती, पर उन्हें कोई उपयुक्त रास्ता नहीं दिख रहा था। निवेदिता ने भारत आकर स्वामी जी के मन का वह बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था और स्वामी जी ने निश्चिंत होकर उन्हें यह भार सौंप दिया था।
0: स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर एक कविता लिखी थी, अ बेनेडिक्शन, उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। माँ का हृदय वीर की दृढ़ता, मलय पवन की मधुरता, ज्वलंत आर्यवेदी की पावन शक्ति और मोहकता, ये वैभव सब अन्य और जो मन के स्वप्न बने हों, तुम्हें सहज जी आज प्राप्य हो, निश्चल भावना हो, भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुम में वाणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी, मित्र सेविका और बनो तुम मंगलमय कल्याणी।
1: परवर्ती काल में इस कविता का संपूर्ण भाव निवेदिता के जीवन रूप में धरा था। निवेदिता भारत की आजादी के लिए संग्राम करने वाले क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थीं। भारत के लिए प्रेम उनके हर कार्य में झलकता था। उनका पूर्ण समर्पित जीवन भारतवासियों के लिए वरदान स्वरूप था।
0: स्वामी विवेकानंद एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनके साथ जितने भी लोगों का परिचय हुआ, वे सभी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे और सभी ने अपनी अपनी दृष्टि और समझ से विवेकानंद को समझकर उनके बारे में लिखा था। किसी ने उन्हें सन्यासी कहा, किसी ने हिंदू कहा, किसी ने वेदांती, किसी ने समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा गुरु, इतिहासकार और दार्शनिक कहा, पर वे थे क्या?
1: सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत करीब से देखा था। आज हम विवेकानंद को सिस्टर निवेदिता की आंखों से देखेंगे।
0: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के मृत्यु के कुछ दिनों बाद चेन्नई से प्रकाशित द हिंदू अखबार में लिखा था,
2: संसार जिन्हें विवेकानंद के नाम से जानता था, आज उनकी याद दिलाने को मुट्ठी भर राख ही बची है। 5 वर्षों से जो ज्योति शिखा गंगा के तट पर एकांत में जल रही थी, आज वो बुझ चुकी है। जो प्रचंड ध्वनि विश्व के राष्ट्रों में गूंजती रही थी, वो आज मृत्यु की निर्वरता में लीन हो गई है। इस महान शक्तिधर आत्मा के लिए जीवन बहुधा आंधी और दुख कष्टों को लेकर आया, पर मृत्यु आई शांति लेकर। अमावस्या के दिन सांध्य आरती के पश्चात मृत्यु का वरदान चुपचाप पृथ्वी पर उतरा और थकी पीड़ित देह को ले गया और आत्मा चिरकाल के लिए ब्रह्म में एकाकार हो गई।
1: निवेदिता ने हमें बताया कि किस तरह स्वामी जी अंत तक मनुष्य निर्माण का व्रत लेकर शिष्यों को शिक्षा देते थे।
2: जब उनकी सफलता के बाग के पहले फूल भी मुरझा नहीं पाए थे, तभी वे चले गए। जब उनके कानों में नई और महत्तर पुकारें गूंज रही थी, तभी वे चले गए। उनकी बीमारी के ये कुछ वर्ष उनके उस सुंदर निवास स्थल पर पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बीच चुपचाप बीत गए, जहां वे सारा दिखावा छोड़कर अपने नाम पर चमकती विपुल यशो राशि की उपेक्षा कर अपने शिष्यों को शिक्षा देने में तल्लीन थे। मनुष्य निर्माण ही उनकी सृष्टि में समस्त कर्तव्य कर्मों का सार संक्षेप था और वे दिन पर दिन उत्साह पूर्वक बड़े परिश्रम के साथ इस मनुष्य निर्माण के कार्य में लगे रहे। कभी गुरु की तरह, कभी पिता की तरह और कभी स्कूल के शिक्षक की तरह। यहां तक कि जिस दिन वे हमें सदा के लिए छोड़ गए, उस दिन दोपहर को भी वे 3 घंटों तक संस्कृत व्याकरण का पाठ पढ़ाते रहे। इस व्यक्ति के लिए बाहरी सफलता और नेतृत्व मानो कुछ भी न थे। पश्चिमी देशों में अपने प्रवास तथा निवास के दौरान स्वामी जी की कई ऐसे बड़े बड़े धनिकों और ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों से मित्रता हुई जो स्वामी जी को अपने बीच रख पाना अपना अहोभाग्य समझते थे। पर अपनी सारी चमक दमक और ऐश्वर्य के बावजूद पश्चिमी जगत स्वामी जी के मन में अपने प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न न कर सका। उन्हें तो विदेशियों के सारे वैभव की तुलना में अपना गैरिक वस्त्र, कोलकाता की गलियां और अपने देश भाइयों की कमियां तथा कमजोरियां कहीं अधिक प्रिय थी। इसलिए स्वामी जी के पूर्व की ओर नित्य बढ़ते हुए चरण को पश्चिम किसी भी प्रकार रोक नहीं सका था।
0: निवेदिता से हमें मालूम पड़ता है कि स्वामी जी को पश्चिमी देशों में क्या विपुल संवर्धना मिली थी और लोग कितने प्रभावित हुए थे।
2: पश्चिम ने उनमें जाने ऐसा क्या देखा और सुना जिसके कारण वहां के कितने ही लोगों ने संसार के एक सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्य के रूप में उनकी जय जयकार की और उनके नाम को अपने हृदय में संजो कर रखा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का दावा नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी कहानी भी नहीं कही। यहां तक कि एक व्यक्ति जो उन्हें लंबे अरसे से जानता था और उनका विश्वास पात्र था, ये न जान सका था कि स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के बीच कितना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने अपरिचितों के बीच ईश्वर या अपने गुरु पर आधारित कोई विशेष मतवाद नहीं रखा था। संप्रदाय प्रचलित करने का प्रयत्न भी नहीं किया। यद्यपि उन्होंने उपनिषदों के अतिरिक्त और कहीं से भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए तथा वेदांत को छोड़कर और किसी भी बात की शिक्षा नहीं दी। यद्यपि वे भारतीय ग्रहों तथा संतों की विराट धार्मिक परंपरा के सतत साक्षी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे आचार्य की बातें सुनी जो सत्य से भय नहीं खाते थे।
1: अलग अलग लोगों के लिए स्वामी जी के अलग अलग व्यक्तित्व थे। निवेदिता कहती हैं,
2: क्या हम शिव विषय वो भजन नहीं जानते जिसमें कहा गया है, जब शिव रास्ते से चलते हैं तो कोई उन्हें पागल कहता है, कोई कहता है कि वे पिशाच हैं, और कोई कुछ। अरे तुम नहीं जानते, वे तो साक्षात परमेश्वर हैं। इस प्रकार भारत इस बात को जानता है कि प्रत्येक महान आत्मा परस्पर विपरीत आदर्शों की मिलन भूमि और समन्वय स्थल होता है। अपने शिष्यों के लिए विवेकानंद सदा सर्वदा सन्यासी श्रेष्ठ ही रहेंगे। उनसे हमें प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं में ज्वलंत त्याग का भाव भी प्रमुख था।

0: मैं भी अपने गुरुदेव की भांति एक सच्चे सन्यासी के समान मरना चाहता हूँ। कामिनी कांचन कीर्ति किसी का स्प्रहा ना रहे, और इन तीनों में यश की चाह तो सबसे घातक है।
1: निवेदिता विवेकानंद की देशभक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुई थी।
2: इस प्रकार जहाँ स्वामी जी एक और धर्म उद्दात अभिव्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर वे सबसे महान देशभक्तों में से थे। वे उस समय जन्मे जब राष्ट्रीय विखंडन प्रारंभ हो चुका था, पर वे नवीनता से भयभीत नहीं थे। वे उस समय हुए जब लोग अपनी विरासत को त्याग रहे थे, परंतु वे पुरातन के अनन्य उपासक बने रहे। उनमें राष्ट्र के लक्ष्य ने परिपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र का लक्ष्य कहता है कि राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक नवीन लहर का प्रारंभ सदैव धर्माचार्य द्वारा होना चाहिए।
1: स्वामी जी को जाति भेद और रंग भेद से घृणा थी। निवेदिता ने भी इसकी पुष्टि की है।
2: जब वे अमेरिका के दक्षिणो प्रांत में भ्रमण कर रहे थे, तब कई बार उन्हें काला आदमी समझकर घर में घुसने नहीं दिया जाता था। पर जब लोगों को मालूम पड़ता कि ये भारतीय हैं और विश्व विख्यात विवेकानंद हैं, तब वहां के उच्चतम परिवारों में उनका जोरदार स्वागत सत्कार होता, और इस प्रकार वे लोग अपनी भूल का प्रायश्चित करने से नहीं चूकते थे। पर स्वामी जी कभी अपने मुख से ऐसा नहीं कहते थे कि मैं निग्रो नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमुक अमुक हूं। जब लोगों ने उनसे उनके इस प्रकार मौन रखने का कारण पूछा, तो उन्होंने केवल इतना कहा,
0: यदि मैं अपना परिचय दे देता तो क्या वो अपने नीग्रो भाइयों को अस्वीकार करना न होता।
2: उनके लिए प्रत्येक जाति अपनी महानता थी, जिसके प्रकार में उस जाति का जीवन स्पंदित होता था। यूरोप से यदि तुर्क को निकाल दे तो यूरोप कहां रहेगा। मिश्र देश अपने धरती पुत्रों की उन्नति पर ही खड़ा है। इंग्लैंड ने आत्म सम्मान के साथ आज्ञा पालन के रहस्य को जान लिया है। और जहां तक देशभक्ति का सवाल है, जापानियों के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती।
3: निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत पास से देखा था। वे उनके यूरोप में दिए गए लगभग हर भाषण में उपस्थित रहती थी, इसीलिए स्वामी जी के भाषणों को बहुत अच्छी तरह परिभाषित कर सकती थी।
2: वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बल के अतिरिक्त और किसी बात पर चर्चा नहीं की। अपने ऊपर किसी के अधिकार की कल्पना तक उन्हें स्वीकार नहीं थी। और जब कभी वे किसी विदेशी से मिले, एक स्वामी की तरह अधिकार पूर्ण ढंग से मिले। उनसे किसी अंग्रेज ने कहा था, स्वामी जी की महान प्रतिभा उनकी गरिमा में है, जो किसी भी दृष्टि से सम्राटों की गरिमा से कम नहीं है। स्वामी जी ने एक महान तथ्य को जान लिया था कि पूर्व को पश्चिम के पास जाना होगा, परंतु एक चापलूस या दास की तरह नहीं, वरन गुरु की तरह, शिक्षक की तरह। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत श्रेष्ठताओं की पताका को नीचे नहीं झुकने दिया। एक बार उन्होंने कहा था, हाँ हाँ, यूरोप के लोग धर्म में हमारा नेतृत्व नहीं करें।
0: मैंने सदैव बल की ही बात कही है, कभी प्रतिशोध की नहीं। क्या कभी हम सागर की उस बूंद से बदला लेने की बात सोचते हैं जो हवा से उछलकर हमसे टकरा जाती है। परंतु एक मच्छर के लिए तो वही बहुत बड़ी बात है।
2: तथाकथित सुसंस्कृत कोई विदेशी यदि कभी भारत की किसी बात को बर्बरता या असभ्यतापूर्ण कह देता, तो स्वामी जी उस बात से बिना इनकार किए या उसे बिना किसी प्रकार घटाए, एकदम अपनी प्रचंड शक्ति को उस विशेष तथ्य की पुष्टि करने में केंद्रित कर देते, और वो बेचारा आलोचक अपने ही तर्कों में हिंडोले में आगे पीछे झूलने लगता था। इस संदर्भ में एक घटना याद आती है। स्वामी जी जहाज से जा रहे थे। एक अंग्रेज ने पुराणों के विषय में कोई व्यंगात्मक प्रश्न पूछ दिया। स्वामी जी के उत्तर से वो बेचारा अंग्रेज ऐसा हक्का पक्का रह गया कि देखते ही बनता था। उस दिन वहां जो भी उपस्थित था, उस दृश्य को कभी भूल नहीं सकता। स्वामी जी ने ईसाई धर्म ग्रंथों के स्तर पर हिंदू पुराणों की केवल तुलना ही नहीं की, बल्कि वेदों और उपनिषदों को ऐसी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जहां तक किसी प्रतिद्वंदी की पहुंच नहीं थी। स्वामी जी ऐसे प्रसंगों पर मित्रता का ख्याल नहीं रखते थे। जहां राष्ट्र के स्वाभिमान और रक्षा का प्रश्न आता है, वे आलोचक पर बेहिचक टूट पड़ते थे, चाहे वो उनका परम मित्र ही क्यों ना हो।
3: निवेदिता ने हमें बताया कि विवेकानंद सिर्फ हिंदू धर्म या वेदांत के ही प्रकांड पंडित नहीं थे, उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में भी अगाध ज्ञान हासिल था।
2: स्वामी जी स्वयं हिंदू धर्म के व्याख्याता थे, पर यदि वे देखते कि कई भिन्न धर्मावलंबी भारतीय श्रोताओं के सम्मुख अपने धर्म को प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वे बैठ जाते और उसके लिए व्याख्यान लिख देते। जितना अच्छा वो स्वयं अपने धर्म पर ना लिख पाता, उससे कई अधिक अच्छा स्वामी जी अपने मित्रों के लिए उसके धर्म पर लिख देते थे। वे अपने विदेशी शिष्यों को हाथों से भोजन करना सिखाते थे तथा हिंदू जीवन की सामान्य कार्यों की शिक्षा देने में बड़ा परिश्रम किया करते थे। वे कहते थे, ध्यान रखो, यदि तुम भारत को प्यार करना चाहते हो तो उसका जो रूप है उसी रूप में उसे प्यार करो, ना कि उस रूप में जैसा तुम देखना चाहोगे। स्वामी जी की सीधी साधी जीवन यात्रा के कारण स्वामी जी जहां कहीं भी गए वहां की सर्वोत्तम चीजें उन्हें मिली, पर उनका असर स्वामी जी पर नहीं हुआ। वे पुरानी परंपरा के वही सरल हिंदू बने रहे। उन्हें भारत के इस सादगीपूर्ण जीवन धारा पर इतना गर्व था कि उन्हें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। अपने महाप्रयाण के दो दिन पूर्व ही उन्होंने कहा था, रामकृष्ण के बाद मैं विद्यासागर का अनुगामी हूँ, और उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर विषयक पर प्रचलित कहानी सुनाई कि जब विद्यासागर आमंत्रित होकर धोती पहने, चद्दर ओढ़े और खड़ाऊ की खटर पटर ध्वनि के साथ वायसराय के कौंसिल चैम्बर में पहुंचे, तो उपस्थित लोगों द्वारा आपत्ति उठाई गई। इस पर विद्यासागर ने कहा था, यदि आप मुझे नहीं चाहते थे तो फिर बुलाया क्यों?
1: जाति प्रथा के बारे में पूछने पर निवेदिता ने कहा था,
2: स्वामी जी ने जाति प्रथा का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने भारतीय एकता की कुंजी जाति की पृथकता में पाई। मुस्लिम इस राष्ट्र की एक जाति थे, ईसाई दूसरी, पारसी तीसरी, आदि आदि। ये ठीक है कि जाति में विश्वास ना करना ही इनका जातिगत वैशिष्ट था, पर यह बात तो ब्रह्म समाज और भारत के अन्य आधुनिक संप्रदायों पर भी लागू होती थी। इन सब के पीछे समान रूप से वही धरित्री थी, पूर्वजों की सभ्यता की वही सुंदर पुरातन परंपरा थी और वही जबरदस्त आवश्यकताएं थी। और स्वामी जी का विचार था कि ये सर्वमान्य तथ्य मिलकर देश की इन जातियों में अंततोगत्वा समान बातों के प्रति प्रेम और घृणा के भाव अनिवार्य रूप से भर देंगे।
3: विवेकानंद परिव्राजक थे, उन्होंने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया था और हर प्रांत की खासियत को अपने अंदर ढाल लिया था, सभी प्रांतों की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया था। तभी तो निवेदिता कहती हैं,
2: स्वामी जी को भारत के हर संप्रदाय, हर वर्ग की आशाओं और आदर्शों का ही ज्ञान नहीं था, बल्कि उनके हृदय में उन सब की अतीत स्मृतियां भी सुरक्षित थी। स्वामी जी कलकत्ता के एक हिंदू परिवार में जन्मे थे और अब गंगा के तीर पर निवास कर रहे थे, पर उनके भावों के उद्वेलन को देखने से ऐसा लगता था कि अब वे पंजाब में जन्मे हैं। कभी ऐसा लगता था कि हिमालय की सुंदर वादियों में उनका जन्म हुआ है, और कभी ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामी जी ने राजपुताना में अथवा कहीं और जन्म ग्रहण किया है। उनके अधरों पर कभी गुरु नानक के गीत होते थे तो कभी मीराबाई के, और कभी वे तानसेन के गीतों में विभोर हो जाते थे। वे कभी पृथ्वीराज और दिल्ली की कहानियां सुनाते थे, कभी चित्तौड़ और राणा प्रताप की, कभी शिव और उमा की कथाएं सुनाते थे, कभी राधा और कृष्ण की, कभी सीता और राम की गाथाएं कहते थे, तो कभी बुद्ध की। जब स्वामी जी स्वयं अभिनय करते थे तो पूरे अभिनय में अद्भुत सजीवता आ जाती थी, अतीत मानो वर्तमान में उतर आता। उनका समूचा मन प्राण देश का मानो ज्वलंत महाकाव्य था, और मातृभूमि के नाम सुनने मात्र से ही उनका सारा व्यक्तित्व गूढ़ भावों से भर उठता था।
1: निवेदिता के अगले कथन से हमें स्वामी जी की मानवता के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा,
2: बेलूर मठ में स्वामी जी के पास विश्व के सभी भागों के दर्शक और चिट्ठी का तांता लगा रहता था। भारत की ऊपरी सतह पर आज भले ही मौन का साम्राज्य दिखे, पर उसके हृदय के अंतरतम प्रदेश में स्वामी जी सदैव विद्यमान रहे। वे कभी भुलाए नहीं जा सकते, कोई उनकी उपेक्षा करने की इच्छा या साहस नहीं कर सकता। ऐसी कोई आशा की वाणी नहीं थी जो स्वामी जी के कानों में ना गई हो, कोई ऐसी पीड़ा की कराहा नहीं थी जिसे स्वामी जी ने नहीं जाना हो, और उनका सारा जीवन सांत्वना देने और ऊपर उठाने में लगा रहा। इस प्रकार जैसे कि धर्म के नेताओं के साथ हर दम होता रहा, स्वामी जी ने जिस भारत को देखा वो अन्य दूसरी आंखों में दिखने वाले चित्र से सर्वथा भिन्न था। कारण यह था कि स्वामी जी के हाथों में उन सारे तथ्यों के सूत्र विद्यमान थे जो मौलिक थे, प्राणप्रद थे तथा देश की प्रकृति में दृढ़ मूल थे। उन्होंने जीवन के छिपे हुए स्रोतों को जान लिया था। वे जान चुके थे कि किस शब्द से करोड़ों जनमानस को स्पर्श करना है, और अपनी इस समस्त जानकारी के फल स्वरूप उन्होंने एक बात निश्चित रूप से देखी थी, और वो थी आशा की स्पष्ट और बलवती किरण।
3: निवेदिता ने ही हमें बताया कि एक स्नेही माता की तरह स्वामी जी भारत को निहारते थे, भारत की कमजोरियों को वे पहचानते थे और इस बात के लिए आशावान थे कि जल्द ही भारत अपनी गिरी हुई अवस्था से निकलकर पुनः लुप्त गौरव को प्राप्त कर लेगा।
2: दूसरे लोग कुछ भी कहें, कैसी भी भूल करें, पर स्वामी जी के लिए भारत अभी भी शिशु था और उनके सपनों का भारत भविष्य की गोद में था। दुख और कष्ट में से आज भारत के क्षितिज पर जो नवीन भावोन्मेष हुआ है वो स्वामी जी की दृष्टि में एक लंबे विकास कर्म का केवल पहला चरण था। उनके मतानुसार देश की आशा उनमें निहित थी, किसी विदेशी में नहीं। ये सत्य है कि उनके विशाल हृदय में विदेशियों की आवश्यकता का भी स्थान था, और इस प्रकार उन्होंने विश्व के समक्ष सार्वभौमिकता का आदर्श रखा। पर उन्होंने किसी से भी भीख नहीं मांगी, किसी से सहायता की आशा नहीं की, उन्होंने बाहर के किसी भी व्यक्ति या देश पर भरोसा नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के लिए जो कुछ करना है वो करने वालों के कर्तव्य से संपन्न होगा, याचना करने वालों की भिक्षा से नहीं। ना वे बाहर से कोई आशा रखते थे, ना उन्हें बाहर का कोई भय था। उनके संन्यास लेने का तात्पर्य था भारत की यथार्थ आत्मा का पुनरुद्घोष, राष्ट्र की महती जीवन धारा में नवीन आत्मा विश्वास और प्राण शक्ति का संचार, जिससे वो महासागर के लिए अपना रास्ता स्वयं प्रशस्त कर लें। उनके लिए संन्यास का अर्थ था महत्तर सेवा के लिए लघुता का त्याग। उनके लिए भारत हिंदुत्व का, आर्यत्व का, एशियात्व का पर्याय था। भारत के तरुण आधुनिक वैभव और विलासिता में अपने प्रयोग भले ही करें, उन्हें इसका पूरा अधिकार है, पर अंत में उन्हें लौटना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आत्मा की अतः गहराइयां नीति की हैं, संयम और तपस्या की हैं, अध्यात्म की है। वो जाति जो गंगा के तीर पर मृत्यु का आलिंगन करने को आतुर रहती है, अधिक समय तक केवल यांत्रिक शक्ति की चकाचौंध में पड़कर विपदगामी नहीं बनी रह सकती।
1: और अंत में आशा की वाणी से स्वामी जी ने भारत को संदेश दिया था।
2: बुद्ध ने त्याग का उपदेश दिया था, और दो दशकों में भारत एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब एक बार फिर से उसकी नसों में वही महान स्पंदन दौड़ जाए, उसकी इस नव प्रभुता शक्ति के सम्मुख पृथ्वी की कोई ताकत टिक ना सकेगी। पर हाँ, वो एक बात जान ले कि अपने स्वयं के जीवन में ही उसे जीवन मिलेगा, किसी के अनुकरण में नहीं। उसे अपने ही सम्यक अतीत और परिवेशों से प्रेरणा प्राप्त होगी, किसी विदेशी से नहीं। जो अपने को दुर्बल समझता है वो दुर्बल है ही, जो अपने को सामर्थ्यवान समझता है वो अजय बन चुका है। इसीलिए अपने देश के लिए, अपने प्रत्येक देशवासी के लिए विवेकानंद की केवल एक ही बात है, बारंबार घोषित किया हुआ एक ही संदेश है, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य, वरान्नी बोधत, जागो, उठो, लगे रहो, लक्ष्य की प्राप्ति तक।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

होंगे। और आज 23 मई तारीख है और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और बात करें आज रवि शास्त्री, बिपिन चंद्र, भालचंद्र नेमाड़े, ONV कुरूप और नितिन गडकरी, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही हग कदूरी बीरेश लिंगम, रमाबाई अंबेडकर, सरदार हुकुम सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण शास्त्री जोशी, अजय कुमार मुखर्जी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और मंगल कामनाओं के साथ, जैसे कि हफ्ते की शुरुआत है, तो ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए एक सुंदर विचार आपके लिए। आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना, है ना। तो यहाँ तो है घंटों की बात बताई गई है, अगर आप आज 6 घंटे पढ़ लेते हो तो कल 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑर्डर देने की जरूरत होती है, है ना। तो इसीलिए इस गहरी बात को, इस सुंदर विचार को आत्मसात करें और आगे बढ़े, ऐसी शुभ आशा के साथ ढेरों खुशियां आपके लिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। अभी आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। और 27 मई की बातें हो रही है और रवि शास्त्री जो बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं रवि शास्त्री, इनके बारे में बात करते हैं। भारत के बहुत ही पॉपुलर पूर्व क्रिकेट और वर्तमान समय में उमदा कमेंटेटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। बतौर क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 1981 से 1992 तक टेस्ट क्रिकेट और एक देशीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। रवि शास्त्री ने अपने क्रिकेट करियर में धीमी गति के गेंदबाज और बल्लेबाज की भूमिका निभाई है, इस कारण इन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता था। रवि शास्त्री 15 जुलाई 2017 से भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर है। इससे पहले कोच अनिल कुंबले थे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। रवि शास्त्री के माता पिता कर्नाटक में रहने वाले थे पर इनका जन्म मुंबई में 27 मई 1962 को हुआ। इनके पिता डॉक्टर थे। घर में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का कहा जाता था। जब रवि शास्त्री बहुत छोटे थे तब वे गिल्ली डंडा, कांचे, फुटबॉल, हॉकी खेलने में ही ज़्यादा रुचि रखते थे। दोस्तों के साथ बाहर खेलकूद में ही ज़्यादा समय देते थे और बचपन में रवि शास्त्री के पास खेलने के लिए खेलने का ज़्यादातर सामान था और किसी भी खेल में आउट हो जाने पर वे खेल बंद कर देते थे तो सारे दोस्त उनकी बात मानकर उन्हें एक मौका और दे देते थे। क्रिकेट में भी जब वे आउट हो जाते थे तो बैट लेकर भाग जाते थे, फिर उनके दोस्त उन्हें घर से मना कर लाते कि अच्छा चलो एक बार बल्लेबाजी और कर लेना। ये बातें तब की है जब वे बहुत छोटे थे। फिर बड़ा होने पर उन्हें मालूम हुआ कि हार जीत खेल का एक हिस्सा है, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खेल के मर्म को समझा और खेल दोस्ती के लिए खेला जाता है। जब ये उन्हें समझ में आ गया तो फिर वो दिल से खेलने लगे। हार और जीत का पड़ाव उनके दिमाग से निकल गया। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ। आप भी इसी तरह अपने जीवन में खेलना चाहते हैं तो खेल के हार और जीत के प्रदर्शन को हटा दीजिए और जीवन को सुंदर तरीके से देखिए। सुख और दुख भी जीवन के दो पहलू हैं। सुख है तो ठीक है, दुख है तो ठीक है, वो जीवन के एक अंग है ना। दोनों जगह पे आपको समान भाव से रहना है तो आपका जीवन बेहतर होगा। अदरवाइज अगर सुख में आप खुश ज़्यादा हो रहे हैं, दुख में ज़्यादा दुखी हो रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओए रुक, ओए रुक रुक, कोई सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आइए विशेष बात कर रहे थे हम लोग रवि शास्त्री के बारे में। रवि शास्त्री स्कूल में अपनी क्लास में सबसे पीछे के बेंच पर बैठा करते थे। इसका एक कारण यही था, आखिरी बेंच के पास की खिड़की, इस खिड़की से वे क्लास से बाहर क्या चल रहा है ये देख पाते थे, और ज़रूरत लगने पर चॉकलेट की पन्नी या फलों के छिलके खिड़की से बाहर भी फेंक सकते थे। वे क्लास में बैठे बैठे चॉकलेट और दूसरी चीज़ें भी खाते थे। जब वे स्कूल में थे तो खाने के बहुत सी चीज़ें अपने दोस्तों के लिए भी ले जाते थे, ताकि वे अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ बाँट सकें। जब रवि शास्त्री 9वीं में थे तब स्कूल की क्रिकेट टीम बनी, और उनके कोच देसाई सर ने उन्हें क्रिकेट सीखने में खूब मदद की। उनकी वजह से वे क्रिकेटर बन गए। उनकी स्कूल की टीम ने ही चैंपियनशिप भी जीती थी, और वो पहली ट्रॉफी थी जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित किया था। और ये ट्रॉफी जीतने के बाद ही वे तय कर पाते थे कि अब उन्हें क्या एक अच्छा क्रिकेटर बनना है या देश के लिए क्रिकेट खेलनी है। उनका ये निर्णय आगे चलकर सही साबित हुआ और वो देश के लिए क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हुए। क्रिकेट से संन्यास के बाद भी उन्हें इस खेल में इतना लगाव हो गया कि वे कॉमेंट्री में भी खूब आनंद लेते हैं। तो आइए उनकी कुछ और बातें आपसे शेयर करूंगा। रवि शास्त्री ने क्रिकेट से पहले बहुत से खेलों में हाथ आजमाया। जब वे बड़े हो रहे थे तब वे टेनिस भी खेलते थे। खेलों के प्रति रुचि जागने के बाद उनका स्कूल डॉन बॉस्को का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि यहाँ उन्हें तरह तरह के खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। गिल्ली डंडा और टेनिस से होते हुए सबसे आखिर में उनकी गाड़ी क्रिकेट पर आकर रुकी। तो ये थी कुछ खास बातें रवि शास्त्री के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अरे नन नन नन नन ना,
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
2: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
3: कुम भाई कुम ताला तूनी जोदर मस्टर सोसर माडी रे लकम झमा झम पा पिसले आलू दम आलू दम आलू दम ड्रिंग पट्टा पट्टा ड्रिंग डी पक्को
1: हे जो

0: तेरा
1: रजम रजम रजम
2: पढ़ना सीखा लिखना सीखा जीना सीखा रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला
3: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है मन से आरंभ होता है और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी बॉर्नविटा भी खा ये भी कर वो भी कर है ना उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए और मन का भोजन क्या है विचार मन का भोजन है विचार बहुत पुराने विचार बासी विचार अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है देखिए सोचने की बात है आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत
4: नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और विपिन चंद्र जी के बारे में बात करें तो आज विशेष प्रख्यात इतिहासकार और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष थे प्रोफेसर विपिन चंद्र भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा के मार्क्सवादी चिंतक धारा के इतिहासकार थे तो ऐसे विशेष विपिन चंद्र के बारे में जानते हैं और इनका जन्म आज के दिन 2 मई 1928 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में इनका जन्म हुआ और विपिन चंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में अध्यक्ष रह चुके थे और उनकी गिनती देश के छोटे के इतिहासकारों में हुआ करती थी बात करें उस समय की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जब वो रिटायर हुए उसके बाद वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष भी बनाए गए और फिर 2012 तक इस पद पर रहे वो इन दिनों शहीद आजम भगत सिंह पर जीवनी लिख रहे थे विपिन चंद्र ने लाहौर और दिल्ली में भी पढ़ाई पूरी की और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक रह चुके थे और 1985 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए इसके अलावा वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य भी बने और इतिहास पर करीब 20 पुस्तकें लिखी है जिनमें आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद सांप्रदायिक भारतीय वामपंथ पर उनकी पुस्तकें चर्चित रही जयप्रकाश नारायण और अल्पकाल पर किताबें लिखी थी उन्होंने आपत्तकाल पर इमरजेंसी पर तो कुछ पुस्तकों का नाम इस प्रकार है आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इस तरह के प्रमुख पुस्तकें उन्होंने लिखी और योगदान की बात करें तो महान इतिहासकार विपिन चंद्र का आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान था जिन्होंने इतिहास और राष्ट्रवाद को एक नया मोड़ दिया विपिन चंद्र ने ही खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज़ उठाई थी और उन्हें इसे हिंदू व सिखों को बांटने वाले सांप्रदायिक करा दिया था तो इस तरह के उनका विशेष योगदान रहा है और लंबे समय से बीमारी के चलते 30 अगस्त 2014 को विपिन चंद्र का उनके आवास पर ही गुड़गांव हरियाणा में निधन हो गया तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए विपिन चंद्र जी के बारे में आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए मंगल कामनाएं करते हैं। वो NV ग्रुप, जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार थे। साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें भी 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मलयाली साहित्य में इनका विशेष योगदान आज भी लोग याद करते हैं। 2007 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में इन्हें दिया गया और 1998 में उन्हें पद्मश्री तथा 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ONV ग्रुप को 1989 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है और इनके परिवार में पत्नी सरोजनी तथा बेटा राजीवन और बेटी माया देवी हैं। उनके 20 कविताएं संग्रहालय हैं, कविताओं का कलेक्शन है, आलोचना की एक किताब है और बाल साहित्य पर एक किताब और कालबास की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित इनका हुआ है। अग्निशलम बंगाल के लिए ONV ग्रुप का केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, अक्षरराम के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और उप्पू नामक के लिए वायलार पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतकार के रूप में ONV ग्रुप 13 बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए और विशेष रूप से इस तरह के अलग अलग सम्मान जो है इन्हें प्राप्त है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल सुनना पसंद करेंगे, जो अभी भी चर्चे में हैं और हर मोबाइल पर आप उनके वीडियोस ज़रूर देखते हैं। जी हाँ, सही समझे आप, जिनका आज जन्मदिन है तो आपके पास वीडियो भी आ गया होगा। भारत के बहुत ही बड़े उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता, 17वीं लोकसभा के सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री हैं नितिन गडकरी। जी हाँ, नितिन गडकरी को 23 दिसंबर 2009 में विशेष 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसके बाद उन्हें 1 फरवरी 2010 से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया और 52 वर्ष की आयु में भाजपा के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की खूबी की वजह से नितिन गडकरी सदा अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे। साल 1995 में वे महाराष्ट्र में शिवसेना के गठबंधन सरकार भाजपा के लोक निर्णय मंत्री बन गए थे और 4 साल तक इसी मंत्री पद पर रहे। एक मंत्री के रूप में नितिन जी ने अपने अच्छे कार्य को, अच्छे कामों के कारण सदा प्रशंसा में रहे हैं। तो आइए, इनका आज जन्मदिन है, 27 मई 1995 को इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ महाराष्ट्र नागपुर में। उनका घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के पास ही था और विशेष रूप से इनकी जो रुचि है वाणिज्य और पारास्तक और इसके अलावा कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। उनके पिता जहां संघ के एक सामान्य कार्यकर्ता रहे, वहीं माता एक प्रसिद्ध प्रचारक भी बनी और गडकरी के परिवार में उनकी पत्नी कंचन सहित 2 बेटे निखिल और सारंग तथा पुत्र वधुएं और 1 बेटी केतकी है। तो आइए, इनके बारे में कुछ और बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी का राजनीति में जैसे ही प्रवेश हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया अपने छात्र जीवन में, और तब से ये राजनीति का सफ़र इनका जारी हो गया और 23 साल की उम्र में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और अपने मजबूत राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हुए इन्होंने किया। नितिन गडकरी की हैसियत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जानी पहचानी नहीं थी उस समय, लेकिन धीरे धीरे वो अपने महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बन गए और ऊर्जावान व्यक्ति और सबको साथ मिलकर काम करते थे। तो धीरे धीरे जो है उनका वर्चस्व बना और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के लिए वे विवादों में गिरे और चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिर उसके बाद मामला को धीरे धीरे क्लियर किया गया और 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार हो गया, तो यहाँ पर ये निर्णायक मंत्री बन गए। फिर कहानी यहाँ से जो एक रफ्तार पकड़ी, तो अभी तक रफ्तार में है। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार हार के बाद भाजपा में जो उथल पुथल हुई थी उससे उभरने के लिए आरएसएस के पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के बदलने की बात कही थी। जब संघ ने ये कहा कि नया अध्यक्ष दिल्ली से नहीं होगा तो नेता की तलाश हुई, जिसमें नितिन गडकरी के साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का भी नाम उभर कर आया। किंतु लालकृष्ण आडवाणी के बारे में पारिकर के विवादास्पद बयान के उनका पत्ता काट दिया और इस तरह उनका रास्ता अधिक आसान हो गया और आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी की राय पर नितिन गडकरी के नाम पर आरएसएस ने अपनी मोहर लगा दी और शनिवार 19 दिसंबर को भाजपा के संसद बोर्ड में उन्हें सर्वसहमति से नया अध्यक्ष चुनने के लिए सहमति बन गई और फिर संविधान के अनुरूप उनका कार्यकाल 3 साल का नियत हुआ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2010 से 22 जनवरी 2013 तक रहा। इनके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को भाजपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें नितिन गडकरी जी के बारे में और आए दिन आप वीडियोस और उनके बातें भाषण आप सुनते ही रहते हैं। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में, सड़क में जो ब्रिजेस बनाने का, रोड बनाने का काम जितनी स्पीड गति से उन्होंने किया है, शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे काफ़ी जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत आसान हो जाएगी और फास्ट ट्रैक वाले जो रोड्स हैं वो दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई, मुंबई से डायरेक्ट दिल्ली, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बनने वाली हैं, जिसका काम जोर शोरों से शुरू हुआ है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और जाते जाते एक और विचार, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से, लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से, लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू जीत पर अड़ तो सही। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है युवा मंच. युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों. ये कार्यक्रम लाइव यानी कि सीधा प्रसारण हो रहा है आप सभी के लिए. और आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है. हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है जिनका मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगी. हमारे साथ स्टूडियो में आज है डाइटिशियन नेहा जी जो कि अहमदाबाद से आई हैं. नो हेल्थ डाइट क्लिनिक वो अपना ही उनका वेंचर है. वो रन कर रही हैं पिछले 9 साल से और उससे भी पहले से 14 साल से वो इस फील्ड में हैं. न सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि कई डॉक्टर कई हॉस्पिटल्स को वो विजिट करती आ रही हैं. तो दोस्तों हम जानते हैं स्वास्थ्य है तो सब कुछ है. स्वास्थ्य है तो सपने हैं. स्वास्थ्य है तो अपने हैं. स्वास्थ्य है तो भविष्य है. स्वास्थ्य है तो हम किसी सक्सेस को भी इंजॉय कर सकते हैं. स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं. तो कितना कितना कितना जरूरी है स्वास्थ्य ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों. तो चलिए आइए आज हम कुछ ऐसी चीज़ें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जानेंगे नेहा जी से और जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे जो हमें हेल्प करेगी हमारे भविष्य तक पहुँचने के लिए. सबसे पहले स्वागत करते हैं नेहा जी. आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: थैंक यू.
0: मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी थोड़ा सा क्योंकि हम डाइट के बारे में बात ज़रूर करेंगे लेकिन पहले आपसे जानना चाहूँगी ये फील्ड का आपका साथ कैसे कनेक्शन हुआ या आपने डाइटिशियन बनने का कैसे सोचा.
1: जब मैं स्कूल में थी तो मेरा डॉक्टर बनने का ही सपना था
0: जी.
1: मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी पर मैंने देखा कि हमारे ही फैमिली में काफ़ी ऐसे सडन डेथ हुए कई सारे मेडिकल इश्यू की वजह से. तो मुझे हमेशा ऐसा लगने लगा था कि दवाई के अलावा भी और कोई वजह हो सकती है जिससे हम डिजीज़ को रिवर्स कर पाए या तो फिर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम नेचुरली क्योर कर पाए या मैनेज कर पाए. तो वो टाइम पे मेरे को ऐसे सवाल होते थे. और जब मैंने साइंस में एडमिशन बीएससी में एडमिशन में करने गई तब वहाँ पे मुझे मैडम ने गाइड किया जो हमारे प्रोफेसर थे तो वो काउंसलिंग कर रहे थे. तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे डाइटिशियन होते हैं और उनका अच्छा फ्यूचर है. वो टाइम पे मुझे खुद ही नहीं पता था कि डाइटिशियन क्या होता है
0: क्या है.
1: पर वही है कि अंदर से ऐसी फील थी कि मैं नेचुरली कुछ क्योर कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ ऐसा था
0: जी.
1: और ये मुझे क्लिक किया. उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया और फिर मैंने बीएससी इन डाइटेटिक्स में ही शुरू किया.
0: वंडरफुल. तो आपने क्योंकि आपका जो विजन था जो वो एक प्योर काम से जुड़ा था आपको लगा आप लोग मदद कर पाए उनके लिए हेल्प कर पाए इसलिए इस प्रोफेशन को आपने चुना. अब नेहा जी जैसे अगर युवाओं की बात करें खास तौर से तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें इस उम्र में पता नहीं चलती हैं. लेटर ऑन हमें एज में पता चलती हैं और अभी तो हम बहुत जोश में होते हैं तो हमारा दिन रात शेड्यूल पेरेंट्स बोलते हैं ये करो जल्दी उठो ऐसे खाओ वैसे खाओ पर हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा है मैं ठीक हूँ. तो क्या सच में ठीक होते हैं कुछ भी करके या वो असर पड़ता है धीरे धीरे.
1: एक्चुअली अर्ली एज में तो कुछ पता नहीं चलता. मतलब आप 25 के हो तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है. इवन आप भूखे भी रहते हो तो भी शायद आपका बॉडी जो है वो सपोर्ट कर लेता है. पर ये सब चीज़ों की अफेक्ट नियर बाय 30 होते होते आने लगती है. अब तो ऐसा होने लगा है कि अर्ली एज में भी प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज ऑफ दी जो आसपास का जो वातावरण भी ऐसा हो गया है. मेंटल हेल्थ से लेके फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है. कई बार होता है कि मेंटली वो डाउन है तो फिजिकली अफेक्ट करता है फिजिकली डाउन है तो मेंटली अफेक्ट करता है. तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा रोल है कि अच्छा हेल्थ होना भी बहुत बड़ी चीज़ है
0: जी. तो क्या ध्यान रखना चाहिए मतलब क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस कई बार हमें लगता है हम नहीं कर सकते लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं.
1: देखो डाइटिशियन का रोल क्या होता है लाइफस्टाइल सुधारना राइट. तो उसमें बेसिक 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: ओके
1: ऑफकोर्स डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही पर अभी की जो जनरेशन है उनका मेन है कि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है. उनको लगता है वो भाग दौड़ रहे हैं वो एक्टिव है पर एक्चुअली अपने बॉडी को टाइम देना मतलब कि आप पूरे दिन में खुद को कितना टाइम दे रहे हो वो बहुत ज़रूरी है और वो कहीं ना कहीं एबसेंट है ही. मतलब पूरा दिन एक्टिव है, पढ़ाई में ध्यान दे रहे, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं एक फोकस के साथ फिजिकली एक्टिव होना, जहाँ पे आपको एटलीस्ट खुद को 30-45 मिनट देना चाहिए, जहाँ पे आप गेम खेलो या आप वॉकिंग वॉक के लिए जाओ, साइकिलिंग करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो. जबकि आज की जनरेशन क्या कर रही है, ज़्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल कंप्यूटर उसमें ही वो अपना टाइम पास करती है जब उसके पास टाइम होता है, तो माइंड फ्रेश वो वैसे कर रही है और वही चीज़ ज़्यादा अफेक्ट कर रही है फिर मेंटल हेल्थ को भी. फिजिकली तो हो ही रहा है, मेंटली भी फिर कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है. तो ऑफकोर्स फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उनको जो भी पसंद हो वो कर सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो गया, चाहे कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, 1 आवर तो करना ही चाहिए पूरे दिन में. जरूरी नहीं है कि जिम करना. जनरली क्या होता है कि ट्रेंड चल रहा है अभी कि हाँ जिम ही ज्वाइन करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे.
0: फिजिकल एक्टिविटी मतलब जिम,
1: ऑफ कोर्स, पर जिम वो है, वो डिपेंडेंसी है. हमें ये भी समझना होगा कि हमें कोई भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है. हमको अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. मतलब कि आप खुद की आदतें ऐसी रखो जो अपने हिसाब से खड़ी की हो, ना कि कोई जिम की वजह से या कुछ ज्वाइन किया तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊँ खुद को पुश करूँ, वैसे नहीं. तो फिजिकल एक्टिविटी. दूसरी चीज आती है वाटर इनटेक.
0: ओके,
1: ऑफ कोर्स ये बहुत छोटी सी एडवाइस है बट मैंने बहुत नोटिस किया है लेटर ऑन कम पानी पीने वाले लोगों की डाइजेशन हेल्थ कैसी होती है.
0: अच्छा,
1: तो ये छोटी चीज है पर इसका अफेक्ट बहुत बड़ा हुआ है इन फ्यूचर. तो वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए. हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको रिमाइंडर देते थे कि पानी पिया पानी पिया. अब क्या है, लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट है, पेरेंट्स भी बिजी है, बच्चे कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रिमाइंडर देने वाला कोई नहीं है. तो उनको वाटर इंटेक अच्छा करना चाहिए. पूरे दिन में 3-4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए
0: सबको.
1: ऑफ कोर्स आइडियली 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए क्योंकि छोटी एज में किडनी के प्रॉब्लम्स भी बहुत देखने को आ रहे हैं. जो मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ मैं देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पानी का रोल है. एंड थर्ड वन इज डाइट. डाइट जो है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है. आजकल क्या हो रहा है, मैंने अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपको दूँ, मेरे आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट है जो किसी रेफरेंस, मेरे क्लाइंट के रेफरेंस से ही आए वो पेरेंट. इन्होंने मुझे फोन करके बोला मेरी बेटी 14 ईयर की है और उसने कहीं पे रील देखी ऑनलाइन और वेगिन, वो वेगिन पे आ गई. ऑफकोर्स वो अंडरवेट थी और अंडरवेट हो गई. मतलब कि 42 समथिंग वेट था, अभी उसका 37-38 है.
0: अच्छा,
1: तो ये खुद से डिसीजन लेना आपकी बॉडी के लिए वो सूट करे ना करे, कुछ भी देखे भी ना. आज की जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड भी हो रही है ऑनलाइन देख देख के. हाँ, ये लेना है ये नहीं लेना है, तो ये लेना नहीं लेना ये सब चीजों में भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं. पर उनकी खाने की एज है
0: जी,
1: उनको
0: जी,
1: खाना है बस जंक फूड से दूर रहना है. जंक फूड जो है वो फैशन हो चुकी है, बाहर निकले जंक फूड खाओ. हाँ आप खाओ पर एटलीस्ट बैलेंस में, फ्रीक्वेंसी उसकी कम होनी चाहिए. महीने में 1-2 बार ठीक है, पर आप वीकली, अब तो हो रहा है, मैं जिसका भी काउंसलिंग करती हूँ जनरली वीकली वो लोग बाहर का खा रहे होते हैं, वो भी जंक.
0: जी जी,
1: तो जंक फूड का अफेक्ट बहुत है. होममेड फूड होना चाहिए और बैलेंस में सब कुछ खाओ. बच्चे फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, पैकेट्स फूड खा रहे हैं, रोटी सब्जी मुश्किल से खाते हैं, बहुत ही ज्यादा चूजी है जिसकी वजह से हाइट का ग्रोथ नहीं है, अच्छा फिजिक्स नहीं है. तो ये सब चीजें बच्चों में देखने को मिल रही है,
0: मिल रही है
1: इसके अंदर के है वो.
0: जी मैं एक्चुअली यही पूछना चाहती थी, आजकल ऑनलाइन इतना कुछ है, इतने सारे वीडियोस हैं, कोई कहता है इतना पानी पीते, कोई कहता है बिल्कुल नहीं, मतलब इतना कम ज्यादा हो जाता है, आपको जब प्यास लगे तभी पीना चाहिए, कोई बोलता है कि आपको ये खाना चाहिए, कोई बोलता है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. इतना कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता कि करना क्या है.
1: एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जब ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है तब ढूंढने लगते हैं डाइटिशियन को. पर जनरली ऐसा है कि आप अगर कोई राइट गाइडेंस के लिए राइट पर्सनालिटी को फॉलो कर रहे हो या उसे आप उसका एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है जो ऑनलाइन बैठे हैं काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स जो है वो
0: जी.
1: तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो कौन है, क्या सलाह दे रहा है, कई बार वो सलाह आपके लिए सही है कि नहीं है. एज ए डाइटिशियन मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्सन टू पर्सन एडवाइस जो है वो वराई करती है. है ना,
0: एक एडवाइस सबके लिए नहीं हो सकती,
1: बिल्कुल नहीं हो सकती. हाँ जनरली हमें, मैं जनरल एडवाइस दूं फिर भी पर्सन टू पर्सन वो वराई करती है कहीं ना कहीं. डिपेंड ऑन हेल्थ कंडीशन, रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें मैटर करती है,
0: बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. तो ऐसे आंख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करने लगे, लाइफ के डिसीजंस ना ले लें, पहले देखें जैसा आपने कहा, उनकी भी डिग्री, उनको भी समझें, अपनी बॉडी को भी समझें और तब डिसीजन लें. इतना जल्दी स्विच ना हो जाए, ये वीडियो देखा ये करने लगे, ये वीडियो देखा वो करने लगे. ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं की अगर बात करें निया जी, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में हम देखते हैं भाई खाने की आदत होती है कि भाई लाइक कभी खा लेंगे, कभी सबको खिला दिया, फिर बाद में खाया, चाहे घर की बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, या फिर कभी मतलब ज्यादा अगर अच्छा खाना है तो फिर ये होता है कि ये मेल्स को इनको इनको देना है, बाहर काम करते हैं और हमको थोड़ा चलो नहीं भी खाया तो चलेगा, या स्किप भी कर देते हैं बहुत बार. तो क्या ये चीजें असर नहीं डालती हैं फीमेल बॉडी पे, या उस फीमेल बॉडी को कम चाहिए होती हैं चीजें?
1: एक्चुअली फीमेल की अगर बात करें तो 80% मेरे पास जो है वो लेडीज क्लाइंट ही है. और उनका यही फोकस होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फैमिली, उनके चाइल्ड है ना, उन पे वो ज़्यादा फोकस कर रही है. खुद के लिए जो बनाने या करने की बात आती है तो उनके पास टाइम नहीं होता है. तो ऑफकोर्स मैं उनको सिखाती हूँ ये चीज़ कि आप सेल्फ लव को बढ़ाओ, और उसके लिए ज़रूरी है कि खुद की केयर करना, खुद का ध्यान रखना. आप इग्नोर ना करें, आपको बैक पेन हो रहा है, आपको नी पेन हो रहा है, आपको गट हेल्थ का प्रॉब्लम है ना, कहीं पे कई बार हेडेक हो रहा है ज़्यादा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ों को वो इग्नोर करती है. क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतनी बिजी है चीज़ों में कि उनको अपना ध्यान ही नहीं है, और फिर बहुत लेट हो जाता है. तो मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं, लेडी क्लाइंट, तो उनको वही है कि मैं हमेशा उसे पॉजिटिव करती हूँ कि आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, खुद का शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है. और खाने की अगर बात करें तो घर में अगर कुछ भी बचा है, कुछ लेफ्ट ओवर है फूड, तो वो वही ले लेती है और चला लेती है, तो ये नहीं करना चाहिए. खुद का भी उतना ही ध्यान रखें क्योंकि वो मेन पिलर है फैमिली का.
0: बिल्कुल,
1: अगर वो उनका हेल्थ खराब हुआ तो बाकी सब फैमिली मेंबर्स है उनका वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, तो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर इसका मतलब ये नहीं कि खुद का ध्यान ना दे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो खुद का ध्यान भी उतना रखना,
0: ज्यादा देना होगा. बिल्कुल सही बात है, बड़ी बात है. जैसे मान लीजिए आपने हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की, बहुत सारी महिलाओं में है ये बात, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जल्दी एज में होने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए मतलब उसको बैलेंस करने के लिए? क्या कुछ आप टिप्स दे सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं?
1: हार्मोनल इम्बैलेंस में नो डाउट फिजिकली और साइंस भी है इसके पीछे, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि आज के टाइम में 50-70% जो है वो उनका मेंटल हेल्थ है जो अफेक्ट कर रहा है उनके हार्मोन्स पे.
0: ओके,
1: तो पहली बात तो उनको खुद को मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस करना चाहिए. जो हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने का. इसके साथ साथ कुछ ईटिंग हैबिट्स भी होती है, इरेगुलरिटी खाने पीने की, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तब भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए. और अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उनको कंसल्ट करके राइट वे से उनका इलाज करना चाहिए. हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है वो लाइफस्टाइल को सुधारने से ही इम्प्रूव हो सकता है, और वो हम जब क्लाइंट आते हैं तो उनका पूरा देखते हैं शेड्यूल, पूरा काउंसलिंग करते हैं, तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ मिस हो रही है जिसकी वजह से ये शायद हो रहा है, तो उस पर अगर हम काम करते हैं तो ऑफकोर्स उनका रिजल्ट मिलता ही है. पर वेट बढ़ता है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, वो भी एक रीज़न है कि ओबेसिटी भी एक रीज़न है.
0: वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है.
1: वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है.
0: और हेल्दी खाना, जैसा आपने बताया ना, टाइम पे खाना, हेल्दी खाना,
1: हाँ
0: बहुत ज़रूरी है. और यहाँ एक दोस्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर. हेलो नमस्ते. हेलो नमस्कार जी. रेडियो मधु, अच्छा फ़ोन कट गया शायद, माफ़ कीजिएगा. कोई बात नहीं दोस्तों, रेडियो मधुबन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हमारा नंबर है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414151415. फिलहाल वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का, लौट कर आएंगे और डाइटिशियन नेहा जी हमारे साथ हैं, उनसे और भी चीज़ें जानेंगे जो हम अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: रुके रुके रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? है, इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो

0: बिना पूछे उसका सामान उठाओगी? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
1: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है युवा मंच. युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन नेहा जी, और वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, बहुत से लोगों की मदद करती हैं. और दोस्तों, आज हम उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या हम प्रैक्टिकल चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, ना रिलेशनशिप ना सपने, और ये सब तो चाहिए जीवन में. तो भाई चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में, यानी स्वास्थ्य के बारे में. नेहा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: थैंक यू.
0: नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल बहुत हम देखते हैं कम एज में ही बहुत सारी बीमारियाँ आने लगी हैं. पहले हम देखते थे 40 के बाद, 50 के बाद आती थी, आज वो टीन एज में या फिर 20s में आने लगी हैं वो बीमारियाँ. तो आपने हमें बताया कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है और भी चीज़ें करना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या गट हेल्थ यानी हमारे कॉन्स्टिपेशन या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं बहुत सारी बीमारियां, या ये रॉन्ग है परसेप्शन या सही है?
1: यस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर गट हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जस्ट एग्जाम्पल, अगर हम टेंशन ले रहे हैं और अचानक से कोई मतलब कोई ट्रोमा फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमारे गट हेल्थ को अफेक्ट करती है. वैसे ही डेली बेस पे अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, गट हेल्थ में जैसे कि इनडाइजेशन फील करना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन फील करना, तो ये नॉर्मल नहीं है. अब कई लोग हैं वो ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है ये नॉर्मल है,
0: होता है,
1: इग्नोर करते हैं या राइट. तो ये इग्नोर करने से ये चीज़ और बढ़ती है, और कहीं ना कहीं डाइजेशन जो है वो स्लो पड़ता है, मेटाबॉलिज्म डाउन होता है. अब उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आप खा रहे हो उसके एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, तो जो आप खा रहे हो उसके न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेंगे नहीं, तो फिर वो डेफिशिएंसी की तरफ आप जा रहे हो. तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी लॉन्ग टर्म रहेगी, तो कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज भी आ ही सकता है.
0: राइट.
1: तो हाँ, गट हेल्थ का इश्यू जो है वो नॉर्मल नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस पर ध्यान दिया जाए.
0: लेकिन कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर डाइजेशन इशू रहता है, तो लोग सोचते हैं कि ये तो होता ही है, मतलब मुझ इस खाने से ये प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो उसके बाद कुछ चूरन खाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन चलता रहता है ये.
1: Yes.
0: ये कोई ख़त्म नहीं होता, आज हुआ, परसों फिर हुआ, एक हफ्ते में फिर हुआ. तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे ये हेल्प हो ठीक करने में?
1: यस, ऑफ कोर्स. इसमें पहले पानी का रोल तो है ही.
0: Okay.
1: जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो एम्प्टी स्टमक आपको गुनगुना पानी एक दो ग्लास पीना चाहिए. एंड एवरी, जैसे कि हमारा पूरा दिन का जो मील है उसमें एक मेन मील होता है जो है लंच, जहाँ पे लोग रोटी सब्जी राइस दाल सब कुछ लेते हैं. पर उससे पहले सलाद की एक प्लेट तो लेनी चाहिए, जो सीजनल सलाद.
0: Okay.
1: जिसमें कुकुम्बर, टमाटर, कैरेट या जो भी बीट हो गया, तो जो भी सीजनल है एक दो कॉम्बिनेशन का सलाद थोड़ा सा लेना चाहिए. क्योंकि फाइबर जो है वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है.
0: ओके.
1: तो वो आपके डाइजेशन को और इम्प्रूव करता है, तो सलाद लेना चाहिए बिफोर लंच कंपलसरी. एंड आफ्टर मील, अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा फेस वो कर रहे हैं, तो आफ्टर मील उनको 15 मिनट के बाद एटलीस्ट फिर से गुनगुना पानी थोड़ा पी लेना चाहिए.
0: अच्छा, गुनगुना ही पीना चाहिए.
1: हाँ, गुनगुना पानी एक दो ग्लास पिए, और रात को सोने से पहले भी एक दो ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए. पूरा दिन पीते रहते हैं कई लोग ये सुन के कि गर्म पानी पीने से अच्छा हो जाता है, तो पूरा दिन पियेंगे तो फिर वो भी कहीं ना कहीं एक लेवल तक रिजल्ट नहीं देगा.
0: ओके.
1: तो बेटर है कि आप आफ्टर मील, आफ्टर लंच हो गया गर्म पानी पीना, बिफोर लंच सलाद लेना, सुबह एम्प्टी स्टमक, रात को सोने से पहले गर्म पानी पीना, पूरे दिन में एक दो फ्रूट खाना. बाय नेचर चीजें लेंगे तो ऑफकोर्स बॉडी में एक अच्छा उसका अफेक्ट पड़ेगा गट हेल्थ के ऊपर, क्योंकि फाइबर का बहुत बड़ा रोल है. और फूड में अगर फाइबर नहीं है तो वो फूड कहीं ना कहीं फाइबरलेस होगा, कम फाइबर होगा, तो वो हेल्दी नहीं है कहीं ना कहीं
0: जी.
1: वो फिर शुगर स्पाइक करेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं.
0: ओके. तो इसमें जैसा आपने बताया सलाद लेना है और गर्म पानी, और कई बार हम बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई एक दिन जूस पी रहे हैं या फिर एक दिन केवल फ्रूट्स खा रहे हैं या बीच बीच में इस तरह का फास्टिंग करके, या इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं?
1: फास्टिंग अच्छी चीज़ है, बहुत सारे बेनिफिट है उसके, बट अभी की जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से मैं प्रैक्टिकल कहना चाहूँगी ये चीज़ कि पूरा दिन सिर्फ फ्रूट पे सलाद पे जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्दी साइन नहीं है. क्योंकि आसपास का जो माहौल है उसके सामने लड़ने के लिए आपको हिम्मत चाहिए. आप सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे नहीं रह सकते लॉन्ग टर्म, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप ऐसा कुछ करना भी चाहते हो अपनी पर्सनल वे से तो भी एक टाइम तो आपको खाना खाना ही चाहिए. जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, राइट, प्रोबायोटिक है, उसके साथ फाइबर है, तो एक कंप्लीट मील तो आपको लेना ही चाहिए. आपका बॉडी इतना तो डिजर्व करता ही है, उसको सर्वाइव करने के लिए इतना चाहिए ही चाहिए. तो जो लोग अगर फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए यही है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है. और जो चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं है उस पे डिपेंड रहे कि अगर कोई रिजल्ट आप ले भी रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, वो सस्टेनेबल तो नहीं है.
0: कई बार ऐसा होता है ना, वेट कम करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि स्किप कर दिया, नाश्ता नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, सिर्फ एक टाइम खा रहे हैं या फिर लिक्विड ही पी रहे हैं, कुछ इस तरह की वेट कम करने के लिए भी उपाय करते हैं लोग. नींबू पानी पी रहे हैं तो वही उस पे चल रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं खाना है, चीनी छोड़ना, चीनी.
1: आपका जो कल्चर है, आपका लॉन्ग टर्म से जो ईटिंग हैबिट्स चली आ रही है, आपको उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करना चाहिए. जैसे आप बहुत सालों से 10 बजे ही लंच कर रहे हैं तो वो आपकी हैबिट है. तो आपकी अगर लॉन्ग टर्म से ऐसी हैबिट है जहाँ पे आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लंच भी कर रहे हो, डिनर भी कर रहे हो, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ना कि उसे पूरा बंद कर देना, स्कीप कर देना.
0: अच्छा, ओके. मतलब कुछ चेंजेस करें,
1: मतलब हेल्दी मील स्विच कर सकते हो, स्किप नहीं करो. स्किप करना, इरेगुलरिटी होना, ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करती है, डाइजेशन पे अफेक्ट ज़रूर करती है. और इस हिसाब से आप अगर आप नहीं खा के वेट लॉस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एजिंग इफेक्ट भी दिखने लगती है. स्किन डल हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पर साथ में आपकी बाकी सारी चीज़ें भी लॉस हो रही है बॉडी में. तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये गलत है. तो आपको अपने साइन वो समझने चाहिए होंगे कि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो इससे आपको एनर्जी फील होना और बेटर फील होना, ऐसा होना चाहिए. स्किन पे एक ग्लो आना, ये होना चाहिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप हेल्दी वे से वेट लॉस कर रहे हो, जहाँ पे फैट लॉस दिखना चाहिए, वेट लॉस भी हो रहा है साथ में वो भी, और मसल्स लॉस नहीं होने चाहिए.
0: ओके, तो मतलब वेट लॉस करने के भी तरीके हैं, वो सही तरीका होना बहुत जरूरी है. गलत मतलब, तरीके से वेट लॉस भी नुकसान.
1: हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि भूखे रह के वेट लॉस नहीं करना है. इवन मैं मेरे क्लाइंट को हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको जो भी डाइट दे रही हूँ ना, उसके अलावा भी अगर आपको भूख लग रही है तो आपको जरूर हमें हमारा जो है मैसेज कर देना है कि मैम मुझे इस टाइम पे क्रेविंग हो रही है स्वीट या स्पाइसी की, या मुझे भूख लग रहा है, मुझे जरूर बताना. क्योंकि हम बॉडी के कोई भी सिग्नल को इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसे रिस्पॉन्स करेंगे.
0: अच्छा,
1: तभी बॉडी काम करेगा राइट वैसे.
0: जी, ओके, दैट्स वंडरफुल. तो मतलब बॉडी को भी समझना है और फिर सही रास्ता,
1: बिल्कुल उसकी सुननी है, क्योंकि
0: उसकी सुननी है,
1: उससे ही काम लेना है हमको.
0: करेक्ट, बिल्कुल. तो दोस्तों, फिलहाल एक और वक्त हो गया है ब्रेक का, छोटे से लौट कर आएंगे. कार्यक्रम युवा मन जारी रहेगा. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार.
3: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए. मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी. फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ. फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए. लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी. एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा. व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट. जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है. जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स. एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी. 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका effect कितना लंबा जाएगा. तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका brain पर असर पड़ रहा है. ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों हमारे साथ डाइटिशियन नेहा जी मौजूद हैं। बहुत सारी उन्होंने टिप्स दी, पानी, खाना, सलाद कैसे लेना है। दोस्तों अगर आपने एपिसोड सुना है तो मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा बड़ा असर दिखा सकती हैं, कई बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं। सही तरीका आना चाहिए, बस सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। नेहा जी, हमने बहुत सारी बातें करी, अब अगर थोड़ी सी बात हम बात करें, महिलाओं की बात करें या फीमेल बॉडी की बात करें, हर महीने हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अर्ली एज में भी या बाद में भी, इरेगुलरिटी आती है, पेन ज़्यादा होता है या कई तरह की और समस्या आती है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सुन लेते हैं, ये शब्द आम सुन लेते हैं आजकल, पर होता क्या है ये, क्या हमें पता होना चाहिए कुछ।
1: हार्मोनल इम्बैलेंस में पहले तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जहाँ पे डेट डिले हो रही है या फिर जल्दी भी पीरियड्स आ जाते हैं, 30 डेज या 25 डेज की जो साइकिल होती है वो या तो जल्दी हो रहे हैं या लेट हो रहे हैं, तो ये एक सिम्टम्स है। उसके साथ साथ मूड स्विंग होना, ज़्यादा क्रेविंग्स होना, रात को नींद नहीं आना, अननेसेसरी स्ट्रेस फील होना, तो ये सब चीज़ें उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। सडन वेट गेन होना ये भी एक रीज़न है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उसके कई टेस्ट भी होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर उसके लिए आपको सही सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की। आप उसे कंसल्ट करें, आप देखिए कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, है ना, उसमें उसके टेस्ट करने से पता चलेगा। और फिर उसका आता है सॉल्यूशन क्या है। तो जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो एक नेचुरल प्रॉब्लम है, समझो ये कोई बीमारी नहीं है हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। है ना, एक नेचर जो है, जिसने नेचर ने जो दिया है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे हमें नेचर से ही क्योर करना है। तो जिसमें हमारी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जनरली ये स्ट्रेस की वजह से होता है, या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है बहुत टाइम से तो भी हो सकता है, या तो आप कहीं ना कहीं खाने में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सही खाना नहीं खा रहे हो, डेफिशिएंसी बॉडी में, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, पर्सन टू पर्सन कई बार वराई भी करते हैं ये रीज़न। उसमें ध्यान कैसे रखेंगे हम, तो पहले आपका खाना सही होना जरूरी है, मतलब आपका एक करेक्ट डाइट हो, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए।
0: सही खाना मतलब क्या होता
1: सही
0: है?
1: सही खाना मतलब जिसमें प्रोटीन भी आ गया, फाइबर्स भी आ गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए। जबकि आजकल की जनरेशन की जो गर्ल्स है, जैसे 25 के अंदर की लड़कियों की बात करें, तो वो सब्जियां खाना पसंद नहीं कर रही है, फ्रूट्स खाना नहीं पसंद कर रही है, जनरली वो बाहर का खा रही है, तो उसकी वजह से भी ये चीज होती है, धीरे धीरे वेट गेन होने लगता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे सब कुछ आ गया, 5 फूड ग्रुप्स जो है उसमें से सब आ गया, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लेंटिल्स है, ग्रेन्स है, राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए इनिशियली। फिर ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो हाँ ऑफकोर्स फिर मिल्क प्रोडक्ट भी बंद करवाते हैं, तो अच्छा। वो जब हो जाएगा प्रॉब्लम उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है, पर शुरुआत में अगर आप वो चीज़ को बैलेंस कर लेते हो तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट मिलता है। पर हमें सिम्टम्स पे काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता है कि आपका वेट बढ़ा है तो हमें वो घटाना पड़ेगा,
0: राइट।
1: अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसे कम करना पड़ेगा। तो आपको जो चीज़ हुई है वो किस वजह से हुई है
0: वो पता करना, सर
1: ये पता करना है, फिर उसके ऊपर हमें काम करना है तो ही वो हमें रिजल्ट मिलेगा, राइट।
0: वेट बढ़ने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है,
1: ऑफ कोर्स, या और फिर वेट लॉस करने से वो बैलेंस हो भी जाता है, ये भी रिजल्ट हमने मतलब देखते हैं, हम
0: उसे ठीक भी हो जाता है, मतलब बहुत दवाएं नहीं खानी पड़ती है, नहीं तो ऐसा लगता है ना इन चीजों के लिए कितनी दवा खाओ, कितनी दवा खा करके भी
1: वेट गेन होता है, फिर वही भी होता है। तो उसमें फिर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मेडिसिन तो पीसीओडी में है ही नहीं, ना हार्मोनल इम्बैलेंस में है, तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफस्टाइल को ही सुधारना पड़ेगा। और एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबको, कि चाहे वेट लॉस करना हो, चाहे अपनी हेल्थ को सुधारना हो, उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप अगर मार्केट में उसके मैजिक पिल्स ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है।
0: हाँ, आजकल बहुत सारी चीजें हैं,
1: रिसेंटली अभी ओजेम्पिक इंजेक्शन आ गया,
0: जी जी जी,
1: वो भी अगर आप ले रहे हो उसके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, डाइट पे भी ध्यान देना है, तो ऑफकोर्स बात तो उसी पे आ रही है,
0: कुछ जादू से ऐसा नहीं होने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी,
1: एग्जैक्टली। और अभी ये चीज का सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, वेट लॉस करना है या कोई भी चीज को रिवर्स करना है तो वो आपकी खुद की मेहनत से ही होगा. जो भी डॉक्टर है या मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं आपको सलाह दूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, पर करना आपको है.
0: करना आपको ही है.
1: जब तक आप नहीं करोगे आप बदलते रहोगे लोगों को, जैसे प्रोफेशनली प्रोफेशनल्स को बदल रहे हो आप, प्रोडक्ट्स बदल रहे हो, कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो मार्केट में कि जिससे आपका वेट लॉस हो जाए. वेट लॉस के लिए कोई दवाई नहीं है और ना ही कोई फूड है. बैलेंस इज द की.
0: बैलेंस इज द की
1: ऑफकोर्स
0: जी.
1: तो जो लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे ऐसे ही रैंडमली
0: दीजिए पूछते होंगे ना आपका दादी
1: क्या पूछते पता है. अच्छा डाइटिशियन हो बताओ ना क्या करना चाहिए, मेरा देखो ये बढ़ गया है बताओ ना क्या खाना चाहिए. तो ऐसे खड़े खड़े मैं आपको एडवाइस नहीं दे सकती. ऑफकोर्स उसके लिए पर्सन टू पर्सन वराई करेगी एडवाइस. तो ऐसी कोई पर्सनली टिप्स नहीं है, पर आप अपने सिम्टम्स को समझो है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक बैलेंस खाना पीना और सोना, ये तीन चीज का बैलेंस होना चाहिए. पीना मतलब वाटर इनटेक अच्छा, हाइड्रेशन वो मेंटेन करो. खाना मतलब कि आप अच्छा हेल्दी खाओ. कभी अनहेल्दी खाने का मन कर रहा है तो खाओ, वो भी मना नहीं है, वो भी दुश्मन नहीं है आपके जंक फूड. ऑफकोर्स वो खाने की चीज है पर उसमें फाइबर कम है, वो कम न्यूट्रिशन उसमें न्यूट्रिशन है. तो ऑफकोर्स वो फ्रीक्वेंसी उसकी कम रखो,
0: कम
1: बस मना नहीं है पर कम फ्रीक्वेंसी रखो उसके. पर अगर आप हेल्दी खा भी नहीं रहे हो फिर वो भी खा रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी हेल्थ बहुत खराब होगी. पर आप रूटीन में आप हेल्दी रोज खा रहे हो, कभी कभी अनहेल्दी खा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी को, वो भी माफ कर देगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो आपकी रूटीन अच्छी होगी तो
0: माफ कर देगी.
1: एग्जैक्टली.
0: लास्टली मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि डिटॉक्स की बात करी थी आपने, क्या कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हेल्प करती हैं?
1: ऑफकोर्स होती है, पर डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहना.
0: हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना.
1: लोगों को लगता है डिटॉक्स करना है मतलब पूरा दिन फ्रूट्स खाना है, लिक्विड लेना है. नहीं, ऐसा नहीं है. खाना खाना है पर डिटॉक्स मतलब कि आपका जैसे एम्प्टी स्टमक का टाइम है, जैसे सुबह उठ रहे हो, मिड मॉर्निंग है, मिड इवनिंग है, रात को सो रहे हो, ये फोर टाइम जो है ना चार

0: टाइम उस टाइम पे आप डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हो.
1: जैसे
0: विंटर के अलग आते हैं, समर के अलग आते हैं. जैसे समर के समर का बेसिक डिटॉक्स ड्रिंक जो बोलूं, जो सबके लिए पॉसिबल है, जिसमें आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 4 से 5 स्लाइस कुकुम्बर की, 5 to 7 लीफ ऑफ मिंट एंड लेमन स्लाइसिस 2 से 3 एड करके उसे 2-3 घंटा फ्रीज में रख दो.
1: ओके.
0: और फिर उसे आप पीते रहो 3 आवर्स के बाद. उसको इन्फ्यूज्ड वाटर बोलते हैं जिसे, तो वो आप पीते रहो. उससे आपका डिटॉक्स होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, अल्कलाइन मिलेगा और एक अल्कलाइन मेंटेन होगा. अगर एसिडिटी, गैस या कुछ भी है तो कहीं ना कहीं गट हेल्थ बैलेंस में आएगी.
1: ओके.
0: पर उसके लिए भूखे रह के मील स्किप करके ये चीज नहीं करनी. उसका राइट टाइम है मिड मॉर्निंग 9 से 12 या इवनिंग में 4 to 6
1: जब थोड़े खाली होता है पेट.
0: यस, क्योंकि ये ठंडा पानी है ना, तो हम खाली पेट सुबह एम्प्टी स्टमक नहीं पी सकते.
1: ओके.
0: एम्प्टी स्टमक एकदम पियोगे तो फिर प्रॉब्लम और भी हो सकता है कुछ ना, ऐसे आपको सर्दी लग गई या कुछ हो सकता है. तो मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग में ये आप पानी पी सकते हो.
1: ओके.
0: एंड गर्म पानी सुबह खाली पेट पीना है, खाली पेट ठंडा पानी नहीं पीना,
1: नहीं पीना है.
0: तो सुबह उठ के गर्म पानी, जैसे उसमें बहुत सारे हमारे किचन में ही बहुत सारे स्पाइसीज है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है. तो उसमें जैसे कि कभी हल्दी लेमन वाला पानी पी लिया, कभी जीरा लेमन वाला पानी पी लिया, कभी अपने मेथी रात को सॉक करके सुबह उसका पानी पिया. पर ये आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, आपको 10-10 दिन में चेंजेस करने पड़ेंगे. इसमें 10 दिन आपको ये लिया फिर उसको क्विट करो.
1: अच्छा.
0: क्योंकि आप कहीं पे ऑनलाइन टिप्स देख भी रहे हो, उसका फॉलो करोगे ना, आपको 7-10 डेज में ही रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद वो नहीं मिलेगा आपको.
1: अच्छा.
0: तो आपको इंग्रेडिएंट्स चेंज करते रहने पड़ेगा 10-10 दिन में, आप चेंज करते रहो उसे. तो हमारे इंडियन मसाले हैं, उसके अच्छे कॉम्बिनेशन में आप गुनगुने पानी के साथ उसे ले सकते हो. ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, पर वो हम क्या करते हैं, क्लाइंट का कैसा है हेल्थ,
1: उसके
0: हिसाब से हम उसमें अलग अलग पानी ऐड करते हैं. पर हर वीक में हम उनका डाइट प्लान चेंज करते रहते हैं.
1: अच्छा.
0: तो बॉडी रिस्पॉन्स एवरी 7 डेज में करती है फिर.
1: दैट्स ग्रेट. तो दोस्तों आज हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई. ऐसा नहीं है खाना छोड़ देना है, वेट कम करना है तो, या कोई बीमारी है तो दवा खा के ही जीवन निकालना पड़ेगा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में मेहनत हमको करनी है, सही चीज़ को समझना है और फिर उसे एक्शन में लाना है. नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे लगता है ये चेंजेस अगर हम कर लें तो हमारा जीवन बदल सकता है, इतनी शक्ति है इनमें. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और ये टिप्स और ये बातें समझाने के लिए. तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का. मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए.
2: सुन रहे हैं
3: आप, सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम
2: उड़ान के साथ।
1: मैं हूँ आपके दोस्त मोना, मेरे साथ आज है रूहानी। हम जरूर लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन आपके लिए, उसमें होगा अमेजिंग जानकारी। इसके साथ साथ आज का विशेष दिन जिसमें विपिन चंद्र पाल का जन्मदिन भी है, जी हाँ, और साथ ही साथ हम इनके विषय पर बहुत सारी बातें करते हुए आगे जरूर बढ़ेंगे। प्यारी सी कविता होगी, कहानियां भी आपके लिए लेकर आएंगे और होमवर्क बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत जरूर सुनने को मिलेगा। सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: है?
1: अरे देखो, नहीं पता क्या इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: वेल, कुछ अमेजिंग जानकारियों के साथ हम आपको जोड़ चुके हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं उड़ान। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
5: रूहानी।
4: चलिए हम बात कर रहे हैं विपिन चंद्र की। ये विपिन चंद्र एक्चुअली विपिन चंद्र पाल नहीं है, बाल पाल, लाल बाल पाल के वो पाल नहीं है, बल्कि ये 27 मई 1928 में जन्मे कांगड़ा में। और ये एक इतिहासकार है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। और मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर विपिन चंद्र, जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतन धारा के इतिहासकार बने।
5: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 27 मई 1928 को जन्मे विपिन चंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में अध्यक्ष रह चुके थे और उनकी गिनती देश के चोटी के इतिहासकारों में होती थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष भी बन गए थे।
4: जी हाँ, इसके साथ साथ मैं बात करना चाहती हूँ एक और शख्स की, जिनकी शहादत हुई 27 मई 2016 को जम्मू और कश्मीर में। भारतीय सेना के एक जाबाज सैनिक हवलदार हंगपन दादा। ये जाबाज सैनिक जिन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहादत प्राप्त की, वे 27 मई 2016 को उत्तर कश्मीर में शमसाबाड़ी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। वीरगति को प्राप्त करने से पूर्व उन्होंने 4 हथियारबंद आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इस शौर्य के लिए उन्हें 15 अगस्त 2016 को मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।
5: शहीद हंगपन दादा का जन्म अरुणाचल प्रदेश के बोरदुरिया नामक गांव में 2 अक्टूबर 1979 को हुआ था। हंगपन दादा के बड़े भाई लाभ हंग दादा के अनुसार हंगपन बचपन में शरारती थे। वे बचपन में पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर खुद भी खाते और अपने दोस्तों को भी खिलाते। वे शारीरिक रूप से बेहद फिट थे, हर सुबह दौड़ लगाते, पुशअप करते। इसी दौरान खौसा में सेना की भर्ती रैली हुई जहां वह भारतीय सेना के लिए चुन लिए गए।
4: 2016 के 26 मई की बात है, जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नौगाम सेक्टर में आर्मी ठिकानों का आपसी संपर्क टूट गया। तब हवलदार हंगपन दादा को उनकी टीम के साथ भाग रहे आतंकवादियों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी टीम एलओसी के पास शाम शाबरी माउंटेन पर करीबन 13,000 की फीट की ऊंचाई वाले बर्फीले इलाके में इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उन्होंने आतंकवादियों के बच निकलने का पूरा रास्ता रोक दिया। इसी बीच आतंकवादियों ने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी और आतंकवादियों की तरफ से हो रही गोलाबारी की वजह से उनकी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
5: तब हवलदार हंगपन दादा जमीन के बल लेटकर और पत्थरों की आड़ में छुपकर अकेले आतंकियों के काफी करीब पहुंच गए। फिर दो आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस गोलाबारी में वे बुरी तरह जख्मी हो गए। तीसरा आतंकवादी बच निकला और भागने लगा। हंगपन दादा ने जख्मी होने के बाद भी उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इस दौरान उनकी एक आतंकी के साथ हाथापाई भी हुई, लेकिन उन्होंने इसे भी मार गिराया।
4: और इस तरीके से चार आतंकवादियों को मार गिराकर खुद भी शहादत को प्राप्त हुए। चलिए दोस्तों, भारत के इस शहीद को, हवलदार हंगपन दादा को, हम मरणोपरांत अशोक चक्र के साथ साथ इस गीत से भी सम्मानित करते हैं, उन्हें सल्यूट करते हैं। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो
5: मुस्कुराते रहो।
4: और गीत है
5: आरंभ है प्रचंड।

चंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।

करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध

जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में एक सुंदर सी कविता के साथ आगे बढ़ते हैं। कविता है केसरिया बलिदान का श्वेत अमन संदेश, रंग हरा संपन्नता का चक्र अशोक विशेष।
1: अद्भुत क्षमता के धनी, रण कौशल के साथ
0: अदम्य साहस
1: से लड़े उन्नत भारत साथ।
0: सीमाओं पर जो डटे रहे बन कर चट्टान, भारत माँ की शान पर दे दिया अपनी जान। अशोक चक्र से अलंकृत वो वीर महान, जिनकी वीरता पर हमें सदा है अभिमान।
1: मौत सामने खड़ी है पर वो घबराए नहीं, विमान के यात्रियों पर कोई आंच आने दे नहीं।
0: निर्जा ने भी अपनी जान देकर कितनों की जान बचाई, अशोक चक्र की चमक से उसने ये अमरता पाई। तो चलिए, अशोक चक्र मरणोपरांत हमारे विशेष सैनिकों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन गीत आप तक पहुंचाते हैं।

0: सुंदर कस्बे में एक दुखी राम नाम का आदमी अपने भाई सुखी राम और पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। दुखी राम और उसका भाई सुखी राम दोनों ही गांव में खेती किया करते थे और फल सब्जियां वगैरह उगाकर बाजार में बेचते थे। सुखी राम हमेशा अपने आप से खुश रहता था, जबकि दुखी राम उससे बिल्कुल विपरीत था। एक दिन सुबह सुबह दोनों भाई अपने अपने खेत में काम करते हुए,
1: कल रात को इतनी बारिश हुई लेकिन पता नहीं क्या, मेरी जमीन की तो ढंग से सिंचाई भी नहीं हुई है, लगता है मेरे खेत में बारिश कम हुई है।
2: अरे भाई, भला मैंने कौन से यहाँ पर स्पेशल बादल अपने खेतों पर बरसाए हैं? हैं? बारिश तो सब जगह बराबर ही हुई है।
1: रहने दो, तुम देख नहीं रहे हो हैं? मुझे फावड़ा चलाने में भी आफत हो रही है, कितनी सख्त है मेरी जमीन, और खुद देखो आधा खेत खोद दिया तुमने।
2: प्यारे भाई, हम दोनों सुबह साथ में खेत में आए थे, तब से मैं खेत में लगातार लगा हुआ हूँ और तुम कभी मुझे देख रहे हो कभी आराम में लग जाते हो, शिकायत छोड़ो काम करो।
1: अरे जाओ जाओ, बड़े आए नसीहत देने वाले हैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है।
3: कथा शुरू हो गई, अब बताओ सुखी राम, मैंने कुछ गलत कहा था क्या? ऐसी लीला तो हमारे चंबा में ही देखने को मिलती है, जहाँ सुखी राम हमेशा खुश और दुखी राम रोता हुआ मिलेगा।
1: सुखी राम, तुमने आज बहुत गलत किया है मेरे साथ।
2: भाई, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी बस।
1: अरे सुनो भाई।
0: शाम के वक्त चाय की टपरी पर कुछ लोगों के साथ मुखिया भी गप्पे लड़ा रहा होता है, तभी वहाँ दुखी राम आता है।
4: आओ भाई दुखी राम, कैसे हो? अरे रमेश, अरे दुखी राम के लिए चाय का गिलास लाओ भाई।
1: धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद।
5: लो भाई गर्मा गर्म चाय पियो।
0: दुखी राम चाय लेता है और पीने लगता है।
3: अरे साथ में मट्ठी तो दो रमेश भाई, दुखी राम को अकेले चाय पिलाओगे बस है?
0: रमेश मट्ठी भी दुखी राम को देता है।
1: अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है मेरा, चाय फ्री में और साथ में मट्ठी भी।
4: अच्छा भाई रमेश, चलते हैं है? चाय के पैसे का तो तुझे समझा दिया है।
5: जी मुखिया जी, ठीक है।
3: रुकिए मुखिया जी, मैं भी चलता हूँ, मुझे काम से पठानकोट के लिए बस पकड़नी है, वो मेरी बुआ हॉस्पिटल में है वहाँ।
0: और कलुआ मुखिया जी के साथ वहाँ से खिसक लेता है।
6: अरे रमेश भाई, क्या मस्त चाय बनाई है आपने, मजा आ गया। अच्छा रमेश भाई, चलता हूँ, जरा मुझे काम से जाना है।
2: हाँ भाई, काम से सबको ही जाना है, तुम्हारा टोटल 90 रुपए हो गया, 3 चाय और 3 मट्ठी।
1: हैं? क्या बोल रहे हो रमेश भाई, मुझे तो चाय मुखिया जी ने पिलाई है ना।
5: खाक मुखिया जी ने पिलाई है, उन्होंने कहा था कि आज की चाय मट्ठी दुखी राम की तरफ से है, और जब वो गए तब बता कर गए कि चाय का हिसाब मैं तुमसे कर लूं।
1: अरे ये बुढ़ाऊ मेरा उल्लू बना गया, किसी दिन इसे नदी में धकेल दूंगा, बता रहा हूँ।
0: और ना चाहते हुए भी सारे पैसे देकर बड़बड़ाता हुआ रावी नदी के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर आकर बैठकर अपनी जिंदगी को कोसने लगा।
1: क्या बेकार जिंदगी है इंसान की, बस दुख तकलीफ है और मेरी जिंदगी तो परेशानियों से भरी है, धिक्कार है मुझे इस जिंदगी पर।
0: तब दुखी राम सामने खुले आसमान में उड़ते हुए एक बाज को देखता है, और देखते ही देखते वो बाज आसमान से नीचे जमीन पर डुबकी लगाते हुए अपने पंजों में एक सांप को दबोच लेता है, और दुखी राम के बिल्कुल सामने एक सूखे हुए पेड़ पर बैठकर उसे खाने लगता है।
1: अरे वाह, क्या शाही जिंदगी है इस बाज की।
0: देखते ही देखते बाज अपने शिकार को खा लेता है और वहाँ से फिर आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाता है।
1: मजा आ गया देखकर भाई, सच में राजाओं की जिंदगी जीता है ये बाज, काश मैं इंसान ना होकर बाज होता। हे भगवान, मुझे नहीं रहना इस इंसानी वेश में, मुझे इस बाज की तरह आसमान में उड़ना है, ना कोई फिक्र है ना कोई टेंडर, बकरियां चराओ,
2: कई बार सच्चे दिल से कही बात सच हो जाती है, तो हमें हमेशा जो भी कहना चाहिए बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए।
6: अगर सच्चे दिल से कही बात सच होती ना, तो मैं अभी बाज बनकर नीले गगन में उड़ जाता।
2: सोच लो बेटा।
6: ए चाचा, आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे अभी आप तथास्तु बोलोगे और मैं बाज बन जाऊंगा।
2: तथास्तु।
0: और देखते ही देखते दुखीराम बाज में बदल जाता है और नीले आसमान में उड़ जाता है।
6: अरे वाह, अरे ये चाचा तो सच में भगवान का रूप निकले। अरे मैं तो बाज बन गया। अरे अरे, मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। अरे अरे वाह, अरे वाह, मैं बाज बन गया। अरे वाह, मजा आ गया।
5: अब जब चाहे खाओ, जब मर्जी मौज उड़ाओ।
6: पंछी बनू, उड़ता फिरू मस्ती गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
0: उसके बाद दुखीराम पूरे दिन मस्ती से आसमान में उड़ता रहता है। शाम के वक्त जब दुखीराम थक गया तो रहने के लिए जगह ढूंढने लगा।
6: काफी थकावट हो गई आज, ना भूख भी लगने लगी है। अरे वाह, क्या बात है।
4: अरे वाह, क्या सुहानी हवा चल रही है, लेकिन यहाँ मजा नहीं आ रहा। चलो बादलों के ऊपर चलकर हवा खाता हूँ।
0: दुखीराम उड़ान भरता है और कुछ ही वक्त में आसमान में बादलों के ऊपर चला जाता है।
6: है ना जिंदगी के असली मजे। मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ और उधर मेरा बेवकूफ भाई खेतों में अपना समय बर्बाद कर रहा होगा। कितना बुद्धू है बेचारा सुखीराम।
0: तभी कुछ बदमाश कौवे आकर दुखीराम की पीठ पर बैठ जाते हैं।
6: अबे कल्लू, अबे अबे कल्लू, अबे मेरी पीठ पर क्यों बैठ रहा है, है? अबे वो तेरे अपने पंख काम नहीं कर रहे हैं क्या? अबे अबे अबे नीचे नीचे उतर, चल चल हट बे।
0: कौवे नहीं मानते और उसको चोंच भी मारने लगते हैं।
6: अबे अबे ये तो ज्यादा हो रहा है, अभी बताता हूँ, रुको।
0: दुखीराम बादलों के ऊपर की तरफ उड़ान भरता है और कुछ ही देर में ऊंचाई ज्यादा होने के कारण कौवे नीचे भाग जाते हैं और दुखीराम बादलों के ऊपर उड़ जाता है।
6: अबे है, क्या हुआ, सवारी नहीं करनी, भाग कहाँ रहे हो बे, बैठो अब।
4: बड़े आए दुखीराम को परेशान करने वाले।
0: उसके बाद दुखीराम की नजर चाय की टपरी पर बैठे मुखिया और कलुआ पर पड़ती है।
4: अरे वाह रे मुखिया, चाय के पैसे मुझसे दिलवाए थे ना, रुक आज तेरी पगड़ी सरेआम उछालता हूँ, रुक तू।
0: दुखीराम उड़कर जाता है और मुखिया की पगड़ी लेकर उड़ जाता है।
7: अरे बचाओ, अरे अरे भैया बचाओ, अरे ये बाज मुझ पर हमला कर रहा है, अरे मेरी पगड़ी कहाँ ले जा रहा है, अरे रुक जा। अरे
4: अरे मुखिया जी, ये क्या, आपकी तो सारी खेती उजड़ी हुई है।
7: अबे चुप कर हरामी।
0: और बाज के पीछे कुछ देर तक भागकर रुक जाते हैं।
7: अरे मर गया, अरे करम जले कलवा कहाँ गया रे, मेरी पगड़ी लेकर। सारे गांव में किसी को नहीं पता कि मैं गंजा हूँ, जल्दी जा, मैं यहाँ पेड़ के पीछे छिपा हूँ। अरे मुखिया जी, वो बाज है, वो तो सामने आसमान में गायब हो गया, कहाँ से लाऊं आपकी पगड़ी।
0: दोपहर के वक्त सुखीराम घर पर।
2: आज दो दिन हो गए दुखीराम घर पर नहीं आया है, वो सही सलामत तो होगा ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
0: आप क्यों फिक्र करते हो, कहीं अपने दोस्तों के साथ गया होगा, आ जाएगा।
2: पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ अनहोनी का अंदेशा सा लग रहा है, वो इतना वक्त घर से दूर कभी नहीं जाता। मैं ऐसा करता हूँ, गांव वालों से कुछ जानकारी लेकर आता हूँ।
0: अच्छा ठीक है। उसके बाद सुखीराम सीधा कनुआ नाई के पास जाता है।
2: कैसे हो कनुआ भाई?
8: बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो, कैसे आना हुआ, बाल कटवाने हैं या हजामत?
2: नहीं नहीं भाई, आज अभी कुछ नहीं करवाना है, बस जानकारी चाहिए थी कि कहीं दुखीराम को देखा हो तो।
8: अरे उसको तो परसों पप्पू ने रावी नदी के किनारे पहाड़ी के छोर पर बैठे देखा था, उसके बाद किसी को नजर नहीं आया।
2: नहीं नहीं भाई, मेरा भाई कहीं लोगों की बातों को दिल में लगाकर रावी में तो नहीं कूद गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
8: परेशान मत हो सुखीराम, लेकिन अगर दो दिन से गायब है दुखीराम तो कुछ गड़बड़ तो जरूर है भैया।
0: गांव के लोग और सुखीराम सब जगह दुखीराम को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता और थक हार कर उसे लापता मान लेते हैं। उधर पेड़ पर बैठा दुखीराम सब देख रहा होता है।
4: ए, कितने बेवकूफ है बड़े भैया,
0: सा घोंसला बनाकर उसमें सो जाता है। सुबह सूरज की किरणों के साथ उठता है।
4: बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कोई शिकार ढूंढना होगा।
0: इसके बाद दुखीराम हर रोज की तरह शिकार ढूंढने निकल जाता है, लेकिन पूरा दिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। दोपहर बाद वो भूख से बेहाल अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है।
6: क्या पता आज भैया मुर्गियों को दाना चुगने के लिए छोड़े तो मेरा पेट भर जाएगा।
0: थोड़ी देर में सुखीराम घर से बाहर आता है और सामने बैठे बाज को देखकर,
2: भाग यहाँ से, पहले भी मेरी मुर्गी तू ही ले गया था,
0: और ऐसा बोलकर पत्थर से बाज को उड़ा देता है।
6: अरे भैया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अब कैसे आपको अपनी बात बताऊँ।
0: वहाँ से उड़कर दुखीराम अपने घोंसले पर आ बैठता है और वहाँ से नीचे काम कर रहे कनुआ पर बीट कर देता है।
2: अरे ये कहाँ से इस आफत ने घोंसला बना लिया यहाँ, रुक तुझे अभी बताता हूँ।
0: और एक पत्थर घुमाकर मारता है जिससे बेचारा दुखी राम वहाँ से उड़ जाता है।
6: अरे अरे अजीब पागल है, इतनी जोर से मारता है कोई, अभी मेरा सिर फूट जाता। अब कहाँ जाऊँ, भूख के मारे अब उड़ा भी नहीं जा रहा।
0: तभी रात हो जाती है और एक सूखे से पेड़ पर दुखीराम जल्दी जल्दी में एक घोंसला बनाता है और ठंड में पंखों के बीच गर्दन छुपाकर सो जाता है। आधी रात को बहुत तेज बारिश होती है, सब तरफ तूफान और आंधी चलती है, जिसकी वजह से दुखीराम अपने घोंसले के साथ उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। गिरने से उसके एक पंजे में पैनी लकड़ी घुस जाती है।
6: अरे मर गया रे, हाय बहुत दर्द कर रहा है मेरा, पंजा तो गया, अब मैं क्या करूं।
0: जैसे तैसे अपनी चोंच से उस लकड़ी को तो दुखीराम निकाल फेंकता है, लेकिन उसका पंजा अब शिकार नहीं पकड़ सकता था।
6: अब मैं शिकार कैसे कर पाऊंगा, मुझे क्या पता था कि ये मुसीबतें भी होती होंगी बाज बनने के बाद, इससे तो मैं इंसान ही भला था।
0: सुबह होती है, बारिश के बाद सब तरफ हरियाली छा जाती है, सभी किसान खुशी खुशी अपने खेतों पर जा रहे होते हैं और दुखीराम भूख से बेहाल और दर्द से परेशान था।
6: मैं ही पागल था जो बाज बनना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ खाने को ढूंढता हूँ। चल दुखीराम, ले अब और उड़ने के मजे।
0: उसके बाद वो फिर हवा में उड़ने लगता है। तभी कुछ बदमाश कौवे उड़ते हुए आते हैं और उनमें से एक दुखीराम की पीठ पर बैठ जाता है और कुछ उसे चोंच मारकर तंग करते हैं।
6: अबे ये क्या कर रहे हो, अरे कहां से आ गई ये बला, अरे भागो यहाँ से।
0: कौवे नहीं मानते।
6: अभी कुछ खाया पिया नहीं है, नहीं तो बताता तुम सबको। अबे अबे चोंच मत मारो, अबे दर्द होता है बे।
0: बेचारा दुखीराम क्या करता, वो हवा में और ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूख और कमजोरी के कारण उड़ नहीं पाता और थक हार कर एक पुराने खंडहर की छत पर जा बैठता है।
6: अगर इंसान होता तो किसी से मदद मांग लेता, किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेता, लेकिन अब ऐसी हालत है कि कोई भी ना तो मेरी बात सुन सकता है और ना मेरा दुख समझ सकता है। मैं क्या करूं,
8: क्या करूं, भगवान मुझसे गलती हो गई। इंसान को भगवान जितना दे, जैसे दे, उसे हंसकर स्वीकार करना चाहिए और खुशी से जिंदगी का आनंद लेना चाहिए, जैसे मेरे भैया सुखी राम जी कर रहे हैं। मेरी तरह हमेशा शिकायत करोगे, रोते रहोगे, तो अंजाम वही होगा, क्योंकि भगवान हमें वही देता है जो हम मानते हैं।
0: इसी तरह कुछ दिन बीत गए। दुखी राम बहुत कमजोर और मरने की हालत में था। तभी अचानक उसके सामने एक मरा हुआ चूहा आ गिरता है, जिसे देख दुखी राम को एक आस होती है कि शायद वो बच जाएगा।
8: शायद भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरे अंदर वो ताकत भी नहीं कि मैं अपनी चोंच को तोड़ूं और नई चोंच आने का इंतजार करूं।
0: ये कहता हुआ बेचारा दुखी राम बहुत रोता है, लेकिन मजबूर कुछ नहीं कर पाता। इस तरह दुखी राम उस पुराने से खंडहर में कई दिनों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा और अंत में अपना दम तोड़ दिया। हमें

0: वेल दोस्तों, वक्त हो चुका है आज के होमवर्क का। दोनों मित्र
1: विजय के नशे में झूमे चले जा रहे थे।
0: दोनों मित्र कौन?
1: हीरा और मोती। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालो।
0: हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए।
1: यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे।
0: अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे।
1: सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया।
0: हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया।
1: हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों साथ फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए।
0: दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ भी ना आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियाँ, कोई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे।
1: सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर, कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती।
0: रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती।
1: मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं।
0: इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले।
1: मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा।
0: बस इसी बूते पर अकड़ते थे,
1: सारी अकड़ निकल गई।
0: बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उस अपने नुकीली सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल आया।
1: फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें मारी और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला।
0: हीरा का ये उजड़पन देखने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी बांध दिया।
1: मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला।
0: अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए।
1: जोर तो मारता ही रहूंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए।
0: जान से हाथ धोना पड़ेगा।
1: कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुल जाती तो कितने जानवर यहाँ से बच जाते, इतने भाई यहाँ पर बंद है।
0: किसी की देह में जान नहीं है, दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे।
1: हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा।
0: थोड़ी सी मिट्टी और गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई दो घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई।
1: उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीन घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के ज्यों खड़े थे।
0: हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते।
1: एक गधे ने कहा, जो कहीं पकड़े गए तो।
0: तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है।
1: हमें तो डर लग रहा है, हम यहीं पड़े रहेंगे।
0: आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए।
1: मोती ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं।
0: हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है।
1: मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो क्या चिंता है, इतना तो हो गया है और 9-10 प्राणियों की जान भी बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ना।
0: ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों की सींग से मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की तो जरूरत ही नहीं। बस इतना ही काफी कि मोती की खूब
1: मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया।
0: बस और क्या था, आगे का होमवर्क कल। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए हम कहेंगे, उड़ान से कहना चाहेंगे, गुड बाय।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, पीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, हाँ पीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। रसगुल्ला ले बोले लूचक मुँह में रखा गप से, रसगुल्ला ले बोले लूचक मुँह में रखा गप से, नरम नरम था बड़ा गरम था जीप जल गई लब से, नरम नरम था बड़ा गरम था जीप जल गई लब से। बंदर मामा फेंक पजामा आंसू भर भर रोए, हाँ बंदर मामा फेंक पजामा आंसू भर भर रोए, घर पर आए थे झल्लाए बिस्तर पर जा सोए, हाँ बिस्तर पर जा सोए, देखो बिस्तर पर जा सोए।
3: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, शहर में जाते हैं, सभी से मिलते हैं, कोई खुलाना न दे जे हमारे पास रेडियो मधुबन पहुंचाना है। लेकिन आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमें बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि आप आज कुछ नवीनता इनोवेटिव कार्यक्रम सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिलेगा जिसमें हम चाहते हैं रहना खाना पीना उठना बैठना हमारा कैसे होना चाहिए, और हम करते हैं फिर भी कभी कोई छुप जाते हैं, जिसका चलते रेडियो मधुबन आपका पास पहुंचता है। लेकिन आज स्टूडियो से ही आपको रूबरू कराएंगे आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। आप सबको विदित है रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। क्योंकि सरकार का जो मंशा है हमारा गांव और अंचल में सबका पास रेडियो पहुंचे और सभी रेडियो में जुड़े हुए। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा और एक्सपर्ट भी पहुंचे।

0: समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कैसे आप अपना खान पान और जीवन शैली को सात्विक बना सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो अगर शरीर में कोई भी रोग होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो वो खुद ब खुद चली जाती है। और जो जैसा हमारा स्वास्थ्य बना है, जैसा जैसा वो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए हमारा शरीर, वैसा बनता जाता है, ना कि वैसा जो हमने आज उसको बना दिया। तो जो भी अंदर आलसीपन होता है हमारे शरीर में, या बीमारियां होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचने का कोशिश करते हैं लेकिन अच्छे से सोच नहीं पाते, ब्रेन फॉग हो जाता है, तो ऐसे जो भी हमें अपने मन में और शरीर में जो समस्याएं होती है आज के दिन, वो इस जीवन शैली को अपनाकर, इस खान पान को अपनाकर सब सही हो सकती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। मुझे पर्सनली बहुत सारी बीमारियां थी जब मैं बहुत छोटी उम्र की थी, और मैं हमेशा उनके लिए दवाइयां लेती रहती थी। तो मैं हर रोज काफी सारी पिल्स लेती थी, अलग अलग रंग बिरंगी पिल लेती थी अलग अलग बीमारियों के लिए शरीर में। तो जब इसको अपनाया तो अपने आप सारी दवाइयां छूट गई, क्योंकि इसी जीवन शैली को अपनाकर, इसी खान पान को अपनाकर सब कुछ ठीक हो गया शरीर में। तो फिर अंदर से बहुत हिम्मत आई, बहुत कन्विक्शन आई कि इसको आगे बांटे और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि हम विश्व को सात्विक, एक सात्विक गुण की तरफ, एक सचो गुण की तरफ आगे बढ़ा पाए। तो यही हमारा छोटा सा परिचय है।
1: गुड, बहुत अच्छा। इतना छोटा सा परिचय में सब कुछ समय हुआ, शॉर्ट एंड स्वीट में, इतना मीठा में बहुत खुशी लगा। और हमारा श्रोता मित्र भी ध्यान से सुन रहे हैं, और उनका तरफ से क्लैपिंग भी आपके लिए, इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिए। और हमें ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये जैसे आपका एक संस्था है, ये भी एक संस्था है, ईश्वरीय स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पूरा देश विदेश के लोग आते हैं, तो उसे स्पिरिचुअलिटी लेकर जाते हैं, क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं रहेगा तो सब चीज अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारा जो डाइट है, इनपुट जो लेंगे वो निकलेगा। तो आप अच्छा एक टॉपिक पर मनन चिंतन करके हमारा श्रोता मित्र को फायदा जरूर मिलेगा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में सब चीज बता दिए इस हिसाब में। तो एक कम्युनिटी रेडी होने के नाते, कम्युनिटी में जो आसपास यहाँ का जो ट्राइबल एरिया है, खासकर एसटी एससी लोग ज़्यादा रहते हैं, 90% लोग, क्योंकि जंगल एरिया, माउंट आबू तो आप जानते होंगे। फिर भी हमारा जो नेट का माध्यम से, लिंक का माध्यम से, एप्लीकेशन माध्यम से दूर दूर से लोग सुनते हैं, लिसनर हमारा, पूरा विदेश में भी सुनते हैं, क्योंकि एक वैल्यू बेस्ड पूरा संस्था ब्रांडेड है, क्योंकि भगवान का संस्था है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका चलते पूरा आउटरीच अच्छा है। और आप लोग भी आए तो हमें बहुत खुशी हुआ, क्योंकि आज का कार्यक्रम को आप लोग सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे, और खान पान को लेकर तो अच्छा लगा। और जब गांव अंचल सुनते, एरिया विलेज नाम सुनते, आपको क्या मन में आता है? जैसे सिटी में आप रहते होंगे, टाउन में, लेकिन एक गाँव का परिवेश आप किसको प्रेफर करेंगे, गाँव को ना शहर को?
0: प्रेफर करेंगे जी, हम ऐसे जगह को प्रेफर करेंगे जहाँ दोनों का बेस्ट हो।
1: गुड,
0: हाँ, क्योंकि गांव की अपनी इतनी सारी वो होती है, बेनिफिट्स होते हैं, हवा एकदम साफ होता है, पानी साफ होता है, खान पान साफ होता है, और शहर में हवा में एकदम पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है, तो हम एक सात्विक जीवन शैली जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शहर में। गाँव में और आसान है सात्विक जीवन शैली जीना, लेकिन शहर में कुछ सुविधाएं भी होती है, जैसे अगर हमें ये काम करना हो तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें लोगों से मिलना पड़ता है, तो वो गांव में उतना आसानी से नहीं हो पाता, शहर में हो पाता। तो दोनों के अपने कुछ गुण हैं, दोनों के अपने कुछ लिमिटेशन है। तो अगर कोई ऐसी जगह हो जो गाँव में, गाँव के साथ थोड़ा शहर हो, वो सबसे बढ़िया रहे।
1: होना चाहिए, एग्जैक्ट बात बताएं, क्योंकि दोनों क्यों आज गांव वाले शहरांचल जा रहे हैं और शहरांचल वाले गांव को आ रहे हैं, यही एक कारण है, क्योंकि दोनों जो बैलेंस रहेगा, दोनों आवश्यकता है। गांव वालों की एक मॉडल विलेज हो, जिससे अपना स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहे, स्वस्थ स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ व्यक्ति रहे, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गाँव हो, हेल्दी विलेज हो, हेल्दी इंडिविजुअल हो, तो सबको लेकर हेल्दी सब चाहते हैं, लेकिन हेल्दी में सब चीज आता है, जिसने आपने बताया ये होना चाहिए। और हमारा श्रोता मित्र भी कभी कभी बोलते हैं, हम गांव में क्या, हम बहुत बोर हो गए गांव में रहते रहते, थोड़ा शहर देखेंगे, उसमें इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखेंगे।

इंटरनेट का सुविधा मिलेगा, यहाँ तो FM नहीं चलता है, इंटरनेट तो हमें पहुंचता नहीं, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और जिसको कहते हैं मॉडल विलेज, एक राज ऋषि गोकुल गांव, जिसे सत्यजुग में परिक्रमा न जो करते हैं सत्यजुग, सब चीज सुविधा था, लेकिन आज वो चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। और जिसने आपने बताया गाँव और शहर का जो बैलेंस रहेगा, शहर में जो चीज है गाँव में भी हो, गाँव का जो चीज है वो शहर में भी हो, शुद्धता पवित्रता भोलापन गांव में देखने को मिलता है, और हाई फाई तो शहर में होता है। तो सिंपल जीवन तो दोनों का आवश्यकता समय का अनुसार। तो अचानक आप रेडियो मधुबन में इंटरव्यू देने के लिए आपको स्वागत किए, श्रोता मित्र भी बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे जो हमारा खान पान शुद्ध हो के क्या खाऊ, कैसे खाऊ, कब खाऊ, उसको प्रश्न होता कितना परिमाण से खाऊ, तो उसके ऊपर मैं एक आलोकपात कराइए। सभी के लिए आवश्यक क्या खाना चाहिए, कितना क्वांटिटी खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, सुनेंगे रहस्य को, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, अगला लिंक में सुनेंगे। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन अल्प विराम का बाद आपसे फिर रूबरू होंगे। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आप सबसे रूबरू होने के लिए हमारा साथ सुभा जी है। नाम कितना सुंदर है, आज का हमारा कार्यक्रम शोभनीय बन गया सुभा का चलते, और है तो पवित्र तो दोनों का एक क्वालिटी है, गुण है। तो आपका नाम कौन रखा है सुभा जी?
1: मेरे मम्मी पापा बचपन में।
0: अरे वाह क्या सुंदर नाम। हमारा एक आरजे भी है शोभा, वो सेटलिंग करता रेडियो मधुबन का, उनका नाम भी सुबह से लेकिन उनको हम सुबह सुबह बोलकर डरते हैं सुबह। तो आप भी हमारा आज बन गए आज समय के लिए सुबह जी, क्योंकि हमारा सुबह को तो जानते हैं क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग आप एंकरिंग करते हैं, होस्ट करते हैं। आप भी सुबह दोनों हमारा आज इस कार्यक्रम को सुंदर में वो तो सजा रहे, आप भी सजा रहे। तो चलिए देर किस बात की, जो पहले हम दिन का पहले बताए थे खान पान, सुबह उठते हुए हमको खान पान इच्छा होता है, पीना पानी फिर चाय फिर नाश्ता, उठते उठते हमारा संकल्प चलता है तो सबको दे देते हैं। तो उसके ऊपर मैं आज मास्टरी किए हैं, तो आपका जो बैकग्राउंड है हमें बहुत खुशी लगा। तो इधर किस बात की, क्या खाना चाहिए, कितना परिमाण में खाना चाहिए, और क्यों खाना चाहिए, और कब खाना चाहिए, क्यों कब क्या कैसे चलिए
1: पूरा कोशिश करेंगे समझाने।
0: अरे आप तो एक्सपर्ट है हम सुनाइए।
1: तो अगर हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें हमें शरीर में हल्कापन महसूस हो, काफी बार हम खाना ऐसा खाते हैं, भोजन ऐसा खाते हैं कि शरीर में एकदम आलस आने लगता है, या फिर भारीपन का महसूस होता है, या हम अपना काम भी कर रहे होते हैं दोपहर में लेकिन नींद आने लगती है, एक फुर्ती नहीं रहती शरीर में और ऐसे मन में फुर्ती नहीं रहती। तो ये बहुत इसका इसके जो जो हमारा भोजन होता है वो इसको डिटरमिन करता है, मतलब भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी एनर्जी में, ना कि सिर्फ एनर्जी में हमारे विचारों में भी भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जो शुद्ध नहीं होता, जो बहुत मिलावट होती है जिसमें, जो प्रकृति से नहीं आता, वो खाना खाके हमारा मन या हमारे विचार भी शुद्ध नहीं रह पाते, हमारे विचार भी ऐसे विचार आने लगते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो जिसमें गुस्सा होता है, जिसमें क्रोध होता है, जिसमें हम खुशी नहीं होती, हम दुख से भर जाते हैं हमारा मन हमारे विचार। तो चाहे हमारे विचार हो या हमारा दिन भर में एनर्जी लेवल्स हो, हमारा भोजन क्या है वो डिसाइड करता है काफी हद तक। सो भोजन अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर पहले हम समझेंगे कि क्या भोजन खाना चाहिए हमें, हम अभी जो हम भोजन खाते हैं वो काफी हमारे जो माता पिता थे जो वो खाते थे उससे निर्भर होता है, या फिर जो हम अपने आसपास वालों को खाते हुए देखते हैं, हम अपने दोस्तों को हम अपने परिवार को खाते हुए देखते हैं उससे निर्भर होता है, या फिर आज अब मुझे पता नहीं गांव में कितना हो रहा है लेकिन शहरों में तो जो हम मार्केट में जाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, बिलबोर्ड्स देखते हैं, उसपे क्या लिखा होता है उसके बेसिस पे हम अपना भोजन खाते हैं। लेकिन एक्चुअली हमने से बहुत लोगों को पता ही नहीं कि असली भोजन क्या है जो हमें खाना चाहिए, क्योंकि हम जिनको कॉपी करते हैं उनको देखते हैं काफी बार वो खुद बीमारियों से घिरे होते हैं, है ना, हम उनको देख के खा रहे हैं लेकिन काफी बार उनको भी अलग अलग बीमारियां होती है शरीर में, या फिर जो हम कंपनीज बोलती है कि आप मेरा बिस्किट खाओ आप मेरा चिप्स खाओ, हम वो देख के अपना भोजन अपना किचन को बदलने लगते हैं। उनका क्या मकसद होता है, उनका मकसद हमारा स्वास्थ्य तो नहीं होता, मकसद अपना प्रॉफिट अपना मुनाफा होता है। तो हम आज थोड़ा सा समझेंगे कि वो भोजन क्या है जो हमारे शरीर के लिए असल में बना है, जो हम सब प्रकृति से आए हैं। तो प्रकृति ने इस शरीर को असल में क्या खाने के लिए बनाया वो हम आज थोड़ा सा समझेंगे। तो ऐसा भोजन जो होता है जो हमारे शरीर के लिए बना उसमें चार गुण होते हैं।
0: चार गुण।
1: पहला गुण उस भोजन में जीवन होता है, जीवन शैली होती है उस भोजन में। तो अब क्या शब्द है जीवन शैली, भोजन में कैसे जीवन शैली हो सकती
0: है?
1: तो अगर आप मान लीजिए आप एक मूंग की दाल के बीज को लेते हैं
0: ओके,
1: आप उसको जमीन में बोते हैं, तो एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद क्या होगा?
0: अंकुरित होगा,
1: अंकुरित हो जाएगा, उसमें से छोटा सा पौधा निकाला,
0: राइट राइट।
1: लेकिन आप एक बिस्किट लेते हैं और उसको बोते हैं जमीन में, तो उसमें से पौधा निकलेगा?
0: नहीं, बिल्कुल
1: नहीं। अगर आप एक टमाटर लेते हैं उसको बोते हैं, क्या उसमें से पौधा निकलेगा? हाँ निकलेगा। लेकिन अगर आप उसी टमाटर का केचप बना देते हैं या कुछ और बना देते हैं, फिर उसको वो तो नहीं निकलेगा। तो ये जो टमाटर है या बीज है, उसमें ऐसा क्या है, उसमें क्या गुण है जो उस बिस्किट में नहीं है, जो उस चिप्स में नहीं है, जो उस नूडल्स के पैकेट में नहीं है, वो क्या गुण है? वो जीवन शैली उसको बोलते हैं, एक लाइफ फोर्स, एक प्राण शक्ति होती है इसके अंदर। तो जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है, हमारे शरीर में जाके वो क्या करेगा? हमारे शरीर को जीवन देगा, उसमें ऊर्जा पैदा करेगा, उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होगा। और जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, वो हमारे शरीर में क्या करेगा? डेड फूड है, तो वो हमारे शरीर को भी
0: डेड करेगा,
1: डेड बनाएगा, यानी कि
0: प्रोडक्शन
1: बीमारियां, हाँ, डिजीजेस से घेर लेगा हमारे शरीर को। तो शहरों में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है,
0: राइट,
1: कि हम खाना भोजन हम प्रोडक्ट्स ज्यादा खा रहे हैं। भोजन वो होता है जो पृथ्वी से आता है, जो पेड़ से आता है, जो पौधों से आता है, और प्रोडक्ट्स होते हैं जो फैक्ट्री से आते हैं। तो शहरों में तो हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स खाने लगे हैं,
0: राइट।
1: किचन में जाके अलमारी खोलेंगे किसी की शहर में, तो आप देखेंगे वहाँ पे बिस्किट के पैकेट, नूडल्स के पैकेट, केचप के पैकेट, सॉस के पैकेट, ये सब पड़ा हुआ होता है, सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं। गाँव में
0: जो कि रिफाइन होकर डब्बे में प्रोसेस से आया है,
1: जो कि कहाँ से आते हैं? खेत से तो नहीं आते, कहाँ से आते हैं? वो फैक्ट्री से आते हैं, वो फैक्ट्री में बनाया जाते हैं उनको,
0: राइट।
1: और ऐसा कैसे है कि अगर आप मान लीजिए, अगर आप घर पे कुछ टोमेटो केचप बनाए,
0: राइट,
1: तो वो कितने टाइम चलेगी आप बताइए? तीन चार दिन, तीन चार दिन में खराब हो जाएगी, है ना? अगर आप फैक्ट्री से लाए वो भी टोमेटो केचप, तो कितने दिन चलेगी? तीन चार महीने चल जाएगी। तो उसमें ऐसा क्या है जो उसको इतना टाइम चला देता है, फैक्ट्री वाले टोमेटो केचप को, जो कि घर वाले टोमेटो केचप तुरंत खराब हो जाते हैं? कुछ केमिकल
0: रासायनिक,
1: है ना? अभी केमिकल जो होते हैं वो उस प्रोडक्ट का क्यों डाला जाता है? उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो बाजारों की शेल्फ में ज्यादा दिन तक चल पाए, टिक पाए। लेकिन ये केमिकल हमारे शरीर की शेल्फ लाइफ को
0: पॉइंट,
1: है ना? हमारे शरीर को जीना था 100 साल, हम प्रोडक्ट खाते रहेंगे, जिएगा कुछ 80 साल, इससे कम। तो एक सिद्धांत ये है स्वस्थ रहने का, कि ऐसा भोजन खाओ जिसमें लाइफ हो। इसका सिंपल मीनिंग है, गांव में तो हम इतना एनीवेज खेत से खाते हैं भोजन, फल, सब्जी, अनाज, दालें,
0: पत्तेदार सब्जियां,
1: ये सब जीवन होता है इनमें। तो ये हमारा ये मैसेज रहेगा कि आप शहरों के इन्फ्लुएंस में ना आइए, कि शहरों में जो प्रोडक्ट्स खाने लगे हैं और जो कंपनीज होती हैं वो बहुत कोशिश करती हैं कि वो गांव गांव तक पहुंच पाए, गांव गांव में शॉप्स आने लगते हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर ना आइए, जो आपका खेत से बना खाना है असल में वो ही आपको सबसे ज्यादा स्वस्थ रखेगा जिंदगी भर। तो ये पहला सिद्धांत है,
0: जी जी,
1: कि जीवित आहार खाइए,
0: चाहे शहरांचल हो चाहे ग्रामांचल हो, जहाँ भी रहे, लेकिन जहाँ जीवित लाइफ जहाँ है वो चीज को लेंगे तो अच्छा है।
1: जीवित आहार खाएंगे तो जीवन मिलेगा, और डेड फूड खाएंगे तो वो
0: डेड मिलेगा,
1: हमें मृत्यु की तरफ लेके जाएगा, जल्दी मृत्यु की तरफ। दूसरा जो सिद्धांत है वो ये कि ऐसा भोजन खाइए जिसमें पूर्णता हो। पूर्णता का मतलब होलसम हो। तो अब जो लोग गांव में खेती करते हैं उनको तो पता होगा कि जो प्रकृति है वो हमें क्या देती है। वो हमें कभी चीनी तो नहीं देती, कभी चीनी का पेड़ तो नहीं होता, तो क्या देती है हमें? हमें गन्ना देती है, है ना? हमें खजूर देती है, भारत में नहीं बाहर खजूर देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस गन्ने को फैक्ट्री में लेके जाते हैं, उसको पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं, उसमें से सिर्फ उसकी मिठास निकाल लेते हैं और बाकी जो था उसको फेंक दिया, जो प्रकृति ने उसके साथ रफेज दी थी, फाइबर दिया था, उसको फेंक दिया, सिर्फ उसका मिठास को निकाल के कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो होता है इसका मतलब रिफाइंड हो जाता है, प्रकृति ने दिया गन्ना, हमने उसका बना दिया चीनी। अब वो चीनी हमारे शरीर में जाके ढंग से प्रोसेस नहीं हो पाती क्योंकि धरती ने हमें वो नहीं दिया। तो जितना ज्यादा हम ऐसा भोजन खाएंगे जो रिफाइंड है, उतना ज्यादा हम बीमारियों से घिर जाएंगे, और जितना ज्यादा ऐसा भोजन खाएंगे जो संपूर्ण है, मतलब उसमें से कुछ निकाला नहीं गया, जैसा दिया प्रकृति ने उसको जितना हो सके उसी रूप में खाया, वो बेस्ट है। तो हम सबको डिजर्ट्स खाना पसंद है ना, हम मिठाई सबको पसंद है, तो क्या मिठाई खाएं? एक सिंपल चेंज जो हम कर सकते हैं वो है सफेद चीनी को अपने किचन से बाहर निकाल के फेंक और उसकी जगह गुड़ खाएं।
0: ओके,
1: गुड़ कम रिफाइंड होता है, वो गन्ने से बनता है, आप देखेंगे उसका कलर भी डार्क होता है, चीनी का तो कलर भी व्हाइट हो जाता है, इसको इतना रिफाइन कर दिया जाता है इसका कलर भी निकाल के फेंक देते हैं। गुड़ का कलर तो कम से कम डार्क होता है, मतलब उसमें वो तत्व रह जाते हैं गन्ने के।
0: जी जी।
1: तो ये एक चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये चेंज कर सकते हैं कि जब हम अनाज खाते हैं, अनाज में आजकल बहुत मैदा वाला भोजन हम खाने लगे हैं, है ना? तो मैदा भी प्रकृति ने हमें नहीं दिया, हमने प्रकृति ने हमें क्या दिया,
0: गेहूं
1: दिया, पूरा गेहूं दिया, मिलेट्स दिया, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, सब मिलेट्स दिया, दालें दी, लेकिन मैदा तो हमने बनाया, हमने उस गेहूं को तोड़ मरोड़ के
0: उससे
1: सिर्फ एक चीज निकाल के मैदा बना दिया। तो मैदा हमारे शरीर में जाके अंदर चिपकने लगता है और हमारे शरीर में गंदगी के रूप में चिपकने लगता है। तो उसको छोड़ के जितना ज्यादा हम ऐसा अनाज खाए जो संपूर्ण है, जैसे कि अगर गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं को पूरा खाए, मतलब रोटी बना के खाया, जो भी जैसा भी खाना, लेकिन मैदा ना खाए, तो ये दूसरा हो गया। फिर एक और चीज जो हम कर सकते हैं अपना भोजन और संपूर्ण बनाने के लिए, वो है कि हम जो तेल होता है वो, जैसे कच्ची घानी का तेल जो होता है जिसमें केमिकल नहीं डाले जाते, वो खाए। फिर दूसरा टाइप ऑफ तेल होता है, वो होता है रिफाइंड ऑयल, उसमें बहुत केमिकल डाले जाते हैं, उसमें उसकी सुगंध को ठीक करने के लिए केमिकल डाले जाते,
0: रंग चेंज करने के लिए,
1: रंग चेंज करने के लिए केमिकल डाले जाते हैं। तो उससे हमारे शरीर में हार्ट डिजीज होता है, अलग अलग बीमार, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारा। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यानी कि कच्ची घानी का तेल हम वो अपने भोजन में डाले। तो अभी दो हमने डिस्कस किए, पहला हमने डिस्कस किया भोजन में जीवन होना चाहिए, दूसरा भोजन संपूर्ण यानी इसमें पूर्णता होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत जो हमारे भोजन

0: वो कि वो पेड़ पौधों से आना चाहिए और जानवरों से नहीं। तो हम जब ऐसा भोजन खाते हैं जो जिसमें मांस मछली अंडे होते हैं, वो हमारे शरीर को पचाने में बहुत मेहनत लगती है, हमारा शरीर जल्दी से पचा नहीं पाता। तो उसकी जगह हम वो भोजन खाएं जो धरती से आते हैं। मांस मछली अंडे से शरीर में बीमारियां पैदा होती है और जो उसका एनर्जी भी होता है उस प्राणी का, जब आप उसको मार के खाते हैं, आप सोचिए मरने से पहले उसको कितना गुस्सा आया होगा, है ना,
1: दुख भी,
0: उसको कितना दुख हुआ होगा, उसको कितना डिप्रेशन हुआ होगा। तो जब हम उस प्राणी को अपने अंदर लेते हैं, चाहे वो मछली क्यों ना हो, चाहे वो कोई चिकन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना, वो दुख वो हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। तो इसलिए हम सात्विक जीवन जो होता है या फिर क्या खाना चाहिए, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि हमारा भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशु पक्षियों से नहीं। और चौथा और आखिरी सिद्धांत कि भोजन ऐसा खाओ जो रस से भरा हो, जितना
1: जल तत्व,
0: हाँ, जिसमें जल तत्व ज्यादा हो। तो ऐसा कौन सा भोजन होता है, फल में बहुत जल होता है, सब्जियों में जल होता है, जो भी हरी पत्तियां होती है उनमें कितना जल होता है,
1: साग वगैरह।
0: तो हम ये सब खाते नहीं, हम सिर्फ अनाज खाते रहते हैं। तो अनाज भी खाओ लेकिन आधा अपना जो प्लेट है उसको कम से कम आधा तो सब्जियों या फिर अगर फल अवेलेबल है, अगर उग रहे हैं गांव में, तो फल भी साथ
1: संतरा मौसम वगैरह जो नहीं खाते उसकी रसदार सब्जियां ले सकते, फल फ्रूट ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो उससे हमारे शरीर बहुत हल्का रहता है। अगर हम बहुत ज्यादा बहुत एक्सेस में खाते हैं अनाज को और फल को पीछे छोड़ देते हैं, सब्जियों को पीछे छोड़ देते हैं, तो शरीर में भारीपन आने लगता है, क्योंकि अनाज वगैरह भारी होते हैं, फल हल्के होते हैं। तो अगर किसी को और हल्कापन महसूस करना है और हल्का खाना खाए और हल्का भोजन खाए, तो ये चार सिद्धांत है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं LWPW, ऐसा भोजन जो लिविंग हो, जीवन हो, W यानी होलसम हो, पूर्णता हो, P यानी प्लांट बेस्ड हो, पेड़ पौधों से आता, और वाटर रिच हो, W वाटर रिच हो यानी रस से भरा। अगर कोई ऐसा भोजन खाएगा तो वो कभी बीमारियों का शिकार नहीं बन सकता, उसको जीवन भर अपने माइंड में हमेशा एक अच्छे थॉट अच्छे विचार आएंगे, कभी उसको डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर, क्योंकि भोजन में इतना लाइटनेस है और ऑफ कोर्स शरीर हमेशा हल्का रहेगा। आज जो इतने सारे हम बीमारियों से गुजर रहे हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ये सब बीमारियां नहीं आएंगी
1: शरीर। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति और सुबह बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए। और इस पर विश्वविद्यालय के चार स्तंभ है, जिसने आपने एक स्तंभ बताया शुद्ध भोजन, जैसे अन्न वैसे मन, भोजन हमारा सात्विक हो, और आपका सात्विक टॉपिक चल रहा है, तो एक स्तंभ तो आप तो कवर कर दी, चार स्तंभ पिलर जो है, एक स्तंभ आप तो पिलर शुद्ध भोजन कर दी, करा दिए हमारा श्रोता मित्र को, और जो तीन रहा जो लेने वाला कौन लेंगे, हम लेंगे, हमारा श्रोता लेंगे, जो डाइट को शुद्ध भोजन देने वाला हम है, और हम हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हम पवित्र शुद्ध विचार होना चाहिए, संकल्प हमारा लेने के लिए ये होना चाहिए, जो इस पूरे विश्वविद्यालय में हु एम आई का टॉपिक सुनाते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो भी हमारा श्रोता मित्र भी ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो मैं जो हूँ, जो लेने वाला सात्विक, मेरा स्थिति, मेरा स्वरूप कैसे होना चाहिए, वो भी खुद को परखे, और खुद जब एक्सपर्ट हो जाएंगे उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अच्छा चीज ग्रहण करेगा ही, क्या लेना क्या नहीं लेना उसका कॉन्शियस आ जाएगा। आपका दो रास्ता बता दिए जाने के लिए, माउंट आबू से अबू रोड जाने के लिए दो रास्ता बता दिए, दो रास्ता तो उनको भी मालूम, लेकिन वो कंफ्यूज, उसका दिमाग काम नहीं करता, कब इधर जाओ क्या उधर जाओ। तो पहले हमारा जो पवित्रता को धारण करे और स्पिरिचुअलिटी में रहे तो जरूर ये सब अति सहज हो जाए, ये तो होना ही है, उसका साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी इसे पूजा पाठ भक्ति करते हैं, गाँव वाले शहर वाले सभी लोग भक्ति करते हैं ना, आप भी करते होंगे, करते हैं ना, भक्ति सबको आवश्यक पड़ता है, अगरबत्ती करते हैं, प्रे करते हैं, किसी बड़े को सम्मान करते हैं, वो भी होना चाहिए। और हम ये जब जो करेंगे, खान पान शुद्ध रहेगा तो हमारा कोई टेंशन नहीं रहेगा, बीमारी दूर होगा, तो हमारा दिव्य गुण भी आ जाएगा, वैल्यू बेस्ड हम बन जाएंगे, एक मॉडल विलेज के लिए एक आदर्श व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति मिल जाएगा। जो स्वस्थ व्यक्ति कैसे बनता है, ना खुद से बनता है, जब खुद परिवर्तन नहीं होंगे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोई भी कितना भी बिल कितना भी सुने, लेकिन पहले सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ये तो हो गया, फिर दिव्य गुण ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये चार स्तंभ है, पहले ब्रह्मचर्य पालन करना है, हुए मैं के बारे में जानना चाहिए, इसका शुद्ध भोजन करना चाहिए, और हर रोज सत्संग, खराब संग से दूर रहे, जैसे भोजन से खराब भोजन से दूर रहे, अच्छा भोजन से शांत रहे, सात्विक भोजन हो गया, ये सब करेंगे तो दिव्यता आ जाएगा, हमारा गाँव गोकुल का राज ऋषि गाँव बन जाएगा, जो हम सब चाहते हैं, क्योंकि गाँव को लेकर ही शहर बनता है। तो हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए सभी श्रोता मित्र की तरफ से, हमारा लिसनर जो सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो जाते जाते क्या की मैसेज होगा सिस्टर ऑडियंस के लिए, व्हाट इज योर की मैसेज टू आवर ऑडियंस?
0: कि अभी इतना सब कुछ बताया, तो मेरा नाम सुबा है और हम सात्विक मूवमेंट नाम की एक संस्था चलाते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं कि आप कैसे अपना जो स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, और आप अपना खान पान, अपना भोजन, अपना जीवन शैली को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम पिछले 7 से 8 साल से ये काम कर रहे हैं, और जो इस जीवन शैली को, एक सात्विक जीवन शैली को अपनाकर एक्चुअली अपनी लाइफ में, उनको बहुत फायदे दिखते हैं, अपने शरीर में भी और अपने मन में भी। मैं हूँ आपकी साथी सुबह सराफ। आने वाले त्योहार की आप सबको दिल से बहुत बहुत बधाई, आपका हर एक सपना पूरा हो, आप सदा खुश रहो। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे खासकर कि मैसेज का साथ दीदी सिस्टर सुभा जी के अनमोल बोल है, और सही में खान पान में कितना आवश्यकता, कितना क्वांटिटी होना चाहिए, कौन सा समय में खाना चाहिए, वो सब जानते हैं लेकिन कब कभी भूल जाते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच का माध्यम से हमारे जो दूरस्थ जगह में जो सुने, जहाँ पर इंटरनेट का सुविधा नहीं, जहाँ पर अभी भी पूरा पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो उनको ये कारगर साबित होगा, फलप्रद होगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ और एक एक्सपर्ट हैं, महान अनुभवी व्यक्तित्व है, तो उनको भी स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम आज, तो मैं पहले बताया था ना, बहुत सुंदर होगा, और हर्ष का साथ आज हमको बोलने के लिए मौका मिल रहा है, और हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर्ष जी भी उपस्थित है। तो हर्ष जी, आपको स्वागत करते हैं हमारा रेडियो कार्यक्रम में। आप धन्यवाद, आप अपना परिचय संक्षिप्त में बताइए।
1: मेरा नाम हर्ष है और सुबह से सुना, सुबह और मैं हम मिल के सात्विक मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं
0: जी।
1: एक सिंपल सी गोल है, एक सिंपल सी इच्छा है कि इस ज्ञान के बारे में, इस नॉलेज के बारे में और लोगों को पता चले और वो इसका लाभ ले सके और अपने जीवन को सफल बना सके और खुशमय बना सके। तो हमारा यही इरादा है और इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम चाहते हैं कि आप थोड़ा कुछ सीखे, अपने लाइफ में परिवर्तन लाए और खुशी से जिए।
0: सही में आपका जो चेहरा, जो स्माइलिंग फेस और हर्ष का साथ और हर्षित मुक्ता है, हर्षित मुक्ता भी एक गुण है, वैल्यू है, तो आपका नाम का सार्थक होगा। और धन्यवाद उनको देंगे जो आपको आपका नाम दिए। कौन दिए आपका नाम?
1: जैसे कि सुभाष ने कहा, मेरे भी माता पिता नहीं, मेरा नाम मेरे को हर्ष दिए।
0: गुड, कितने खुशी लग रहा, क्योंकि माँ बाप क्या सोच कर दिए थे, आपको तो मालूम नहीं क्या नाम होना चाहिए, लेकिन जब आपका मम्मी पापा सोच कर दिए होंगे, आज वो नाम सार्थक हो रहा। और आप कैसे लग रहा है नाम जो सुनते हैं?
1: बहुत खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है और नाम तो प्यारा है,
0: प्यारा है। सही होना चाहिए, इसलिए धन्यवाद उनको जो माता पिता सोच समझ कर देते हैं और वो नाम रोशन करते, नाम वाला करते, कहीं भी हो, जहाँ भी हो, उनको आज डेडिकेटेड अपना जो शो है तो उनके लिए, क्योंकि उनका बदौलत से आपका नाम आज रोशन हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे हम, क्योंकि इसका पहला हम सुभाष जी से बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन और क्या चीज रह गया जो आप फिलअप करेंगे?
1: जैसा कि आपने हमसे पूछा कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो आपने सबने सीखा क्या खाना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए उसके बारे में
0: जी।
1: तो कितना खाना चाहिए ये हर जन के लिए, हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, उनके खुद के पचाने की शक्ति पे निर्भर
0: होता है।
1: अगर हम ज्यादा भोजन, ज्यादा खाना पचा नहीं सकते, तो वो सेम भोजन क्यों ना कितना अच्छा हो, कितना सात्विक हो, वो हमारे अंदर जाके गंदगी पैदा कर सकती है। और अगर वो हम पचाने की शक्ति रखते हैं तो हम उस भोजन का पूरा फायदा उठा सकते हैं और उसमें से जितने गुण हैं वो ले सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं
0: जी।
1: तो डाइजेस्टिव पावर यानी कि पचाने की शक्ति पे निर्भर है हमारे क्वांटिटी। तो ये जैसे कि मैंने बोला, हर जन के लिए अलग होता है। तो जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग खेती में मेहनत करते हैं, जो लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं,
0: राइट,
1: उनका नेचुरली डाइजेस्टिव पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। पर जो लोग घर के काम करते हैं, यानी कि थोड़ा समय बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के पीछे काम करते हैं
0: जी,
1: जिनका हम बोलेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, बैठने का काम, उनकी पचाने की शक्ति नेचुरली कम होगी, क्योंकि उनके बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर उतनी ज्यादा है नहीं।
0: एज ऊपर भी, एज का भी फैक्टर पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। उम्र में थोड़ा डाइजेशन अच्छा रहता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पचाने की शक्ति भी कम होती है।
0: कोई बोला, अरे अभी तो मेरा खाना पीने का उम्र है, इसलिए डाइट को इतना कंट्रोल मत करो, वो चीज अलग है।
1: अच्छा डाइट खाना चाहिए, पर हाँ बिल्कुल, बच्चे हैं जो यंग है वो थोड़ा ज्यादा खाते हैं
0: जी, जी।
1: क्योंकि उनकी पचाने की शक्ति ज्यादा,
0: राइट,
1: तो जैसे उम्र 40-50 की होती है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट, भोजन की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में उतना पचाने की शक्ति रहती नहीं है, तो ज्यादा खाने की भी आवश्यकता रहती नहीं है। बट उम्र के साथ
0: जी जी
1: एंड लाइफस्टाइल के साथ भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना क्वांटिटी खाना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कमती खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए, मगर
0: क्वालिटी क्वालिटी भी खाना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी कितना खाना चाहिए। पर जो लोग बीमार हैं, जो लोग क्रॉनिक लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं, जैसे क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ज्यादातर उनके लिए थोड़ा कमती भोजन ही बेटर रहता है, उनको ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है ताकि हल्का खाना आराम से हजम हो सके, क्योंकि जब वो बीमार होते हैं तो थोड़ा हजमाने की शक्ति कम हो जाती है।
0: राइट,
1: वो भी एक और
0: राइट राइट बहुत अच्छा बात आ रहा है। और स्वयं हम लोग तो डेल खाते हैं, लेकिन कितना खाना चाहिए, कौन सा समय में खाना चाहिए, वो भी निर्भर करता है और अपना रुचि, जो खान पान खुद का पसंद होता है, पहनावा ड्रेस दूसरे का पसंद से हम पहनते हैं दूसरे को खुश करने के लिए, लेकिन हमारा जो इंजन है, हमारा जो हजम करने की जो क्रिया, शरीर का जो पार्ट्स है, उसी हिसाब से हम खाते। कोई आइसक्रीम खाता है तो उनको सर्दी पकड़ो, किसको आइसक्रीम कितना में दो, रात को भी दो तब भी कुछ नहीं होता है। तो उसका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई मेहनत ही है, कोई कल ऑफिस में कंप्यूटर में यूज करता है ऑफिसियर में, तो उनके लिए भी डाइट अलग हो सकता है। तो ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी जो जितना आवश्यकता है, ना ज्यादा ना कम,
1: बिल्कुल
0: वो लेंगे और आप हमको क्या सूट कर रहा है, कितना मात्रा में सूट कर रहा है, वो आपने सब जानते हैं। हमारे श्रोता मित्र भी होशियार है, क्योंकि होशियार को इशारा काफी है, बोलना नहीं पड़ता है। तो आप समझ गए हमारा लक्ष्य क्या है, कम खाए, अच्छा खाए और हेल्दी रहे, क्योंकि हमारा आदर्श गांव के लिए, मॉडल विलेज के लिए एक व्यक्ति हमारा लिसनर ही मेन है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो स्वस्थ परिवार होगा, हेल्दी फैमिली होगा, और हेल्दी फैमिली होगा तो हेल्दी विलेज आ जाएगा। मनुष्य एक व्यक्ति से निर्भर होता है, एक व्यक्ति यदि हेल्दी होगा तो परिवार हेल्दी होगा, और परिवार जो हेल्दी होगा तो गांव हेल्दी हो जाए, और गांव जब हेल्दी होगा तो हमारा राष्ट्र समाज क्या होगा, हेल्दी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना जीवन शैली को जैसे हम शोभा जी और हर्ष जी बताए उसको फॉलो करेंगे तो और अच्छा कामयाब तो पहुंच पाएंगे, और हमारा रेडियो मधुबन का जो पांच जो कोशिश यथार्थ हो पाएगा। तो इन सुभावना के साथ हर्ष जी और कुछ रह गया जो कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए।
1: नहीं, इतना सब आपने जो सीखा है उनमें से कुछ एक
0: राइट
1: को भी पकड़िए और फॉलो करिए, तो अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे, उससे आपको शक्ति मिलेगी और दूसरे बदलाव लाने के लिए। तो कुछ भी एक, जो कुछ जिसको भी पसंद आया हो या जिसको समझ में आया हो, उसी से शुरुआत करें। सब कुछ एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे फिर बहुत कुछ बदलेंगे तो शायद मुश्किल भी हो सकते हैं। तो शुरुआत छोटे से करिए, फायदे जैसे जैसे मिलेंगे इच्छा अपने आप बढ़ते जाएगी।
0: क्या बात, क्या बात, ये आपका की मैसेज है। पूछने का पहले ही बता भाई, शुरू से एक से शुरू करिए, नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। इन शुभावना के साथ आप और हमारा शुभा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोता मित्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को शुक्रिया, आभार।

अरे पेट के खातिर रोज कमावे तो भी यो भरवान नहीं आवे, पेट के खातिर रोज कमावे तो भी यो भरवान नहीं आवे। हर डाटो संतोष को लगा ले, अरे डाटो संतोष को लगा ले, माया की नगरी में कहीं आयो रले।

0: चालों धीरा बांध गठली में।
1: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
2: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। रेडियो मधुबन के प्यारे श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके सबसे मनपसंद, सबसे एनर्जेटिक शो खुशी के नगमे, दिल की बातों में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केवल, बिल्कुल नए अंदाज और ढेर सारी मस्ती के साथ। अरे दोस्तों, आज तारीख है 27 मई 2027, 2027 27 05। गर्मी पूरी तरह से फॉर्म में है। जी हाँ, आज गर्मी भी फॉर्म में है और हम आईपीएल के मैच के स्कोर्स भी देख रहे हैं, जहाँ सूर्यवंशी जी भी आज फुल फॉर्म में है। जी हाँ, उन्होंने अभी तक 50 मार दिए। राजस्थान 6 ओवर में 80 रन मार चुकी है। तो गर्मी पूरी तरह से फॉर्म में है, पर हमारी मस्ती और ठंडक उससे भी ज़्यादा फॉर्म में है। तो चलिए अगले एक घंटे के लिए दुख, दर्द, टेंशन और उस शर्मीली पड़ोसिन की चुगली सब भूल जाए, क्योंकि अब वक्त है सिर्फ खुशी का और दिल की बातें करने का। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है, सूरज देवता ऊपर से पूरे फुल ऑन मूड में है, आग बरस रहे हैं। ऐसे में जब आप धूप से तपते हुए घर आते हो और फ्रीज से ठंडा ठंडा पानी या रास्ते में वो गन्ने का रस मिल जाता है, उफ, सब दिल से जो आह निकलती है ना, वही तो असली खुशी है। दोस्तों, खुशी को बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, खुशी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। खुशी तो उस तीसरे समोसे में जो मम्मी आपके मना करने के बाद भी आपकी प्लेट में रख दे, है ना, वही खुशी है ना।

आपकी मौजूदगी से ही रोशन है ये महफिल मेरी, आपकी मौजूदगी से ही रोशन है ये महफिल मेरी, आप मिले तो जैसे मिल गई हो मंजिल मेरी। शुक्रिया कैसे अदा करूँ आपका इस ज़िंदगी में आने का, आपके आने से ही तो शुरू हुआ है ये दास्तां मेरी। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बहुत ही बेहतरीन नगमा सुना है। क्या सादगी है इन लफ्ज़ों में। आज के दौर में हम थैंक यू तो बहुत बोलते हैं, पर क्या कभी किसी से इतनी नज़ाकत से कहा है कि कदम चूम लूँ या कि आंखें बिछा दूँ, करूँ क्या ये मेरी समझ में ना आए। दोस्तों ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक एहसास है उस इंसान के लिए जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपका कोई पुराना दोस्त हो, या वो ख़ास इंसान जिसे देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। आज इस गाने के बहाने क्यों ना हम किसी को शुक्रिया कहें, क्योंकि ज़िंदगी में लोग तो बहुत मिलते हैं, पर हुजूर बनकर कोई आता है। तो मेरी तरफ से सभी को, जो भी मेरे को सुन रहे लिसनर सभी को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब है एक वक्त कि आज है आईपीएल की एलिमिनेटर्स का मैच, जिसमें एसआरएच यानी कि हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स खेल रही है आमने सामने। राजस्थान पहले बैटिंग करते हुए 104 रन बना चुके सिर्फ 7 ओवरों में। जी हाँ, जायसवाल और हमारे वैभव सूर्यवंशी जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में है, इस साल के सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। सो सूर्यवंशी जी को भी थैंक यू सो मच। दोस्तों अब वक्त है एक पहेली का। जी हाँ, तो जो भी हमें सुन रहे अपने फ़ोन को अपने पास ले लीजिए और ध्यान से इस पहेली को सुनिए, इसका जवाब आपको देना है। पहेली है, एक ऐसी गाड़ी जिसके ना पहिए है ना पेट्रोल की मार, एक ऐसी गाड़ी जिसकी ना पहिए है ना पेट्रोल की मार, फिर भी वो सबको करवाती है दुनिया की सैर, बिना हलचल के भी वो आपको मीलों दूर ले जाती है, बताओ कौन है वो जो बैठे बैठे आपको सुलाती है। फिर से एक बार पहली को दोहराता हूँ, एक ऐसी गाड़ी जिसके ना पहिए है ना पेट्रोल की मार, फिर भी वो सबको करवाती है दुनिया की सैर, बिना हलचल के भी वो आपको मिलो दूर ले जाती है, बताओ कौन है वो जो बैठे बैठे आपको सुलाती है। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए 9414151415 यानी कि 9414151415 पर। तब तक आप सुनिए ये अगला प्यारा सा बेहतरीन सा नगमा, क्योंकि थोड़ी दिल की बातें करते हैं। कल मुझे रास्ते में एक जनाब मिले बिल्कुल सीरियस फेस बनाते हुए। मैंने पूछा, भाई साहब क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो? तो बोला, यार लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। मैंने कहा, सर जी स्ट्रेस तो GST की तरह है, हर चीज़ पर लगता है, पर मुस्कुराहट पर कोई टैक्स नहीं है। हम हंसते तो है, हमारे आसपास के माहौल बदल जाता है। गौर से फरमाइएगा, हम हंसते हैं तो हमारे आसपास का माहौल बदल जाता है। आपकी एक स्माइल किसी का दिन बना सकती है, और सबसे बड़ी बात, स्माइल करने पे पैसे नहीं लगते हैं। तो अभी हाँ आप ही है से कह रहा हूँ, जी हाँ, तो अभी हाँ आप ही से कह रहा हूँ जो फ़ोन हाथ में लिए ये शो सुन रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराओ बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हंस रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। इसी प्यारी सी स्माइल के साथ सुनते हैं दिलों को छू लेने वाला ये प्यारा सा नगमा, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: वेलकम बैक दोस्तों। इस गाने के बारे में हम बात करें उससे पहले फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ क्रिकेट स्टेडियम में, बिकॉज आज है राजस्थान की टीम खेल रही है एलिमिनेटर्स सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। दोस्तों अभी अभी वैभव सूर्यवंशी जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र के हैं, उन्होंने एक और रिकॉर्ड बना से कुछ ही गेंदों से चूक चुके हैं। अभी अभी उनका विकेट गिरा है 97 रन पे सिर्फ 29 बॉल खेल के, यानी कि अगर एक बॉल और खेल लेते तो शायद उनकी सेंचुरी हो जाती और सबसे तेज शतक बनाने का उनका ये रिकॉर्ड भी बन जाता। खैर अभी राजस्थान 127 रन पे है, लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपने कॉलर से बात। चलिए आइए। हेलो
1: जी, नमस्कार भाई जी।
0: नमस्कार बुरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ, आनंद ले रहा हूँ आपका प्रोग्राम का।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: इस प्रोग्राम में मेरा भी एक गाना मिला देना सर।
0: बिल्कुल बताइए, गाने के बोल सुनाइए।
1: गाने के बोल सुना दो
0: जी। बिल्कुल।
1: तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरा भी रोशनी देता रहता है।
0: क्या बात है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है।
1: अच्छा माहौल बन जाता है इससे।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा सर।
1: हमारे को रचना अच्छा लगता है कि बात मत पूछो आप।
0: सही बात, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: सब छोड़ करके और मजे मस्ती में लूट जाते हैं हम।
0: क्या बात है।
1: इसलिए आप ऐसे ऐसे गाने हमारे को सुनाए लो तो हम मजे लेते रहेंगे आपके साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कल आपका फोन बंद कैसे था?
0: नहीं, हमारा फोन तो चालू था, हमारे सुरेश भाई ने हमें कॉल किया था, उन्होंने आपको याद भी दी थी, हमारी बातें भी हुई थी कल, तो हम आपको वेट करके बैठे थे।
1: हमारे इधर में नेटवर्क नहीं था क्या मालूम, मैंने कितनी बार कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा मेरा।
0: अच्छा
1: हाँ, या फिर हमारे इधर कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
0: हो सकता है शायद आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, बट कल तो हमारा फोन शुरू था।
1: दो बार मैंने फोन किया लेकिन घंटी नहीं आए जाए।
0: ऐसा क्योंकि कल तो हमारे सुरेश भाई के साथ बातें भी दो बार हमारी बात हुई।
1: आपके उधर से नेटवर्क नहीं पकड़ता होगा।
0: नहीं नहीं, ऐसा होता होना तो नहीं चाहिए।
1: समस्या ठीक है,
0: हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, बट आज हमारी बातें हो गई और आपने अपना प्यारा सा नगमा भी हमें दे दिया है। चलो कोशिश करते हैं आपका ये नगमा सुनाने की। आपको
1: आप प्यारे प्यारे नगमे को सुना देना। सुरेश भाई भी
0: आ गए, सुरेश भाई अभी आने की तैयारी, आपकी वेट ही कर रहे बस आपका फोन के बाद।
1: उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार बोलने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उनको नीचे लगा कर प्यार करना था। अरे उनका क्या है जो मेरा उनका घर जैसा रिश्ता हो गया।
0: अच्छा।
1: अभी कभी कभी वो मिल जाता है तो बाहर उनकी सुन लेते हैं हम।
0: अच्छा।
1: खाना पीना सब छोड़ करके उनसे बाहर करने लग जाते।
0: क्या बात है।
1: ऐसी खुशियां खाना भी हमारे को आवाज नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ, आप... जब एक दूसरे से नहीं मिलते तो भी आवाज मिल जाती है ना। हम बस घर में मिले ऐसा लगा लगता है।
0: क्या बात है। कल वैसे इन्होंने
1: उनके साथ में भी हो जाता है।
0: बिल्कुल। लेकिन बुरीलाल जी कल वैसे जब सुरेश भाई ने फोन पे बात की तो जैसे ही आप हमें बुलाते हैं ना, हेलो जी क्या हालचाल बाबूजी, ऐसे करके उन्होंने भी सेम इसी तरह से हमें बुलाया कि आज बुरीलाल जी बस आएंगे और इसी तरह से हमें सबको याद करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, बस बुरीलाल जी की तैयारी आने की। बिल्कुल।
1: जब तक वाणी अच्छी नहीं है तो दुनिया के अंदर क्या चीज अच्छी होगा।
0: बिल्कुल
1: हाँ, खाने में स्वाद नहीं है उतना वाणी में स्वाद होता है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। चलिए थैंक यू सो मच बुरीलाल जी। तो ये थे हमारे बुरीलाल जी। हाँ तो हम बात कर रहे थे हमारे क्रिकेट की तरफ। तो खैर अभी तो 9 ओवर हो चुकी है और 134 रन बोर्ड पे बन चुके हैं। जायसवाल जो है वो खेल रहे, ध्रुव जुरेल भी आ चुके हैं, बट हमारे सूर्यवंशी जी बहुत ही नाखुश, बिकॉज सिर्फ कुछ ही रन, सिर्फ 3 रनों से आज अपने विश्व रिकॉर्ड से रह गए। तो बढ़ते हैं ये सॉन्ग की तरफ जो अभी हमने सुना, ये हरियाली और रास्ता। ये बोल सुनते ही दिल में एक ठंडक सी घुल जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म हरियाली और रास्ते के टाइटल सॉन्ग की। इन बोलों को ज़रा महसूस कीजिए। ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर है तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। जी हाँ, असद जयपुरी साहब ने कितने आसान पर गहरे शब्दों में जिंदगी के सफ़र को बयां किया है। जब आप किसी के साथ लंबे सफ़र पर निकलते हैं, चाहे वो जिंदगी की राय हो या पहाड़ों के बीच के खूबसूरत रास्ते, अगर हम सफर सच्चा हो तो हर रास्ता हर हरा भरा लगने लगता है। गाने में अगली लाइन जो गीता लता जी गाते हैं, फूला फला है प्रीत का आंगन, गाती हूँ तेरे प्यार की रचना, दिल की ये बातें दिल में न रख, कह दो जो कहना है ओ मेरे साजना। ये लाइन सीधे हमारे शो के एक नगमे से जुड़ती है, दिल की बातें, है ना, खुशी के नगमे दिल की बातें। गीतकार कह रहे हैं कि प्यार में कुछ भी छुपा है, प्यार में कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, अगर दिल में कोई बात है, कोई जज्बात है तो उन्हें कह दीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त, डर या झिझक में अपने दिल की बात को अंदर दबा कर मत रखिए, तो आज ही कह दो जो कहना हो, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की और, गाने और भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हमारे पास लाइन में है, तो सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंसान अकेला होता है तो वो उदास हो जाता है, पर इस गाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। ये अकेलेपन का रोना नहीं रोता, बल्कि ये उस अकेलेपन को एक खूबसूरत आज़ादी की तरह जीता है। अगर मजरू साहब लिखते हैं, ना तो परवाना और ना दीवाना मैं किसी महफिल का, ना तो परवाना और ना दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती हैं बाहें, गम किसी मंजिल का, मैं तो हूँ राही दिल का। कितनी गहराई है इस शब्दों में, मैं तो हूँ राही दिल का, यानी मुझे मंजिल की कोई फिक्र नहीं है, मैं तो बस अपने दिल की सुनता हूँ, जिंदगी के सफ़र पर निकल पड़ता हूँ। कभी कभी दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ और महफिल से दूर खुद के साथ वक्त बिताना भी बेहद ज़रूरी होता है। जब आपका अपना साया ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए ना, तो फिर दुनिया की कोई तन्हाई आपको उदास नहीं कर सकती। और आप भी इसी वक्त खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हो तो घबराइए मत, इस अकेलेपन को एक सफ़र की तरह एंजॉय कीजिए, अपनी धुन में मस्त रहिए। बहुत कुछ सिखाता है ये गाना, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं अपनी ज़िंदगी में, जब हम ऐसा फील करते हैं कि कोई साथी कोई ऐसा हो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता है। तो ये गाना बिल्कुल से सुने और कहिए, यस मैं अपनी ज़िंदगी का अपना खुद का राजा हूँ, खुद घूम रहा हूँ, खुद खुशियाँ मना रहा हूँ, अपने दिलों में घूम रहा हूँ, अकेला हूँ इस दुनिया में, ना कोई साथ है ना मेरा साया, ना तो परवाना और ना दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसी मंजिल का, मैं तो हूँ राही दिल का। चलिए दोस्तों, वक्त है अगले गाने का। जो अगला नगमा है, हमारे भूरीलाल जी ने हमें अभी अभी फरमाइश की थी। भूरीलाल जी, आपका ये गाना तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, क्योंकि एक तरफ हमने ये गाना सुना अभी, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, ना कोई साथी है ना मेरा साया, और एक तरफ अभी हम गाना सुन रहे हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, है ना। कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, कभी आप उदास है तो ये गाने, कभी आप खुश है तो ये गाने, कभी आपके साथ है तो ये गाने। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: हैं। दोस्तों जरा इन शब्दों के दर्द और उनमें छुपे ताकत को महसूस कीजिए। गीतकार संतोष आनंद जी ने यहाँ बताया कि जब जिंदगी में बुरा वक्त आता है, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, चलिए इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप अपने कॉलर के साथ बात करते हैं। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्ते। सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
0: नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: सर जी सर बहुत अच्छे हैं। अभी तक मुझे पहले का जवाब नहीं मिला है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा था क्या करूँ।
0: ओके
1: चलो, फिर भी मैंने सोचा चलो बात कर लो आपसे। बुरीला जी ने बहुत अच्छा गाना पसंद किया, प्यासा सावन का, तेरा साथ है तो मुझे क्या करना है। बहुत अच्छा गाना, मीठा गाना था सर।
0: बिल्कुल, मेरा भी बहुत फेवरेट है,
1: सुनता ही जाए सुनता जाए, अच्छा गाना था
0: जी।
1: चलो मैं भी एक मुकेश साहब का गाना दे दूं, कि फिल्म का नाम है यहूदी और गीतकार है शैलेंद्र और संगीतकार है जय किशन जी। तो मैं आपको दो लाइन सुना दूं सर की। ये मेरा दीवानापन है।

0: गाना है सर।
1: क्या बात है, ये मेरा दीवानापन है बहुत ही, मतलब मेरे को, मुझे भी ऐसे गाने पसंद है। और अभी आपने जो मूवी कही यहूदी की,
0: पुराने गाने बहुत पसंद है सर, इसीलिए तो हमारे रेडियो मधुबन जो आप पुराने गाने सुनाते हैं खुश के नगमे की बात बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी गाने तो हमने सुने भी नहीं है आज तक। कल एक गाना आपने सुनाया था बहुत मीठा गाना था जो 1900 मेरे हिसाब से 61 में आया गाना आपने सुनाया था।
1: अच्छा,
0: बहुत अच्छा लगा।
1: कभी
0: कभी पुराने गाने सुनते हैं तो इसका जो बोल होते हैं सर, बोल बोल, ये जो बोल आपको इतना जीवन में सुखमय और आगे जाने की समझ, जो ऐसे गाने हैं ऐसे बोल हैं कि हम बस सुनते ही जा सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही। बिकॉज ये जो गाने हैं आज, मतलब इनके जो बोल होते हैं ना रियल जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी को जीते हुए उनके एक्सपीरियंस के साथ बनाए गए बोल होते हैं, तो आज
0: और समझ में भी आते हैं शब्द, ये शब्द क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज के गाने में पता ही नहीं चलता क्या शब्द है और इसमें कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन आज का जो पहले का जो गाने है इसमें कहीं ना कहीं मतलब छुपा है, कुछ ना कुछ हमको सिखाता है।
1: जी बिल्कुल
0: जी सर, नमस्ते सर,
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने के लिए सुरेश जी। और अभी हम ये बात ही कर रहे थे गानों के बारे में कि पुराने जो गाने थे हमारे उस जमाने के, जब हमारे सिंगर्स किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, ये जब भी जो गाने गाते थे या जो लिखते थे, साहिल लुधियानवी जी, कई हमारे जो भी लिरिक्स थे, वो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को शब्दों में बयां करते थे। और जब वो गाया जाता था, जब उनको एक म्यूज़िक दिया जाता था, सुर दिए जाते थे, तो बिल्कुल जिंदगी के साथ चलते हुए हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये मेरे पे फिल्माया गया हो या मेरी जीवन कहानी पे फिल्माया गया हो, ऐसा हमें लगता था। तो जी हाँ दोस्तों, ये बातें तो बहुत है कहने के लिए। तो चलिए, जब हम बात कर रहे थे जो अभी हमने गाना सुना उसके बारे में, तो पढ़ते हैं अगले नगमे की और, बिकॉज जो अगला नगमा है ये भी बहुत ही प्यारा है। सुनते रहिए प्यारा सा नगमा, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने मन की कमजोरियों को देखना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, यही साहस आपको मजबूत बनाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बहुत ही प्यारा एक गाना सुना, हमारे सुरेश जी ने हमें ये अभी जो फरमाया है वो हम प्ले करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि राजस्थान की टीम जो खेल रही है, अभी अभी एक और विकेट गिरा है ध्रुव जुरेल के नाम से। ध्रुव जुरेल 50 रन बना के आउट है और इस वक्त राजस्थान बहुत ही प्यारा खेल रही है, ऑलमोस्ट 160 के ऊपर खेल रही है और काफ़ी सारे रन अभी बनने बाकी, क्योंकि काफ़ी सारे ओवर्स भी अभी बाकी है। 192/3 है और 14वां ओवर चल रहा है, 14 ओवर ख़त्म हो चुके हैं, 192/3। कप्तान पराग अभी क्रीज पर है और आज हम आशा करते हैं कि राजस्थान की टीम जीते ये एलिमिनेटर, ताकि फिर प्लेऑफ्स में वो खेल सके जीटी के खिलाफ। तो दोस्तों, अभी हमने जो गाना सुना, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये जो मूवी है दिल अपना प्रीत पराई का, म्यूज़िक डायरेक्टर थे झंकर जयकिशन जी, शैलेंद्र जी ने इसे लिखा था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये गाना अभी हमने सुना। तो अभी वक्त है सुरेश भाई की अपनी फरमाइश जो इन्होंने दी है हमें, बहुत ही प्यारा गाना है ये भी, ये मेरा दीवानापन है या फिर। तो चलिए सुनते हैं, रेडियो मधुबन 107.8 FM, मुस्कुराते रहिए।

कितने बेहतरीन शब्द के साथ ये जो मेरा दीवानापन है या फिर मेरी मोहब्बत का है सुरूर, तू इसे पहचान चाहे ना पहचान, हो सकता है ये तेरी नज़रों का हो कसूर, है ना। जब लिखा था शैलेंद्र जी ने इसे और आवाज़ दी थी मुकेश जी ने, फिल्म थी यहूदी, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन जी। बहुत ही बेहतरीन गाना था, थैंक यू सुरेश जी, बहुत ही प्यारा गाना आपने हमें ये फरमाइश दी और बहुत ही प्यारा लगा हमें ये गाना सुनने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, बिकॉज़ जब प्यार किया होता है किसी से तो फिर डरने की क्या होती है बात। तो अगला नगमा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, सुनते रहिए ये नगमा और हम आपसे लेते हैं विदाई, क्योंकि वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। और फिर अगले हफ्ते यानी कि सोमवार को फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, क्योंकि इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो है सेहत स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। ये है रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। और स्वास्थ्य को सहजता से हासिल करने के अनेक तरीकों के बारे में हम हर दिन बातचीत करते हैं। लोग जो समझते हैं कि स्वास्थ्य एक बहुत ही कठिन चीज है, ये ऐसा नहीं है। वास्तविकता में बीमार होना मुश्किल बात है। अगर हम कुछ गलत करते हैं, गलत खाते हैं, गलत व्यवहार, गलत आहार या गलत विहार में जाते हैं, तो फिर तबीयत बिगड़ना स्वाभाविक है। अगर हम इन्हीं चीजों को ठीक कर लें तो स्वस्थ रहना आसान है। स्वस्थ रहने के अनेक तरीके क्या हैं, क्या हमें करने की जरूरत है, किन चीजों पर ध्यान रखना है, क्या करने से हम बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे भी तो जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं, और जल्दी ठीक होने से या बीमार न पड़ने से हम डॉक्टर्स की और विश्व में जो अनेक स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य संगठन है उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये भी हम समझ रहे हैं। आइए आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी इन्होंने एक लंबा अनुभव हासिल किया है। भारत के अनेक खिलाड़ियों को स्वास्थ्य के लिए इन्होंने प्रशिक्षित किया है, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद की है। साथ ही साथ पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर गोरखपुर, जहां पर अनेकों पीढ़ियों से इनके परिवार के जनों ने भारत के लोगों को और विश्व भर के लोगों को शफा दी है, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, आज बातचीत की शुरुआत में ही मैं वो चीज समझना चाहूंगा कि जब हम लोगों के जीवन में बढ़ते हुए तनाव को देखते हैं, स्ट्रेस को देखते हैं, तो लोग कहते नहीं टेंशन तो आजकल हर किसी को है। लोग तो ये भी कह देते हैं यार बच्चों को भी टेंशन होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो भी उनका टेंशन चल रहा होता है। भागा दौड़ी भरी जिंदगी हो गई है तो वहां पर भी लोग चैन सुकून की सांस नहीं ले रहे होते। अब ये जो शब्द है कि सुकून की सांस भी नहीं ले रहे हैं, तो ये प्रश्न उठता है। जब प्रकृति चिकित्सा में हवा के बारे में बात कर रहे थे कि भाई श्वास लेने के लिए हवा जरूरी है, यहाँ सुकून की सांस नहीं मिल रही है, तो इसमें सुकून की सांस कहने का मतलब क्या है? क्या सुकून की सांस अलग सांस होती है?
1: सर, सांस एक जैसी है। आपने भैया टेंशन की बात की, स्ट्रेस की बात की और कहा बच्चों में भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी अब दो तरीके से डिवाइड हो गया है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस

0: सारी नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए, और जैसे ही हम नेगेटिव चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे, हम आनंद ही आनंद में पहुंच जाएंगे और हम खुद चमकने लगेंगे एक लाइट सोर्स की तरह, क्योंकि हम मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, और जो चीज शांत होती है वो सुंदर दिखती है। तो अपने जीवन से नेगेटिव चीजें, नेगेटिव स्ट्रेस को निकालिए और पॉजिटिव चीजें को अपने जीवन में डालिए।
1: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब। जैसे आपने कहा है, सांस की जो बात कही जाती है, वो सांस नॉर्मल ही सांस है, मगर अगर हम सही तरीके से सांस लेना सीखें। हमारे एक श्रोता मित्र ने ये बात कही कि प्राणायाम करने मात्र से, सिर्फ गहरी लंबी सांसें लेने मात्र से उनको अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है। दिमाग में जो गर्मी थी या बोझ जैसा महसूस हो रहा था, वो हल्का महसूस होने लगा है, ऐसा राजशेखर पाटिल जी ने कहा। अब ये बात उठती है कि अगर हम सांस सही तरीके से लेते हैं, उससे अगर व्यक्ति के मनोस्वास्थ्य पर इतना अच्छा असर हो सकता है, शरीर के स्वास्थ्य पर तो असर होता ही है जैसे आपने कहा, तो ऐसी विधियों को समझना और सीखना जरूरी है कि भाई हाँ, जिससे हम आसानी से इन चीजों को कर सकें। जैसे आपने कहा कि प्राणायाम से और सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना विपश्यना नाम की पद्धति है, जो गौतम बुद्ध ने आज से 2250 वर्ष के करीब पहले सुनाई थी, ये बात कही जाती है। तो इन चीजों के बारे में बेहतर समझ हासिल की जाए कि क्या ये चीजें हैं, क्यों ये किया जा सकता है।
0: प्राणायाम, मेडिटेशन या विपश्यना या अपने अंदर झांकना, ये सारी चीजें संयम सिखाती हैं। संयम क्या हुआ कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अभिमान को अपने जीवन में कम कर लेना। आपने जैसे कहा कि ये विपश्यना गौतम बुद्ध ने इसको, इस पद्धति को सीखा था, और लोग कहते हैं कि उन्होंने सीखा, उसके इजाद नहीं किया था ये, उनको मतलब पहले से थी, भारतवर्ष में ये सारी क्रियाएं बहुत पहले से थी, बीच में ये विलुप्त हो गई, तो इसे फिर ढूंढा गया हम लोग। और विपश्यना एक तरीका है जिससे हम लोग अपनी श्वास पे कंसंट्रेट करके अपने ब्रेन को रिलैक्स करते। ये इंडिया में अभी करीब 150 सेंटर्स हैं और विश्व भर में इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। ये फ्री में सिखाई जाती है, इसका कोई मूल्य नहीं लगता है। आपको 10 दिन के लिए उस सेंटर पे जाना रहता है, और सबसे बड़ी बात कि आपसे आपका मोबाइल ले लिया जाता है।
1: बहुत सारे लोगों को ऐसे लगे किसी ने उनसे किडनी मांग ली हो डॉक्टर साहब।
0: आपसे आपका मोबाइल, आपके पास जो भी किताबें हैं वो आपसे ले लिया जाता है, आपको बाहरी दुनिया से कोई आपका संपर्क नहीं रखा जाता है, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, किसी तरह का कोई मैगजीन, कुछ भी नहीं आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। आपको सिर्फ बैठाकर आपकी जो ब्रीदिंग है उस पे कंसंट्रेट कराया जाता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये तो जेल की तरह बंद कर दिया, अगर मेरे घर में कुछ हो गया तो मैं कैसे, मुझे मालूम चलेगा, तो उसकी चिंता मत करिए। आप अपना नंबर देकर आते हैं, अगर घर में कोई बड़ी विपत्ति या विपदा आती है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, पर वो कोशिश करते हैं कि आप रुक कर पूरा ये कोर्स करके जाएं। इसमें जो हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात की, विपश्यना में इसको आनापान बोला जाता है। आना मतलब इन्हेलेशन, और पान को अपान बोल के मतलब इससे एक्सपिरेशन करने को कहा जाता है। इसको नॉर्मली ये माना जाता है कि इसमें आपको आर्य मौन रहना है, मतलब नोबल साइलेंस। आप जिनके साथ विपश्यना कर रहे हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते, और बात सिर्फ वाणी से नहीं, आप जेस्चर्स या हैंड मूवमेंट से

0: या बात नहीं करेंगे। ये कहा जाता है, न देख के कोई आंखों से इशारा करिए, न हाथ से कोई इशारा करिए, किसी भी चीज में आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। और ये 10 दिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंसंट्रेट करेंगे। आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंसंट्रेट करते हैं तो धीरे धीरे आप को आपकी मेमोरी में जो चीजें पुरानी हो गई हैं वो भी बाहर निकलने लगती हैं। और इसको करने के बाद जो दिमाग का जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, वो धीरे धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और आपकी विपश्यना करने के बाद जो बहुत सारी समस्याएं जिनका आप उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे थे वो आपको मिलने लगती हैं और आपका दिमाग शांत हो जाता है। और जहां आपका दिमाग शांत होता है आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो विपश्यना अब छोटे बच्चों को भी कराई जा रही है जिनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन है या जो स्थिर नहीं बैठ पा रहे हैं या जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर हैं, जो हर बार टीचर कहता बच्चा बहुत अच्छा है बट कंसंट्रेट नहीं करता है, तो उनको भी ये विपश्यना सिखाई जा रही है। 10 दिन में आपको रोज हल्का भोजन कराया जाता है, खूब सारा सैलड्स जूसेस ये सब दिया जाता है, रात में डिनर नहीं कराया जाता है कि आपका पाचन तंत्र को भी आराम मिले और आप दिन भर सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास पर अपना ध्यान को केंद्रित करें और मेंटल रिलैक्सेशन पाएं।
1: ये बात स्पष्ट होती है डॉक्टर साहब कि जैसे हम इन प्रक्रियाओं को समझते हैं, इन चीजों को भारत में इतने समय से इनकी मान्यता रही है, इन चीजों से लोगों को लाभ क्या होता है ये चीज समझकर लोग करते हैं, तो कितना आसानी से ये चीजें हो सकती हैं। और आज के समय में जैसे आपने कहा छोटे बच्चों में भी जब इन चीजों से लाभ ले सकते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि आज की दौड़ती भागती जिंदगी के हिसाब से तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं ही। ध्यान की अनेक पद्धतियां जो आप अभी बता रहे थे, विपश्यना जिनमें से एक है, वो अपनी ही सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में बताता है कि सांस के आते और जाते हुए इन चीजों को देखने के बारे में बताया जाता है। ऐसी अलग भी तो चीजें अनेक प्रकार की होंगी जिसके बारे में लोग जानते होंगे, जिससे उनके मनोवेग में स्थिरता आ सके, वो रिलैक्स हो सके।
0: विपश्यना में भैया अंतिम क्षण में आप अपने शरीर के अंदर चल रही सारी संवेदनाओं को भी एक दर्शक के रूप में देखते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो लोग एकाध विपश्यना के कोर्स कर लेते हैं या रोज कर रहे होते हैं वो इससे हेल्थ बेनिफिट भी गेन कर पाते हैं। अब आप अगर शिवानी दीदी का कोई भी विपश्यना का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें वो एक कॉमन सेंटेंस से वो हमेशा शुरू करती है कि कुछ क्षणों के लिए बाहरी सभी बातों को भूलते हुए आसपास की आवाजों से ध्यान हटाते हुए अपने अंदर चले जाइए, और जैसे कि आप ही हैं, आपके चारों ओर कुछ भी नहीं, शरीर के एक एक अंग से ध्यान को हटाते हुए धीरे धीरे भृगुटी के बीच में ले आइए, सेंटर ऑफ फोरहेड बिटवीन योर आईब्रोज, एंड लुक एट यू द पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा शाइनिंग एट सेंटर ऑफ योर फोरहेड। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस भृगुटी के बीच में विराजमान हूं, इस शरीर का मालिक हूं, अब ओरिजिनल फॉर्म में मैं आत्मा आत्मशक्ति स्वरूप हूं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस भृगुटी के बीच में विराजमान हूं, इस शरीर की मालिक हूं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आत्मशक्ति स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, ये शांति मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है, और इस शांति के वाइब्रेशंस मेरे अंदर से निकलकर चारों तरफ फैल रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं वैसे ही मेरे अंदर से शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि कितना सुंदर उन्होंने ये बोला है। ये मेडिटेशन को जहां विपश्यना में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंसंट्रेट करने को बोला गया, वहीं यहां पर एक लाइट सोर्स को, एक ऊर्जा को अपने दोनों आंखों के बीच में उसको देखने के लिए बोला गया। और फिर ये देखा गया कि वो जो शांति की ऊर्जा आपके शरीर में है वो सब तरफ फैल रही। अंत में भैया मेडिटेशन का गोल सिर्फ एक है, वो है शांति को प्राप्त करना। तो आप या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंसंट्रेट कर लीजिए या लाइट सोर्स पे कंसंट्रेट कर लीजिए। जो चीज आपको पसंद आती है आप उस पे कंसंट्रेट कर लीजिए। और दिन में सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मेंटल रिलैक्सेशन कर लीजिए। कहीं शांति में बैठ के जहां बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही है, आप कहीं कोई कोर्स करने जा नहीं सकते, आप कहीं किसी से मिल नहीं सकते, आप सिर्फ वहां बैठकर गहरी सांस या कोई एक लाइट सोर्स पे कंसंट्रेट करके अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात आपने ये सुनाई। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग ध्यान पद्धति सिखाई जाती है। और जैसे आपने कहा कि अगर हम अपने ध्यान को किसी एक चीज पर ले आते हैं, भले लोग श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की बात करते हैं विपस्सना की पद्धतियों में, ऐसे ही राजयोग में जैसे आपने ये उदाहरण दिया कि मैं अपने आत्म स्वरूप पर, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस जगह पर मैं अपने ध्यान को केंद्रित करता हूँ, आत्मा का निवास स्थान वो प्रकृति को मैं देखता हूँ, और वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करके मैं शांति के इस शक्ति को अनुभव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि शांति मेरे भीतर ही है। ये अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि हम शांति के लिए बाहर खोज रहे होते हैं कि हम बाहर कहीं जाएंगे वहां सुकून मिलेगा, ये करेंगे तो सुकून मिलेगा, मगर वास्तविक शांति हमारे भीतर ही है और शांति हमारा वास्तविक स्वधर्म है, हमारा गुण है, हमारा निजी संस्कार है। और इसी चीज को अगर मैं रिकग्नाइज करता हूँ तो ये चीज आसानी से संभव होती है। और अक्सर ये कहावत मैंने सुनी है जहां पर लोग कहते हैं देयर इज नो वे टू पीस बट पीस इज द वे, यानी शांति के लिए कोई रास्ता नहीं है, शांति अपने आप रास्ता है और उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा।
0: भैया आपने देखा जब फोरहेड या भृगुति की बात की, मेडिकली इसको ग्लैबुला बोला जाता है, और हमारे हिंदू धर्म में महिलाएं वहां पे बिंदी लगाती हैं, पुरुष वहां पे टीका लगाते हैं, और ये कहा जाता है कि हमारा वन ऑफ द चक्रास ऑफ योगा जो हमारे शरीर का है वो यहीं पर है। तो सोचिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या सोचकर इसको शुरू किया होगा। तो नोइंगली अनोइंगली हम उस एक्वा प्रेशर में, ये एक बहुत अच्छा प्रेशर पॉइंट भी है, तो हम रोज यहाँ पर बिंदी लगाते समय जब इसको छू रहे हैं तो एक प्रेशर पॉइंट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, हम इसको एक मेडिटेशन पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं, और हम सुंदर बनने के लिए भी यहाँ पे तिलक और टीका लगा रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, सदियों से ये परंपराएं भारत में चली आई हैं। जैसे आपने कहा यही मस्तक के बीच में ही हम आज्ञा चक्र को भी दिखाते हैं, जिन चक्रों के बारे में लोग पढ़ते हैं वहां पर भी वो चीज लोग कहते हैं। आज ये बहुत ही सुंदर सी चर्चा रही है जहां पर हमने ये समझा है कि कैसे सांस लेने की इस प्रक्रिया को रेगुलेट करते करते हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं, कहां हमारा मन स्थिरता की ओर आता है, मन में जो टेंशन या तनाव है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आज बढ़ रहे हैं जो लोग कहते हैं, उसके लिए भी कितनी सारी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं जो हमें स्वाभाविक रीति से इस शांति, जो आंतरिक शांति है, वहां पर पहुंचने में मदद करती है और वहां तक हमें ले आती है। तो दोस्तों ये बात समझ में आ रही है कि इन सोची समझी हुई जो टेक्निक्स हैं जिन्हें लोगों के लिए आज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हम सहजता से अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री तरीके से जी सकते हैं। अगर आपके मन में उद्वेग है, अगर आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, आप ज्यादा तेजी से सांसें ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है। और इन्हीं सांसों को सही तरीके से लेना, ध्यान की पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप सांस लेने की सही प्रक्रिया को सीखकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को और शारीरिक स्वास्थ्य को दोनों को ठीक कर सकते हैं। और ये प्राचीन वदंती भारत में प्रसिद्ध है कि योगियों की आयु लंबी कही गई है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़कर बाहर जंगल में जाके बैठ जाएं, हिमालय में पहुंच जाएं और वहां बैठने से आपकी आयु लंबी हो जाएगी। नहीं, अगर आप योग की इन प्रक्रियाओं को सीखते हैं और घर में रहकर भी अगर आप इन चीजें करते हैं तो भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी आयु लंबी रहेगी। और ये जो बात कही जाती है कि लंबा स्वास्थ्य का वरदान हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, वो आप सभी को मिल सकता है।
0: बहुत सारे लोग भैया आप खुद अपने यहाँ आश्रम में भी देखेंगे और बहुत सारे संत महात्माओं से भी मिलेंगे जो थोड़ी देर दिन में चुप रहते हैं। हमको बहुत सारे ऐसे योगिक टीचर्स हैं जो गुरुजी एक बजे के पहले कुछ नहीं बोलते हैं। वो अपनी एनर्जी को भी बचा रहे हैं प्लस अपने ब्रेन को भी ताकत दे रहे हैं कि वो साधना में आगे बढ़ सके। तो आप डीप ब्रीदिंग प्लीज करिए और उसके साथ साथ दिन में कुछ समय मौन रहने की भी कोशिश करिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी मौन रहता हूं, मैं रोज सोता समय कुछ नहीं बोलता हूं ये नहीं, दिन में कोशिश करिए कि आधी घंटा, 40 मिनट या एक घंटा आप चुप रहेंगे। हफ्ते में एक दिन ढूंढिए, आप देखिएगा कि आपकी कितनी एनर्जी बच जाती है और आप कितना अनर्गल बात करने से बच जाएंगे।
1: बहुत ही सुंदर सी बात आपने कही डॉक्टर साहब, जैसे आपने विपस्सना में भी मौन की बात कही और ऐसे ही जीवन में हर दिन के अंदर भी जैसे हम श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं या ध्यान सीख कर सही तरीके से ध्यान करके अपने मन को शांत कर रहे हैं, वैसे ही मौन का भी उपयोग करके हम अपने मन को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की बातचीत में यहीं विदाई लेनी होगी क्योंकि समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा। कल फिर होगी मुलाकात और इंटरेस्टिंग विषयों पर हम चर्चा जारी रखेंगे सहज स्वास्थ्य में। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का।
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आपने बहुत प्रेरणादायी चीजें सीखी हैं। आप समय निकाल कर कम से कम ध्यान के लिए कुछ समय निकालें, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अगर आपको कुछ भी करना मुश्किल लगता है, ध्यान की विधियों में जो अनेक प्रकार की विधियां सिखाई गई हैं उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, कुछ चीजें सीख कर थोड़ा समय उन चीजों को करके देखें, फिर देखें उस पर आपके शरीर पर और आपके मन पर क्या असर होता है। दिन में कम से कम आधा घंटा, एक घंटे के लिए समय निकाल कर मौन में रहने का भी प्रयास करें और उससे भी आपको फायदे हो सकते हैं। आज की बातचीत में इतना ही। सहज स्वास्थ्य में फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, आपका फेवरेट शो सपनों की सैर शुरू होने वाला है और आ गए हैं आपके लिए मनी दीदी और परी।
5: हाँ बच्चों, तो आजकल पता है ना, हम पेड़ों के बारे में बातें कर रहे हैं कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, और पिछली कड़ियों में हमने जाना कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कितना कुछ हमको देते हैं, और हमने पेड़ लगाने के लिए भी आपको प्रेरणा दी थी।
4: हाँ, कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना है और रोज पौधों को पानी देना है।
5: तो चलो बच्चों, बारी है नारा लगाने की, लगाते हैं आज का नारा।
4: एक बच्चा एक पेड़,
5: हरियाली बढ़ाओ जीवन बचाओ।
4: एक बच्चा एक पेड़, हरियाली बढ़ाओ जीवन बचाओ। तो बच्चों चलो अब करते हैं शपथ, तो परी हमें कराएगी शपथ।
5: बच्चों जल्दी से अपना दाहिना हाथ आगे करो और मेरे साथ साथ रिपीट करो। मैं वचन देता हूँ देती हूँ कि,
4: मैं वचन देती हूँ कि,
5: पेड़ पौधों की रक्षा करूँगा करूँगी,
4: पेड़ पौधों की रक्षा करूँगी,
5: कम से कम एक पौधा अवश्य लगाऊंगा लगाऊंगी,
4: कम से कम एक पौधा अवश्य लगाऊंगी,
5: और प्रकृति को हरा भरा बनाए रखूंगा रखूंगी,
4: प्रकृति को हरा भरा बनाए रखूंगी।
5: तो बच्चों पेड़ सिर्फ पौधे नहीं है, वो हमारे सच्चे मित्र हैं।
4: हाँ, और बच्चों जब हम पेड़ बचाते हैं तो हम अपना भविष्य सुरक्षित बनाते हैं।
5: तो देखा बच्चों, हरियाली भरा संदेश था आज का।
4: हाँ, और चलो अभी हमें वापस आना है परी की कहानी सुनने के लिए, तो चलो इससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
5: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
4: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बच्चों चलो चलो फिर से बैठो रेडियो के पास और वॉल्यूम लाउड कर लो। आज शेर और चूहे की कहानी सुनाने वाली हूँ। गर्मी के दिन थे, दोपहर में एक शेर पेड़ की छाया में सो रहा था। उसी पेड़ के पास बिल में एक चूहा रहता था। वो खेलने के लिए अपने बिल से बाहर निकला और सोए हुए शेर के पास इधर उधर दौड़ने लगा। बच्चों इससे तो शेर की नींद डिस्टर्ब हो गई। उसने चूहे को पंजे से धरकर दबोच लिया। बेचारा चूहा भय से कांपने लगा। ची ची करते हुए उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। इस एहसान का बदला एक दिन मैं जरूर चुकाऊंगा। बच्चों नन्हे से चूहे के ये शब्द सुनकर शेर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, बड़ी मजेदार सूझबूझ है तुम्हारी नन्हे, इतना सा तो है तू, और मुझ जैसे ताकतवर जंगल के राजा की तू क्या मदद करेगा। फिर भी शेर को चूहे पर दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। बच्चों सोचो फिर क्या हुआ। कुछ दिन बीत गए। एक दिन चूहे ने शेर की दर्द भरी दहाड़ सुनी। वो फौरन बिल से बाहर निकला। उसने देखा शेर तो सचमुच संकट में फंस गया है। शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया था। उसने जाल से निकलने की भरसक कोशिश की, पर उसे सफलता ही नहीं मिली। चूहा तो दौड़ता हुआ शेर के पास आया। उसने शेर से कहा, जंगल के राजा आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको आजाद कर देता हूँ। चूहे ने क्या किया पता है बच्चों? चूहा अपने तेज दांतों से जाल को कुतरने लगा। थोड़े समय में ही शेर जाल से मुक्त हो गया। देखा बच्चों, फिर शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी गुफा की ओर चल दिया। तो बच्चों बताओ तो सही, ये कहानी क्या समझाती है? कहानी की सीख है, छोटे जीवों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, है ना बच्चों? भले छोटे छोटे हैं, लेकिन कभी ना कभी वो जरूर हमारी मदद करते हैं। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों

0: रुके। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: चलो फिर से आ जाओ रेडियो के पास, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें तो कर ली, अब कार्यक्रम की अंतिम मोड़ पर हम आ गए हैं। बारी है पहेली की। याद है ना, पिछली कड़ी में हमने आपको पूछा था, सात रंगों की करती सवारी बारिश के बाद दिखे प्यारी, बताओ वो कौन है?
4: तो सही जवाब है बच्चों, इंद्रधनुष, है ना। बारिश के बाद दिखाई देता है और आपको तो उसके रंग पता ही होंगे ना, विबग्योर।
3: हाँ, तो सात रंगों का इंद्रधनुष देखने में बड़ा मजा आता है। तो चलो नोट कर लो आज की पहेली, पढ़ाई का साथी ज्ञान का भंडार, पन्नों में छुपा है संसार।
4: तो बच्चों, इस पहेली का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये आपके बैग में होता ही है और आपकी पढ़ाई का साथी है, ज्ञान का भंडार है और पन्नों में इसके सारा संसार छिपा है। तो चलिए, सही जवाब हमें 9414141415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दीजिए।
3: तो चलो बच्चों, हम लेते हैं विदाई, लेकिन उसके पहले रात आई है सितारों की सौगात लेकर, नींद आई है सपनों की बारात लेकर।
4: सो जाओ अब मुस्कुरा कर आप, सुबह आएगी नई उम्मीद साथ लेकर।
3: गुड नाइट,
4: स्लीप टाइट, गुड बाय।
3: सुनते रहिए,
4: मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन
4: 107.8 FM पर,
3: सपनों की
4: सैर को।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हो।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया।

गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा।

Go Madhuban 107.8 FM. सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बढ़ाए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर अपच की समस्या है तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। हम तो उपाय देंगे ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए। और जी हाँ, आज सिखाने वाली हूँ सलाद, परंतु कौन सा वाला वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और स्पोर्ट्स का जीवन में कितना महत्व है, और हमारी बहनों को बेटियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के हम खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे एक विशेष जो एक बिटिया आई है उसके साथ, और आप सभी भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आज की पहेली तो बड़ी शानदार है, पहेली पूछने वाली हूँ, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ। बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर सदियों से पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति का खेल चला आ रहा है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य पांच तत्वों जल वायु आकाश अग्नि और धरती से है। अनंत काल से प्रकृति हमारी पालना करती आ रही है, परंतु हमने कभी रुककर मां प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं किया है ना। यूं तो भक्ति में हम पांचों तत्व का पूजन वंदन करके मतलब प्रकृति का मान रखते हैं। सदियों से हम इस तरह पूजा और वंदन करते हुए उनका मान रखते आए हैं, परंतु निश्चित प्राकृतिक आपदाओं से आहत होते मनुष्य का मन अब प्रकृति का उतना मान नहीं रख पा रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कड़ा

की ठंड में ठिठुरते होठ, कितनी ठंड है, कह करके प्रकृति के प्रति असंतुष्टता जताते हैं। कभी तपती धूप में पिघलते हौसले प्रकृति को बदनाम कर जाते, कभी बारिश में हुए कीचड़ से प्रकृति कुरूप नजर आती। मतलब कि चाहे मौसम कोई भी हो, खुले दिल से प्रकृति के प्रति अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन प्रत्येक जन करता ही है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास की प्रकृति होती है। प्रत्येक के घर का वातावरण आबोहवा एक दूसरे से भिन्न होती है। मंदिर के पवित्र वातावरण और किसी कत्लखाने के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। है तो वही पांचों तत्व सभी जगह एक ही, फिर भी वहां रहने वाले मनुष्यों के मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से ये अंतर दिखाई देता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने पानी पर किए गए प्रयोग से ये बात सिद्ध की थी कि किस तरह मानव मन में उत्पन्न विचारों का प्रभाव पानी पर गहरा पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले लूथर बर्बेंक नामक वैज्ञानिक ने कैक्टस से बात कर करके एक बिना कांटों वाला कैक्टस उगाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पौधों को यदि हल्का क्लासिकल संगीत सुनाया जाए तो पौधों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं। इन सब बातों से हम ये तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह ये प्रकृति मनुष्यों के संकल्पों और क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। जिस तरह राजा के महल की वस्तुएं और एक गरीब की झोपड़ी में मौजूद वस्तुओं में फर्क दिखता है ना, ऐसे ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के रहने के स्थान का वातावरण अलग अलग महसूस होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, व्यक्ति के निवास स्थान को देखकर उसकी मानसिकता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हम जितना जितना स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरते जाते उतना उतना हमारे आसपास का वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जाता है। आदिकाल में जब मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान थी तब प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात सुखदायी थी, तो आज तप प्रधान क्यों बनी है सोचिए। इसलिए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहना है और सकारात्मक वाइब्रेशन हमें फैलाना है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे अपच पर। भाई देखिए, गर्मी के मौसम में अपच की समस्या बढ़ जाती है। अपच या खाना न पचने पर खाद्य प्रणाली के अंगों में दर्द होने लगता है, गैस भरती है, जिसमें भारीपन, बेचैनी, जी मिचलाना, बमन वगैरह वगैरह चलता रहता है। अग्निमांद, अपच, अजीर्ण, बदहजमी, सभी का अर्थ एक ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि खाने का नहीं पचना, जो भोजन हम कर रहे उसका नहीं पचना। तो बदहजमी में क्या होता है, दस्ते भी लग सकती है या फिर गैस, वमन ये होने की शक्यता रहती है। तो बदहजमी के दस्तों को संग्रणी भी कहते हैं। तो अपच की समस्या है, तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रही हूँ, इसको आप आजमा करके अपने अपच की समस्या पर निजात पा सकते हैं। देखिए, हींग, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन सब आप समान मात्रा में लीजिए, ठीक है। और सब को समान मात्रा में लेकर के इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। फिर एक चम्मच तीन बार पूरे दिन में गर्म पानी से फाकी लेना है, सुबह, दिन में और रात को। सुबह उठने के बाद एक बार ले लीजिए आप नन्हे कोटे, फिर दिन में ले लीजिए कि भोजन के डेढ़ दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, फिर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए। तो ये जो अपच की समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या क्या लेनी है फिर से दोहरा रही हूँ। हींग लीजिएगा, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेनी है सभी, ठीक है। जैसे एक एक छोटा चम्मच ले रहे तो सभी एक एक छोटा चम्मच लीजिएगा, फिर इन सभी को पीसिएगा, पाउडर बना दीजिएगा, और इसके तीन बार फाकी लेनी है दिन में, पूरे दिन में। तो फाकी लेकर के नौ सेका पानी आपको पीना है, इससे अपच की समस्या ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आप अगला उपाय। एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट पानी से फाकी लीजिएगा। खाली एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन ले लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए, और भूखे पेट आप वही सुबह सुबह नन्हे कोटे आप इसकी फाकी लेकर के नव सेका पानी आप पी लीजिएगा, इससे भी अपच की समस्या ठीक होगी। अगर ये नहीं कर सकते तो और भी सुनेंगे आप सुंदर सा उपाय, कि 25 नीम की पत्ती, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीस करके थोड़ा पानी और शक्कर मिला करके सुबह शाम रोज आप 3 दिन पीजिए। 3 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा। 25 नीम की पत्ती, 3 ले लीजिए लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीसिए और इसमें थोड़ा सा शक्कर और पानी मिला करके गट गट गट गट गट पी जाइए, ठीक है। ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है, सुबह और शाम, तो अपच की समस्या में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि खाना नहीं पचता है, बदहजमी हो जाए, तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहे, अन्य कुछ भी नहीं खाना है। कब्ज रहे तो फिर आप भोजन के साथ घुट घुट पानी पीते रहिए, ठीक है। सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जरूरी है। तो अगर संग्रहणी है, बदहजमी है, तो उस दिन आप कुछ मत लीजिए, खाना मत खाइए, पूरे दिन आप ऐसे ही उपवास करिएगा, बीच में घुट घुट पानी पी लीजिएगा, ठीक है। तो आपका वापिस हाजमा सिस्टम, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा वापिस, ये जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और लास्ट उपाय यही है कि कब्ज रहता है तो भोजन के साथ घुट घुट पानी पीजिए, और सुबह उठते ही एक गिलास पानी तो हमेशा पीना ही है। तो ये हुए उपाय आज के सुंदर से नुस्खे। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल पहेली है, आराम से आप जवाब दीजिएगा। चार

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू, हलचल में तो मिट जाए। क्या चीज है? पहली बहुत ही सुंदर और सरल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मधुबनी हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे, परंतु क्या बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सरल आपको पहेली पूछी है, फिर भी सोचिए, कोई बात नहीं, सोचने का अवसर तो मिलना ही चाहिए, समय तो आपको मिलना ही चाहिए, और आप सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा। आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ, चार एक

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू, हलचल में मिट जाए। बहुत ही सरल है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। ये चीज नहीं है तो जीवन नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया आपको, ठीक है? अब तो आपके लिए सरल हो चुकी है पहली, तो जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब पधारिए आशियाना के किचन में, आज बना देते हैं सलाद। परंतु कौन सा वाला? केरी और दाल का। वैसे तो सलाद हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसी चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है ना? रोटी के ऐसा लगता है रोटी बहुत कम खाए, कुछ फल फ्रूट, जैसे फल फ्रूट में भी पानी वाले फल फ्रूट, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आम तो भाई वैसे ही गर्मी का सीजन का राजा ही है ये तो, सब फलों का। तो इस तरह की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा रहती है। तो सामग्री आप लेंगे, पेन और डायरी तैयार है ना? बिल्कुल लिख लीजिएगा। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी आप लीजिएगा 1/2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ, ठीक है? और तेल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता लीजिए 5-6, नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च का पेस्ट लेना है आपको 1 छोटा चम्मच, और राई, हींग, जीरा तड़का के लिए ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हरा धनिया अपने स्वाद के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। तो ये सलाद की सामग्री हो चुकी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखिए, सलाद भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। वैसे आप कच्चा भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन दाल के साथ आप कैसे खाएंगे? तो आपको एक अलग ही प्रकार का सलाद सिखा रही हूँ। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी कद्दूकस की हुई 1/2 कप ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच क्या लेना है? तेल 5-6 लीजिएगा, कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी पाउडर, चीनी, ये सब अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर हरी मिर्च की पेस्ट लेनी है 1 छोटा चम्मच, राई, हींग, जीरा तड़का लगाने के लिए लेना है थोड़ा थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार, हरा धनिया भी अपने आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। आइए अब केरी और दाल का सलाद कैसे बनाएंगे, विधि आपको बता रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है? फिर पानी निकाल करके बिना पानी दरदरा पीस लीजिए। तेल में राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगाइए। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल में डाल दीजिए। अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस तुरंत बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर सलाद सर्व करिए, पिरसिए। तो ये बन गए केरी दाल का सलाद। फिर से दोहरा रही हूँ विधि। देखिए, इसको भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक बार तो विधि यही दोहराऊंगी, फिर इसकी दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो हमने ली है ना, इसका 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर पानी निकाल दीजिए 4 घंटे के बाद, और इसको दरदरा ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं रखना है, ठीक है? फिर आप तेल रखिए कढ़ाई में, और तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई, जीरे का तड़का लगाइए, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए और तड़का लगाना है। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल डाल दीजिए, ठीक है? अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर आप सलाद पिरस सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि आप चने की दाल को 4 घंटे के लिए पानी में तो आपको भिगोना ही है, ठीक है? तो फिर आप दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए, और भिगो दिया 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल दीजिए, और इसी दाल में आप कैरी कद्दूकस करके डालिएगा। फिर इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा पाउडर डालना है, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब डाल करके आप कच्चा ही खाइएगा तो भी स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है? अब आपको जिस तरह खाना हो खाइए, मैंने आपको विधि बता दी है। भले आप इस तरह छोक लगाकर खाइए, भले आप कच्चा खाइए। तो ये बन गया केरी दाल का सलाद। अब मैं आपको एक और सलाद सिखाऊंगी, परंतु कौन सा वाला वो तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे।
तो आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ये पहेली का जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। अब हम सुनेंगे यहीं पर एक प्यारा सा गीत, उसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आप सभी आशियाना की किचन में हो और आशियाना की किचन में बना रहे थे केरी और दाल का सलाद। ठीक है, अब मैं दूसरा भी आपको सलाद ही सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई सलाद का नंबर लिया है तो मैं आपको पूरा ही सिखा देती हूँ। इच्छा हो ऐसा सलाद बना करके खाइएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। सलाद में जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा ककड़ी है, हरा धनिया है, पालक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको मिक्स सब्जी का सलाद अब सिखाने जा रही हूँ, परंतु आप जानते हो परंतु मैंने क्यों बोला है, पहेली फिर से सुना रही हूँ इसलिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पहेली क्या है। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हलचल होते ही फिर हम स्वयं के फोटो को नहीं देख सकते, स्वयं के चेहरे को, स्वयं को नहीं निहार सकते, बाकी आराम से हम निहार सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया हो, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और अब मिक्स सब्जी का आपको सलाद सिखा रही हूँ। इसके लिए आप सामग्री लीजिएगा, पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, ठीक है, एक कप ले लीजिए, भले आप कद्दूकस करके एक कप ले लीजिएगा। पालक ले लीजिए बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक छोटी लेनी है आपको, ठीक है, टमाटर एक लेना है, अंकुरित मूंग आधा कप ले लीजिए, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है, चीनी अगर पसंद है तो लीजिएगा, स्वाद के अनुसार नहीं हो तो कोई बात नहीं मत लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा नमक अपने स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और नारियल कसा हुआ लीजिएगा दो छोटा चम्मच। यही सामग्री है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई लीजिएगा एक कप, फिर पालक ले लीजिएगा, मतलब ये सब धुलाई करके ही आपको लेना है, ठीक है, पालक लीजिएगा बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक लेनी है, उसके भी गोल स्लाइस कर लीजिएगा छोटी वाली ककड़ी, फिर टमाटर भी एक लेना है, इसको भी आप बारीक उतर लीजिएगा और ककड़ी को भी आप स्लाइस मत करिए, इसको भी कुतरिएगा, क्योंकि हम स्लाइस वाला सलाद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंकुरित मूंग ले लीजिएगा, नमक काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है और नारियल कद्दूकस किया हुआ दो छोटे चम्मच लीजिएगा। अब मैं आपको मिक्स सब्जियों का सलाद कैसे बनाया जाता है सिखा रही हूँ। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, अब इन सभी सामग्री और अंकुरित मूंग को सभी को मिक्स कर देना है और एक जार में डाल करके अच्छी तरह इसको मिला लेना है। इसके बाद नींबू का रस, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक मिला दीजिए, इसमें नारियल मिला करके सब मिक्स करके आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम एनर्जी सलाद भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें एनर्जी की है, तो एनर्जी से भरी हुई। तो क्या करेंगे, जो भी हमने सलाद किया, जो सब्जियां सवार के रख रखी है, जैसे कि पत्ता गोभी, ककड़ी, पालक, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही आप मूंग भी, जो अंकुरित मूंग लिए है, इनको भी मिक्स कर दीजिएगा और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा और नींबू का रस भी निचोड़ करके सबको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप जब प्लेट में रखते हैं ना सलाद, तब ये कद्दूकस किया हुआ नारियल ऊपर से डालिएगा तो एक डेकोरेट लगेगा और सलाद को देखते ही इच्छा होगी कि अरे भाई ये स्पेशल सलाद है, ये तो मैं जरूर खाऊंगी, ऐसी इच्छा हो जाएगी।
तो भोजन के पहले एक प्लेट सलाद खा करके फिर आप भोजन करें, ताकि क्या है कि रोटी कम खाएंगे और ये सब्जियां ज्यादा खाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। आप सुबह भी खा सकते हैं, जैसे नाश्ता नहीं करके सलाद खा सकते हो। अब आपकी इच्छा पर छोड़ा कि आप कब खाते हो, ठीक है। तो आइए, दोनों ही प्रकार के सलाद बन चुके हैं, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप दो प्लेट में दोनों ही सलाद रखिए, फिर जो भी सब्जी चपाती जो भी बनाई है वो भी रखिएगा। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा। कौन कौन से सलाद का? केरी और दाल का और मिक्स सब्जी वाला, दोनों ही सलाद का आनंद लीजिए। और फिर आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चार

ऐसी क्या चीज है जो शांत रहने पर हम आराम से निहार सकते हैं स्वयं को उसमें, और जब हलचल होती है तो मिट जाता है सब कुछ। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आप सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, आप समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और विशेष करके स्पोर्ट्स पर बहनों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, खुल करके बहनें सामने नहीं आ पाती है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने बैठी है सेजल। सेजल गोस्वामी आबूरोड की रहने वाली है और 10th क्लास अभी एग्जाम दिया है 10th का और 11th में आई है। तो सेजल को स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, तो सेजल से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा। आपको तो आप जानते ही हो कि भाई खुशनुमा जीवन में आपका खुलकर स्वागत है, और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है जिसको दोहरा रही हूँ। बीच में भी आप फोन कॉल्स करके पहली का जवाब दे सकते हो। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो शांत रहने पर स्वयं को देख सकते और हलचल में ये मिट जाती है? जवाब देने के लिए और खुशनुमा जीवन में जुड़ने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप अपने बात रख सकते हो, प्रश्न का इस पहेली का जवाब भी दे सकते हो। आइए सेजल से मिलते हैं। सेजल आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सेजल आपको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती है?
4: जैसे कि रनिंग है, कबड्डी है, मतलब और भी कई खेल है।
3: जी जी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़ चुके हैं। हेलो
5: हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते कमलेश बहन।
5: हाँ नमस्कार जी, थोड़ा कसरत की है
3: जी
5: खेलने के लिए,
3: जी।
5: तो उसमें मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा कि भाई समुंदर समुंदर ही होता है, तो
3: अच्छा।
5: बहुत ज्यादा आवाज आती है, शांति से देखे तो मजा आता है।
3: अच्छा
5: हेलो,
3: हाँ जी हाँ जी सुन रही हूँ मैं।
5: हाँ जी,
3: अच्छा
5: आज का मेले का उत्तर है मैडम जी समुंदर।
3: अच्छा ठीक है,
5: क्योंकि और... उनको देखने के लिए अपन शांति से देख सकते
3: हैं, हलचल
5: रहती है, आवाज होती है पानी की बहुत, तो शांति से देखे तो उसको निहारने में मजा आता है।
3: अच्छा
5: ठीक है मैडम।
3: और कमलेश बहन आप जुड़ ही चुके हैं रेडियो मधुबन से, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है
5: इसका मैडम जी?
3: आपने कभी स्कूल में आपने जैसे कि अपने कंपटीशन होता है ना 100 मीटर की दौड़,
5: हाँ जी
3: 500 मीटर की दौड़, दो टांग रेस, फिर कभी कबड्डी खो खो, इस तरह के गेम आपने खेले?
5: हाँ जी मैडम जी खेले थे।
3: तो आपको कैसा लगता है इस तरह का गेम खेलना?
5: बहुत मजा आता है, आनंद आता है बहुत, इससे बहुत एक्सपीरियंस, शरीर भी अच्छा रहता है।
3: जी जी जी
5: बहुत तो, मजा आता है
3: जी। तो ये कम हमारी बहनें थोड़ा कम खेलती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
5: ये तो मैडम सबको खेलना चाहिए, ये तो अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, ये भी एक योगा है।
3: बहुत सुंदर, परंतु है ना जो माता पिता ज्यादा परमिशन नहीं देते बच्चों को, वो माता पिता की नजर में क्या होता है, अरे उछल कूद नहीं करना है, शांति से रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप क्या कहेंगे?
5: नहीं मैडम जी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई जैसा ही है।
3: बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी पढ़ाई अपनी जगह है और गेम्स अपनी जगह है।
5: हाँ सही बात है मैडम जी,
3: जी
5: ये भी जीवन में बहुत जरूरी है।
3: बहुत सुंदर, तो ठीक है कमलेश बहन, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी आप किस में भाग लेते थे, कौन से गेम आप खेलते थे?
5: मैं तो मैडम जी बास्केटबॉल में खेलती थी, खो खो में खेलती थी।
3: क्या बात है।
5: कबड्डी कबड्डी सब में भाग लेती थी, जीतती थी मैं तो और बार।
3: अरे वाह, तभी आप फिट एंड फाइन है।
5: घर वाले का नहीं परमिशन नहीं देता, साथी तक ही पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी
3: जी,
5: पर जब तक पढ़ी तब तक मजे लिए हमने खूब।
3: बहुत अच्छी बात है, खुलकर जीवन जीना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ तो बात ही क्या कहना है, गोल्डन लाइफ है।
5: तो वो तो किसी को मानती नहीं थी, खेलने के लिए भागती थी मैं तो।
3: बहुत
5: और शौक नहीं था मैडम जी, और कोई शौक नहीं था मुझे, एक तो खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना
3: जी,
5: और ये खेलना कूदना, गाने गाना।
3: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो ये भी किसी से कम नहीं है, आप वैरायटी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाओ, वैसे ही वो खुश रहेंगे कि अरे वाह क्या भोजन मिला है। इंसान काम करता है 24 घंटे, लेकिन खाना अच्छा मिल जाता है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है,
5: सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है।
3: जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने बात की है।
5: थैंक यू
3: जी। तो सेजल आप क्या कहेंगे गेम्स के बारे में, जैसे आपको रुचि है, आप टूर्नामेंट में भी जाते हैं?
4: एक बार गए थे।
3: अच्छा, फिर क्या रिजल्ट रहा?
4: मतलब आगे जाने, मतलब फर्स्ट आए थे।
3: फर्स्ट आए, कौन सी क्लास में आप गए थे टूर्नामेंट में?
4: छोटे ही थे उस समय तो, मतलब होंगे 6th 7th में।
3: अच्छा, और कौन सा गेम खेला था आपने?
4: बैडमिंटन में।
3: अच्छा, अरे वाह, कौन से गांव आप गए थे टूर्नामेंट में?
4: अनादरा।
3: अनादरा, और वहां से जीत के आए। उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ?
4: उसके बाद स्कूल की तरफ से कभी लेके तो गए नहीं।
3: हेलो।
6: हेलो, हाँ नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा।
3: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
6: बस अच्छे है, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
3: जी जी जी। सेजल हम आपसे बात जरूर करेंगे, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो इनसे बात करेंगे। अच्छा सुरेश भाई, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
6: बस जीवन जी। में दीदी इंसान के लिए, खास करके यंग इंसान के लिए स्पोर्ट का बहुत महत्व है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट खेले। और अभी जो आपने बात भी बताई कि लड़कियां जो बहुत, अब तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत कम, जैसे ही बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और गांव की ऐसी जो रीति रिवाज है। और मैं पहले की बात बताऊं तो लड़कियां लगभग 5 साल से ऐसी खेल खेलते, जो 5 पत्थर के लेते वो नाम भी पता नहीं, वो
3: सितोलिया,
6: किसी को भी
3: सितोलिया,
6: अरे हाँ वही नहीं जीतने देती, या रस्सी कूद में, ऐसे बहुत सी ऐसे खेल है वो बचपन में बहुत हमने भी खेले हैं।
3: जी क्या बात तो, है। जी
6: जी, तो सभी को माँ बाप को बस ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में रुचि है तो जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वहीं पर रोक दिया ना जाए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा।
3: जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है।
6: और जी, और जो आपकी पहेली है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आईना होना चाहिए, आईना।
3: अच्छा,
6: तो काट बोलते हैं हम।
3: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर हम देंगे, पहेली का जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। तो सेजल आपकी ओर बढ़ते हैं हम फिर से, आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, और किस किस में रुचि है, और क्या आप ही खेलते हो या आपके क्लास के लगभग सभी बच्चियां खेलती हैं?
4: सारी बच्चियां खेलती हैं।
3: अच्छा, तो जैसे आप एक बार टूर्नामेंट में गए, दूसरी बार नहीं गए फिर?
4: दूसरी बार स्कूल की तरफ से लेके नहीं गए कभी।
3: अच्छा, जीत करके आए फिर भी?
4: जीत करके आए, फिर स्कूल वालों ने नाम तो लिखवाए थे, पर कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए वो मना हो गया।
3: अच्छा, तो अब कोरोना तो हट गया है, अब फिर से आप बच्चियां मिल करके सर से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं?
4: बीच में हुआ था तो मतलब बॉयज का था, आपके भाई गर्ल्स का नहीं था।
3: अच्छा जी जी जी। तो बहुत सारे देखते हैं हम गाँवों में क्या है, माता पिता, जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे कि गांवों में माता पिता थोड़ा अलाउ नहीं करते बच्चियों का, बच्चों को तो परमिशन दे देते लेकिन बेटियों को परमिशन नहीं देते, क्या कारण है?
4: उनके तरफ से रीति रिवाज होगा शायद कोई कि मना करना, पर मना नहीं करना चाहिए, इस पे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
3: जी जी,
4: गांव की हो या शहर की हो, कोई ना कोई खेल खेलने देना चाहिए।
3: जी जी, तो सेजल आपको तो घर से मना नहीं करते हैं?
4: नहीं, मुझे पूरी छूट है।
3: चलिए अच्छी बात है, तो यहीं पर अब हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं खुशनुमा जीवन में, अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है, जो खेलते हैं वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु का जाते जाते फोन उठा देते हैं। हेलो।
7: हेलो, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति मंजू जी, कैसे हो आप?
7: बस बढ़िया है।
3: बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश रहिए।
7: बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
3: जी जी, आप भी कुछ कहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? आपको शौक रहा है, कभी आपने भी गेम्स खेले?
7: बिल्कुल, इतने मतलब खेलते थे, खेल बैठे घर पे, अंदर बाहर मैदान में, अब तो याद ही नहीं है। मतलब हर प्रकार के जो गेम होते थे सब खेले थे बच्चे थे तब।
3: जी जी जी।
7: और मेरे को कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था, हम स्टूडेंट लाइफ में टीचर के साथ भी खेलते थे, फिर घर पे छुट्टियां होती थी तब भी खेलते थे, और भैया वगैरह ये क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी हमें भी बॉल फेंकने का मौका मिलता।
3: अच्छा, बॉलिंग करते थे आप?
7: दोनों ही,
3: बैटिंग और बॉलिंग।
7: हाँ, बहुत अच्छा लगता था।
3: जी,
7: उनको
3: जी,
7: भी
3: जी।
7: अच्छा लगता था, हमको भी। लेकिन आजकल है ना, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है खेल, मतलब खेल के मैदान में हर जगह अव्वल रहती है लड़कियां, और खेलना भी चाहिए। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास ये मतलब खेल से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है, और दिमाग के घोड़े तो ये खेल में ही दौड़ते हैं।
3: जी
7: बिल्कुल, इतना मतलब हर खेल में दिमाग का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा तो।
3: जी,
7: और दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी मजबूत रहती है।
3: बहुत सुंदर। तो मंजू जी, गांवों में अभी भी माता पिता थोड़े बेटियों को परमिशन नहीं देते हैं, आप क्या कहेंगे?
7: देते भी है, कम लोग हैं जो नहीं देते हैं आजकल तो। मतलब ऐसा कोई परिवार भी नहीं है हमारे आसपास देखें तो लड़की स्कूल पढ़ाई नहीं कर रही है या किसी खेल में भाग नहीं ले रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल कूद का हो, हर प्रकार के प्रोग्राम में उठ जाती भी है और अव्वल भी रहती है। कबड्डी तक ऐसे खेल, खो खो है।
3: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, गेम्स में आगे बढ़ना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परमिशन हाँ, सभी को
7: मतलब
3: मिलनी चाहिए।
7: दस साल में तो बहुत परिवर्तन हो गया।
3: जी जी जी जी। और आज के पहेली का जवाब देंगे?
7: पहेली का जवाब पानी हो सकता है मैडम जी, और क्या।
3: अच्छा ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपके जवाब जरूर सुनाएंगे।
7: बावड़ी तो आपने बोल दिया, पानी है।
3: ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, वो आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है,
7: कोई बात नहीं, ये भी एक दिमाग की प्रैक्टिस है। पूछते रहो हमेशा।
3: जी शुक्रिया,
7: धन्यवाद।
3: हाँ जी, तो आइए यहीं पर हम भी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

सिंह चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: आते हैं
1: जी जी,
0: कपड़े दे देने पड़ेंगे। तो सुबह शाम काम चलता है, दोपहर तो गर्मी बहुत पड़ती है
1: जी,
0: तो रेस्ट भी करना।
1: जी जी बिल्कुल, और सुबह सुबह हो जाता है वो, हो जाता है फिर गर्मी तो है ही है।
0: हाँ सुबह में उसके बैठ जाना पड़ता है ना, उसके पूजा पाठ करके आ जाते हैं दुकान पे।
1: जी जी जी, तो कंचन भाई स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी कभी खेल कूद किया करते थे?
0: हाँ जी बहन जी, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो देखो हमारे यहाँ स्कूल थी तो व्यायाम का पीरियड रहता, व्यायाम पहले तो क्या था, टीचर्स किए हुए व्यायाम टीचर्स होते थे
1: जी,
0: तो 4 से 5 बजे एक घंटे हमें मैदान में ले जाते थे, और कबड्डी है, खो खो है, ऊंची कूद है, ये सब हमें करवाते थे
1: जी,
0: ठीक है, तो जी। हम भी भाग लेते थे। और हमारे यहाँ आस पास आदिवासी एरिया है तो बहनों ज्यादा करके कई जिला पहुंचे थे, पढ़ते थे बाला बैग, बच्ची बैग, ये सब बहने भी, और धनुष सिर काम था
1: जी,
0: ऐसा ये भी मैंने भाग लेती थी। अब तो ये बंद हो गया है बहन जी, ये सब है ना, व्यायाम का कोई ये ही बंद हो गया पीरियड, और कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है,
1: तो समय के साथ विकास होना चाहिए, उसकी जगह बंद हो गया।
0: हाँ बंद हो गया, और जिसने देखो बीपीएड बीपीएड ये सब किया है ना जिसने
1: जी,
0: वो अभी घर पे बैठे हैं, वो भर्तियां होती ही नहीं।
1: अच्छा
0: क्या करे यार।
1: जी जी जी जी,
0: तो वहाँ से शुरू होता था हमारे, हमारी बात करे तो ये तो सब अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया है तो छूट गया है।
1: जी जी जी,
0: ऐसा है।
1: और कंचन भाई आज की पहेली का जवाब देंगे?
0: पहेली क्या है
1: जी? पहली है, 4 खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। कोई बात नहीं, सोचिएगा जी, आप सोच के फिर से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है?
0: हाँ जी,
1: हाँ जी, शुक्रिया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सेजल हमारे साथ बैठे हुए हैं। सेजल, आपके यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बाहर ले जाना बंद कर दिया कोरोना के बाद, है ना, टूर्नामेंट्स में अभी तक नहीं हुआ है लड़कियों के। अच्छा, तो आपके स्कूल में होते हैं?
2: हाँ।
1: अच्छा, और ग्रुप वाइज होते हैं या क्लासेस टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं?
2: ग्रुप वाइज होते हैं।
1: ग्रुप वाइज होते हैं, तो उसमें आप भाग लेते हैं?
2: हाँ।
1: अच्छा, कितने गेम्स आप खेल सकते हैं?
2: बैडमिंटन, बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं।
1: नहीं, जैसे एक स्टूडेंट को कितने गेम्स खेलने की छूट है टूर्नामेंट में, कंपटीशन में?
2: 3 गेम्स।
1: तो आप कौन कौन सा खेलती हो?
2: बैडमिंटन, 2 पैर और रस्सी कूद।
1: अच्छा, तो सभी बच्चे 3-3 गेम्स खेलते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार?
2: अपनी इच्छा के अनुसार।
1: अच्छा, बाहर लेके जाते हैं टूर्नामेंट में, तो वहाँ पर कितने गेम्स खेले जाते हैं?
2: उधर तो किस तरीके से तुम्हें कौन से गेम से लेके जा रहे हो उस तरीके के गेम खेलाए जाते हैं।
1: अच्छा,
2: तो एक गेम के ऊपर
1: एक गेम ही होता है। तो गेम्स खेलने के फायदे क्या है, स्पोर्ट्स में जो हम भाग लेते हैं उससे क्या फायदा मिलता है?
2: गेम्स खेलने के बहुत फायदे हैं,
1: जैसे कि
2: उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। मोटे लोग भी गेम खेलते हैं
1: जी,
2: तो जिनकी वजह से उनके जो बॉडी है ना वो फिट रहती है
1: जी। बहुत सुंदर बात कही सेजल कि गेम्स के बहुत सारे फायदे हैं, एनर्जी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, जो मोटे लोग हैं ना वो भी गेम्स अगर खेलते हैं तो उनका भी मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, फिट एंड फाइन हो जाते हैं और एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप पढ़ाई में कैसे हैं?
2: पढ़ाई में मीडियम है।
1: अच्छा, तो आगे कोई लक्ष्य बनाया आपने?
2: हाँ, ब्यूटिशियन का है।
1: अच्छा, क्यों गेम्स में आपको रुचि और ब्यूटिशियन बनना, दोनों ही अलग अलग हो गए फील्ड?
2: गेम्स में है पर गेम्स में जाते हैं ना आगे, कभी कभार खेलते हैं, मतलब गेम्स के अंदर स्कूल से लेके जाते हैं।
1: जी जी जी,
2: आगे बड़े होके।
1: और ब्यूटिशियन तो अपना सेल्फ रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल से आगे नहीं ले जा सकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन पर अपना सेल्फ डिसीजन है, जब चाहे तब खोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा।

0: सीखना पड़ेगा, मतलब 1 साल का कोर्स होता है इसका,
1: अच्छा
0: अहमदाबाद से कोई भी बड़ी सिटी होती है नंद से।
1: अच्छा फिर कहीं पर भी आप खोल सकते हो।
0: हाँ आप कंपनी से भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी से जुड़ के भी आपको हो सकता है।
1: अच्छा अपना अपना शौक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। तो सेजल आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई है कि स्पोर्ट्स में आपको किस तरह रुचि है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी के सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा विचार भी दिया तो नुस्खे भी अपच पर दिए। जरूर ध्यान दीजिएगा, रेसिपी में आपको जो सलाद बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज की पहली बहुत ही सुंदर थी जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी आप जो आपने सुनाया है वो मैं अभी बताऊंगी। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। ये आज की पहेली थी जिसका जवाब दिया है कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई से। उन्होंने कहा है कि समुद्र पहले आत्मा का फिर बाद में समुद्र कहा है, लेकिन ये गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से उन्होंने पर्यावरण कहा है, ये गलत है। कुपराम जी कोजरा से सबसे पहले इनका जवाब सही है, परंतु क्या है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सुरेश भाई थानेराव से आपने कहा आईना, ये गलत है। मंजू जी बाड़मेर से आपका भी जवाब सही है जो मैं बहुत ही शीघ्र सुनाने वाली हूँ। सुरेश भाई झोटाना से आपका भी जवाब गलत है, उन्होंने भी आईना ही कहा है। कंचन भाई मंडाली से आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया है कुपाराम जी और मंजू जी बाड़मेर से पानी। तो ये जवाब सही है, ढेर सारी ताली आप दोनों के लिए। और देखिए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, सभी ने, इसके लिए आप सभी के लिए भी ढेर सारी ताली। देखिए आपने कांच वगैरह कहा, आईना कहा, वो ठीक है, लेकिन पहली बहुत ही सुंदर थी कि चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए। अब किससे हिलोरा खा रही है, पानी से खा रही है ना। और शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। शांत पानी में आप देखिएगा आपका चेहरा साफ दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, लेकिन एक कंकड़ भी अगर पानी में गिर गया तो फिर आप अपने आप को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, हलचल हो जाती है ना उसमें, आपका फोटो फिर चारों तरफ फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए पानी जवाब सही है। आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हंस हंस मारे छक्का। गेम्स के ऊपर ही है, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में पड़ी दरार, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, बने मूर्ति ऐसे वे तो फूल के हो गए कुप्पा, करी गुदगुदी मुन्नी ने तब हंस हंस मारे छक्का। इधर उधर का दोनों दौड़े, इधर उधर को दोनों दौड़े हंस हंस देके कक्का, कोई किसी के हाथ न आए, हो रही धक्कम धक्का, हो रही धक्कम धक्का, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
2: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
3: बीनणी, ए बीनणी, कटे परीगी, मारा पगणा दुख है, थोड़ा दबा तो।
4: माजी, मने घना चक्कर आ रहा है माजी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
3: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, आणि दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 7 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
4: माँ जी, आपको समय अलग हो।
3: सामने बोल रही थू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
5: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
4: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठाई रहा हूँ।
5: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
4: थाने खबर है कि मारो पूरो टाइम चल रो, मारो सु काम कोनी हो रहो, क्या समझाऊं थाने, आ आ मारो पेट दुख रहो। आ
5: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
3: अरे कई नहीं होयो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म देवारी पीड़ा है। बिंदड़ी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
6: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
3: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
6: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बीनणी और बालक दोई घना कमजोर है, या को ध्यान राख जो, मैं जाऊं। राम राम।
3: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
4: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
3: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दरता मूर्ति, छोरिया ने गणे माथा पर नहीं बिठानी।
4: सो जाए।

संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही प्रोग्राम में हर हफ्ते हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उनके जीवन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग ऐसे साथियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने किसी शारीरिक चुनौती को चुनौती न समझ करके अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे साथी भी होते हैं जिनमें जिंदगी को अलग तरीके से देखने का नजरिया होता है। आप सब जानते ही हैं, शादीशुदा जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, कई तरह की कठिनाइयां होती हैं और कई अलग अलग तरह के संघर्ष होते हैं। लेकिन जब अगर किसी तरीके से उसमें शारीरिक अक्षमता आड़े आ जाए तो फिर वो चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसे में भी हमारे इस कार्यक्रम में हम जिन मेहमानों को आमंत्रित करते हैं वो बखूबी अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए हम ऐसे साथियों को आप सबके बीच में लेकर के आते हैं। आज भी मुझे ऐसे ही दो मेहमान मिल चुके हैं और एक बार फिर कहना होगा कि देश की राजधानी से ही मिल चुके हैं। तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, उससे पहले आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ, इस हमराही कार्यक्रम पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी तो ये कार्यक्रम यूं ही बदस्तूर चलता रहेगा, नहीं तो फिर हो सकता है आने वाले समय में हमें इस कार्यक्रम के बारे में फिर से विचार करना पड़े। और एक बात और, अगर आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, आप भी इस कार्यक्रम में आकर के अपने हमराही की कहानी सुना सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी सुन करके भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल जाए। चलिए, तो अब बहुत हो गई बातें, स्वागत करते हैं मीना जी और हरी जी का। स्वागत है मीना जी और हरी जी, आप दोनों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हमराही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: सर आपका, और हमें भी मतलब बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और आप के साथ जो बातचीत करने का मौका मतलब आपने हमें दिया, उसके लिए आपका भी हम और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं का और रेडियो मधुबन का भी मतलब बहुत आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए।
0: जी बहुत धन्यवाद हरि जी और मीना जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं को आप दोनों से रूबरू करवाया जाए, यानी आपकी जिंदगी के बारे में बताया जाए। तो हरी जी, आपसे शुरू करते हैं, जरा बताएं अपने जीवन के बारे में, क्या यादें जुड़ी हुई हैं, आपको किस तरह की शारीरिक अक्षमता है और आपने एजुकेशन में क्या किया है और आजकल आप क्या कर रहे हैं।
2: जी सर, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मतलब 100% ब्लाइंड। और मैंने एक्चुअली जो अपनी एजुकेशन है वो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जेपीएम स्कूल से 1996 में शुरू किया था और 2009 में मैंने वहाँ से 12th पास किया था। लगभग 13 साल का ये सफ़र मेरा रहा, नर्सरी से लेकर के 12वीं तक मैं वहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बी ऑनर्स म्यूजिक किया और फिर रामदास कॉलेज के साथ फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और वहीं से फिर एफएल किया और फिर उसके बाद नेट क्वालिफाई किया मैंने 2014 में जीआरएफ के साथ। और अभी वर्तमान में मैं संगीत अध्यापक के रूप में जो है कार्यरत हूँ लोधी रोड दिल्ली कन्नड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो ये आप आंखों की रोशनी कैसे गई?
2: ये सर आंखों की रोशनी तो मेरी बाय बर्थ की मतलब है, ऐसे ही है ये। तो
0: मेरा मतलब ये है कि घर वालों ने जब कुछ

0: उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ नहीं, तो उनको मतलब क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि ये क्या है, तो बाद में और लोगों से डिस्कस किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने बताया कि इनको मतलब डॉक्टर के पास दिखाओ, तो फिर वो लेके गए डॉक्टर के पास, तो फिर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मतलब इनको जो है प्रॉब्लम है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर एम्स जो हमारा ये ऑल इंडिया मेडिकल है यहाँ पर दिल्ली में, तो यहाँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर एक आध बार मतलब दो ऑपरेशन हुए थे मेरे, तो एक ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन 1-2 महीने बाद मतलब आँख फिर अपने आप ही मतलब वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर चली गई दोबारा से। तो
1: अच्छा, यानी बीच में थोड़ी सी आंख ठीक भी हो गई थी।
0: एक आंख मेरी ठीक हो गई थी, फिर 1-2 महीने बाद फिर अपने आप ही रोशनी दोबारा चली गई। फिर दोबारा से ऑपरेशन हुआ, पर वो सक्सेस नहीं रहा। फिर वहीं से डॉक्टर्स ने, एम्स के डॉक्टर्स ने मेरे को मतलब मेरे पापा को उन्होंने सजेस्ट किया कि ये अपना ओबरे होटल के पास एक स्कूल है, वहाँ आप ट्राई कर लीजिए और वहीं से एजुकेशन करवाइए, और अगर हो जाता है तो बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, बट अब आँख तो मतलब नहीं ठीक हो पाएगी, तो इसी में ही मतलब बच्चे को जीना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से मतलब बाद में पेरेंट्स को पता चल पाया था, और वहीं से फिर सफर ये शुरू हो गया।
1: मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं आप?
0: मैं सर नेपाल से हूँ, और मम्मी पापा बाद में इधर राजस्थान में आकर के बसे थे। फिर उसके बाद में उन्होंने मतलब गुड़गांवा में ट्रांसफर हो गया था उनका, तो काफ़ी साल गुड़गांवा में रहे, हरिया इधर यहाँ अपना एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में। फिर उसके बाद वो वापस अब मतलब नेपाल चले गए हैं, और हम लोग यहाँ दिल्ली में ही सेटल हैं।
1: नेपाल में कौन से शहर में?
0: लुम्बिनी।
1: लुम्बिनी।
0: हाँ जी,
1: अच्छा, ये जो बुद्ध के मामले में जो नाम आता है शहर का, वही ना?
0: गौतम, भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली मतलब है वो, तो
1: जी, तो
0: वही।
1: आपके फादर की जॉब कायम थी?
0: फादर मेरे प्राइवेट सेक्टर में थे, उनका मतलब एल्युमिनियम की फैक्ट्री में काम था।
1: ओके। और आपके परिवार में मम्मी पापा और आपके अलावा कौन कौन है?
0: मेरे अलावा मतलब हमारे अलावा तो बाकी 4 बहनें हैं और एक भाई है।
1: बाकी सब एकदम ठीक है? वो सब नेपाल में ही है?
0: हाँ जी, हाँ जी, सब नेपाल में है और बाकी सब लोग ठीक है। हाँ
1: आपका जाना होता है नेपाल?
0: जी सर, साल में 1 से 2 बार जाना होता है।
1: तो हरि जी, आपने नेपाल और भारत में दृष्टिबाधित साथियों की स्थिति में कोई कभी ऐसा जानने की कोशिश की कि क्या परिवर्तन है, क्या फर्क है, वहां कैसी परिस्थितियां हैं या व्यवस्थाएं हैं, खासकर समाज में और यहाँ?
0: सर एक्चुअली मुझे 1-2 बार वहाँ के ब्लाइंड स्कूल्स को विजिट करने का मौका मिला था। वहाँ मतलब जब मैं 11th में या शायद 12th में था, उस समय एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 1-2 जगह मतलब मुझे जाने का मौका मिला था। तो मैं वहाँ गया और वहाँ के स्टूडेंट्स से, इवन टीचर्स से भी मिला, कुछ विजुअली इम्पेयर टीचर्स थे। तो मैं मतलब मुझे बहुत फर्क लगा, मतलब क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। इवन मतलब वहाँ तो नॉर्मल लोगों को सर्वाइव करने में मतलब कई बार दिक्कत हो जाती है। तो अब मतलब बीइंग एज ए विजुअली इम्पेयर पर्सन, काफ़ी चैलेंजेस हैं वहाँ पर। और जिसको अब मतलब काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है, वहाँ का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाकी उसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तो मतलब एजुकेशन पहुँचना बहुत मुश्किल काम है, और यदि पहुँच भी रही है तो बहुत चैलेंज के साथ मतलब पहुँच रही है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं मतलब विजुअली इम्पेयर्ड की पढ़ाई के लिए, जैसे ब्रेल स्लेट्स हो गई, टेलर फ्रेम हो गया, वो सब चीज़ें भी मतलब 4-4 5-5 बच्चे शेयर करके आपस में मतलब वो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से मतलब यहाँ से इंडिया से कोई कांटेक्ट हो जाए तो उसके थ्रू मतलब उनको प्रोवाइड वो हो पाता था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये लगभग मतलब 11th और 12th में था। तो अब मतलब क्योंकि उसके बाद से फिर मैं भी मतलब कांटेक्ट में नहीं रह पाया, तो अब अगर कोई स्थिति सुधर गई हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल जो जिंदगी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस अभी भी हैं वहाँ पर।
1: अभी भी हैं जी।
0: तो इसलिए

0: ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस मतलब हमारी जितनी हैं वहां तक मतलब चीज नहीं पहुंच पाई होगी अभी।
1: समाज में स्वीकार्यता को लेकर के कैसी स्थिति है? मतलब जैसे भारत में तो हम जानते ही हैं, वहां पर भी परिस्थितियां लगभग वैसी ही होंगी या इससे भी ज्यादा खराब है? समाज में हमको एक्सेप्टेंस जो है वो अभी भी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या लगता है आपको?
0: उसमें सर एक्चुअली ये है कि जहाँ जैसे जो लोग थोड़ा बहुत मतलब बाहर निकले हुए लोग हैं या जिन लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब दुनिया से रूबरू हैं, जो परिचित लोग हैं, वो तो खैर मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ हद तक। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो शुद्ध गांव के मतलब हमारे यहाँ जैसे कहते हैं शुद्ध मतलब गांव के जो लोग होते हैं, परंपराओं में जकड़े हुए लोग होते हैं, तो उन लोगों को मतलब जो है एक्सेप्ट करने में अभी भी दिक्कतें हैं। मतलब सोसाइटी इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर नहीं पाती है। बाकी अगर हम थोड़ा सा इधर काठमांडू साइड में या इधर चले जाएं तो थोड़ी बहुत मतलब होगी अवेयरनेस, बाकी गाँव दिक्कत
1: जी, चलिए,
0: अभी
1: यही एक मौका होता है जी, इस बहाने जानने समझने की कोशिश करते हैं हम लोग भी कि भाई अलग जगहों पर क्या परिस्थितियां, माहौल है ना।
0: बिल्कुल।
1: ये जाना तो संभव नहीं हो पाता है हर किसी का, लेकिन अब चूंकि आप वहां के बाशिंदे हैं तो समझने में आसानी रही इस बात को।
0: हाँ जी सर, वही है। मतलब अगर मान लीजिए जिन लोगों को वो जानते हैं, अब जैसे हम लोग हैं कभी जाते रहते हैं, तो अब जैसे जो वेल सेटल्ड है, कई लोग ऐसे भी लोग होते हैं मतलब जो ये कहते हैं अरे मतलब आप लोगों ने तो वो कर दिखाया जो कई बार नॉर्मल लोग भी नहीं करके मतलब कर पाते हैं, या ऐसा है वैसा है, इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन मैं मतलब उनको यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब मेहनत करेंगे तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो वो चीज़ें हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए मतलब आपको अगर आप में मतलब एक तरह का जैसे कुछ बहुत बढ़िया मतलब आप अच्छी जगह पे हैं तभी, अदरवाइज मुश्किल है।
1: जी, तो अब दिल्ली में अपना घर बना लिया आपने या अभी नहीं बना पाए हैं?
0: नहीं बना लिया है सर, हमने मतलब एक्चुअली फ्लैट एक खरीदा हुआ है छोटा सा, तो
1: बहुत बढ़िया,
0: हाँ जी अपने फ्लैट में ही हम लोग रहते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, तो अब काफी बातें हो गई आपसे, थोड़ा मीना जी के बारे में
0: जरूर सर,
1: जाए
0: जरूर
1: और हमारे श्रोताओं को मीना जी से परिचय करवाया जाए। जी मीना जी, बताएं जरा अपने बारे में।
2: जी। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और संदीप सर आपको भी।
1: जी, नमस्कार
2: हाँ
1: जी।
2: जी, तो मेरा नाम मीना है और मैं बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली हूँ,
1: जी
2: और मेरी ब्लाइंडनेस तो खैर मैं लेट ब्लाइंड हूँ
1: अच्छा,
2: मैं। हाँ जी, तो ये है। और अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में ही जॉब कर रही हूँ रेलवे में, और मेरी एजुकेशन जो है जब मैं साइडेड थी तो मैंने 8th तक पढ़ाई की थी वहीं उत्तराखंड में ही। तो फिर एक्चुअली गांव से ना स्कूल बहुत दूर होते थे, तो पापा ने मतलब पढ़ाई रुकवा दी थी मेरी। उसके बाद फिर जब मैं ब्लाइंड हुई तो उसके बाद मैंने सब पढ़ाई ओपन से की है।
1: अच्छा
2: रेगुलर मैं स्टूडेंट नहीं रह पाई जैसे ब्लाइंड होने के बाद। मैंने पहले सबसे पहले पंजाब एजुकेशन बोर्ड से 10th किया 2009 में, और फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने 2012 में CBSE बोर्ड से +2, और उसके बाद ग्रेजुएशन किया ही ये दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। हाँ जी, मैं
1: तो उत्तराखंड में कौन से शहर से हैं आप, कहाँ से हैं?
2: डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ सर। हाँ
1: पौड़ी गढ़वाल। अच्छा,
2: जी
1: तो मीना जी आपने कहा जैसे कि आप लेट ब्लाइंड हैं,
2: हाँ जी,
1: तो कैसे, क्या कोई हादसा हुआ था, कितने बड़े थे आप उस समय, आपने
2: मैं
1: कितनी करी तो, और कैसे हुआ ये सब? जी
2: एक्चुअली मैं 18 साल की थी तब, तो ये होली के दौरान मतलब कुछ फैमिली में ही कुछ फैमिली मैटर था, तो पापा के साथ हमारे रिलेटिव का, तो उन्होंने ही कुछ कलर में मतलब मिक्स करके आंखों में मेरे डाल दिया था सर।
1: तो यानी एक तरह से उन्होंने बदला लेने की कोशिश की और इस तरह से
2: हाँ मतलब पापा से मतलब बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह का वो हुआ था सर।
1: तो आपके और भाई बहनों को भी किसी को नुकसान हुआ या सिर्फ आप ही को अटैक हुआ था?
2: ये मेरे को हुआ, मतलब हम तीन भाई बहन थे मतलब उस टाइम पे। अब तो खैर मेरे भाई की भी डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है, और सिस्टर है मेरे से बड़ी, वो ठीक है
1: जी।
2: हाँ जी, और सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम हुई है।
1: तो इतना मतलब जबरदस्त तरीके से उन्होंने कलर डाला था कि बाद में फिर इलाज वगैरह कुछ करवा पाए तो भी?
2: एक्चुअली सर नहीं, गांव का क्या रहता है कि जैसे अब होली के टाइम पे पेरेंट्स को यही लगा, मेरे को भी उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, अब बचपना था, लेकिन कलर डाला तो आंखों में जलन शुरू हो गई थी मेरे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि अब कलर तो उसी वक्त उन्होंने ही डाला था, मतलब हमारे रिलेटिव में है, मेरी भाभी लगती हैं वो, तो उन्होंने कलर डाला तो जलन हुआ, तो मैं अपने मतलब दर्द के साथ रोने लगी, तो मम्मी लोगों ने ये सोचा कि अब हमारे गांव में जैसे कुछ पुराने धारणाएं होती हैं कि हम लोगों ने शायद किसी पूजा में कोई मिस्टेक कर दी है, मतलब इन चीजों में तो शायद ये हो गया हमारे साथ, ऐसे करके मम्मी लोग पहले झाड़ फूक वगैरह ही करवाते रहे
1: और समझ नहीं पाए इसकी गंभीरता को।
2: हाँ जी हाँ जी, तो आंखों में बिल्कुल मतलब आंसू आने लगे थे, बहुत तेज मतलब पानी निकलने लगा आंखों से, तो स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज्यादा, तो मम्मी लोग वही झाड़ फूक में रह गए कुछ दिन तक, तो ऐसे ही चला 4-5 दिन तक, तो बाद में फिर गांव के लोगों ने सजेस्ट किया, तो वो जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बताया, बाद में फिर पता चला घर वालों को भी कि केमिकल गया है।
1: उसका कोई उपाय नहीं था फिर बाद में? मतलब
2: नहीं सर, नस जल चुकी थी तब तक।
1: चल चुकी थी।
2: हाँ जी।
1: ओहो। तो मीना जी, ये परिस्थितियां होने के बाद कैसे अपने आप को संभाला, आपने हिम्मत दिलाई और पढ़ाई के लिए खुद को कैसे तैयार किया? एक तो ग्रामीण परिवेश में रहना, दूसरा ऐसी जहाँ पे सुविधाओं का अभाव, तीसरा इतना ज्यादा आपको पता भी नहीं होगा कि ब्लाइंड पर्सन इतनी तरक्की कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इतना नॉलेज नहीं रहा होगा उस समय। वो हिम्मत कहाँ से पैदा की आपने अपने अंदर? क्योंकि हो सकता है आपकी बात सुन करके कुछ और लोगों को भी थोड़ा जज्बा मिले।
2: हाँ जी सर, जहाँ तक हिम्मत की बात है, एक्चुअली होली में मेरी आई साइट गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा को मतलब इसी चीज का एक सदमा सा लग गया था, तो उनको अटैक आया, तो दिसंबर में पापा भी मतलब हमें छोड़ के चले गए थे
1: जी।
2: तो मम्मी थी मेरी, मेरा भाई और मेरी सिस्टर की मैरिज हो रखी थी, तो वो चंडीगढ़ में ही रहती थी सिस्टर मेरी, तो मेरा भाई और मम्मी और हम फिर चंडीगढ़ आ गए थे, मतलब मेरी सिस्टर ले आई थी वो यहीं पे, क्योंकि अब रिलेटिवों का तो ऐसा भरोसा ही नहीं था, अब अभी ऐसा हो गया तो आगे पता नहीं कुछ भी हो सकता था, तो हम लोग चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ में क्या हुआ कि तब भी मेरे को ये नहीं पता था कि ब्लाइंड कम्युनिटी भी है, मतलब ऐसे मेरे को ये लगता था कि मैं अकेली हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, और ऊपर से फिर जानकार के लोग सब लोग यही बोलते थे ये लड़की है ऐसे सब कुछ बोलते रहते थे, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं वहां से चंडीगढ़ में जब मैं आई तो मेरे भाई के साथ एक दिन मैं कहीं जा रही थी, तो एक ये नैब का सर्वे चला था कुछ एनएबी का, तो वहां पे क्या करते थे टीचर लोग ब्लाइंड बच्चों को मतलब गांव से घरों से ढूंढ के उनको उनको ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन दिलाते थे और उनको कुछ सिखाने के लिए पढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करते थे। तो ऐसे ही मैं मेरे भाई के साथ कहीं जा रही थी, तो एक टीचर मिले मुझे, अभी वो चंडीगढ़ में ही ब्लाइंड स्कूल में ही टीचर है वो अश्वनी सर है वो, तो उन्होंने ही मुझे देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी ब्लाइंड कब से है, तो मेरे को तब तक लोगों से सही से कम्युनिकेट मतलब बातें बात भी नहीं कर पाती थी मैं, बिल्कुल मतलब हेजिटेट करती थी कि अरे पता नहीं सामने वाला मुझे देख रहे होंगे, मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब यही चीज रहता था मेरे को,
1: बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था जरा भी, मतलब
2: बिल्कुल ही नहीं था मेरे को, तो मेरे भाई ने ही बात की, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो जरूर मेरी बहन पढ़ना चाहेगी सर, तो उन्होंने कहा हमारा एनजीओ है ऐसा, मतलब सब कुछ उन्होंने डिटेल दिया हमें नैप के बारे में, फिर उन्होंने अपना कार्ड दिया तो मेरा भाई वही लेके चले गए थे मुझे इंस्टीट्यूट में दूसरे दिन। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो उन टीचर ने मेरा बहुत मतलब हेल्प किया मुझे पढ़ने में, आगे बढ़ने में। फिर एक्चुअली
1: अश्विनी सर नाम बताया ना आपने?
2: हाँ, अश्विनी है उनका नाम।
1: तो बिल्कुल इस कार्यक्रम के माध्यम से अश्विनी सर को भी धन्यवाद देते हैं। जी
2: हाँ जी हाँ जी, उन्होंने तो मतलब एक पेरेंट्स के बराबर ही आगे बढ़ के उन्होंने यहाँ तक अगर मैं आज पहुंची हूँ तो सबसे ज्यादा मतलब वो उनका ही रहा है मेरे साथ, उनके आशीर्वाद और उनका हेल्प जो था उसी से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ आज। और फिर मेरे भाई की भी मतलब जैसे एक साल के अंदर हमारे साथ इतना कुछ हो गया था, मेरे को उन्होंने इंस्टीट्यूट में जैसे एडमिशन करवाया, उसके बाद ही नेक्स्ट जो दिवाली आई उसमें भाई की भी डेथ हो गई, उनको जॉन्डिस था। हाँ, फिर वो भी मतलब छोड़ के चले गए, तो फिर मम्मी और मैं सिस्टर के साथ ही रहते थे वहीं से। फिर सर ने मुझे पढ़ाया, ब्रेल सीखी मैंने वहीं एनजीओ में जाके, और वहीं से फिर मेरी प्राइवेट एजुकेशन स्टार्ट हुई। तो मैंने 10th फिर प्लस 2 ऐसे करके एजुकेशन की सर वहां से।
1: तो मीना जी, फिर ये दिल्ली तक पहुंचने का सफर कैसे तय हुआ?
2: हाँ जी, दिल्ली ऐसा था कि फिर मैंने जब वहाँ से 10th किया तो उसके बाद मैं सोचती थी कुछ काम, अब मम्मी थी मेरे साथ और सिस्टर के ऊपर भी ज़्यादा बोझ बनना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब सिस्टर के अपना भी फैमिली है। तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं कुछ करूँ आगे, तो फरीदाबाद में जो एक सेंटर है नैब का ही है शायद वो भी, तो वहाँ पर मैंने हाँ NAB है वहाँ पर, तो एक वही सबका ही साथ सपोर्ट जैसे साथ मिला मुझे। एक दीदी है सीनियर है वो भी आशा दीदी, तो उन लोगों ने मेरी हेल्प की तो उन्होंने फरीदाबाद में मेरा एडमिशन करवा दिया था। वैसे मैं कंप्यूटर के लिए आई थी, तो वहाँ पे कहा गया कि अभी कंप्यूटर में जगह नहीं है, तो 2.5 महीने मुझे होम साइंस में रहना पड़ा था। वहाँ पे होम साइंस सीखा मैंने 2.5 महीने, फिर उसके बाद मैंने वहाँ से कंप्यूटर कोर्स किया। तो कंप्यूटर सीखने के बाद फिर मैं दिल्ली ही हॉस्टल में रह के मैंने सोचा अब ओपन से मुझे पढ़ाई करनी है तो कुछ प्राइवेट जॉब ढूंढूंगी बोल के मैं यहीं हॉस्टल में रहती थी यहीं दिल्ली में ही। तो यहीं से एजुकेशन और मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है कुछ महीने। हाँ जी।
1: अच्छा, तो फरीदाबाद में रहने के दौरान जो कुछ आपने सीखा,
2: हाँ जी,
1: तो आपका कैसा अनुभव रहा सेंटर में? मतलब जैसे होम साइंस आपने सीखा 2.5 महीने, तो अच्छे से आप के अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ गया था या उतना अच्छे से नहीं आप सीख पाए या सिखा पाए वहाँ के लोग, क्या थोड़ा अनुभव?
2: हाँ जी, फरीदाबाद में ये था कि जैसे होम साइंस जो खाना वगैरह सब काम वैसे मेरे को जब दिखता था तब आता था, लेकिन वही कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो गया था और ब्लाइंडनेस के बाद मैं डरती थी थोड़ा। पर मैंने वहाँ पे सीखा तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था, 2.5 महीने मैंने भले सीखा है पर जो टीचर थे बहुत अच्छा कोऑपरेट करती थी मैम, अनीता मैम ने सिखाया मुझे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर ये था कि मेरी जो मैं बता रही थी आशा दीदी, वो भी ब्लाइंड थे, हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड है, अब खैर जीजू नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो दीदी के घर हम जाते थे तो दीदी भी मतलब हमें सिखाती थी, वो भी पूरा मतलब अपने उस पे ही थी वो, मतलब कोई किसी से कोई हेल्प नहीं लेते थे, वो भी खुद ही घर का सारा काम और ऑफिस संभालना सब कुछ वो खुद करती थी। तो उनके साथ भी मतलब वो भी बोलती थी कि अपने पैरों पे अपने आप खड़े होना चाहिए, हमें मतलब हेजिटेशन जितना हम करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। तो इसी से फिर वही उनके साथ भी रह के और फरीदाबाद में जितना भी मेरा टाइम रहा बहुत अच्छा रहा, मैंने अच्छे से सीखा वहाँ पे।
1: तो मीना जी, अभी माताजी हैं आपकी?
2: नहीं सर, माताजी भी अभी 2021 में ही वो मतलब चली गई।
1: अच्छा, और आपकी सिस्टर चंडीगढ़ में आज भी?
2: हाँ जी हाँ जी, सिस्टर है मेरे से बड़ी हैं, वो चंडीगढ़ में हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है बच्चों की।
1: उनके वहाँ आना जाना होता है आपका?
2: हाँ, मेरा भी होता है और वो लोग भी आते हैं यहाँ पर।
1: बहुत खूब अच्छी बात। तो फिर मीना जी,
2: हाँ जी,
1: काफी जगह की यात्रा की आपने और मतलब काफी संघर्षों से भरा जीवन देखा, एक तरह से।
2: जी सर, हाँ जी सर।
1: त्योहारों पर इंसान आमतौर पर खुश होता है, खुशियां बांटता है, लेकिन आपके साथ अजीब इत्तेफाक रहा कि एक तरफ होली में आपके हाँ साथ और दिवाली पर आपके भाई
2: भाई चले गए। हाँ जी।
1: आपके जीवन में आपके भाई का भी एक बहुत अहम किरदार है।
2: जी सर।
1: तो खैर चलिए, उस सबसे बाहर निकल करके एक खुशहाल जिंदगी आज आप जी रहे हैं।
2: बिल्कुल सर।
1: देते हैं आपको इस हिम्मत के लिए, इस जुनून के लिए, इस जज्बे के लिए। अब ये बताइए कि फिर हरि की शरण में कैसे पहुंचे आप? वैसे तो हर किसी को जाना पड़ता है हरि की शरण में।
2: सर ये तो है, हर किसी को जाना पड़ता है। मैं परमानेंट पहुंच
1: हमारे श्रोता भी सुनेंगे कि सोचेंगे कि भाई ये क्या है, इतनी सीरियस सीरियस बातें हो रही हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है माहौल को अब जो है हल्का फुल्का किया जाए।
0: नहीं नहीं ठीक है सर, वो तो एक दौर था, गुजर मतलब एक तरह से गुजर गया। ठीक है, अब मतलब आपको सब कुछ मतलब भगवान का दिया हुआ सब है, बढ़िया है, सब अच्छे से लाइफ चल रही है। संघर्ष के बिना खुशी मतलब आना मुश्किल काम है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। जो बीत गया वो उसको हमने पीछे छोड़ दिया है, हम अब तो एकदम मस्त बिंदास तरीके से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पूछा है अब ये बताएंगे अपने।
1: इसीलिए मैंने कहा एक बार इन्हीं से चर्चा हो रही है तो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं आगे, फिर आपके पास भी आएंगे कि आपने इनको शरण में कैसे लिया। हाँ मीना जी बताए जरा।
2: हाँ जी सर, एक्चुअली क्या था कि 2015-16 में मेरे पास भी एंड्रॉइड फोन था,
1: तो 2015 में
2: हाँ तो व्हाट्सएप पर ग्रुप चलता था, एक म्यूजिक का ग्रुप था कोई, तो उसमें इनके एक फ्रेंड है, मतलब इनके कॉलेज के क्लासमेट हैं वो, मंगल सिंह जी, तो उनसे मतलब बातचीत हुई थी मेरी, मतलब ऐसे बात करते थे हम म्यूजिक से, वो गाइड करते थे, मतलब हम लोग कुछ अपनी प्रस्तुतियां भेजते थे तो वो कमेंट वगैरह करते थे, और फिर वो भी मतलब पूछते थे कि आप ब्लाइंड कैसे हुए, तो बस मैंने उनको बताया था, तो वो भी बोलते थे अरे आपने मतलब इतनी प्रॉब्लम को करके फेस करके आप यहाँ पहुँचे हो, ऐसे मेरे को बताते थे। मेरे को भी म्यूजिक का बहुत शौक है वैसे, पर ये है कि हाँ मैं सिंगर नहीं बन पाई। और तो फिर उन्होंने ही मतलब एक बार ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में मतलब आपस में ही ये लोग गेट टुगेदर कर रहे थे, मिल रहे थे सब लोग, तो कहा कि चलो आप भी ऐसे, आप हॉस्टल में रहती थी मैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे अकेलापन नहीं सोचना चाहिए, ब्लाइंडनेस तो देखो है और आपने तो अब बहुत लोगों को देख लिया है अपने जैसे, तो आपको भी सबके साथ हंसना बोलना चाहिए, तो आप अकेले अकेले क्यों रहते हो। तो ऐसे ही हम लोग तीन चार मतलब दो तीन जो मेरी फ्रेंड थी मेरे हॉस्टल से भी थी, तो मैं गई मिलने, तो उन्होंने मतलब सबसे पहले मतलब एक तरफ से बोलते हैं जैसे हम दोनों का मिलना उन्होंने ही वो करवाया, मतलब मिलवाया हम दोनों को
1: की फ्रेंड्स ने,
2: नहीं मंगल जी ने,
1: मंगल सर ने ओके ओके।
2: फिर मैं इनसे मिली, मुझे डेट याद है अभी भी, 19 फेब का दिन था और 2016 में मिली थी मैं इनको पहली बार,
1: गजब, 2016।
2: हाँ तो
1: वो दिन कितना यादगार था आपके लिए मीना जी?
2: हाँ मतलब उस दिन तो खैर ऐसे ही जस्ट फ्रेंड के हिसाब से मिली, मतलब क्या था कि मुझे नेपाली भाषा आती है।
1: अच्छा।
2: हाँ तो क्या था कि मंगल जी ने सुना मेरे से कि उन्होंने बोला तुम्हें नेपाली आती है, मैंने कहा हाँ जी, तो कह रहे मेरा एक फ्रेंड है वो भी नेपाली बोलता है, लेकिन तुम बोलना मत पहले, मैं उसको सरप्राइज दूंगा वहां जाके, तुम नेपाली में उससे उसका नाम पूछना।
1: अरे वाह।
2: मैंने कहा ठीक है, तो पहले मैंने ये बोला कि मैं तो जानती भी नहीं, कह रहा पहले पहचान करवाऊंगा, ऐसे हेलो आए तब पूछना। मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मिलवाया, तो मैंने जैसे ही नेपाली में मतलब इनका नाम पूछा, तो सुनते ही ये तो पता नहीं जैसे शोर मचाने लग गए।
1: कि यहाँ पे कौन आ गया, नेपाल मूल का है।
2: हाँ, मतलब इनको लगा कि मतलब फिर ये मुझे पूछने लग गए नेपाली में, आप नेपाल से हुई है वो? मैंने कहा नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ, और फ्रेंड सर्कल भी रहा है मेरा, क्योंकि नेपाली हमारे हॉस्टल में भी रहते थे, तो और मेरी दरअसल मेरे जो पापा हैं वो उत्तराखंड के हैं, मम्मी नेपाल की ही है मेरी।
1: यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन देखो कैसे जुड़ता है इंसान का।
2: हाँ जी हाँ जी, तो पापा से मतलब मम्मी पापा की भी लव मैरिज थी मेरे, तो वो उससे फिर मैं ज्यादातर ननिहाल में भी रही, तो फिर मैंने नेपाली सीखी थी। फिर नेपाली में बातचीत हुई तो बस उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे बातचीत होती रही, बाद में
1: ये थोड़ा सा हो
2: इंडिगो।
1: गया, वरना मैं भी ये सवाल पूछता आपसे कि भाई नेपाली सीखने का अनुभव कैसे प्राप्त किया आपने, तो वो आपने खुद ही बता दिया कि फादर आपके नेपाली मूल के ही थे
2: नहीं, मम्मी
1: और
2: मम्मी।
1: मम्मी, अच्छा मम्मी नेपाली मूल के थे, है ना, तो ये एक अच्छी बात रही। और आप नेपाल में भी रहे आपने बताया, ननिहाल
2: नहीं
1: में।
2: हाँ ननिहाल, एक्चुअली मेरा क्या था कि मेरे जो नाना नानी थे वो मतलब उत्तराखंड में ही मतलब सेटल हो गए थे वो लोग,
1: अच्छा,
2: तो लेकिन मैं शादी से पहले कभी मतलब नेपाल नहीं गई, मैं उत्तराखंड में ही। लेकिन मेरे नाना नानी में पूरी फैमिली नेपाली गढ़वाली, वो दोनों ही भाषा बोलते थे। और एक मेरे को मतलब शौक भी है भाषा सीखने का, लेकिन यही है
1: यही
2: कि
1: मैं कहने वाला था अभी, यही मैं कहने
2: हाँ
1: वाला था, क्योंकि ये प्रोग्राम एक तरह से हमराही का है, एक एक एक दूसरे के अपने अपने हमराही को ढूंढने का भी एक बहाना होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो
2: हाँ जी
1: लोगों के अंदर सीखने की जो ललक है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। कब कौन
2: हाँ
1: सा
2: जी
1: हुनर कहाँ जाकर के काम आ जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे फील्ड में आप जानते ही हैं जॉब आजकल फिर भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जीवन साथी आसानी से
2: हाँ,
1: नहीं।
2: बहुत बहुत मुश्किल होती है सर
1: अब
2: ये
1: आप
2: चीज
1: देखिए कि
2: तो।
1: आपकी नेपाली भाषा को जानना
2: हाँ जी
1: और हरी जी से मिलना, यानी इसने भी कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से योगदान ही दिया है ना?
2: बिल्कुल सर, नेपाली सीखना ही मेरे लिए वरदान हो गया, इसलिए शरण
1: हाँ,
2: मिल गई मुझे। हाँ
1: इसलिए फिर नहीं, जल्दी शरण मिल गई,
2: जी हाँ जी, ये तो है सर।
1: नहीं तो पता चलता कहीं लाइन में लगना पड़ता, यू आर इन वेटिंग है
2: हाँ हाँ
1: अभी।
2: जी, मतलब मुझे बोलते भी है कि मैं पहले सोचता था, मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे, और मैं भी सोचता था कि कोई देखने वाली लड़की से ही शादी करूंगा। तो फिर जब मैं मिली तो फिर इनको पेरेंट्स को भी मनाना पड़ा।
1: मान गए फिर पेरेंट्स?
2: हाँ थोड़ी सी तो मुश्किल तो हुई थी शुरू में मम्मी को इनके मनाने के लिए, वही डायलॉग था घर वालों का कि दोनों एक जैसे हो गए तो कैसे खाओगे कैसे रहोगे। तो
1: तो फिर
2: एक्चुअली
1: 19 फरवरी
2: तो
1: के बाद शादी करने में कितना टाइम लगा?
2: हमें टाइम तो वैसे
3: लगभग सर
2: बस
3: 2 साल
2: दो
3: मान
2: साल तो
3: लो।
2: लगे।
1: अच्छा, 2 साल मतलब प्रोबेशन पीरियड तो रहा।
2: हाँ जी सर
1: ओके, तो चलिए खैर अब इसमें और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, अब फिर हरी जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि काफी इंतजार हो गया हरी जी का भी। हरी
3: जी
1: जी को नेपाली कैसी लगी?
3: सर बिल्कुल
1: हम जो है बचपन में कभी कभी वो दिन में वो आते थे, बॉलीवुड संगीत आता था नेपाली स्टेशन से,
3: बिल्कुल सर बिल्कुल।
1: वो सुना करते थे कभी कभी हम लोग।
3: हाँ जी सर, रेडियो नेपाल।
2: मैं तो ऑल इंडिया रेडियो में आता था
1: जी
2: पहले। हाँ
1: जी जी
2: जी
1: जी बताएं
2: सर,
1: कैसा अनुभव रहा आपका मीना जी से मिलने का, इनके साथ बातचीत करने का?
3: सर अनुभव तो बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़िया रहा। मतलब ये है कि अगर हम बात करें पहले दिन की, जैसा कि इन्होंने बताया 19 फरवरी 2016 का जो दिन था वो, तो उस दिन तो कॉमन मतलब ठीक है, मतलब जैसे एक हम एक तरह से अननोन पर्सन से पहली बार मिलते हैं, तो मतलब बस मिलते हैं और ठीक है। मतलब उस दिन की गेट टू गैदरिंग हो गई, चाय पानी हो गया साथ में बैठ करके, हम लोग 5 से 7 8 लोग थे, लगभग 7 8 लोग थे, तो ठीक है। फिर बाद में भाषा मतलब जब मुझे पता चला कि आती है, तो ऐसे ही बात मतलब चलती रही। फिर बाद में आगे मतलब फिर बस भगवान को जो मंजूर था उसी हिसाब से मतलब काम होता रहा, और अब ठीक है, बहुत हम लोग एकदम खुश हैं और बढ़िया जीवन साथी। जैसे जीवन साथी की तलाश मुझे थी, वो सारे गुण इनमें हैं, तो मैं खुश हूँ सर। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेस्ड मानता हूं मैं अपने आप को।
1: तो हरी जी, कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतास्सिर किया आपको मीना जी की?
3: एक्चुअली इसके लिए सर मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा।
1: बिल्कुल
3: ये
1: बिल्कुल
3: था कि ये मैं एक्चुअली ये सोचता था कि मतलब ऐसा है कि भाई कोई साइटेड मिले तो बढ़िया है, मतलब साइटेड से ही अगर शादी हो सके तो अच्छी बात रहेगी।
1: बताइए।
0: जीवन थोड़ा सुगम हो जाएगा। तो बाद में मतलब जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मतलब हालांकि ऐसे ही हम लोग नॉर्मल बात करते हुए तो इन्होंने बोला मुझे खाना बनाना आता है।
1: अच्छा।
0: और मुझे भी खाने का बहुत शौक, मतलब खाने, हाँ खाने का तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है अभी भी।
1: सोचा कि साइकेट भी खाना तो बनाएगा ही और ये भी बना लेती है खाना।
0: नहीं तो मुझे मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ इन पे। मैंने कहा अबे मतलब ऐसा है कि तो मैंने कहा क्या पागल, मतलब मन में सोचा मैं अब, क्योंकि पहली पहली मुलाकात थी
1: तो कह तो नहीं सकते ना ऐसे डायरेक्ट, किसी को कह भी नहीं सकते जी।
0: तो मैंने कहा छोड़ो यार पागल बना रही है तो लगता है तो
1: कि मतलब मेरा काम लपेटने का है और ये फेंकते जा रहे हैं।
0: तो फिर उसके बाद मतलब बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब ऐसी व्यवस्था बन पाई तो फिर एक दिन हमने मतलब प्लान बनाया कि चलो भाई आज जो है तुम्हारा बनाया हुआ ही खाएंगे।
1: अच्छा।
0: तो फिर उन्होंने फिर बना दिया, मतलब बाद में जब ये बात हुई तो इन्होंने खाना बनाया बहुत बढ़िया।
1: अच्छा।
0: और वही जो खाना था बस, मतलब वो इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने कहा अब तो सब कुछ पॉसिबल है, जब खाना बन गया तो फिर तो मतलब बाकी चीज तो अपने आप हो जाती, क्योंकि खाना बनाना, खाना खाना तो इजी है लेकिन खाना बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम, मतलब मैं समझता था उस टाइम पे, क्योंकि हॉस्टल में ही शुरू से रहा था मैं तो 5 साल की एज से ही, मतलब खाना।
1: जी, आप तो इतने सारे ब्लाइंड साथियों के बीच में रहे थे तो आपने तो बहुतों को देखा होगा ना, लेकिन एक्टिवली काम करते हुए
0: सर, लेकिन ऐसे खाना मतलब घर के कामों को करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा था।
1: अच्छा।
0: हाँ मतलब जैसे आप ये मान लीजिए कि एजुकेशन फील्ड में तो बहुत मतलब बारीकी से मैंने वो चीजें देखी थी कि लोगों में कितनी कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन ऐसे मतलब ब्लाइंड लड़कियां एक कुशल हाउसवाइफ हो सकती हैं, ये मतलब मेरे को इनसे मिलके ही अनुभव हो पाया था।
1: वाह क्या बात है, तब तो दिमाग में ये चल रहा था देखता हूँ देखें खाना वाकई में बनता भी है कि नहीं।
0: जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा तब तक कुछ ऐसी बात हो गई थी थोड़ी, मतलब गर्माहट आ गई थी रिश्तों में कि मतलब पसंद करते हैं एक दूसरे को और काफी उठना बैठना है साथ में, ऐसा कुछ हुआ था या नहीं, बस एक नॉर्मल जो चलता है फ्रेंड सर्कल में वही सब चल रहा था?
0: नहीं, बस ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में मतलब नॉर्मली चल रहा था, बाकी मतलब बातें तो हमारी, हाँ थोड़ा सा मतलब ये है कि और जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे ज्यादा थोड़ी बातें होती थी, लेकिन नॉर्मल बात होती थी, मतलब ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि मतलब मैंने मन में सोच लिया था कि मैंने कहा भाई खाना जब तक नहीं खाऊंगा बना हुआ तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा, कहानी चाहे हो जाए कुछ भी।
1: बातें भली 24 घंटे कर लो लगातार,
0: बातें चाहे होती रहे।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ जी हाँ जी। फिर जिन दिन खाना इन्होंने बना के खिला दिया तो फिर दो चार, मैंने कहा अब, फिर मैंने सोचा अब अगर मान लो अगर अभी कह दूंगा तो फिर तो लगता है मतलब ये तो साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि मेरी परीक्षा ले रहा था ये, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट करता हूँ, मतलब 10-15 दिन 20 दिन थोड़ा ऐसे ही मैंने टाइम गुजारा किसी तरीके से। फिर एक दिन मतलब मैंने इनको कह दिया कि अब देखो आप में मतलब जो है कि वो सारे गुण हैं तो हम क्या इसमें आगे बढ़ सकते हैं ऐसे करके।
1: हाँ
0: जी। तो इस तरह से फिर बात
1: हमारी। मीना जी का उस समय क्या कहना था, उस समय क्या प्रतिक्रिया थी इनकी?
0: 2 मिनट के लिए चुप हो गई ये।
1: अच्छा।
0: तो हाँ जी। फिर उसके बाद इन्होंने बोला मुझे, मैं तो एक लड़की हूँ तो मुझे तो बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा बहुत सारी नहीं, मतलब ऐसा है कि जितनी सोचनी है सारी सोचो, जो भी मन में सोच आता है सब सोचो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि मतलब अगर जैसे मेरा मतलब सोचने का तरीका है अगर वो साकार हो सके तो बढ़िया है। तो फिर कह रही है, फिर उन्होंने टाइम लिया 1-2 दिन का, फिर उसके बाद में धीरे धीरे धीरे बात मतलब बनती चली गई।
1: वाह क्या बात है। तो उस दिन याद है कि क्या बना था खाने में?
0: सर उस दिन एक्चुअली मुझे जो है चिकन बहुत पसंद है।
1: अच्छा।
0: तो मतलब क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं पीजी मेंस में रहता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, 14-15 की, तो 2015 में मेरी एमफिल सबमिट हो गई थी 31 दिसंबर को।
3: तो जब इनसे मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पे मुझे हॉस्टल खाली करना था। तो हॉस्टल खाली करने के बाद मैं मतलब लगभग मान लीजिए कि इनसे मुलाकात हुई फरवरी में और मैं जो है अप्रैल में हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। रूम रेंट पे लेकर के मैं शिफ्ट हो गया था
1: जी।
3: तो फिर उसके बाद अप्रैल मिड में मैंने मतलब हम सभी लोगों ने ये प्लान बनाया, सभी दोस्त लोगों ने, कि आज भाई ऐसा है मीना जी से खाना बनवाएंगे और खाएंगे। तो जो भी मतलब हम लोग नॉन वेजिटेरियन थे जितने हमारे सर्कल में एक दो तीन लोग जो भी थे हम में से मतलब 7-8 लोगों में से, तो वो सब इकट्ठे हुए और हमने इनसे बनवाया खाना और खूब जी भर के खाया। तो वो चिकन मतलब था उस टाइम पे बना हुआ,
1: तो आपने सोचा कि वेज तो वेज नॉन वेज भी बना दिया इन्होंने तो।
3: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा चलो अब नॉन वेज बन गया तो वेज तो खैर बनेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात मतलब बन ही जाएगा फिर वो।
1: तो मीना जी, श्रोता सोच रहे होंगे कि भाई ये फरीदाबाद में आपको नॉनवेज भी सिखाया गया या ये कहीं और की कला थी?
2: ये मेरी जो वो ब्लाइंड दीदी थी वो महाराष्ट्र की है तो वो बनाती थी तो उनसे सीखी थी मैंने।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
2: और हम लोग क्या है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे मतलब पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे भी हमारे परिवार में सब खाते थे, मम्मी पापा सब लोग। तो ये आइडिया तो था, जब दिखता था तब भी हम बनाते थे तो इतना आइडिया था कि हाँ ऐसे बनता है।
1: ठीक है ठीक है, यानी बहुत मुश्किल नहीं था और वही बात है कि आप जो जो सीखते गए वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आता गया।
2: काम आता गया। हाँ जी सर ये तो है। ये तो है।
1: तो हरी जी फिर कैसे मम्मी पापा को मनाने में मुश्किल क्यों हुई?
3: हाँ सर वो एक्चुअली ये है कि मतलब थोड़ा सा उन लोगों को मतलब ये था कि हम लोग जो मेरे टाइप के जैसे मतलब जो क्योंकि मैं तो बॉयज स्कूल से पढ़ा हूँ तो जितने भी लड़के थे तो ब्लाइंड लड़के ही मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में देखे थे मतलब उस टाइम तक। फिर जब उनको पता चला कि भाई लड़कियाँ भी ब्लाइंड होती हैं, मतलब मैंने जब बताया कि मतलब एक ब्लाइंड लड़की है और ऐसे है और वैसे है, तो फिर उन्होंने कहा, पहली बात तो कह रहे हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा भाई लड़कियां कहाँ, लड़कियां तो मतलब हमने तो आज तक नहीं देखी कोई ब्लाइंड, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। तो फिर मैंने कहा भाई आपने नहीं देखी तो आप देख लो, आ जाओ। तो फिर उसके बाद एक दिन संडे का दिन रखा गया और उसमें मम्मी में वो मतलब पापा और मेरी बड़ी बहन तो वो दोनों यहाँ मतलब मैंने बुलाया और इन उस टाइम पे मैं रूम में ही रहता था, रेंट पे रूम ले रखा था हमने, तो इनको भी मैंने बुलाया और फिर उन्होंने भी जो है मतलब खाना इनका बना हुआ खाया। और फिर उसके बाद तब पहली बार उन्होंने देखा कि हाँ भाई ब्लाइंड लड़कियां होती हैं, तो मतलब तब उनको ये विश्वास हुआ कि हाँ लड़कियां भी ब्लाइंड हो सकती हैं। और फिर उसके बाद लेकिन उनको ये रहा कि भाई तुम दोनों ही जो है मतलब ब्लाइंड हो, अब कैसे मतलब मैनेज हो पाएगा, ये थोड़ा सा उनको डाउट था बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही थोड़ा सा। तो इस वजह से फिर वो मतलब शुरू में मान नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको बोला देखो आपके सामने उन्होंने बनाया भी है खाना, आपने खाया भी है, और फिर ये है कि हम लोग मतलब वेल एजुकेटेड हैं दोनों, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपनी जो बातें हैं एक दूसरे से इजीली कह पाएंगे, समझा पाएंगे। अगर मान लो कोई आप मतलब साइटेड लड़की से अगर शादी हो जाती है और वो मतलब इलिटरेट होती है तो मतलब फिर उसका क्या फ़ायदा, मतलब हमारा मेंटल लेवल तो मतलब मैच करेगा ही नहीं। तो इस तरह से मतलब उनको हमने मतलब मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, तो इस तरह से फिर मतलब बात वो मान गए थे बाद में।
1: जब शादी हुई तो शरीक हुए, एकदम शामिल हुए अच्छी तरह से?
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो एकदम पारंपरिक तरीके से पूरे घर के मतलब रीति रिवाजों के साथ शादी हुई हमारी, दोनों परिवारों को मिला करके कोई मतलब बहुत अच्छे से। अब तो मतलब इवन वो मेरे से ज्यादा मतलब जो है इनके को बुलाने पर वो तुले रहते हैं या मतलब उनसे ज्यादा बातें होती है मम्मी की।
1: अच्छा।
3: अभी जैसे मैं सैटरडे संडे को तो इनकी छुट्टी होती है, तो मतलब ये है कि मैं तो सैटरडे को ऑफिस स्कूल में ही रहता हूँ तो ज्यादातर अरे वो तो बात बात करने में ऐसा ही है, तुम ही बात कर लिया करो, तुमसे ही बात कर लेंगे, तुमसे खबर मिल जाएगी, इस तरह से बात करती है मम्मी तो मतलब अब
1: अच्छा जब जब मिलना हुआ हरी जी, तब ये कुछ बात हुई थी कि भाई आपको जॉब करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप तो यही मान के चल रहे थे ना कि भाई मुझे तो खाना वाना मिलता रहे टाइम टू टाइम, तो जॉब के बारे में कोई आप लोगों की आपस में चर्चा हुई थी या आप यही था कि मिलेगी तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं?
3: मतलब ये इनकी मैडम की जॉब के लिए?
1: जी मैडम की जॉब की, आपकी तो खैर जॉब लगी गई थी लगभग तो।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ सर, विचार तो हमने पहले ही बनाया था, क्योंकि मतलब ये था कि मैंने कहा जब आपने एजुकेशन की है तो फिर उसका यूटिलाइज होना चाहिए, और अगर जॉब मतलब मिलती है तो मतलब वो बहुत अच्छी बात है, तो जॉब अगर मिलती है तो जरूर करेंगे, मतलब आप ऐसा मतलब हमने प्लान बनाया था। और बाकी नहीं मिलती तो इसमें कोई, मैंने वो भी बोला था कि नहीं लगेगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट खाना तो मिल ही रहा है मतलब फिर।
1: तो आप एक बात बताओ, इन्होंने तो अच्छा सा खाना खिला दिया नेपाली सब कुछ हो गया, बदले में कभी आप म्यूजिक से हैं कोई गाना वाना गाते हो के लिए?
3: हाँ सर बिल्कुल, टाइम टू टाइम कभी मतलब जैसे मौका मिले तो, अभी मतलब जैसे हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो उस टाइम पे गाना गाया था, और बाकी वैसे भी मतलब बैठते हैं तो कभी आ ही जाता है
1: लगने के लिए, हो ही जाए प्रोग्राम में।
4: वैसे गाने से ज्यादा हम एक दूसरे से बातें बहुत करते हैं।
1: हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे श्रोताओं को तो मजा आएगा सुनने में भी दो दो लाइनें।
3: अच्छा दो लाइन तो
1: गुनगुना दीजिए। मैं मतलब कह रहा हूँ कि दो लाइनें गुनगुना दीजिए।
3: अच्छा मैं गुनगुना दूँ उनके लिए तो।

0: थैंक यू सर, ये है
1: बहुत शानदार बहुत जबरदस्त, यानी आप लोगों के जीवन में म्यूजिक का भी अच्छा खासा रोल है।
0: हाँ जी सर, म्यूजिक तो मतलब क्योंकि शौक भी बहुत है मुझे तो, और इनको भी गाने का शौक है, गाना गाती हैं तो, और मेरी तो एजुकेशन ही म्यूजिक से हुई है, तो मतलब उसका बहुत बड़ा रोल कह सकते हैं कि है।
1: हरि जी, तकरीबन 8 साल हो गए आप दोनों की शादी को
0: जी,
1: और आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि बहुत खुश हैं आप, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है
0: जी।
1: जाहिर है जब आप दोनों खुश हैं, आप दोनों को खुश देख करके हम ये मान सकते हैं कि आप दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत खुशियां आप लोगों के जीवन में और भी आए आगे आने वाले समय में। लेकिन लाइफ में चुनौतियां तो होती ही हैं हरि जी।
0: जी जी सर बिल्कुल, लाइफ तो मतलब बिना चुनौतियों के तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए चुनौती भी होती है उसका मतलब। जो
1: कौन कौन से आए, ऐसे कौन कौन से मोड़ आए आप दोनों के जीवन में जब कभी आपको ये लगा हो कि मतलब जिंदगी में थोड़ी मुश्किलें हैं या मतलब पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा, ऐसा कभी हुआ कुछ याद आता है?
0: ऐसा सर इस तरह क्या का तो कुछ मतलब याद आया आ नहीं रहा है अभी तो, ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा हुआ हो कभी। हाँ बाकी छोटी मोटी चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन इस लेवल की मतलब कभी नहीं आई कि लाइफ में मतलब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो फील नहीं हुआ।
1: लोग ये मान के चलते हैं ना कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम 100% VI हों तो लोग चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस मैं ये बात पूछ रहा था कि आपको भी कभी लगा हो कि यार हाँ थोड़ी मुश्किल तो आती है। आपने भी जैसे शुरू में ये सोचा था कि मैं साइटेड विवाह करूंगा तो थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगी, उस मामले में अगर थोड़ा आप कुछ कहना चाहें तो।
0: एक्चुअली सर ऐसा है कि चैलेंजेस की जहां तक बात करें तो मतलब मेन जैसे आप मान लीजिए आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, कभी अगर थोड़ी बहुत मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है वो चैलेंज एक ये रहता है कभी कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई पेपर आ गया, मतलब पेपर पे कुछ लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज कह सकते हैं, लेकिन वो भी मतलब अगर आप थोड़ा मतलब ऑन द स्पॉट तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है आजकल तो। खैर मतलब ये कि बी माई आईज और ये सब एप्लीकेशंस काफ़ी मतलब जेमिनाई, गूगल जेमिनाई वगैरह को आप दिखा देंगे तो काफ़ी हद तक वो हेल्प कर देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चैलेंज रहता है, तो ये एक चैलेंज थोड़ा सा कह सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसा कोई मतलब बहुत वैसा चैलेंज नहीं आया कि मतलब हम कहें कि यार लाइफ कैसे चलेगी।
1: मतलब आप जब याद करते हैं इन 8 सालों को तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा समझदारी रखी जाए तो जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती है, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, हर चीज का अल्टरनेट होता है, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी गई है तो उसका मतलब आप कोई ना कोई सोल्यूशन मिल बैठ के बात करके निकाल करके उसको अप्लाई किया जा सकता है, जो भी सोल्यूशन निकले। तो अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है इन 8 सालों में कि मतलब ब्लाइंड दंपति जीवन जो है वो मतलब थोड़ा कठिन है या पॉसिबल नहीं है या आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी।
1: मीना जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में?
2: इस मामले में तो सर मैं मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सही में मेरे को तो मतलब बहुत ही अच्छे जीवन साथी मिले हैं, और हालांकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ पर मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ मतलब कि अरे मैं ब्लाइंड कम्युनिटी में बाद में जुड़ी। और इनके साथ हस्बैंड के साथ साथ ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक अच्छे गार्जियन की तरह ही मुझे संभालते हैं। मतलब कभी भी मैं किसी चीज़ में घबरा जाती हूँ या कोई चीज़ होती है परेशानी थोड़ी मैं ये है कि हड़बड़ा जाती हूँ जल्दी, तो ये समझाते हैं। और जहाँ तक आपने चुनौती की बात की थी तो हाँ जीवन में चुनौती ये आई थी जब 1 साल मेरा जॉब हुई थी वहाँ पे अंबाला में, ज्वाइनिंग हुई थी मेरी रेलवे में
1: जी,
2: तो 1 साल हम दोनों दूर रहे थे तो ऐसा लगा कि मतलब लाइफ में पता नहीं क्या खो दिया है हम दोनों ने, तो बहुत ही मुश्किल मतलब घड़ी था हमारे लिए। लेकिन हाँ ईश्वर
0: ये इन्होंने बहुत अच्छा याद दिलाया, एक्चुअली वो टाइम सर वास्तव में चैलेंजिंग था बहुत, क्योंकि मतलब हम लोग ये वहाँ अकेली थी और मैं
1: यहाँ तू वहाँ
2: लेकिन सर हिम्मत इतनी थी
0: दूर से, मतलब
2: हर फ्राइडे को मैं यहाँ पहुँच जाती थी,
0: हर फ्राइडे को, फिर मंडे को यहाँ से वापस
2: सुबह ऑफिस ज्वाइन करने तो पहुँचते थे अम्बाला।
0: वो एक कई तरह, और कई बार ऐसे मतलब बारिश में भींगते हुए, बारिश के दिनों में भी मतलब जैसे उनको मतलब भींगते हुए जाना पड़ा। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि मतलब वहां पे बारिश हो गई थी तो लाइट जो है मतलब कट ऑफ हो गई थी 24 घंटे के लिए
1: जी,
0: फोन की इनकी बैटरी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, पूरा डिस्चार्ज हो गया था फोन, तो कोई मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं मतलब। तो फिर मैंने कहा भाई मतलब सुबह जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने कहा एक दो घंटे अगर मतलब और फोन नहीं लगेगा तो मैं तो ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा। तो फिर एक आध घंटे में लाइट आ गई थी तो फिर बात हो गई। तो वो एक था वास्तव में कि मतलब कब ट्रांसफर हो पाएगी इनकी करके, तो वो मतलब एक उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगा कि कैसे मतलब बड़ा मुश्किल काम है ये
2: भाई। इन्हीं चीजों से लगा है, वैसे लाइफ तो बहुत हैप्पी मतलब मस्त है हम दोनों की,
1: बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही मस्त रहें आप दोनों, यही शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे ही हंसते खेलते आप दोनों की जिंदगी आगे बढ़े और एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतलब प्रेरणा देते रहें, आप सिखाते रहें लोगों को। आप लोगों ने कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में और आपके अनुभव की और के काम आए, सही है कि नहीं?
2: जी सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: लगी आज प्रोग्राम में, बड़ा मजा आया आप दोनों से बातें करके, और अब वक्त भी लगभग प्रोग्राम का हो ही चला है, लेकिन फिर भी अभी ऐसे हम जाने नहीं देंगे आपको। हमारे सुनने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे, पहले मीना जी आप जरा बताएं आपका क्या कहना है श्रोताओं के लिए।
2: सर श्रोताओं के लिए और खासकर जो ब्लाइंड हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मेरा यही है कि जैसे हम कई बातों में जैसे एक दूसरे को ही मतलब इल्जाम लगाना, मतलब आर्ग्यू करते हैं हम एक दूसरे से, बहुत बहस करने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और हम कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालने की कोशिश करते हैं, वो ना करके अगर हम दोनों, क्योंकि हम दोनों एक ही उससे आते हैं अब कम्युनिटी से, और अगर हम आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम किसी सामने वाले किसी तीसरे इंसान को हम नहीं समझा सकते। तो अगर हम आपस में मिलके छोटी छोटी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इससे खुशहाल और जीवन कुछ नहीं हो सकता। और मैं अपनी लाइफ में भी यही वो करती हूँ कि हम दोनों में मतलब यही है, 8 साल आज हो गए हैं, कभी ना इन्होंने कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात की ना मैंने, खुद मेरे परिवार में और आसपास के फ्रेंड्स लोग बोलते तुम दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि औरों का जीवन भी मतलब ऐसा ही हो, सुख दुख तो आते रहते हैं सर, लेकिन यही है कि अगर उस दुख में भी अगर हम थोड़ा खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वही लाइफ हमारे लिए सबसे मतलब अच्छी होगी। बस श्रोताओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी मतलब इसी तरह से खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा मीना जी आपसे बात करके, और अब मैं चाहूंगा आप भी हमारे सुनने वालों को कोई मैसेज दें।
0: जी सर, मैं मतलब सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मतलब ये है, जितना हो सके हम हार्ड वर्क कर सके, मेहनत कर सके, एजुकेशन अपनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो मतलब जो है ले सकें, और फिर उसके बाद ये है कि अगर लाइफ में कोई चैलेंज आता भी है तो उस चैलेंज को भी हम ये कोशिश करें कि मतलब इंजॉय करके जिएं और पॉजिटिव वे में ले करके और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और ना कि उसको ले करके हम बैठ जाएं कि मतलब अब ये अरे यार ये क्या हो गया, अब तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जितना हो सके मतलब हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें, और सबको आसपास के मतलब जो आसपास का अपना एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, जहां भी हमारा सर्कल जाता है वहां पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, ये मेरा मतलब।
1: बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद हरी जी। तो श्रोताओं आज सुना आपने हमराही प्रोग्राम, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमेशा आनी चाहिए, हम सबको आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मीना जी और हरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त देने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें रेडियो मधुबन के साथ इस हमराही प्रोग्राम के माध्यम से करने के लिए।
0: हम दोनों की ओर से भी सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आपको, और हमें ये मौका मिला आपके साथ बात करने का, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, और आपने हमारे साथ इतने समय तक बात की और श्रोताओं तक हमारे मन के विचार पहुँचाए, उसके लिए आप सभी का मतलब आपका धन्यवाद, और श्रोताओं का सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आज इतनी देर तक सुना इन लोगों से, श्रोताओं ने सबने उनका शुक्रिया सर।
1: ये था हमारा ही प्रोग्राम, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 94-14-15-14-15 पर। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और ऐसे ही शानदार हमराही के साथ।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं सफर कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज 23 मई तारीख है और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और बात करें आज रवि शास्त्री, बिपिन चंद्र, भालचंद्र नेमाड़े, ONV कुरूप और नितिन गडकरी, पदुम लाल, पुन्नालाल बख्शी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही हग कदूरी बीरेश लिंगम, रमाबाई अंबेडकर, सरदार हुकुम सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण शास्त्री जोशी, अजय कुमार मुखर्जी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और मंगल कामनाओं के साथ, जैसे कि हफ्ते की शुरुआत है तो ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए एक सुंदर विचार आपके लिए। आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना है ना। तो यहाँ तो है घंटों की बात बताई गई है, अगर आप आज 6 घंटे पढ़ लेते हो तो कल 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑर्डर देने की जरूरत होती है ना। तो इसीलिए इस गहरी बात को, इस सुंदर विचार को आत्मसात करें और आगे बढ़े, ऐसी शुभ आशा के साथ ढेरों खुशियां आपके लिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रुक, पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। और 27 मई की बातें हो रही है और रवि शास्त्री जो बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं रवि शास्त्री, इनके बारे में बात करते हैं। भारत के बहुत ही पॉपुलर पूर्व क्रिकेट और वर्तमान समय में उमदा कॉमेंटेटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। बतौर क्रिकेट खिलाड़ी भारत क्रिकेट टीम के लिए 1981 से 1992 तक टेस्ट क्रिकेट और एक देशीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। रवि शास्त्री ने अपने क्रिकेट करियर में धीमी गति के गेंदबाज और बल्लेबाज की भूमिका निभाई है, इस कारण इन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता था। रवि शास्त्री 15 जुलाई 2017 से भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर है। इससे पहले कोच अनिल कुंबले थे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। रवि शास्त्री के माता पिता कर्नाटक में रहने वाले थे पर इनका जन्म मुंबई में 27 मई 1962 को हुआ। इनके पिता डॉक्टर थे। घर में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का कहा जाता था। जब रवि शास्त्री बहुत छोटे थे तब वे गिल्ली डंडा, कांचे, फुटबॉल, हॉकी खेलने में ही ज़्यादा रुचि रखते थे। दोस्तों के साथ बाहर खेलकूद में ही ज़्यादा समय देते थे और बचपन में रवि शास्त्री के पास खेलने के लिए खेलने का ज़्यादातर सामान था और किसी भी खेल में आउट हो जाने पर वे खेल बंद कर देते थे तो सारे दोस्त उनकी बात मानकर उन्हें एक मौका और दे देते थे। क्रिकेट में भी जब वे आउट हो जाते थे तो बैट लेकर भाग जाते थे, फिर उनके दोस्त उन्हें घर से मना कर लाते कि अच्छा चलो एक बार बल्लेबाजी और कर लेना। ये बातें तब की है जब वे बहुत छोटे थे। फिर बड़ा होने पर उन्हें मालूम हुआ कि हार जीत खेल का एक हिस्सा है, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खेल के मर्म को समझा और खेल दोस्ती के लिए खेला जाता है। जब ये उन्हें समझ में आ गया तो फिर वो दिल से खेलने लगे। हार और जीत का पड़ाव उनके दिमाग से निकल गया। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ। आप भी इसी तरह अपने जीवन में खेलना चाहते हैं तो खेल के हार और जीत के प्रदर्शन को हटा दीजिए और जीवन को सुंदर तरीके से देखिए। सुख और दुख भी जीवन के दो पहलू हैं। सुख है तो ठीक है, दुख है तो ठीक है, वो जीवन के एक अंग है ना। दोनों जगह पे आपको समान भाव से रहना है तो आपका जीवन बेहतर होगा। अदरवाइज अगर सुख में आप खुश ज़्यादा हो रहे हैं, दुख में ज़्यादा दुखी हो रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आइए, विशेष बात कर रहे थे हम लोग रवि शास्त्री के बारे में। रवि शास्त्री स्कूल में अपनी क्लास में सबसे पीछे के बेंच पर बैठा करते थे। इसका एक कारण यही था, आखिरी बेंच के पास की खिड़की, इस खिड़की से वे क्लास से बाहर क्या चल रहा है ये देख पाते थे। और ज़रूरत लगने पर चॉकलेट की पन्नी या फलों के छिलके खिड़की से बाहर भी फेंक सकते थे। वे क्लास में बैठे बैठे चॉकलेट और दूसरी चीज़ें भी खाते थे। जब वे स्कूल में थे तो खाने के बहुत सी चीज़ें अपने दोस्तों के लिए भी ले जाते थे, ताकि वे अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ बाँट सकें। जब रवि शास्त्री 9वीं में थे तब स्कूल की क्रिकेट टीम बनी और उनके कोच देसाई सर ने उन्हें क्रिकेट सीखने में खूब मदद की। उनकी वजह से वे क्रिकेटर बन गए। उनकी स्कूल की टीम ने ही चैंपियनशिप भी जीती थी और वो पहली ट्रॉफी थी जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित किया था। और ये ट्रॉफी जीतने के बाद ही वे तय कर पाते थे कि अब उन्हें क्या एक अच्छा क्रिकेटर बनना है या देश के लिए क्रिकेट खेलनी है। उनका ये निर्णय आगे चलकर सही साबित हुआ और वो देश के लिए क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हुए। क्रिकेट से संन्यास के बाद भी उन्हें इस खेल में इतना लगाव हो गया कि वे कॉमेंट्री में भी खूब आनंद लेते हैं। तो आइए, उनकी कुछ और बातें आपसे शेयर करूंगा। रवि शास्त्री ने क्रिकेट से पहले बहुत से खेलों में हाथ आजमाया। जब वे बड़े हो रहे थे तब वे टेनिस भी खेलते थे। खेलों के प्रति रुचि जागने के बाद उनका स्कूल डॉन बॉस्को का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि यहाँ उन्हें तरह तरह के खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। गिल्ली डंडा और टेनिस से होते हुए सबसे आखिर में उनकी गाड़ी क्रिकेट पर आकर रुकी। तो ये थी कुछ खास बातें रवि शास्त्री के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुनते रहो मस्करा।

0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अरे ना ना ना ना ना ना,
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
2: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
3: आलू दम आलू दम आलू दम धिंग पट्टा पट्टा धिंगड़ी पक्को।

0: तेरा।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है, और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और विपिन चंद्र जी के बारे में बात करें तो आज विशेष प्रख्यात इतिहासकार और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष थे प्रोफेसर विपिन चंद्र, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा के मार्क्सवादी चिंतक धारा के इतिहासकार थे। तो ऐसे विशेष विपिन चंद्र के बारे में जानते हैं, और इनका जन्म आज के दिन 2 मई 1928 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में इनका जन्म हुआ। और विपिन चंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में अध्यक्ष रह चुके थे और उनकी गिनती देश के छोटे के इतिहासकारों में हुआ करती थी। बात करें उस समय की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जब वो रिटायर हुए उसके बाद वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष भी बनाए गए और फिर 2012 तक इस पद पर रहे। वो इन दिनों शहीद आजम भगत सिंह पर जीवनी लिख रहे थे। विपिन चंद्र ने लाहौर और दिल्ली में भी पढ़ाई पूरी की और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक रह चुके थे और 1985 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए। इसके अलावा वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य भी बने और इतिहास पर करीब 20 पुस्तकें लिखी है जिनमें आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक भारतीय वामपंथ पर उनकी पुस्तकें चर्चित रही। जयप्रकाश नारायण और अल्पकाल पर किताबें लिखी थी उन्होंने, आपत्तकाल पर, इमरजेंसी पर। तो कुछ पुस्तकों का नाम इस प्रकार है, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इस तरह के प्रमुख पुस्तकें उन्होंने लिखी। और योगदान की बात करें तो महान इतिहासकार विपिन चंद्र का आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान था जिन्होंने इतिहास और राष्ट्रवाद को एक नया मोड़ दिया। विपिन चंद्र ने ही खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज़ उठाई थी और उन्हें इसे हिंदू व सिखों को बांटने वाली सांप्रदायिक करा दिया था। तो इस तरह के उनका विशेष योगदान रहा है। और लंबे समय से बीमारी के चलते 30 अगस्त 2014 को विपिन चंद्र का उनके आवास पर ही गुड़गांव हरियाणा में निधन हो गया। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए विपिन चंद्र जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए मंगल कामनाएं करते हैं। वो NV ग्रुप, जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार थे। साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें भी 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मलयाली साहित्य में इनका विशेष योगदान आज भी लोग याद करते हैं। 2007 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में इन्हें दिया गया और 1998 में उन्हें पद्मश्री तथा 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ONV ग्रुप को 1990 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है और इनके परिवार में पत्नी सरोजनी तथा बेटा राजीवन और बेटी माया देवी हैं। उनके 20 कविताएं संग्रहालय हैं, कविताओं का कलेक्शन है, आलोचना की एक किताब है और बाल साहित्य पर एक किताब और कालबास की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित इनका हुआ है। अग्निशीलम बंगाल के लिए ONV ग्रुप का केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, अक्षरराम के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और उप्पू नामक के लिए वायलार पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतकार के रूप में ONV ग्रुप 13 बार केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए और विशेष रूप से इस तरह के अलग अलग सम्मान जो है इन्हें प्राप्त है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल सुनना पसंद करेंगे, जो अभी भी चर्चे में हैं और हर मोबाइल पर आप उनके वीडियोस ज़रूर देखते हैं। जी हाँ, सही समझे आप, जिनका आज जन्मदिन है तो आपके पास वीडियो भी आ गया होगा। भारत के बहुत ही बड़े उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता, 17वीं लोकसभा के सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री हैं नितिन गडकरी। जी हाँ, नितिन गडकरी को 23 दिसंबर 2009 में विशेष 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसके बाद उन्हें 1 फरवरी 2010 से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया और 52 वर्ष की आयु में भाजपा के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की खूबी की वजह से नितिन गडकरी सदा अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे। साल 1995 में वे महाराष्ट्र में शिवसेना के गठबंधन सरकार भाजपा के लोक निर्णय मंत्री बन गए थे और 4 साल तक इसी मंत्री पद पर रहे। एक मंत्री के रूप में नितिन जी ने अपने अच्छे कार्य को, अच्छे कामों के कारण सदा प्रशंसा में रहे हैं। तो आइए, इनका आज जन्मदिन है, 27 मई 1995 को इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ महाराष्ट्र नागपुर में। उनका घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के पास ही था और विशेष रूप से इनकी जो रुचि है वाणिज्य और पारास्तक और इसके अलावा कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। उनके पिता जहां संघ के एक सामान्य कार्यकर्ता रहे, वहीं माता एक प्रसिद्ध प्रचारक भी बनी और गडकरी के परिवार में उनकी पत्नी कंचन सहित 2 बेटे निखिल और सारंग तथा पुत्र वधुएं

और एक बेटी केट की है। तो आइए इनके बारे में कुछ और बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी का राजनीति में जैसे ही प्रवेश हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया अपने छात्र जीवन में, और तब से ये राजनीति का सफ़र इनका जारी हो गया। और 23 साल की उम्र में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और अपने मजबूत राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हुए इन्होंने किया। नितिन गडकरी की हैसियत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जानी पहचानी नहीं थी उस समय, लेकिन धीरे धीरे वो अपने महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बन गए और ऊर्जावान व्यक्ति और सबको साथ मिलकर काम करते थे। तो धीरे धीरे जो है उनका वर्चस्व बना और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के लिए वे विवादों में गिरे और चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिर उसके बाद मामला को धीरे धीरे क्लियर किया गया और 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार हो गया। तो यहाँ पर ये निर्णायक मंत्री बन गए। फिर कहानी यहाँ से जो एक रफ्तार पकड़ी, तो अभी तक रफ्तार में है। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार हार के बाद भाजपा में जो उथल पुथल हुई थी, उससे उभरने के लिए आरएसएस के पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के बदलने की बात कही थी। जब संघ ने ये कहा कि नया अध्यक्ष दिल्ली से नहीं होगा, तो नेता की तलाश हुई, जिसमें नितिन गडकरी के साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का भी नाम उभर कर आया। किंतु लालकृष्ण आडवाणी के बारे में पारिकर के विवादास्पद बयान के उनका पत्ता काट दिया और इस तरह उनका रास्ता अधिक आसान हो गया। और आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी की राय पर नितिन गडकरी के नाम पर आरएसएस ने अपनी मोहर लगा दी और शनिवार 19 दिसंबर को भाजपा के संसद बोर्ड में उन्हें सर्वसहमति से नया अध्यक्ष चुनने के लिए सहमति बन गई। और फिर संविधान के अनुरूप उनका कार्यकाल 3 साल का नियत हुआ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2010 से 22 जनवरी 2013 तक रहा। इनके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को भाजपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें नितिन गडकरी जी के बारे में। और आए दिन आप वीडियोस और उनके बातें भाषण आप सुनते ही रहते हैं। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में, सड़क में जो ब्रिजेस बनाने का, रोड बनाने का काम जितनी स्पीड गति से उन्होंने किया है, शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे काफ़ी जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत आसान हो जाएगी और फास्ट ट्रैक वाले जो रोड्स हैं वो दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई, मुंबई से डायरेक्ट दिल्ली, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बनने वाली हैं, जिसका काम जोर शोरों से शुरू हुआ है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त और जाते जाते एक और विचार। खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से, लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से, लड़ तो सही। होगा साहिल पर तू जीत पर, अड़ तो सही। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जिया सफर इस कार्यक्रम को। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: I close my eyes and sit comfortably and relax by taking a number of deep breaths.

शांति। आज 28 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो बाबा कहते, तुम बच्चे यहां आकर बाप से ऊंच तकदीर बनाते हो, लेकिन ये ऊंच तकदीर का आधार क्या है? सबसे पहला आधार, बाबा कहते, तकदीर जगती है हमेशा पढ़ाई से। दुनिया में भी कोई बच्चे की तकदीर अगर बनती है तो पढ़ाई से बनती है। यहां भी जितना अच्छी तरह से तुम पढ़ाई पढ़ोगे, तकदीर जगती जाएगी। दूसरा आधार बाबा ने बताया, बच्चे जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। बाबा की पहली पहली श्रीमत है, बच्चे स्वयं को आत्मा समझो, देह नहीं। तो देह अभिमान को जितना मिटाते जाएंगे उतनी तकदीर हमारी श्रेष्ठ बनती जाएगी। आत्म अभिमानी बनने से ही श्रेष्ठ कर्म होने लगते हैं और उसी से तकदीर श्रेष्ठ बनती है। तीसरा आधार जो बाबा ने बताया कि जितना आत्मा पावन बनती जाएंगी उतनी तकदीर श्रेष्ठ बनेगी। और पावन बनने का आधार है बाबा की याद। तो जितना बाप की याद में रहेंगे, पावन बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे, उतनी तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएंगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी उच्च तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च तकदीर बनेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। किस बात का पुरुषार्थ करते हैं? सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं, हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। ये स्पष्ट समझ है साधु संत महात्माओं सन्यासियों में। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं, कौन है वो भगवान? तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। दुख हरने वाला तो बाबा होता है, पिता होता है, बच्चों का दुख देख नहीं सकते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा तो नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे और वह है निराकार, जिसकी पूजा करते हैं, जानते हैं। शिव बाबा सभी का है। भोलेनाथ बाबा कहेंगे, भोले बाबा कहेंगे, तो शिव बाबा सभी का है। परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, लौकिक पिता को भी बाबा कहेंगे। या फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है तो हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहां कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल,
सबसे ऊंचा लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो इसलिए वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। सतयुग त्रेता में दुख का नाम निशान नहीं रहता, यहां तो बहुत दुख है ना। सब पुकारते हैं, अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। बाबा कहते हैं अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है, ये तो कुछ नहीं है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं, वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर, पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी, तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा के संतान बने हैं। बाप से सुख का वर्षा लेने, तुम बच्चों को ही सुख था जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने

पना भी है। भारत बहुत शाहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रसम रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता है। अगर शास्त्रों से मिल जाता तो अब तक तो सबको मिल गया होता। तो बाबा कहते हैं, बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता है। समझते भी है भगवान को यहां आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं है। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। गीता में भी लिखा है, यज्ञ तप दान पुण्य आदि से मैं नहीं मिलता हूं। भगवान को पुकारते ही है, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती, इसलिए बाबा को बुलाते हैं। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहां की कहां चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है, कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी एक सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये नहीं हो सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन ही नहीं बन सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो, अभी हम सभी बच्चे बेहद के बाप से वर्षा लेने आए। तुमको पुण्य आत्मा बनना है, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान है। तो जितना पुण्य आत्मा बनते जाएंगे हमारी तकदीर भी श्रेष्ठ होती जाएंगी। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से तो नहीं बनेंगे। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है, बाकी वो पानी की नदियां तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है, बाप कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूं। तुमको समझाने, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है, 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं, स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शिव बाबा को कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो है मनुष्य के लिए। मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। दुनिया में मनुष्य के पास है भक्ति का ज्ञान। गाते भी है, हम पापी नीच है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोए। इनके ऊपर तरस किया गया तब मनुष्य से देवता बने हैं। हम बाबा जब आकर के मनुष्य पर तरस करते हैं
तब जाकर के वह

देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है भिखारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर, इसलिए बुलाते हैं दुखहर्ता सुखकर्ता देवता बनाने के लिए। सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को न दुखाओ, मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। आत्मा शरीर में न हो तो बोल नहीं सकती, आत्मा शरीर में न हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं, ये तो नरक है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, तो नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो। मनुष्य में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने दिया। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो, तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूं, मैं तो परमधाम में रहता हूं। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। बाप का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। पहले शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में जाते हो। यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण आया है, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कहते श्री कृष्ण ही भगवान है, वही आया है। कृष्ण को भगवान कह ना सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है, और वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग दुनिया में नहीं होता। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं, तुमको पावन बनाता हूं। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। मनुष्य कुछ भी करे, बाबा कहते सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है, अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो इस समय, जब बाप मिला तो भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं, हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए। परंतु बहुतों में आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है, एक की याद से ही आत्मा पावन सतो प्रदान बनती है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, अभी जो पुरुषार्थ करके जितना लिया सो लिया,
फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है, यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं, बल तमो प्रदान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। और तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित होने कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भूल गए हैं कि हम असल देवी देवता थे, अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि विकारी है तो कैसे कहला सके। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? या कोई साधु संत आदि नहीं है, हमें पढ़ाने वाला समझाने वाला कोई साधु संत आदि नहीं है। दुनिया में कोई कहता हम व्यापारी है, फलाना है, अब ये सब है देह अभिमान। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं व्यापारी हूं। बाबा कहते ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम कार डे दिल यार डे, तुम आशिक हो एक माशुक के, सबका सदगति दाता एक माशुक है। वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहां आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाने, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। कोई भी मनुष्य किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं और उसकी यादगार शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये बात बाबा कहते बच्चे भूल गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पढ़ाई से ही तकदीर बनती है। कौन सी तकदीर? मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो दूसरा, पावन बनने से तकदीर बनती है जो नई दुनिया में ले जाती है। दूसरी पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। जितना बाप की याद में रहेंगे तकदीर ऊंची बनती जाएंगी। कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है। कौन सा? पवित्र। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र। और कर्तव्य है, होली हंसों का कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है, न बुरा करना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं
वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर, आज का स्लोगन है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप के दिल पसंद गिफ्ट है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद गिफ्ट कौन सी है? चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप में रहना। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ। ये सब निमित्त मात्र है सेवा के प्रति। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे बने। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम।